0: के सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का
0: हाँ जी
1: 47वां अध्याय है और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के, और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में, और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है, तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नजर वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधु की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गोपवीतकम् कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णु वादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रुत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषणे प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
0: गर्ग मुनि ने,
1: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया, पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई, हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रि जगत प्रसु। अब कहते हैं

0: वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया, उस सब के साथ गीत वाद्य भी वहाँ हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी, विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है। लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है। और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता, जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है, वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो हैं पार्वती, वो हैं काली, वो हैं दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम स देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा
1: और

0: महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी। तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिवजी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए, जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही विधि
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है। और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में, कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं, जितने भी मंत्र हैं, उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि बरवधु भी खा लेते हैं, प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी, अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं, तक बस वही लगभग वही
0: हो जाते हैं।
1: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
2: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
1: क्योंकि एक
2: देवताओं का अनुग्रह बरसता है। लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब,
2: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
1: हुआ, दिन
2: में, दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 सुबह के 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
2: लेकिन प्रायः सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थीं, नगर की वधुएँ थीं, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया, गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुशोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधु की पूजा करे या वधु वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह कर के भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा, ये तीनों मिल जाएं तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम, के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं।
0: रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं, इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधू दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाई ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को, पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वरियामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकर तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विध सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद त्वम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि, जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन वाच्ये महेश विषय अतिव असी तुम बहिर्मुख त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो,
2: जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो। तुम कुछ भी नहीं जानते, शिव जी के बारे में तुम सर्वत्र

0: तथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिवजी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है। इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते। दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था, इसलिए देख रहे हो।
1: बहुत
0: तो सुंदर, देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों। अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे। मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा है। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानस शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
1: बिन बुलाए मेहमान,
2: बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑब्वियसली कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
2: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की। तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इनबिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा। हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा

0: प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहां मेरा मेंटल फाइट है, जहां द्वंद है, जहां मैं कंफ्यूज हूं, जहां डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
0: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहां पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माने आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है, तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं, और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा कि आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे।
1: बिल्कुल।
2: इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी
1: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी,
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी माना, अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एक

0: वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. और देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जाओ. चिल्ड्रन आर डूइंग दैट.
0: आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. डेफिनेटली.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों? क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी एक्चुअली, अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज. क्योंकि हर चीज़ जो हो रही है वो परफेक्ट.
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट, यू नो, पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है. इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या,
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवन दायिनी, मनुष्य को देना.
1: एब्सोल्युटली. सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बीइंग. उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बीइंग. दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ, ब्यूटीफुल. दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे. इट्स ओके, देयर आर ऑब्स्टिकल्स. आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रिएचर्स. दैट्स आल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
0: उन्हें nourish.
1: और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना, घर आना,
0: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
0: and give them happiness, you know?
1: ये मेरी responsibility है. तो imagine how the day will pass, and then I'm sharing and giving without expecting. At the end of the day मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think इस satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
0: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
1: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
0: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माई वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया. द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इज माई वर्क.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली, लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है. स्टॉप. माई रोल इज ओनली टू
0: वंडरफुल. यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
1: you know, flow,
0: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे, और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
0: You know, we, at times we stay.
1: रुका हुआ पानी रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
0: कई बार अपने साथ लोगों को कईयों को ले चलते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो,
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होके मिलता
1: है। आई फील ब्यूटीफुल
0: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
1: हीलिंग हो जाएगी उससे। कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है, मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना, तो मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
0: बात करना बंद कर देते हैं।
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे। That's good for me, then I should follow that. So be quiet, let go, let be, accept everything, pass on to everyone as they come and listen inside. Simple, simple things. सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं बहुत डिफिकल्ट, तो वे सिंपल सिंपल।
0: हाँ, और हर बार की तरह
1: स्टार्ट डूइंग दैट,
0: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस, और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए, मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए, और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज़ है। बट वॉट वी डिडंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आवरसेल्व्स। तो गुस्सा बार बार करना, या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय
2: इरिटेशन,
1: या इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन, इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया, तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है, और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू करते हैं,
2: watch it and see it।
1: तो what happens कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहां से हटा देते हैं, और वहां से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
2: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी।
1: हम खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी, सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर एंड इट कैन स्टे विद मी टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज, द सेंटर, कि मैं कौन, ओम शांति, ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग। तो अवेयरनेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए और देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज। तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था, तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
2: गुस्से के दौरान भी कर
1: सकते हैं। वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है।
2: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है, और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता, या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस, सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 स्टेप्स, I think gradually we should be able.
1: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते हैं। अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा। लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है। लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा, क्योंकि अवेयरनेस चाहिएगी, यू नो अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो, एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से, जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज।
2: यस, यू नो वी ऑलवेज बीन सेइंग दिस, जस्ट अ यू नो थॉट वे, सो अगेन द थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता यह है कि हम इतने गिल्ट और रैंक मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया।
1: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए और उसे और गुस्सा कर मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, यू नो सो इट इज जस्ट बिकम वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर।
2: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पर कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज। लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है वो पीस जुड़ता है उसके साथ। लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है। तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस।
1: पीस इज अ वर्ड व्हिच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड, यू नो वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर। तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है, लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते। हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है, यू नो, एंड एट दैट टाइम वी से आई वॉन्ट पीस। पीस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ द बींग, ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे, अंदर एक साइलेंस होगा, एक है साइलेंस एक है नॉइज, यू नो। तो पीस डजंट मीन कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं, बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइज है, और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड। साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स। सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स, नो, थॉट्स फोकस्ड, आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है बस उतना ही करना है। हमें ये प्रोग्राम अभी करना है, वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए,
2: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे,
1: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंजाइटी, टेंशन, फियर। तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा। अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना, अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है। तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक, तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है नहीं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर। तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना। पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
2: आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है।
1: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
2: उसके लिए,
1: एब्सोल्युटली,
2: है ना। लेकिन मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ, क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिवन हो गया?
1: नहीं, गिवन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है, मैंने ये भी पहले तो, अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को।
2: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, पूरे कॉन्फिडेंस से अब मैं कह सकती हूँ
1: ओम शांति।

मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ आज है संडे का दिन, और संडे वाले दिन ना मैं आपके साथ ढेर सारी बातें करती हूँ। अच्छा, आज भी ढेर सारी बातें लेकर के आई हूँ, और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से फरमाइश कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078 यह हमारा नंबर है। तो फटाफट से वही देरी इस बात की, जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाइए और कॉल कीजिए हमें, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। आज है संडे का दिन और अगर आप संडे वाले दिन कहीं बाहर का प्लान बना रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, आपको अपना एंड्रॉइड या मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, जिसके बाद ढेर सारी देखिए आपको क्या करना है ना, जैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे ढेर सारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही खूबसूरत एवरग्रीन सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और आप हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब के साथ, इन प्लेटफॉर्म्स के साथ आप रेडियो मानव रचना के साथ जुड़ सकते हैं और ढेर सारे एंटरटेनमेंट आपको मिल जाएगा। तो बस देरी किस बात की, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए बातें हमारी जो है वो चल रही हैं, और एक बहुत ही खास जानकारी आपको बताती हूँ, जानकारी देती हूँ। देखिए हमारा जो काफी टाइम है ना, काफी सारा जो टाइम है वो ऑफिस में बीतता है, जो काफी ज्यादा बिजी और स्ट्रेस से भरा भी होता है। इसके पीछे ज्यादातर होता है कि हमारा वर्कलोड हो गया, या फिर देखिए ये भी होता है कि किसी, अगर आपका कोई कलीग है उससे आपकी थोड़ी सी अनबन हो गई, या फिर वर्क प्लेस का ये जो कभी कभी होता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। या वहाँ पर कुछ जगहें देखिए ऐसी भी होती हैं, कुछ अगर हम वहाँ के ऑफिस के वातावरण की बात करें तो वो भी कुछ ना कुछ कभी होता है कि वाइब्स मैच नहीं हो पा रही है। और अगर आपके साथ भी ऐसा है, आप भी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे आप इस स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि जैसे

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए मेरे पास कई सारे मैसेजेस तो आ ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग के भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और संडे का दिन है, जल्दी जल्दी सबकी सुबह हो जाती है ना। अच्छा, मैं ना बात कर रही हूँ आपके स्ट्रेस की, जब भी ऑफिस में होते हैं, चाहे वो सिर्फ ऑफिस का नहीं मैं कहूँगी यहाँ पर, चाहे ऑफिस में, घर पर भी कभी कभार ना ये होता है कि हम हर काम को ना बहुत स्ट्रेसफुली जो है, कुछ काम ऐसे होते हैं स्ट्रेसफुल जो है हमारे लिए हो रहा है, चाहे वो आपका बिजनेस है, आपको कोई भी तकलीफ हो रही है, हम स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं। और आजकल स्ट्रेस जो है ना, आप किसी भी उम्र के लोगों को आप देख लीजिए, चाहे एक छोटा बच्चा है वो स्ट्रेस ले रहा है, उसका होमवर्क कैसे होगा, आपकी पढ़ाई जो है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो सब उसकी वजह से भी स्ट्रेस जो है वो हो जाता है। अब बात आती है कि स्ट्रेस से खुद को डिस्ट्रेस कैसे करें, यानी कि स्ट्रेस को खत्म कैसे करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किताबों की दुनिया में आप खो जाइए, यानी कि किताबें पढ़ना एक कला है जिससे धीरे धीरे हम जो है वो दूर होते जा रहे हैं आजकल के टाइम में। लेकिन हमारी लाइफ में ना मोबाइल फोन और लैपटॉप का ऐसा दबाव जो है ये आ चुका है, दबदबा पड़ चुका है, जिससे ज्यादातर टाइम जो है हम स्क्रीन पर देने लग गए हैं। और इसीलिए जरूरी है कि आप इससे ब्रेक लें और अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम आप करें, दिमाग को आप रिफ्रेश करने का मौका दें। और इसमें कोई देखिए, आप किताब जो है, जो भी आपको पसंद हो वो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब आप ले सकते हैं जिससे आपको जरूरी कुछ जानकारी भी मिले, आपका एंटरटेनमेंट भी हो। तो आप डिपेंड करता है, कोई अगर उसमें स्टोरी है या कहीं से आपको कोई जानकारी मिल रही है, कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर आपको किताब अगर आपको लग रही है, या फिर आप मैगजीन पढ़ना चाहते हैं, आप मैगजीन पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, स्क्रीन को बंद कीजिए। इतिहास या विज्ञान की किताब भी आप पढ़ सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री साइंस की आप किताबें पढ़ सकते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी किताब आप पढ़ें तो वो आपको बेहतर ही आपके लिए रहेगी, आपके दिमाग को एक रिफ्रेशिंग जो है आपके दिमाग के लिए होगा। और इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आप वॉक कर सकते हैं। ऑफिस में लंबे टाइम बैठने रहने के बाद, या फिर आप कोई भी अपना डेस्क जॉब है आपकी, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी बैठी रहती है, आप बैठे रहते हैं, तो आप वॉक कीजिए। आपकी बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। इस थकान को दूर करने के लिए आप वॉक पर जब जाएंगे ना, आपकी मेंटली थकान को ख़त्म करने के लिए वॉक करने की ज़रूरत है। बॉडी इससे एक्टिव रहती है और आपका दिमाग भी रिलैक्स रहता है। और वॉक करने के लिए आप किसी पार्क में जा सकते हैं या घर की छत पर आप घूम सकते हैं, जहाँ भी आपका मन करे थोड़ी वॉक, आपके स्टेप्स पूरे हो रहे हैं, घूमिए, 10,000 स्टेप्स पूरे कीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप शुरुआत में ही 10,000 स्टेप पूरे करने पे लगे रहिए। शुरुआत में देखिए, मैं ये कहूंगी कि आप पहले स्टार्ट कीजिए सिर्फ 2,000 स्टेप से, 2,000 से सीधा आइए 5,000 स्टेप पे, 5 से सीधा आइए आप 8,000 स्टेप पे, और 8 से सीधा 10,000 स्टेप्स पे आ जाइए, और देखिए कैसे धीरे धीरे करके आप 10K स्टेप्स आपके पूरे आप कर सकते हैं। आजकल ट्रेंड है तो आप ट्रेंड के साथ भी आप चलेंगे और आपको काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेस की, जो यार जो कि इतना ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं ना हर चीज का, इसको डी स्ट्रेस करने का आपको टिप्स दे रही हूँ। मेडिटेट कीजिए, काम के स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है और इससे आपका तनाव भी कम होगा और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए आपको किसी शांत जगह पर बैठकर अपनी श्वासों पर, अपनी सांसों पर ध्यान आप लगा सकते हैं और आपका जो दिमाग है ये भी रिलैक्स होगा और स्ट्रेस खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। इसी के साथ आप अपना फेवरेट खाना बना सकते हैं। देखिए, खाना बनाना ना एक कला है, खाना बनाना पेशेंस का गेम है, खाना बनाना प्यार से आप बनाइए। तो अगर आप खाना बना रहे हैं, अपने मनपसंद कोई भी डिश बनाइए जिससे आपको खुशी मिले और मजेदार ये खाना तो रहेगा ही, आपको अच्छा भी लगेगा। उसके बाद ये फेवरेट डिश अपने ऑफिस लेके जाइए, आपको उसमें मजा आएगा, अच्छा लगेगा। काम से आपका जो देखिए थोड़ा जो स्ट्रेस आ जाता है ना, उससे जो स्ट्रेस है, आप जब ये खाना खाएंगे ना आपको खुद ब खुद अच्छा लगेगा, खाना हमने बनाया, अपनी पसंदीदा डिश बनाइए, इससे आपका मूड भी बेहतर होगा। और सबसे आखिरी में लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, म्यूजिक सुने, क्योंकि म्यूजिक एक थेरेपी है। म्यूजिक आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा लाभदायक हो सकती है। अपने घर में अपनी पसंद का म्यूजिक प्ले जरूर करें, आप अपनी मनपसंद धुनों पर देखिए आप डांस कीजिए, उसे गुनगुनाइए, मनपसंद आपका कोई भी आपके धुन हो, जैसा भी आपको मजा लगे, आपको अच्छा लगे, उससे जो है ये फायदा है कि आपको आपका स्ट्रेस जो है धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा, डी स्ट्रेस आप हो जाएंगे, एंजाइटी कम करने में मदद मिलती है और काफी आपको अच्छा लगेगा, काफी अच्छा महसूस होगा। इसीलिए म्यूजिक सुनना डी स्ट्रेस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूं साक्षी आपके साथ। प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग, और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। बहुत सारी होती हैं बातें, जैसे ही मैंने कहा था आज हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक योग गुरु है, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी हैं। बहुत सारी आज हम बात जो है वो हमारे आज के एक्सपर्ट से करने वाले हैं। उससे पहले भाई, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेश हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार साक्षी, नमस्कार रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगता है।
0: डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कुछ चुनिंदा सवाल है हमारे पास और ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आज संडे का दिन है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि संडे वाले दिन आप हमारे स्टूडियो आते हैं और इतनी सारी जानकारी देते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है वर्किंग होना और काफ़ी सारा, क्योंकि पूरा हफ्ता जो है हम काम कर रहे हैं, लेकिन संडे भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ आने के लिए।
1: बहुत अच्छा लगता है रेडियो मानव रचना पर आकर के आप लोगों से मिल करके, लोगों से मिल करके बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी जी डॉक्टर राजेश, मैं जो सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, जो आज हम टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ थेरेपीज, और अलग अलग तरीके की थेरेपीज होती हैं जिनका सहारा हम ले सकते हैं। बस इन थेरेपीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिटेल में जानना चाहती हूँ। हम एक एक करके सारी थेरेपीज की बात करेंगे। तो हमारी आज की पहली थेरेपी है, वो है म्यूजिक थेरेपी। तो म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल क्यों होता है और कितना ज्यादा ये बेनिफिशियल हो सकता है?
1: देखिए, संगीत जो है ना, प्राचीन परंपरा से, सभ्यता की शुरुआत से ही संगीत को लोगों ने समझा, अनुभव किया और उसमें आनंद की प्राप्ति हुई, आनंद की उपलब्धि हुई है।
0: जी।
1: संगीत एक माध्यम है अपने आप से जुड़ने का, अपने आप को पहचानने का, और संगीत ही आपको परमात्मा से भी जोड़ता है, जिसको हम परमपिता परमेश्वर के रूप में जानते हैं।
0: जी।
1: तो संगीत एक डिवाइन लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन बिटवीन योर इंडिविजुअल एंड द कॉस्मस। तो ये जो संगीत, जो धुन है ना, आपके मन मस्तिष्क में अल्फा तरंग पैदा करता है, और जिससे आपकी बहुत सारी थकान, तनाव, स्ट्रेस, इमोशनल फटीग, इस सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसलिए संगीत तो आपके जीवन का एक अंग होना चाहिए।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो संगीत है, ये जो म्यूजिक थेरेपी है, ये सभी के लिए वैसे ही काम करती है? यानी कि जैसे जो लोग जो हैं, जैसे डॉक्टर जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कुछ लोगों को, तो अलग अलग तरीके की थेरेपी होती है, तो क्या म्यूजिक थेरेपी सबको रिकमेंड की जाती है?
1: संगीत तो आनंद का माध्यम है, फाइनली सभी को जरूरत है आनंद, हैप्पीनेस, जो ब्लिसफुल मोमेंट, जो संगीत जो गाता भी नहीं है, गुनगुनाता भी नहीं है लोगों के सामने, वो भी बाथरूम में जाकर के वो गुनगुनाने लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कभी कभी वो अपनी आवाज में लगाते हैं, यानी वो रिलैक्स हो चुका है।
0: बिल्कुल।
1: ये तो रिलैक्सेशन का एक माध्यम है।
0: जी, जी।
1: और ये डीप इन्वॉल्वमेंट होता है, और खास करके जो लोग क्लासिक म्यूजिक का अभ्यास करते हैं, वो तो अपने आप में सारे चक्रों को खोल देता है।
0: बिल्कुल।
1: ये जो 7 सुर जो है ना, आपके 7 चक्रों का धुन है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जिसको हम कहते हैं बीज मंत्र।
0: जी जी डॉक्टर राजेश, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद और भी बहुत सारी होंगी बातें, क्योंकि अब अगली थेरेपी के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में संडे का आज दिन है और हम बात कर रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश से। डॉक्टर राजेश, मैं अगली थेरेपी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी और वो है पेट थेरेपी। अब ये जो पेट थेरेपी है वो किस तरह से जो है हेल्प करती है और क्या जो एक जो है बेनिफिट है वो हमें मिलता है और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ये कितनी ज्यादा अच्छी है।
1: देखिए, जब आप अपने घर में पेट रखते हैं ना तो आपका एक इमोशनल टाइड अप होता है, इमोशनल आपने एग्रीमेंट किया है
0: जी,
1: और वो आपकी भाषा आपके इमोशन को समझता है और आप कम्युनिकेट करते हो, उससे एक्सप्रेस करते हो लव, सारे जो जॉय सारा हैप्पीनेस वो आपको देता है। जब आप दरवाजा खोलते हो, जिनके घर में डॉग हैं, जैसे दरवाजा खोलते हो वो बेचारा आता है, अनकंडीशनल लव देता है, तो वो आपको हील कर देता है, सारे तनाव को इमीडिएट न्यूट्रलाइज कर देता है।
0: जी जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर, मैं यहाँ पर अब ड्रामा थेरेपी के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि ड्रामा थेरेपी क्या है और किस तरह से ये मदद करती है।
1: देखिए, यहाँ ड्रामा थेरेपी का जो एग्जैक्ट वर्ड है जो यूरोप में बहुत पहले शुरू हुआ है, साइकोड्रामा। साइकोड्रामा थेरेपिस्ट जो लोग काम करते हैं इस पर, वो आपके साथ उस माहौल में लेकर के चले जाते हैं एक्टिंग के थ्रू, सीन के थ्रू, और उस सिचुएशन में आपको खड़ा कर देते हैं और वहां से आपके सबकॉन्शियस के जो स्ट्रेस हैं, अनकॉन्शियस माइंड के जो स्ट्रेस हैं, उसको साइकोथेरेपिस्ट निकालता है। तो अभी तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये बहुत पुरानी परंपरा है, साइकोड्रामा इंडिया में अब शुरू हुआ है।
0: जी जी जी बिल्कुल। और साथ ही हम अगली थेरेपी के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अभी एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइक।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगी। अब बात करते हैं, अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि आप जर्नल लिखना शुरू कीजिए। अब ये जो राइटिंग थेरेपी है, इसके पीछे का राज क्या है? और ज़्यादातर जो हमारे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या फिर हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें यही क्यों रिकमेंड करते हैं कि आप लिखिए? इतना फोर्स लिखने पे क्यों है? इसका क्या फ़ायदा जो है जो हमें मिलता है?
1: देखिए, जब आप लिखते हैं ना तो आपका अपने आप से आप जुड़ते हैं और आपके अंदर जो भी स्टोर है, जो भी आपका कलेक्शन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलता है और आप एक्सप्रेस करते हैं पेपर पर। और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और ये प्राचीन परंपरा है। ये तो थेरेपी का हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट का। अगर आप थोड़ा और जाएंगे डीप में तो डीप में क्या था, भगवान के नाम लिखने की परंपरा हमारे यहाँ थी।
0: हाँ हाँ, करेक्ट।
1: और पेपर में अभी भी जिसको हम कहते हैं लिखित जप, लिखने सिर्फ नाम लिखते रहो, नाम जप करते रहो और लिखते रहो। इससे क्या होती है, आपके मन और मस्तिष्क में जो तरंगे पैदा होती है वो आपके के हेल्थ के लिए कंप्लीट है, आपके हेल्थ के लिए कंप्लीट है, पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है, मानसिक तनाव को खत्म कर देता है आराम से। इसलिए जर्नल लिखना तो चाहिए ही। और जब आप अपने से जुड़ते हैं, कुछ अच्छी चीजों को याद करते हैं तो जॉय भी होता है, दुख भी होता है। तो कहीं आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आप अपने पेपर पर तो एक्सप्रेस कर रहे, तो आप लाइट फील करने लगेंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लिखने का इतना शौक नहीं होता है, पढ़ने का शौक नहीं है, या फिर उनको गाने गुनगुनाने का शौक नहीं है और ना ही वो पेट लवर है। तो फिर अगर आप उन्हें रेकमेंड करें तो वो कौन सी थेरेपी होगी जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और मदद कर सकती है?
1: मैं तो कहूँगा कैथोर्सिस करो।
0: आप इसे स्पष्ट भाषा में हमें बताएं।
1: ये कैथोर्सिस जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को हम समझ भी नहीं सकते हैं, जान भी नहीं सकते हैं
0: जी,
1: और उसके कोई अर्थ नहीं है, एक ऐसी भाषा जिब्रिस
0: जी,
1: उसमें आप आ जाइए, रूम को बंद कीजिए और जो मन में आता है निकालिए, पैर हाथ को हिलाइए। और कैथर्सिस और जिब्रिस का प्रयोग तो आचार्य रजनीश ने बहुत बड़े पैमाने पर किया और बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता था। क्योंकि तनाव मुक्ति एंड एक्सप्रेशन, उसमें आपके एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट सब निकलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी आज हमारी बातें जो हैं वो डॉक्टर राजेश के साथ चल रही हैं। डॉक्टर राजेश, कई सारी थेरेपीज़ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और इनका क्या जो है प्रभाव पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पर, क्या अच्छा, क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ये सारी बातें भी हम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा और मैं ब्रेक लूँगी, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील
2: ज्वाला। समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। आज संडे का दिन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, थेरेपीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आर्ट थेरेपी भी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है, या फिर ड्रामा थेरेपी की भी हमने आज बात करी है, अलग अलग थेरेपीज हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो लोग अब इन थेरेपीज के बारे में इतना नहीं जानते हैं लेकिन रूटीन से स्पोर्ट्स में जो है इन्वॉल्व है, स्पोर्ट्स जो है उसका एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं या फिर जिम जा रहे हैं, तो ये जो रूटीन है इसे फॉलो करना कितना ज़्यादा अच्छा है, बेनिफिट जो है उनको देगा, और क्यों ये जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, एक कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ये ज़रूरी है।
1: देखिए, तनाव तो आपके जीवन का एक अंग है, इससे आप और हम बच नहीं सकते हैं। तनाव तो रहेगा जीवन में, कभी प्रोफेशनल रहेगा, कभी फाइनेंशियल रहेगा, कभी फैमिली का रहेगा, कभी बच्चों का रहेगा, कभी हेल्थ का रहेगा, कभी पेरेंट्स के रहेंगे, ये सारा अंग है। लेकिन अपने आप को मजबूत बनाना है, इसके लिए आपको फिजिकल एफर्ट करना चाहिए। फिजिकल एफर्ट में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम अगर पसंद करते जिम कीजिए, योगा पसंद करते योगा इज़ अ वेरी गुड अप्रोच फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्विमिंग कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, स्पोर्ट्स में जाइए, 1 घंटे तक आप बर्न आउट कीजिए अपने आप को, दोनों फायदा है, कैलोरी भी बर्न होगा, स्ट्रेस भी होगा रिलीज। और एक चीज जरूर कीजिए
0: जी,
1: मेडिटेशन थोड़ा सा जरूर कीजिए, 5 मिनट से ही अपने जीवन का एक अंग बनाइए। 5 मिनट के लिए किसी साइलेंस जगह पर बैठ के सिर्फ अपने श्वासों का ख्याल कीजिए। जब आप अपने श्वासों के प्रति आप सजग बनेंगे, दृष्टा बनेंगे, साक्षी बनेंगे, तो आपके इंडोक्राइन में जो कॉर्टिजोल लेवल हाई अमाउंट में है वो न्यूट्रलाइज होगा। इसलिए शवासन कीजिए, शवासन भी एक तरीका है, शरीर को मुर्दे की तरह आके फर्श पर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, श्वासों का ख्याल कीजिए, आपको तो नींद आ जाएगी। और नहीं तो मेडिटेशन कीजिए सोने के पहले या 10 मिनट के लिए निकालिए समय। ये आपके जीवन का एक अंग है जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य देता है, भावनात्मक असंतुलन को वो मैनेज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और आपको एक नया जीवन देता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, आज बहुत सारी आपसे बातें हुई हैं। मैं ये बस जाते जाते आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, कुछ टिप्स अगर आप दें हमारे सभी लिसनर्स को कि किस तरह से जो है स्ट्रेस को बर्स्ट करना चाहिए, स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहिए और ख़ुद को डी स्ट्रेस कर रहे हैं, तो वो टिप्स क्या रहेंगी आपकी ओर से?
1: जो मैं करता हूँ वही मैं बताना चाहता हूँ। सोने के पहले मुस्कुराइए 2 मिनट के लिए अपने आप के लिए, और ग्रेटिट्यूड दीजिए परमात्मा को कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा था, विशेष रूप से था, और उसकी कृपा है हमारे ऊपर।
0: बिल्कुल।
1: और सुबह उठिए तो फिर परमात्मा को याद कीजिए और मुस्कुराइए अपने लिए, आंखों को बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और मुस्कुराइए हल्का सा, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने आप के लिए। इससे जो आपका कनेक्शन बनेगा आपका, वो कमाल का बनता है।
0: बिल्कुल।
1: और आपकी चीजें सुलझ जाती है जब आप मुस्कुराएंगे, इसके पीछे विज्ञान है। तो जब मैं हैप्पीनेस का कोर्स कंडक्ट करता हूँ तो मुझे लगता था कि मैं ऐसा कौन सा टिप्स बताऊं जो लोग आराम से कर सकते हैं, तो मैंने ये 3 मिनट का स्माइलिंग मेडिटेशन ध्यान तैयार किया, जिसमें 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाइए, 1 मिनट के लिए श्वासों पर केंद्रित कीजिए अपनी चेतना को, एकाग्रता लाइए और फिर मुस्कुराइए अपने लिए।
0: बिल्कुल।
1: जब आप मुस्कुराएंगे ना, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन, एक एक सेल आपका रिलैक्स होता है, और आपके जो 4 हार्मोन है ना, डोपामिन, इंडोमॉर्फिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये चारों आपने मॉर्निंग में स्टिमुलेट कर लिया और रात में सोने के पहले, तो आपका तो कहीं अब टॉक्सिक एक्यूमुलेशन है ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: ये सिंपल मेडिटेशन है, स्माइलिंग मेडिटेशन, और ये कॉपीराइट हमारा है स्माइलिंग मेडिटेशन का।
0: बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश कि आप हमारे स्टूडियो आए, इतनी सारी जानकारी दी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
1: बहुत ही अच्छा लगता है साक्षी, और आपका ये प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश, और आप आए हमारे साथ जुड़े, और तहे दिल से मेरा धन्यवाद रहेगा। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे एक छोटे से ब्रेक की इजाजत लेने का, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है हमारे आज के एक्सपर्ट को बुला लेने का, यानी कि हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राजेश जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, योग गुरु हैं और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी हैं. बहुत सारी इनसे बातें होने वाली हैं और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो जरूर जान सकते हैं. नंबर बहुत ही आसान है 8010781078. संडे का दिन है आज और आप आज के दिन क्या क्या कर रहे हैं वही जल्दी से हमें बताइएगा, क्योंकि अगले दिन से ना, यानी कि अब मंडे से ना पूरा आपका वीक फिर से वही शुरू हो जाएगा. इसमें बहुत सारा काम, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब वो जो फेस्टिवल्स का टाइम है ना ये आ चुका है. कुछ ना कुछ लगा रहता है भाई. अभी जन्माष्टमी खत्म हुई है और अब देखिए कुछ दिन में आ जाएगी गणेश चतुर्थी और उसके बाद नवरात्रे और बस दिवाली वाली सब कुछ आने वाली है. तो भाई बहुत ज्यादा मजेदार रहने वाले हैं ये पूरे महीने, चाहे हम सितंबर की बात करें, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, अब तो 4 महीने बचे हैं, 4 महीने मजे आने वाले हैं. तो देखिए आप किस तरह से जो है इस दिन को, यानी कि आज क्या क्या कर रहे हैं जल्दी से मुझे बताइएगा, कि कोई बाहर जाने का प्लान है या फिर क्या प्लान कर रहे हैं कि आज बस घर पर सोना है, तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए. नंबर बहुत ही आसान है 8010781078. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन। बहुत सारी होती हैं बातें और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है अब आपसे इजाजत लेने का। आज डॉक्टर राजेश के साथ हमने ढेर सारी बातें करी हैं लेकिन अब देखिए मैं आपसे इजाजत लूंगी। कल होगी मुलाकात क्योंकि कल है मंडे का दिन। आज रहूंगी सुबह सुबह आपके पास 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहूंगी। तो अब मुझे दीजिए इजाजत लेकिन आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ। बाय बाय टेक केयर।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम।
1: वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आरजे सागर आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम और ये जो शो है हमारा ये बहुत स्पेशल होता है। रीजन बीइंग मैं हर बार ये बात आपको बोलता हूँ कि एक एजुकेशनल शो के तौर पर आपको ये शो सर्व करता है, आपको प्रोसेस के बारे में पता लगता है, आपको पूरे स्टार्टअप के बारे में पता लगता है, एक स्टार्टअप कैसे शुरू होता है, इंडस्ट्री के बारे में आपको पता लगता है, आपको पता लगता है फाउंडर्स कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, आपको पता लगता है कि जिस कंपनी की बात हो रही है उसने अलग क्या किया। सो आज वापस से लेकर के आए एक और शो, करेंगे डिस्कस कौन सी कंपनी है, किस इंडस्ट्री में डील करती है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस क्योंकि अभी लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। फील गुड फील।

पुरस्कार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

वेलकम बैक बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मधुबन 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इन शॉर्ट टेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योर टेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई हैं। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योर टेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योर टेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योर टेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है, अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में। हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाई डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योर टेक की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे ऑपरेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। So this is the overview of this industry. We are addressing it. The name of this industry is InsurTech. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों को और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 billion US dollars, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर 3 ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहाँ पर मॉडल है वो है मार्केट प्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जांपल है जिसके नाम हम सबने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो हैं इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाई इंश्योर टेक कंपनीज, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए, यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। जहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नज़र आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज़्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली 3 मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खींच जाइएगा मत, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपके म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए, ठीक है। टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो आईडी प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास ई आधार जैसी ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो है वो हमें टिक करने होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना ऐसे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक। मेरा नाम सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीज़ों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या, दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यू कैन गो टू ओम्बड्समैन, वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीज़ें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत ज़रूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस, जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत होती है, टाइम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नज़र आती हैं चीज़ें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो हैं ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है, आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या, वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहाँ पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

हूँ आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशंस के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए। कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज़ है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है, तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट एज B2B और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा, तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस, जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीज़ें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाएं तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कैपिटल भी वहाँ पर चाहिए। सो इट इज़ रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जा करके आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज़ अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

फील गुड, फील लाइव। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी तक इंडस्ट्री समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी। फाइनली जो आज की हमारी कंपनी है वो है आर्टिवेटिक। artivatic.ai इसका पूरा नाम है। ओके, ये अपने आप में बहुत खास हो जाती है क्योंकि इंश्योर टेक में डील करती है, हेल्थ टेक में डील करती है। इन दो सेगमेंट्स को आप मर्ज कर सकते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली व्हाट दिस कंपनी डज, दिस कंपनी इज सिंपली यूजिंग AI, मशीन लर्निंग एंड डेटा, और यहाँ पर ये इंश्योरेंस प्रोसेस को जो है ऑटोमेट करते हैं। सो बेसिकली इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंश्योरर्स की हेल्प करता है विद अंडरराइटिंग, रिस्क असेसमेंट, क्लेम्स, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर ऑनबोर्डिंग एंड पर्सनलाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सो इन सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिवेटिक एक आप कह सकते हो एक ऐसी कंपनी है जो ये कोशिश कर रही है टू मेक इंश्योरेंस फास्टर, स्मार्टर एंड लेस डिपेंडेंट ऑन मैनुअल पेपर वर्क। अच्छा, ये काम कैसे करता है? सिंपल सा तरीका है, जब आप इंश्योरेंस कोई खरीदने जाते हो तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आपको इंश्योरेंस मिलेगा किस ग्राउंड पे आपको मिलेगा? आप बोलते हो कि मेरे को 5 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड चाहिए, तो ये देखा जाएगा कि आप उतना प्रीमियम पे कर सकते हो। कोई फ्रॉड वाला एंगल तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है मल्टीपल कंपनीज से आपका इंश्योरेंस चल रहा हो और आप यहाँ पर आ गए हैं? तो ये तमाम चीज़ें डिटेक्ट की जाती हैं, इसके लिए प्रोसेस होता है। फिर अंडरराइटिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, देखा जाता है कि कितना रिस्क है। लेट्स से एक इंसान है स्मोकर है और एक इंसान नॉन स्मोकर है, अब दोनों का रिस्क असेसमेंट बहुत अलग तरीके से किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है बैकएंड प्रोसेस का पार्ट होती है। तो ये जो कंपनी है जिसकी आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिवेटिक, ये AI टूल बना दी है, जो AI टूल हेल्प करता है इंश्योरेंस की कि वो इन तमाम चीज़ों को विदाउट रिलाइंग ऑन मैनुअल वर्क वो असेस कर सके। हालांकि बहुत सारे डेटा की वहाँ पर जरूरत होती है, बट द बॉटम लाइन इज की दैट दिस कंपनी इज हेल्पिंग अदर कंपनीज इन यू नो इशूइंग इंश्योरेंस एंड असेसिंग द रिस्क एंड डूइंग द अंडरराइटिंग पार्ट एंड डिटेक्टिंग द फ्रॉड्स एंड जस्ट हेल्पिंग कस्टमर्स इन प्रोसेसिंग विद द क्लेम्स। दैट इज द ओवरव्यू। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

feel good, feel live. Okay, what was the idea behind it? Artivatic start hui thi 2017 mein. Operation 2017 mein start hua tha. Isko start kiya tha Layak Singh and Puneet Tandon ne. इन दो फाउंडर्स को जो है ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करते थे बिफोर आर्टिवेटिक. इनका एक्सपीरियंस रहा है अच्छा खासा, एक्सपेरिमेंटल काफी जो है ये लोग रहे हैं. इनका इनसाइट बहुत सटीक था कि इंश्योरेंस में ना बहुत ज्यादा स्लो वर्क है, बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क है, ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा प्रोसेस जो है वहां पर इन्वॉल्व होते हैं. सो दे बिलीव्ड इन दिस थिंग कि एआई जो है बड़े डेटाबेस को एनालाइज कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है, डिसीजंस फास्ट जो है लिया जा सकता है, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ लिया जा सकता है. सो द कंपनी इनिशियली एक्सप्लोर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, बट इवेंचुअली उन्होंने इंश्योरेंस में लेकर के आ गए और इंश्योरेंस में अच्छा काम कर रही है कंपनी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडर्स, जो नाम मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, Layak Singh एंड Puneet Tandon. Layak Singh इज एन IIT खड़गपुर एलुमनस और एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है. बिफोर आर्टिवेटिक उन्होंने काफ़ी वेंचर्स जो है वो बिल्ड किए, जिसमें एजुकेशन, लाइफस्टाइल, डेटिंग एंड एक कॉगशियो बहुत फेमस एक प्लेटफॉर्म है जो इनका एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पर. दूसरा नाम है Puneet Tandon. Puneet का बैकग्राउंड रहा है टेक का और प्रोडक्ट का. Puneet ये बैकग्राउंड लेकर के आते हैं. इनका भी मल्टीपल जो है कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि स्कॉलास्टिक एंड मैग्नासॉफ्ट एंड कॉक्सियो, साथ साथ MS फ्रॉम न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. प्रीवियस स्टार्टअप इन्होंने आप कह सकते हैं कि दोनों का ही अच्छा खासा यहाँ पर काम आया, जहाँ पर प्रीवियस स्टार्टअप से इनको जो एक्सपीरियंस मिला, जो एजुकेशन मिली, जो लर्निंग्स इनकी रही वहाँ पर. तो ये चीज़ें हैं इनकी जो यहाँ तक लेकर के आई और इस कंपनी को स्टार्ट किया. तो बॉटम लाइन ये है कि कोई भी चीज़ आप आज कर रहे हो वो आपकी कभी वेस्ट नहीं होगी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके काम वो चीज़ ज़रूर आएगी, जो यहाँ पर इस केस में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों ने अलग अलग जगहों पर काम किया, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में काम किया, बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे एंड एग्जैक्टली वो सब आकर के काम आया इनकी इस कंपनी में, विच इज़ Artivatic. आप मुझे बताइए कोई इसमें आपको डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो 8010781078 पर. फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड.

फील गुड फील लाइव। मैं सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जिस कंपनी की, उसका नाम है आर्टिविटी। और यहाँ पर अभी तक हमने जाना है कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में हमने जाना है, फाउंडर्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, ये कंपनी अलग क्या करती है या इस कंपनी ने अलग से क्या किया। तो ओवरव्यू में हालांकि मैं बात क्लैरिफाई कर चुका हूँ, बट स्टिल ट्रेडिशनली जो चीज़ें होती थी, जो इंश्योरेंस हम लोग इशू करते थे, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता था, इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। सो बेसिकली मेडिकल रिकॉर्ड्स को चेक करना, KYC करना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, क्लेम हिस्ट्री, तमाम जो डेटा सेट है उसको एक सॉफ्टवेयर में कंपाइल किया जाता है, वहाँ पर फिर उसको कंपाइल करके रिस्क डिसाइड किया जाता है। आर्टिवर्टिक ने जो है ये चीज़ थोड़ी सी अलग तरीके से करी। उन्होंने बेसिकली सारे प्रोसेस को कंपाइल करके एक AI टूल बनाया। हालांकि ओवरनाइट नहीं हुआ है, मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारे प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती है जब आप इंश्योरेंस की बात करते हो। एक कस्टमर को समझना, रिस्क फैक्टर समझना कि वो कस्टमर इतना जो उसने सम अश्योर्ड लिया है कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का पॉइंट ये है कि उनको अपना रिस्क मिनिमाइज करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अंडरराइटिंग का पार्ट होती है। तो आर्टिविटी का जो सिस्टम है वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है, AI का या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है, उसको एनालाइज करता है, रिस्क को स्कोर करता है, उसकी स्कोरिंग की जाती है, डिसीजंस जो है वो रेकमेंड किए जाते हैं। और इनका एक फ्लैगशिप अंडरराइटिंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा चलन में है, इंश्योरेंस कंपनीज जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, उसका नाम है ऑसिस, AUSIS। तो यहाँ पर 1200 से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर जो है इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स अंडरराइटिंग डिसीजन जो है विद इन 60 सेकेंड्स वहाँ पर वो दिया जाता है, 60 सेकंड के अंदर अंदर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर ली जाती है और कंपनी को बता दिया जाता है वेदर यू शुड इशू दिस पॉलिसी और नॉट। तो बहुत उम्दा है, जिसमें कंपनीज की बहुत हेल्प होती है, क्योंकि रिस्क असेसमेंट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पर हो पा रहा है। ये इस कंपनी ने किया अलग। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज की हमारी जो कंपनी है उसका नाम है आर्टिवर्टिक, और यहां पर हम अब बात करेंगे अपनी कंपनी के यूएसपी की। इस कंपनी की यूएसपी सिंपली ये नहीं हो सकती है वी यूज एआई। द रियल यूएसपी इज एआई पावर्ड इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन दो चीजों में बहुत फर्क है। एआई को आप बहुत वेग तरीके से समझ सकते हैं, ब्रॉड कैटेगरी के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन एआई पावर्ड इंश्योरेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको एवेल्युएट करना, जहां पर मॉड्यूलर एपीआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, किसी भी कंपनी के एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ जो है उसको अलाइन करना, और सब कुछ स्क्रैच से रीबिल्ड करना। इसमें मल्टीपल स्टेजेस जो है उनको कवर किया जा सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरराइटिंग, क्लेम्स, फ्रॉड एंड सर्विसिंग। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में एंटर करेंगे, जो हेड ऑफिस होता है, तो आपको समझ में आएगा कि हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं विद इन अ डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल, अंडरराइटिंग में भी मल्टीपल होते हैं। एक मेडिकल अंडरराइटिंग होता है, एक नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग होता है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होता है। तो ये तमाम चीज़ें अंडरराइटिंग में आती हैं, लेकिन इतने सारे प्रोसेस होते हैं, सबको ब्रेकडाउन किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग जो बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, एक्चुअरीज एक डिपार्टमेंट होता है जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन करता है, जिसमें सारी चीजें देखी जाती हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, रिस्क फैक्टर क्या होगा, किसको केटर करेंगे, किसको टारगेट करेंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, व्हाट इफ दिस गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अगर पॉलिसी कंपनी के लिए घाटा लेकर के आई तो क्या होगा। तो ये तमाम चीजें एक्चुअरीज में आती है, जहां पर रिस्क इवैल्यूएशन किया जाता है, और ये सारी चीजें हमारी जो आज की कंपनी है आर्टिवर्टिक, ये अच्छे से इसको कर पा रही है। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस कंपनी, कि ये तमाम चीजें अलग तरीके से कर रही है। तो ये है जी इस कंपनी की यूएसपी, कि सिंपली एआई नहीं बनाया, एआई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जो हेल्प करता है बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को, यू नो, पॉलिसी डिसाइड करने में, इशू करनी या नहीं करनी, रिस्क इवेल्युएट करने में, एनालाइज करने में, तमाम चीजें आती है वहां पे। दिस इज आर्टिवर्टिक फॉर यू। Let's take another musical break, then we'll continue the show. Stay tuned with us. Feel good, feel live.

0: सफर हो।
1: वी गुड वी लाइव। मैं सागर, शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानी कामयाबी की। अब बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स की। क्यों ग्रो कर रही है कंपनी? सिंपल सा तरीका है, इंश्योरेंस बहुत ज्यादा मैनुअल था तो यहाँ पर ऑटोमेशन लेकर के आ गई ये कंपनी। तो एक अपॉर्चुनिटी इनको नजर आई कि इनिशियल स्टेज में, अर्ली डेज में, कि एआई कर सकता है कुछ ऐसा? यस, कर सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, डिजिटल डाटा इनके पास है, एआई कुड यूज मेडिकल, फाइनेंशियल, बिहेवियरल एंड अदर डाटा फॉर रिस्क असेसमेंट। इंस्टेंट इंश्योरेंस की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ने लगी है। लोगों को चाहिए पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, फटाफट से हमारा इंश्योरेंस इश्यू हो सकता है क्या? अब फटाफट इंश्योरेंस इश्यू का मतलब है कि सारे प्रोसेस इतने तेज करने पड़ेंगे आपको कि मैनुअल वर्क जो इसके पहले था ट्रेडिशनली, उसको इतना फास्ट करना पड़ेगा, फटाफट इवैल्यूएशन हो जाए, अंडरराइटिंग हो जाए, रिस्क असेसमेंट हो जाए, पॉलिसी डिजाइनिंग हो जाए, एक इंसान के लिए कौन सी पॉलिसी ठीक होगी, ये तमाम चीजें कितना जल्दी किया जा सकता है वो कंपनी जीत सकती है जो इसको एक्सेल कर लेगी। क्योंकि हम उस जमाने में जीते हैं जहां पर हर चीज क्विक कॉमर्स के थ्रू हम लोग मंगाने लग गए हैं। तो क्विक कॉमर्स के जमाने में आप कस्टमर को ये नहीं बोल सकते हो कि आप कई महीनों तक वेट करिए या 15 दिन तक वेट करिए तब जाकर के एक डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, पहले चीजें चलती थी क्योंकि इतना ज्यादा टेक हमारे पास नहीं था, बट नॉट एनी मोर। और यही बात समझ में आ गई हमारी कंपनी को, विच इज आर्टिवेटिक। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि रिन्यू बाय ने, जो एक और कंपनी है इंश्योरेंस टेक में ही डील करती है, 2022 में एक्विजिशन किया, इस कंपनी का एक्वायर कर लिया। और बहुत ही स्ट्रेटेजिक था क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, इंश्योरेंस में अच्छा खासा अनुभव था इनका, आर्टिवर्टिक एक बिल्कुल नया टूल आया था, तो उन दोनों का मर्जर हुआ, तो जिससे आप कह सकते हो कि और ज्यादा एम्पलीफाई हुई चीजें। तो ये है जी हमारी आज की कंपनी, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपनी डज, क्या इन्होंने अलग किया, क्या यूएसपी है, फाउंडर्स कौन है, बैकग्राउंड क्या रहा है, स्टार्टअप स्टोरी क्या रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। अब आप मुझे बताइए आपको आज की केस स्टडी कैसी लगी। फिलहाल इसी नोट पर मेरा वक्त है शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ शो आपको पसंद आया होगा। कोई फीडबैक है तो 8010781078 पर लिखकर मुझ तक भेज दीजिए। फिलहाल चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एज नॉलेज पार्टनर SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा गंभीर विषय है, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम जो होती है डायबिटीज, बड़ी होकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ले आती है और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है किडनी को। किडनी वैसे तो ईश्वर ने हमें दो दी हैं, लेकिन प्रॉब्लम किसी एक में भी आ जाए तो भी काफी संभल के चलना पड़ता है। और डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो आगे जाकर बहुत गंभीर बीमारियां दे जाती हैं। अब डायबिटीज और किडनी का क्या कनेक्शन है, या फिर डायबिटीज के बाद आपको कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसे कुछ सवाल और बहुत सारे जवाब। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष महाजन, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से, जिनसे आज हम पूछेंगे ऐसे ही कुछ सवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका रेडियो मानव रचना में।
3: नमस्कार, ये मेरा दूसरा विजिट है मानव रचना का। मैं मानव रचना को हार्दिक मतलब थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं जन कल्याण के लिए लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा सकूँ।
2: जी, तो सर सबसे पहले हम बात करें डायबिटीज़ और किडनी की, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जब काफ़ी बढ़ जाती है तब जाकर सीरियसनेस आती है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो सिर्फ यही जानना चाहूँगी, डायबिटीज़ और किडनी आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं?
3: पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है भारत वर्ल्ड का कैपिटल है डायबिटीज़ में, 75 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ है, और बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी जो है उनके 67% जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके कंट्रोल रहते नहीं है डायबिटीज़, दवा खाने के बावजूद भी। बहुत लोग तो दवा भी नहीं खाते, उनको पता नहीं चलता। और अगर लंबे समय तक डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हमारे किडनी के जो माइक्रोस्कोपिक वेजल्स हैं और फिल्टरिंग यूनिट्स है उसमें डैमेज और प्रेशर बनने लगता है, जिससे कि किडनी की खराबी स्टार्ट हो जाती है।
2: जी,
3: और सबसे पहला लक्षण जब स्टार्ट होता है वो यूरिन में प्रोटीन की लीकेज होना स्टार्ट होता है। और इस ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि लक्षण जल्दी नहीं आते, काफ़ी समय अनकंट्रोल डायबिटीज़ के काफ़ी समय के बाद लक्षण आते हैं।
2: जी,
3: तब तक 50% से ज़्यादा किडनी डैमेज हो गया होता है।
2: जी बिल्कुल, यही चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, किडनी डैमेज, वैसे तो हमारे पास दो किडनी होती हैं, लेकिन अगर एक डैमेज होती है तो घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरी पर भी कब असर पड़ जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर एक पेशेंट पहचाने कैसे कि उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, खासतौर पर से वो पेशेंट जो डायबिटिक है, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2।
3: हाँ, मैं आपने टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ का नाम लिया, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले टाइप 1 की बात करूँगा। टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट को साल में 5 साल में एक बार एक जांच होता है, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, और उसकी जांच जरूर करवाएं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूरिन में प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो जाता है।
2: जी,
3: और काफ़ी सालों तक ये रहता है, उसके बाद कुछ लक्षण आते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ में सारे मरीजों में साल में एक बार यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो और EGFR एक टेस्ट होता है, जिसमें किडनी कितना परसेंटेज काम करता है उसमें हमें पता चलता है कि किडनी डैमेज हमारी हो रही है नहीं हो रही है। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपने KFT का जांच कराया, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है, लंबे समय तक डायबिटीज़ है आपको, तो आपके किडनी डैमेज नहीं हो रहे हैं।
2: ओके, हाँ, यानी क्रिएटिनिन से नहीं पता लगेगा?
3: नहीं, क्रिएटिनिन जो 1.0 से 1.1 जब तक होता है तब तक आपके 50% से ज़्यादा किडनी डैमेज हो गए। तो जो पहला लक्षण जो हमें देखने को मिलता है वो पेशाब में प्रोटीन आना, तो ये जांचों में ही पता चलता है, और EGFR एक जांच होता है, तो ये सबसे पहला होता है। बाकी जो पैर में सूजन, चेहरे में सूजन और पेशाब कम होना या बहुत ज़्यादा होना, ये सब थोड़ा सा बाद में ये डेवलप करता है। लेकिन इसलिए अगर किसी को डायबिटीज है तो साल में एक बार USER की जांच और EGFR की जांच जरूर करवाएं।
2: जी बिल्कुल, अब ये टेस्ट क्या है डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन अभी जो वक्त है वो एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, और अपने सवाल पूछ सकते हैं आप 8010 7810 7।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल. नॉलेज पार्टनर SSV हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और आज हम बात करें हैं डायबिटीज और किडनी के बारे में, यानी किडनी प्रॉब्लम्स जो डायबिटीज के कारण होती है. लेकिन डायबिटीज का लेवल क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बता सकते हैं कि किडनी में कहीं कोई समस्या चल रही है, ये सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष महाजन. बहुत सारी बातें सर आपसे हम जान रहे हैं, और आपने काफ़ी अच्छे से समझाया कि किडनी में प्रॉब्लम होती है पर पता नहीं चलती है, काफ़ी देर बाद पता चलती है, वो भी जब आप टेस्ट कराते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्रेटिनिन जो हम KFT वगैरह कराते हैं उसमें कुछ नहीं आता है,
1: स्टार्टिंग इनिशियल फेज में नहीं आता.
0: जी, इनिशियल फेज में नहीं आता है. यानी अगर किडनी खराब होनी शुरू हो रही है और आपने KFT कराया तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा अगर वो KFT नॉर्मल दिखा रहा है. लेकिन यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कुछ टेस्ट के नाम बताए थे, UACR यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ये मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा विस्तार में बताएं कि ये कब कब कराने चाहिए, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, क्या कुछ डिजिट्स जो होती हैं, क्योंकि आम इंसान को नहीं समझ में आता है जब टेस्ट आते हैं, और कब कब करानी चाहिए. किसी को डायबिटीज है सिर्फ उसको करानी चाहिए, जिसको डायबिटीज नहीं है उसको भी कराना चाहिए.
1: हाँ जी, ये बिल्कुल सही है. जिनको डायबिटीज है, हाँ ये बात मैं जरूर बोलूंगा, हर किसी डायबिटिक पेशेंट के किडनी नहीं खराब होते. जिनके लंबे समय तक जिनका डायबिटीज है और जिनके डायबिटीज कंट्रोल्ड नहीं है उनमें चांसेस हाई हो जाते हैं. डायबिटीज खुद है वो एक रिस्क फैक्टर है. इसके साथ एक और रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो हाइपरटेंशन. बहुत सारे मरीज डायबिटिक मरीज को ऐसा भी देखा गया है कि उनको BP का भी इश्यू होता है. अगर ये दोनों नहीं कंट्रोल होते हैं तो दो रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं किडनी डैमेज होने के, जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स और हमारे जो फिल्टरिंग यूनिट्स किडनी के जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उससे प्रेशर बढ़ता है. और जो दो जांच जो मैंने बताया EGFR और UACR, एक दो और कंडीशंस ऐसे होते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है, सिर्फ BP भी है तो उसमें भी प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है. एक और कंडीशन होते हैं जब बच्चे अब किसी भी उम्र के में हो जाता है, कंडीशन बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें अंदर किसी भी कारणवश या ऑटो इम्यून कारण हो या इन्फेक्शन के कारण हो या किसी और कारण हो या हेरिडिटरी भी, तो उसमें प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है. तो साल में एक बार टाइप 2 डायबिटीज के स्पेशली पेशेंट जो होते हैं या हाइपरटेंसिव भी हैं, तो साल में एक बार UACR की जांच कराएं, और इसकी जो वैल्यू 0.3 से कम होनी चाहिए. अगर इसे ऊपर है तो आपकी प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो गई है. दूसरा, टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको 5 साल में एक बार स्क्रीनिंग कराना बिल्कुल ज़रूरी है. हालांकि ये टाइप 1 टाइप 2 की तो हम बात कर ही रहे, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको ये डिटेक्टेड नहीं भी है तो एक आम इंसान को साल में एक बार UACR की जरूर जांच कराए, क्योंकि मेजॉरिटी जो इंसान जो पॉपुलेशन है इंडिया में उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटिक है भी कि नहीं. तो शायद वो ये जांच कराए तुमको पता चलेगा कि तुमको 2-3 साल पहले से डायबिटिक है, उनको पता ही नहीं, क्योंकि सिम्टम्स तो आते नहीं स्टार्टिंग में. लेकिन इससे पता चल जाता है कि डायबिटीज भी है या BP भी है और इनके प्रोटीन की लीकेज भी, किडनी का डैमेज भी स्टार्ट हो गया. तो कुछ हद तक अगर हम इस जाँचों पर अगर नज़र रखते हैं तो कुछ हद तक हम किडनी के डैमेज होने का हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं.
0: जी जी बिल्कुल सर. ये भी जानना चाहेंगे डायबिटीज़ के सिम्टम्स जो जनरली देखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या बहुत ज़्यादा अचानक से भूख लगना, और वेट कम होना, एकदम से आपका वेट कम हो रहा है तो भी ये सतर्क होने वाली बात है. क्या किडनी के भी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स कहीं कुछ कन्फ्यूज़ कर सकते हैं किसी को?
1: हाँ जी बिल्कुल. अगर आपको डायबिटीज़ है, जैसे कि मैंने बोला अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है काफ़ी सालों से, तो पेशाब आपके फ्रॉथी होना और बार बार अगर यूरिन फ्रॉथी हो रहा है, उसमें झाग आ रहा है, तो आप ये अनुमान कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो गई है. दूसरा, पेशाब कम होना या ज़्यादा होना, पैरों में सूजन होना या चेहरे में सूजन होना, फेशियल पफिनेस जिसको हम बोलते हैं, प्लस लेथार्जी महसूस करना, बहुत आलसपन आना, नींद बहुत आना, लेथार्जी होना, कमजोरी महसूस करना, क्योंकि अगर किडनी अगर डैमेज होने लगता है तो आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स नाइट्रोजनस वेस्ट जो किडनी जो फिल्टर करती है वो जमा होने लगते हैं. उल्टी जैसा महसूस या भूख कम लगना, अगर ये सब सिम्टम्स अगर आपको आते हैं तो आप ज़रूर एक नियर बाई नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं और इन जाँचों पर नज़र रखें. EGFR हो गया, UACR हो गया, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है या आपको BP है, तो इन दोनों का स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें.
0: जी,
1: अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग भी बंद रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग रहें.
0: जी, BP की बात आपने कही है तो BP के बारे में भी हम जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज ही हो गया रहा है और बहुत सारे लोगों को होता चला जा रहा है। सो डायबिटीज और बीपी दोनों ही कहीं ना कहीं किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली प्रॉब्लम्स है, लेकिन इनकी जांच करना, इन पर नज़र रखना ये भी ज़रूरी है। सो कैसे आप कर सकते हैं, क्या इनकी सही जो मात्रा है वो होनी चाहिए या फिर क्या रीडिंग्स होनी चाहिए, ये जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूं दीक्षा के साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल। नॉलेज पार्टनर है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातें बहुत सारी डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम्स और हाइपरटेंशन के बारे में चल रही हैं। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बड़ी प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो किडनी पर इफेक्ट हो सकता है अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। कौन से टेस्ट कराने चाहिए ये तो हमें पता लग गया है, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है तो किन बातों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि डायबिटीज प्लस ब्लड प्रेशर, चीनी मना है और यहाँ पर नमक भी कम करना है, तो पेशेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसी कुछ बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष महाजन, जो कि जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम ऐसे ही कुछ सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ तो एक पेशेंट के लिए अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज़ के लेवल्स अप एंड डाउन होने लगते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाए, तो यहाँ पर चीनी बंद है, उधर से आप मसालेदार नहीं खा सकते, नमक कम करना पड़ेगा आपको और लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये दोनों चीज़ें खासतौर पर से, अब बीपी की बात हम कर रहे हैं, सो बीपी कैसे किडनी को इफेक्ट कर सकता है?
1: सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज़, हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन है उनका टेस्ट जो है वो नमक के प्रति बहुत ज़्यादा है। महात्मा गांधी ने भी सॉल्ट मूवमेंट किया था और बचपन से ही जो हमारा जो टेस्ट, जो बर्ड्स जो डेवलप है वो हाई सॉल्ट का ही टेस्ट बर्ड्स डेवलप्ड है। और मेजॉरिटी इंडियन, जैसे कि मैंने बताया, 67% लोग के डायबिटीज़ भी नहीं करना, बहुत लोगों को डायबिटीज़ का पता भी नहीं होता। वैसे सेम ब्लड प्रेशर में कहते हैं अब नॉर्मल हो गया, 130-140 भी अगर बीपी पेशेंट को है सिस्टोलिक तो वो बोलता है कि नहीं हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन ये अब नॉर्मल है। और ये काफ़ी समय तक अगर कंट्रोल नहीं रहता है तो किडनी के जो फिल्टरिंग यूनिट्स है उसमें ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और उसमें भी एक कंडीशन हम बोलते हैं, अगर लंबे समय तक बीपी नहीं कंट्रोल है तो आपके किडनी के तो फिल्टरिंग यूनिट्स डैमेज हो ही रहे हैं और यूरिन में प्रोटीन के भी लीकेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि हम एक कंडीशन बोलेंगे हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। अगर किसी मरीज में ये दोनों है तो मतलब एक तो रिस्क फैक्टर है या फिर दूसरा भी है डबल रिस्क फैक्टर, मतलब ड्यूअल हिट टू द किडनी, तो किडनी का जो डैमेज होने का जो प्रक्रिया होता है वो डबल स्पीड में हो जाता है,
0: स्पीड बढ़ जाती है
1: इसमें। तो इसमें बस दो चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे, नमक कम से कम मात्रा लें, सेंधा नमक का, अगर आपको नमक का ही शौक है तो एक सेंधा नमक का एक कंट्रोल्ड मात्रा में आप उसका इस्तेमाल करें। और रही बात डायबिटीज़ की, आपने बोला सही बात बोला, लोगों को मीठा खाने का भी बड़ा शौक है आजकल, अच्छे अच्छे स्वीटनर्स आ गए हैं जो शुगर फ्री होते हैं, स्टीविया हो गया, शुगर फ्री हो गया, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके टेस्ट बड बहुत ज़्यादा क्रेविंग करता है तो
0: जी।
1: और इनफैक्ट आजकल तो चॉकलेट्स भी कुछ ऐसे ऐसे मार्केट में आ गए हैं जो कि शुगर फ्री आ गए, अगर आपको क्रेविंग होती है जो डायबिटिक पेशेंट में देखा गया है, तो आप लिमिटेड मात्रा में आप शुगर फ्री का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इन दोनों का आप लिमिटेड तरीके से करते हैं, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज और ये आपको अगर बीपी अगर इसको बिल्कुल कंट्रोल करते हैं, 130 से नीचे अगर आप बीपी रखते हैं 120/80, और HbA1c का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, किसी पेशेंट में हम इंडिविजुअलाइज करते हैं, लेस देन 6 होना चाहिए, किसी में 7 तक हम ले जाते हैं। अगर आपका HbA1c 6-7 के बीच में है, बेस्ड ऑन पेशेंट टू पेशेंट प्रोफाइल अगर कंट्रोल रहते हैं तो बहुत हद तक आप किडनी के डैमेज से बच सकते हैं और उसका प्रिवेंशन को रख सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हर बीपी के पेशेंट और हर डायबिटीज के पेशेंट का किडनी डैमेज नहीं होता, अगर आप कंट्रोल करते हैं तो सब ठीक रहता है।
0: जी जी, तो यही मैं जानना चाहती हूँ। अब बीपी की बात अगर हम करें तो क्या रीडिंग्स आनी चाहिए? 120/80 नॉर्मल कही जाती है। 120/80
1: मैं इसको बड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लेकर चलता हूँ, 120/80 इंटरनेशनल गाइडलाइन यही बात बोलता है
0: जी।
1: लेकिन हमारे इंडियन जो पॉपुलेशन है, जैसे कि मैंने टेस्ट बर्ड की भी बात करें, मेजॉरिटी जो बीपी के भी पेशेंट है उसमें 70% जो बीपी के पेशेंट है उनके बीपी ही नहीं कंट्रोल होते, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क।

0: खाने के बाद भी नहीं।
1: और तीसरी चीज क्या है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा है और खान पान की आदतें भी खराब है। बाहर का खाना जंक फूड, जैसे कि आपने देखे होंगे इतने सारे जंक फूड मार्केट में अवेलेबल हैं, लोग जंक फूड्स खाते हैं, सॉल्ट का मात्रा बहुत हाई होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है सब। और स्मोकिंग वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। डाइट्री हो गया, एक्सरसाइज नहीं करना होगा, और 70% इंडियन पॉपुलेशन आर स्ट्रेस्ड, और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। अगर इन सब चीजों पे आप ध्यान रखें, प्राइमरी चीजों पे, तो आप सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या टर्सरी प्रिवेंशन भी आप कर सकते हैं अगेंस्ट द किडनी।
0: जी, यानी डायबिटीज के साथ साथ बीपी को मैनेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज की अगर मैं बात करूँ तो क्या नॉर्मल लेवल्स होने चाहिए? खासतौर पर से मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगी जो इंसुलिन लगा रहे हैं फिर भी 200 के पार कई बार जो उनकी डायबिटीज लेवल है, जो शुगर लेवल्स है वो इतना दिखाता है, क्या वो खतरे में है? क्योंकि इंसुलिन की डोजेज आप डॉक्टर के अनुसार ही सेट करते हैं, खुद ज्यादा बढ़ा घटा नहीं पाते हैं।
1: ये बात आपने सही बताया, इंसुलिन तो बहुत वंडरफुल चीज़ है शुगर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत हो जाते हैं, और खासकर एल्डरली पॉपुलेशन में कभी वो खाना कम खाएंगे, कभी ज़्यादा खाएंगे। अगर उन्होंने एक स्पेसिफाइड यूनिट बताया गया है ले लिया तो हाइपोग्लाइसीमिया, वो जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है बहुत डेंजरस होता है, ब्रेन पे भी वो असर करता है। तो जनरली मैं अपने पेशेंट में मैं बहुत स्ट्रिक्ट ये लेकर नहीं चलता कि लेस देन 6 HbA1c होना चाहिए, जो इंटरनेशनल गाइडलाइन बोलता है फास्टिंग 100, खाना खाने के बाद 140। एल्डरली पॉपुलेशन में या CKD पेशेंट में मैं +20 या +40 का मैं डिफरेंस लेकर चलता हूँ। अगर 180 भी है इंसुलिन लेने के बाद तो वो ठीक है, क्योंकि मेरे को जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है इंसुलिन का वो हाइपोग्लाइसीमिया है, तो मेरे को उससे पेशेंट को बचा, तो +40 का मैं एक डिफरेंस लेकर चलता। अगर 180 है, गाइडलाइन 140 बोलता है, 180 है तो ठीक है। तो एल्डरली पॉपुलेशन में 40 या +20 पेशेंट प्रोफाइल वाइज का डिफरेंस लेके चलता हूँ, स्पेशली वो पेशेंट जो इंसुलिन में।
0: बिल्कुल, इंसुलिन वाले पेशेंट्स का थोड़ा सा ध्यान इस तरीके से रखा जाता है, क्योंकि कहीं अगर बहुत कम शुगर लेवल्स हो गए, 70 से नीचे हो गए, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। डॉक्टर, बहुत सारे लोग पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर से एल्डरली की बात हम कर रहे हैं, और एल्डरली के घुटनों में बहुत दर्द होता है, कभी बैक में दर्द हो रहा है, या कभी वैसे ही बॉडी में पेन्स रहते हैं। सो ऐसे में बहुत एक कॉमन आदत होती है हमारे देश में कि आप एक इब्रूफेन या कोई भी ऐसा पेन किलर ले लें, और धीरे धीरे धीरे ये आदत ज़्यादा हो जाती है, ये कैसे किडनी डैमेज में रोल प्ले करती है?
1: ओवर यूज ऑफ एनी मेडिकेशन, किसी भी मेडिसिन का अगर आप ओवर यूज करते हैं तो उसके तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं किडनी के लिए स्पेशली जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID, जैसे कि आपने एक नाम बोला आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, ये सब जो मेडिकेशन होते हैं ये किडनी को डैमेज करता है। अगर आपने डॉक्टर के सुपरविजन में, अगर उनके प्रिस्क्रिप्शन में एक लिमिटेड मात्रा में लिया, ओकेजनली लिया, तो ये किडनी को जल्दी नहीं डैमेज करते। लेकिन अगर आप ओवर यूज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में OTC ओवर द काउंटर, ये मेडिसिन ओवर द काउंटर अवेलेबल है, किसी को सर दर्द हो गया, पैर दर्द हो गया, वो जाते हैं मेडिकल शॉप में, ये मेडिसिन उठाते हैं और ये सुबह शाम खाते हैं, डॉक्टर से ये परामर्श नहीं लेते। तो मैं उनको ये बात बोलना चाहूँगा, अगर स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या नहीं भी है, बीपी भी है, अगर किसी तरह का दर्द हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, और पेन किलर बिना उनके परामर्श करा लें, क्योंकि जो NSAIDs ड्रग होते हैं, पेन किलर्स जो होते हैं, वो किडनी को डैमेज करते हैं। अब बहुत सारे मैंने ऐसे भी मरीज देखे जिन्होंने सिर्फ 5 दिन ही लगातार पेन किलर लिए, उनकी किडनी डैमेज हो गई है,
0: यानी ऑलरेडी वो उस कगार पर थी, उस वर्ज पर थी कि वो डैमेज हो सकती है,
1: डैमेज हो सकती है NSAIDs किडनी को। ये बहुत बड़ा NSAIDs जो ड्रग होते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं, वो किडनी को डैमेज बहुत हद तक करते हैं। 20-30% ऐसे पेशेंट आते हैं OPD में जो कि पेन किलर्स वाले होते हैं, जिनके सीरम क्रिएटिन बड़े होते हैं, EGFR कम होता है। जब मैं उनसे सवाल करता हूँ तो पता चलता है कि वो पेन किलर्स ले रहे थे पिछले 2 महीने से या 1 महीने से। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि पेन किलर्स बिना डॉक्टर के परामर्श के आप ना लें।
0: बिल्कुल बिना डॉक्टर की सलाह के आप, वैसे तो देखिए कोई भी दवाई ना लें, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आप हाइपरटेंसिव हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम हेल्थ में है, सो बिना डॉक्टरी परामर्श के कोई दवाइयां ना लें। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी पेन किलर लेनी पड़ती है तो वो भी डॉक्टर से पूछ कर लें, क्योंकि पेन किलर अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो नुकसान बहुत गहरा होता है। बहुत सी बातें और भी जारी रहेंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ, प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल। और ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और इस पॉडकास्ट को आरजी दीक्षा के फोल्डर में जाकर डॉक्टर मनीष महाजन के साथ कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, और किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जिसे इस जानकारी की बेहद जरूरत हो। बहुत सी बातें और भी, लेकिन वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल. नॉलेज पार्टनर है SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और बातें चल रही है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन की वजह से हो जाती हैं. लेकिन क्या ये किडनी रिवर्स हो सकती है प्रॉब्लम्स में, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि दो किडनीज हैं, क्या पहले एक ख़राब होती है या दोनों एक साथ भी ख़राब हो सकती हैं? क्या इन्हें वापस ठीक किया जा सकता है? क्या ज़्यादा पानी पीने से किडनी की प्रॉब्लम्स वाकई सॉल्व हो जाती हैं? ऐसे कुछ सवाल आपके मन में भी आते होंगे. इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मनीष महाजन, शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट. सर, बहुत सिंपल सी बात होती है, जब किडनी की बात होती है तो लोग कहते हैं पानी पियो, बहुत पानी पियो. किडनी स्टोन होता है तो भी कहते हैं पानी पियो. किडनी रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आता है तो भी कहते हैं पानी पियो. अब कितना पानी पीना चाहिए और क्या ये पानी वाकई मदद करता है?
1: हाँ, नॉर्म डिपेंड करता है पानी का इंटेक कितना होना चाहिए पेशेंट वाइज पेशेंट. अगर किडनी का पेशेंट है कोई, तो उसमें पानी का मात्रा कितना, उनका EGFR कितना, किडनी काम कर रहा है, उसके हिसाब से पेशेंट वाइज पेशेंट हम डिसाइड करते हैं. और अगर किडनी का पेशेंट नहीं है, अगर डायबिटिक भी है या नॉन डायबिटिक भी है या BP का भी पेशेंट है लेकिन किडनी में कोई असर नहीं है
0: जी.
1: तो जनरल एक पॉपुलेशन में 200 ml का एक ग्लास, 10 ग्लास मतलब 2 लीटर मेल के लिए मिनिमम होना चाहिए. और फीमेल के लिए 200 ml का ग्लास, 12 ग्लास कम से कम,
0: ज्यादा होने चाहिए मतलब एज कंपेयर टू मेल,
1: 2 से 2.5 लीटर मिनिमम एक फीमेल को इतना पानी पीना चाहिए. क्योंकि किडनी भी एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कि न्यूट्रिशन चाहिए होता है. तो किडनी बोलता है भाई मेरे को 2 से 2.5 लीटर पानी दो काम करने के लिए.
0: बिल्कुल.
1: तो अगर उससे कम आप देते हो तो किडनी फिर क्या होता है कि हाइपो फंक्शन हम बोलेंगे, किडनी की जो क्षमता है वो उसे कम काम करता है, तो फिर किडनी में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं
0: जी.
1: तो 2 से 2.5 लीटर मेल हो या फीमेल मिनिमम क्वांटिटी पानी आपको लेना चाहिए कि आपका किडनी एक अच्छे से काम करे. और अगर किडनी का पेशेंट है तो डिपेंड करता है कि उसकी किडनी कितनी काम करे, तो उसके हिसाब से हम पानी का मात्रा डिसाइड करते हैं
0: जी. डॉक्टर साहब, क्या किडनी पेशेंट्स को प्यास भी बहुत लगती है, जैसे शुगर के पेशेंट्स को प्यास बहुत लगती है? अब किडनी अगर इफेक्ट हो रही है तो प्यास लगेगी क्या?
1: जी, ये तो विधि का विधान है. जो डायबिटिक है उनको मीठे की क्रेविंग होती है, जिनको बीपी है वो नमक ज़्यादा खाते हैं. तो सेम जो किडनी या गुर्दे के जो पेशेंट हैं उनको प्यास और उनको पानी पीने की बहुत क्रेविंग होती है. इसलिए हम अपने सारे किडनी के पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके असेस करके हम इनको बताते हैं कि आपको 800 ml 24 घंटे में लेना है या 1 लीटर लेना है या 1.5 लीटर लेना है. हम अपने प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं कि आपके लिए इतना मात्रा ही पानी आपको लेना चाहिए. क्योंकि अगर आप 1.5 लीटर ले रहे हैं, उतना पानी अगर निकल रहा है किडनी के माध्यम से, तो आपको उतना ही पानी लेना है.
0: डॉक्टर साहब, क्या डिहाइड्रेशन या बहुत ज़्यादा गर्मी में स्वेटिंग होना, ये भी कहीं ना कहीं किडनी को इफेक्ट कर सकती है? क्योंकि आपकी बॉडी से पानी निकलता रहता है, आप जब गर्मी में जाते हैं तो एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है. आजकल तो वैसे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो क्या इसमें भी किडनी पे कोई असर डलता है?
1: अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो आप बिल्कुल हाइड्रेशन मेंटेन रखें. और डिहाइड्रेशन का एक और कॉज होता है लूज मोशन या डायरिया भी होना, जिसमें काफ़ी अच्छा खासा मात्रा में पानी निकल जाता है. तो इसमें एक कंडीशन आता है प्री रीनल AKI, मतलब जब आप एडमिट होते हैं डायरिया लेकर या डिहाइड्रेशन का किसी भी कॉज को लेकर, तो उसमें हम क्रिएटिनिन की जांच जब हम कराते हैं तो कभी कभी क्रिएटिनिन 4 या 5 हमें मिला होता है. तो उसमें हम कुछ नहीं करते, हम एसेस करते हैं कि कितने लीटर इनका पानी निकल गया होता है. तो फिर हम पेशेंट को हाइड्रेशन देते हैं, और उस वक्त पेशेंट बहुत टेंशन में होता है, उसको लगता है कि उसकी किडनी परमानेंट डैमेज हो गई है. लेकिन वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है. हमें पता है कॉज कि डिहाइड्रेशन कॉज है, तो हम उनको रिहाइड्रेट कर देते हैं. तो रिहाइड्रेट करने से 3-4 दिनों में वो किडनी का फंक्शन वो वापस आ जाता है, और सेरम क्रिएटिनिन लेवल या EGFR जो गिरे होते हैं वो फिर वापस आके नॉर्मल में आ जाता है.
0: ओके. डॉक्टर साहब, एक और आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है हाई प्रोटीन डाइट का. आप रील्स जितनी भी देखते हैं वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, और प्रोटीन कुछ हद तक ज़रूरी भी है. हम इंडियंस की डाइट में प्रोटीन की मात्रा वैसे ही बहुत कम होती है. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, डायबिटीज़ के पेशेंट प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, क्या ये प्रोटीन नेगेटिव असर डाल सकता है किडनी पर?
1: प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन डायबिटिक किडनी के जो पेशेंट होते हैं उसमें एक्सेसिव प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती. किडनी में ऑलरेडी हाई प्रेशर होता है और उनके फिल्टरिंग यूनिट्स ऑलरेडी डैमेज होने स्टार्ट हो गए होते हैं। अगर हम हाई प्रोटीन लेते हैं तो वो किडनी के जो फिल्टरिंग यूनिट्स या प्रेशर को और बढ़ाता है, जिससे किडनी का डैमेज और स्पीड अप हो जाता है। तो डायबिटिक किडनी पेशेंट अगर वो नॉन डायलिसिस में है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है डायबिटीज़ का, तो उनको 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन वो ले सकते हैं। और अगर वो डायबिटिक अगर वो किडनी के पेशेंट है, डायलिसिस के पेशेंट है, तो उनको 1.2 टू 1.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सारे प्रोटीन अच्छे नहीं होते, आप बिल्कुल लेबल देखें, एक ब्रांडेड ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन आते हैं जिम वाले हो चाहे ऐसे भी मार्केट में, उसमें लेड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो कि किडनी को डैमेज करते हैं। और तीसरी चीज़, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छा है। और प्रोटीन का जो इंटेक है वो पेशेंट वाइज पेशेंट ही आप इंडिविजुअलाइज करें। एक्स्ट्रा लेते हैं किडनी में प्रेशर बढ़ाता है, जो कि किडनी को ऑलरेडी वो डैमेज
0: कर सकता है। जी सर, चलते चलते आखिरी बात सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हमको सुन रहे होंगे तो मन में सवाल आ रहा होगा, जैसे लिवर प्रॉब्लम्स वापस ठीक होने लग जाती हैं, लिवर अगर फैटी लिवर है तो नॉर्मल होने लग जाता है, किडनी हमारे पास दो हैं, किडनी क्या एक एक करके डैमेज होती है या एक साथ डैमेज हो सकती है, और अगर डैमेज हो गई है कुछ हद तक तो क्या इसको शुरुआती दौर में रिवर्स किया जा सकता है?
1: और जैसे कि एक मैंने अभी बताया, डिहाइड्रेशन एक कॉज होता है, ऐसे अगर कोई टेम्प्ररी कॉज होते हैं, अगर किडनी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें EGFR कुछ टेम्प्ररी में कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कारण पता है कि किडनी में अगर स्टोन के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम हो रही है, UTI अगर हो रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस अगर हो रहा है, या कोई ऑटोइम्यून हो रहा है, तो अगर कारण को पता है बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। और किसी एक किडनी में भी डैमेज हो सकता है और दूसरे किडनी में भी हो सकता है, लेकिन जो डायलिसिस के जो पेशेंट या किसी के किडनी का डैमेज होना है, तो बहुत सारे पेशेंट में दोनों एक साथ डैमेज हो जाते हैं और वो पेशेंट डायलिसिस में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं होता कि उनके किडनी नहीं है या डैमेज है, एक किडनी डैमेज है, तो एक किडनी में पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से बिता सकते हैं सावधानियों के साथ। डॉक्टर उनको बताएंगे कि आपको क्या सावधानी बरतना है, अगर सावधानी बरतते हैं, परहेज करते हैं, तो एक किडनी के साथ एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है।
0: बिल्कुल, यानी इतना ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है, आप अगर सही लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अपने टेस्ट रेगुलर कराइए, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो उसके जो वाइटल्स हैं वो एकदम ठीक ठाक रहने चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए सब कुछ, ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी खुशनुमा तरीके से जी सकें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
0: तो प्रोग्राम ऑल इज़ वेल में आज बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, और कुछ नई प्रॉब्लम्स के बारे में विस्तार से करेंगे डिस्कशन। फिलहाल इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव, दिस इज दीक्षा।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्रिएटिव मंच में हमारे साथ हैं फरीदाबाद की दो बेहद प्रतिभाशाली और युवा संगीतकार बहनें, 17 वर्षीय हमसिनी कौशिक और 13 वर्षीय स्माही कौशिक। संगीत इन दोनों की जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमसिनी ने महज 4 साल की उम्र में गायन शुरू किया और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। वहीं स्माही ने 6 साल की उम्र से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। इसके अलावा कोविड लॉकडाउन के दौरान दोनों ने वेस्टर्न म्यूजिक, सॉन्ग राइटिंग और कॉम्पोजिशन को एक्सप्लोर किया और धीरे धीरे अपनी एक अलग म्यूजिकल आइडेंटिटी बनाई। करीब 3 साल पहले ये दोनों द गोपी गर्ल्स के नाम से डिवोशनल सिस्टर डुओ के रूप में पहचानी जाती थी। इनके कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया और वेन आई एम इन वृंदावन जैसे गानों को खूब प्यार मिला और खूब सराहा गया। आज ये दोनों द श्यामाज और द फूल्स नाम से अपनी क्रिएटिविटी के दो अलग अलग पहलू दुनिया के सामने रख रही हैं। द श्यामाज के जरिए ये अपनी हिंदुस्तानी शास्त्रीय जड़ों और भारतीय डिवोशनल म्यूजिक को कंटेम्प्रेरी साउंड के साथ जोड़ती हैं। इनका गीत जेंजी की भक्ति भक्ति संगीत को एक फ्रेश और युवा अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए काफी लोकप्रिय हुआ। वहीं फूल्स इनके ओरिजिनल म्यूजिक का प्लेटफॉर्म है, जहां ये अपनी फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और लाइफ स्टोरीज को इंडी पॉप, हिंग्लिश, इंग्लिश इलेक्ट्रॉनिक और एक्सपेरिमेंटल साउंड्स के जरिए एक्सप्रेस करती हैं। सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि ये दोनों बहनें अपने संगीत का काम खुद ही करती हैं। सॉन्ग राइटिंग और कंपोजिशन से लेकर रिकॉर्डिंग, अरेंजमेंट्स, प्रोडक्शन, मिक्सिंग और मास्टरिंग तक। वहीं हमसिनी साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर रही हैं और म्यूजिक प्रोडक्शन के टेक्निकल साइड को भी गहराई से सीख रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज क्रिएटिव मंच में इन दोनों प्यारी बहनों का स्वागत करते हैं, द श्यामाज और द फूल्स की बेहद टैलेंटेड सिस्टर्स हमसिनी कौशिक और स्माही कौशिक का। आप दोनों का क्रिएटिव मंच में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच मैम हमें यहाँ पे बुलाने के लिए।
0: ओके, तो सबसे पहले मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी और हमारे लिसनर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपने इतनी अपने मतलब स्टार्टिंग में म्यूजिक की जो शुरुआत की वो आपका पैशन था या हॉबी थी?
1: इट वॉज लाइक अ हॉबी, हॉबी ही थी पहले तो, पर वो धीरे धीरे पैशन बना एंड उसके बाद अब करियर।
0: और आपने किस एज से सीखना शुरू किया था, ये भी एक बार आप अपने मुंह से बताइए दोनों जने।
1: तो मैंने एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मेरा फर्स्ट बर्थडे था, जब मुझे किसी ने एक छोटा सा कैसियो दिया था, छोटा सा कीबोर्ड, एंड वो क्योंकि मेरे घर पे था ही, इसलिए जब मैं 4 साल की हुई तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पियानो क्लास भेज दिया।
0: अच्छा।
1: एंड इस वजह से फिर मैंने पियानो सीखा एंड फिर जब पियानो बजाते बजाते वो गाने भी सिखाते ही हैं, तो गाने सीखते सीखते बजाते बजाते मैं गाने भी लग गई, तो उनको लगा मैं अच्छा गाती हूँ, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे वोकल क्लासेस में भी डाला एंड दैट इज़ द थिंग दैट स्टार्टेड इट ऑल।
0: ओके, और स्माही ने कब से सीखना शुरू किया?
2: मैंने 6 ईयर्स की जब थी तब से, और मेरा शुरुआत में तो डांस में इंटरेस्ट था, बट फिर उनसे सीखते सीखते फिर मेरा भी उसी में इंटरेस्ट,
0: मतलब वो उसको देखते देखते एक इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो गया। ओके, और मम्मी पापा का क्या इसमें रोल था, मतलब वो ही तो चाहते होंगे ना कि तुम म्यूजिक में आओ, या तुम लोगों ने जिद की कि नहीं हमें म्यूजिक क्लासेस भेजा जाए?
1: तो जब से मैं बचपन में, जब बहुत छोटी थी, लाइक हमेशा मुझे सारी चीज़ें कराई, मैं स्केटिंग में भी नेशनल्स तक खेल चुकी हूँ एंड आर्ट वर्क एंड डांस लाइक लॉन टेनिस सम लाइक एवरीथिंग दे कवर,
0: मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज।
1: हाँ, लाइक जो अच्छा लगे कि कुछ तो मिल जाएगा ऐसा। तो फिर मुझे कुछ मिल भी गया, मुझे म्यूजिक मिला एंड लाइक म्यूजिक मुझे सबसे अच्छा लगता था, तो दैट्स व्हाट आई चोज।
0: ओके, सो बचपन में आप दोनों के लिए म्यूजिक ज्यादा मतलब शौक था या पढ़ाई की तरह डिसिप्लिन के रूप में लेते थे उसे?
2: ओके, सो हम दोनों चीज़ों में से कुछ ज़्यादा प्रेशराइज मम्मी पापा कभी नहीं करते थे, दोनों चीज़ों में ही हम बहुत फन रूप में और बहुत आराम से सब कुछ करते थे, कभी प्रेशराइज नहीं किया और
1: डिसिप्लिन कुछ था ही
2: नहीं था। हाँ। सभी बहुत इंजॉयमेंट से, लाइक पढ़ाई करने का मन करा तो पढ़ाई कर ली, म्यूजिक करने का मन करा तो वो कर लिया, लाइक सब कुछ बहुत लाइट एंड चिल था,
0: मतलब कभी वो प्रेशर नहीं रहा
2: बिल्कुल
0: दोनों चीज़ों को लेकर भी
2: नहीं।
0: और वैसे एक थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि तुम पढ़ाई में दोनों कैसे हो, ये बताओ।
2: अच्छा वो तो अच्छा है।
0: जिंदगी क्या होता है, जो बच्चे म्यूजिक डांस वाले होते हैं उनका थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम
2: नहीं,
0: होता
2: इतना है। तो हमें लाइक लगता है नहीं अच्छा स्कोर करना चाहिए।
0: अच्छा तो अब एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्या आप दोनों को याद है कि पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने का क्या एक्सपीरियंस था आप दोनों का, और कब किया, कहाँ किया और कौन किस एज में किया?
2: मैं तब थी 2 इयर्स की। अच्छा। और मैंने ना कोई रैंडम परफॉर्मेंस चल रहा था, एक स्टेज लगी थी हमारी सोसाइटी में, तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही चढ़ के गा दिया। मुझे कोल्ड हुआ था, बहुत गंदी आवाज़ थी,
1: खास खास के गाया,
2: खास के एकदम गंदा सा गाया था मैंने। और फिर बेसिकली मम्मी ने बचपन से हमें स्टेज पे भेजा है, तो हमें कभी स्टेज फ्राइट या नर्वसनेस हुई नहीं, वो हमारी पर्सनालिटी बन गई, हमें लाइफ का हिस्सा ही था, तो हमें कभी ऐसा नहीं हुआ।
1: मुझे अभी भी याद है जब ये ऐसे खास खास के गा के आई थी माइक पर, इतना खुश होके फिर कूद कूद के आई थी कि ओ माय गॉड मैंने गाना गाया,
0: स्टेज पर गाया। हाँ। मतलब वो स्टेज फियर वाली बात कभी नहीं रही आप दोनों, बचपन
1: वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया।
0: नाइस। अच्छा तो अब इसी के साथ कौन सा हमें गाना सुनाओगे आप अपना, जो बेस्ट

वाओ अमेजिंग, बहुत ही प्यारी आवाज है आप दोनों की, मतलब गॉड गिफ्ट ही है ये एक तरीके से, बट सच में बहुत प्यारी आवाज है। और इस गाने की स्टोरी क्या है वो हम लिसनर्स इनसे जानेंगे, लेकिन अभी हम ले रहे हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हमारी आज की प्यारी प्यारी ये जो मेहमान आई है इनसे हम अपनी वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और हम आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमसिनी और स्माही। तो अभी आप दोनों ने हमें ये गाना सुनाया, इसकी स्टोरी क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना है।
1: तो कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, ये गाना सभी ने सुना होगा। ये हमारी मम्मी का फेवरेट गाना था।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने हमें बोला कि इसको चलो डिवोशनल सॉन्ग बनाते हैं, है ना। तो फिर उनका फेवरेट गाना था, फिर हमने बनाया। एंड जब हम गोपी गर्ल्स थे, द गोपी गर्ल्स, तभी हमने गाना रिलीज़ किया था। एंड ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत वायरल हो गया था एंड सभी लोगों ने बहुत पसंद किया इस गाने को।
0: और दूसरी बात मैं जानना चाहूँगी, ये द गोपी गर्ल्स क्या था, आपका प्रोजेक्ट था क्या, किस तरीके से, इसके बारे में बताइए।
1: तो द गोपी गर्ल्स एक डुओ ही था, स्पिरिचुअल डुओ। एंड तब हम बहुत छोटे थे, 3 साल पहले की बात है। आई वॉज इन 9th class एंड शी वॉज इन 5th class। यस, तो इट वॉज द सेम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम हमें लर्निंग ऐसा लग रहा था कि हमारी स्टॉप हो रही है, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा ब्रेक लेने का डिसाइड किया हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि उनको लगता था कि अभी हमें इंडस्ट्री में अभी नहीं उतरना चाहिए एंड वी नीड टू वेट एंड लर्न फर्स्ट। तो दैट्स व्हाई वी
0: म्यूजिक पूरा सीखा आपने। Exactly. ट्रेनिंग ली क्लासिकल म्यूजिक की।
1: पिछले 3 साल के ब्रेक के बाद अब वापस से
0: दोबारा से कम बैक हुआ है बहुत ही जोश के साथ। अमेजिंग। ओके, तो अभी तक हमने बात की आपने कब से म्यूजिक सीखना शुरू किया और कौन सा आपका सॉन्ग वायरल हुआ कैसे, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी दो बहनों की स्टोरी, दोनों जब एक साथ काम करें। देखो हम लोगों में तो मेरी भी अपने भाई बहन है लेकिन बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बट तुम दोनों बताओ जब तुम दोनों एक साथ काम करते हो तो कैसा वो कॉम्बिनेशन रहता है, वो अच्छी बात है या लड़ाइयाँ भी होती हैं, किस तरीके से।
2: ओके, सो बेसिकली साथ में रह रहे कि हमारे थॉट्स और डिसीजंस बहुत ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। और ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, होती है, बट ऐसी बातों को लेके होती कि ये सही है या वो गलत।
0: एग्जैक्टली वही मेरे को जानना था।
2: तो वो हमारी लास्ट डिसीजन तो हमारी मम्मा ही लेती है।
0: अच्छा।
2: हमारे घर के क्रिटिक है वो, अगर हमारे में हम बीच में लड़ाई हो जाती है कि ये अच्छा है ये अच्छा है, तो हम उनको लाते हैं कि अब आप बताओ ये अच्छा है कि अच्छा है, फिर वो फाइनल डिसीजन लेती है, फिर हम उसको फॉलो करते हैं। और साथ में रह के ये भी हो गया कि हम बिना एक दूसरे से कंसल्ट करे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं।
0: अच्छा।
2: तो एक दूसरे की हाँ ना तो बहुत,
0: वो राय भी बहुत जरूरी है दोनों की एक दूसरे के आपस में, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ये चीज़ तो। और जैसे आपने अभी अपनी मम्मा का जिक्र किया तो मुझे ये बताओ मम्मा भी क्या म्यूजिक से रिलेटेड है या।
2: हमारे दोनों पेरेंट्स IT के बैकग्राउंड।
0: अच्छा,
2: तो फर्स्ट वही लाई है म्यूजिक।
0: ओके नाइस, बट फिर भी वो आपको फुल ऑन सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा हर चीज़ में।
2: बहुत ज़्यादा सपोर्ट,
0: ये बहुत अच्छी बात है। अगर फैमिली से सपोर्ट हो मदर पेरेंट मदर फादर का, बहुत ही अच्छी बात है ये। ओके, तो अब मुझे ये बताओ हमसिनी और स्माही, एक क्वालिटी जो स्माही को हमसिनी की ज्यादा अच्छी लगती हो और तुम्हें इसकी, ये बताओ।
2: मुझे दीदी का क्रिएटिव माइंड और उनका बहुत म्यूजिकल माइंड है, वो उनको बहुत सारे आइडियाज होते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है।
0: और आपको?
1: मुझे उसकी प्रेजेंस चाहिए, जैसे एक्सप्रेशंस देती है वो, जैसी उसकी स्टेज प्रेजेंस है, बहुत अच्छी है।
0: नाइस। और तुम इसे दीदी बोलते हो वैसे?
2: DU। अच्छा, उसका भी निकनेम बना।
0: और अगर तुम दोनों को एक दूसरे की कोई म्यूजिकल क्वालिटी बतानी हो तो क्या है दोनों की, अपनी अपनी डिफरेंट?
2: उनकी वोकल रेंज।
0: अच्छा।
2: उनके रिफ्स रन्स, उनकी वोकल बहुत अच्छे हैं एंड उसके साउंड में ना, उसकी वोकल्स में बहुत इमोशन है एंड आई वॉन्ट दैट। बहुत इमोशन के साथ गाती है, बहुत फीलिंग के साथ गाती है।
0: ठीक है, तो फीलिंग की जहाँ बात हुई है, मैं चाहूँगी कुछ एक बार फिर से बढ़िया सा कुछ सुनाया जाए हमारे लिसनर्स को।

0: वाओ ब्यूटीफुल,
1: इतनी सूदिंग आवाज है ना आप दोनों की, और जब एक साथ गाते हो बहुत ही, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और लिसनर्स मैं आपको बता दूं, ये दोनों मुझे पहले ऐसा लगा था कि ये ट्विंस हैं, लेकिन ये है नहीं ट्विंस। कितने इयर्स का गैप है दोनों में?
2: 4 साल का
1: बिल्कुल। आप इनके पेज पर जाएंगे ना फॉलो करना, और तब देखना ये बिल्कुल ट्विंस लगती हैं रील्स में। तो आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड, बट तुम्हारी आवाज जब एक साथ आती है अमेजिंग, बहुत ही सुरीला।
2: थैंक यू सो मच।
1: ओके लिसनर्स, तो वक्त हो चला एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे हमारी प्यारी बहनों के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

क्यों ना एक काम किया जाए, मरने के बाद भी जिया जाए, अंगों को अपने दान किया जाए और जिंदगी को एक बार फिर से जिया जाए, एक बार फिर से जिया जाए। जब आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं तो आप सिर्फ एक जिंदगी नहीं बचाते बल्कि आप भी उनमें जिंदा रहते हैं। वी सपोर्ट ऑर्गन डोनेशन। डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, स्टूडेंट वेलफेयर MRIIRS और रेडियो मानव रचना 107.8 FM की ओर से एक खास पहल, डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। आप मदद करेंगे ना?

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही प्यारी बहनें, सुरीली बहनें, जिनका नाम है हमसिनी और स्माही। तो स्माही और हमसिनी, आप मुझे ये बताओ, कोविड लॉकडाउन ने आपकी म्यूजिक जर्नी को किस तरह से बदला?
1: तो कोविड लॉकडाउन का टाइम हमारे लिए लाइक अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा लकी टाइम रहा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था, पूरे दिन तो खाली ही रहते थे।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे ऐसी बात नहीं कि हमने टाइम पास नहीं किया, टीवी नहीं देखा, वो भी बहुत देखा, बट फिर भी टाइम बच जाता था। तो इस वजह से हमने लाइक एक हॉबी, लाइक हमने सोचा कि अपनी हॉबी को थोड़ा सा ब्रश अप करते हैं और ज़्यादा। तो मैंने लॉकडाउन में खुद से पियानो सीखा एंड गिटार सीखा, तो उससे लाइक मेरी म्यूजिकल जो ब्रेन है और डेवलप हुआ, एंड मुझे पता चला कि आई वांट टू क्रिएट म्यूजिक, नॉट ओनली सिंग इट।
2: और हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी, हर चीज़ करी थी लॉकडाउन में, जैसे सॉन्ग राइटिंग करा, थोड़ा कंपोजिंग एक्सप्लोर करी।
1: तो लाइक
2: लॉकडाउन में हमने अपना फर्स्ट गाना भी लिखा था।
1: हाँ,
0: फर्स्ट गाना कौन सा था वो?
1: तो हमारे पापा का बर्थडे था, एंड हमें समझ नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट दें, कि कार्ड बनाएं, कि क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो हमने एट लास्ट यही सोचा कि चलो गाना बनाते हैं।
0: वाओ,
1: जो कि हमारी बस के नहीं था, बट फिर भी हमने सोचा चलो गाना बना लेते हैं।
2: शी वाज 10 इयर्स ओल्ड, आई वाज 6।
1: तो हमने फिर गाना बनाया, जो कि लाइक बहुत मुश्किल लगा था हमें, बट लेकिन हमने लाइक बहुत चाइल्डिश सा गाना बनाया था, बट फिर भी इट वाज लाइक फन टू हियर।
0: अभी भी सुना सकते हो आप इसे?
1: आई मुझे बस इसकी एक लाइन याद है।

0: ये अभी भी हमारे चैनल पर भी है।
1: नहीं नहीं गाना तो बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे ये पूरा गाना भी हम सुने, क्योंकि अगर किसी को अपने फादर को विश करना हो तो ये गाना गा के कर सकते हैं। बट ये वैसे बड़े कमाल की बात है कि तुम कह रही हो तुम 10 ईयर्स की थी उस टाइम, तुम 6 साल की थी, तो इतने में इतनी छोटी उम्र में बच्चों में इतना होता है पेशेंस कि वो गाने बना ले, तो कैसे ये चीज़।
2: एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड थी, उसने हमें इंट्रोड्यूस किया एक सिंगर टेलर स्विफ्ट से।
1: ओके
2: तो हम उससे बहुत इंस्पायर हो गए, एंड क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपने गाने खुद लिखती थी, तो दैट वॉज द थिंग दैट इंस्पायर्ड मी टू राइट माई ओन सॉन्ग्स। तो फिर मुझे लाइक उसकी तरह बनना था ऑफकोर्स, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी अपने गाने लिखने, चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं लिखूंगी।
0: और उसी की वजह से हम वेस्टर्न म्यूजिक से इंट्रोड्यूस हुए थे, और तब से लेके अब तक वही हमारी आइडल है कि हमें उसके जैसा बनना है।
1: एग्जैक्टली चलो आई विश कि आप वैसे ही बने।
0: वी विश टू।
1: और क्या, और आप लोगों ने उस टाइम लॉकडाउन के टाइम प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग्स का भी कुछ ट्राई किया या नहीं? बट जैसे मैंने तब तक नहीं, कब से ये चीज स्टार्ट किया आपने?
2: When I was in 9th class, जब हम गोपी गर्ल्स थे उस टाइम, तब मैंने 2 गाने प्रोड्यूस किए थे, कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया और When I'm in वृंदावन। तब ही मुझे पता चला था कि, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि म्यूजिक प्रोडक्शन जैसे भी कोई चीज़ होती है, मुझे लगता था गाने बन जाते होंगे बस ऐसे ही।
0: हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमें तो ये भी नहीं पता था कि वायरल क्या होता है।
2: हाँ
0: तो बेसिकली मेन चीज़ तो हमारी गोपी गर्ल से ही हुआ था, हमें पता चला था कि ऐसा कुछ होता है
2: कि गाने बनाते हैं फिर पोस्ट करते हैं रिलीज करते हैं, लाइक हमें एक प्रोसेस के बारे में पता चला था। एंड उसके बाद प्रोडक्शन मैंने 9th क्लास में स्टार्ट करी, एंड तब तो मैं लाइक यूट्यूब वगैरह से सीखती थी, इधर उधर से वेबसाइट्स वगैरह से नॉलेज कभी इधर से ली कभी उधर से ली, तो लाइक मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा था वो, बहुत लाइक फ्रस्ट्रेटिंग टाइम पीरियड था मेरे लिए, क्योंकि लाइक जो साउंड मेरे दिमाग में थी, जो मुझे बनाना मैं चाहती थी, वो मैं बना नहीं पा रही थी, तो मुझे गुस्सा आ जाता था मैं गुस्सा ही हो जाती थी खुद में, मैं बना क्यों नहीं पा रही। तो फिर इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोर्स ज्वाइन करवाया, एंड लाइक जब मुझे टेक्निकल नॉलेज और ज़्यादा थोड़ी समझ आई, तो मैं अपनी जो दिमाग में जो साउंड थी मैं उनको लाइक असलियत में बना पाई। तो फिर मुझे थोड़ी खुशी हुई कि हाँ अब मैं अच्छे से बना पा रही हूँ।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की। तो आप अभी भी ये कर रहे हो?
2: हाँ जी,
1: यस, कोर्स अभी कंटिन्यू है?
2: हाँ अभी कंटिन्यू है।
1: तो आगे इसी में सोचा है?
2: ऑफ कोर्स।
1: और आपने भी कुछ प्रोडक्शन और इसका सोचा हुआ है?
0: भी शुरू कर चुकी हूँ धीरे धीरे साथ में सीख के,
1: मतलब उसी की लाइन पर आप चल दी हो, दैट्स ग्रेट। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताओ, जैसे तुमने बताया पियानो और गिटार, कैसे यूट्यूब से सीखा था?

0: वाओ, अमेजिंग. इसके लिए तो क्लैप बनती है. इतना मीठा, इतना अमेजिंग और इतना सुर में, बहुत ही मजा आ गया. और जो आपने हारमोनीज की हैं, टू गुड, बहुत ही प्यारा. मतलब इतनी प्यारी आवाजें, शायद हमारे लिसनर्स को भी आज बहुत मजा आ रहा होगा जो ये सुन रहे होंगे.
1: थैंक यू सो मच.
0: तो अब मुझे ये जानना है आपसे कि द गोपी गर्ल से द श्यामाज का क्या सफर था ये?
1: तो द गोपी गर्ल्स में वी वर जस्ट सिंगर्स. गोपी गर्ल्स के दौरान हमें पता चला कि म्यूजिक बनाना चाहिए हमें. तब हमने सिर्फ दो गाने प्रोड्यूस किए थे, है ना. तो बेसिकली गोपी गर्ल्स में हम अपने स्टाइल से कुछ नहीं गाते थे. तो वहाँ पे हम बस नॉर्मल जेनरिक भजन्स गाते थे. हमने अपना स्टाइल ढूंढा नहीं था तब तक.
0: अच्छा.
1: फिर इसलिए हमने 3 इयर्स का गैप लिया, लर्निंग करी, अपना स्टाइल ढूंढा. एंड देन फिर श्यामाज में हम अपने स्टाइल से चीज़ें गाते हैं, अपने स्टाइल से बनाते हैं. एंड अब हमें हमारा स्किल भी लाइक मच बेटर है उस टाइम से, ऑफकोर्स.
0: और जो ये कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया जो है, और दूसरा आपने व्हेन आई एम इन वृंदावन जैसे सॉन्ग्स को लोगों का जब इतना प्यार मिला, तो उस समय क्या एक रिएक्शन, क्या फीलिंग, क्या कैसा लगता है तब?
1: तो हमें पता ही नहीं था कि लाइक हम सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे. पेरेंट्स ने कभी लाइक ज़्यादा हमें करने नहीं दिया. तो हमें पता ही नहीं था कि वायरल जैसी भी कोई चीज़ होती है.
0: छोटे भी तो थे तब.
1: हाँ, ऑफ कोर्स. तो हमें कुछ पता ही नहीं था. हमने बस ऐसे वीडियो बनाई एंड पोस्ट कर दी एंड फिर हम वायरल हुए. लाइक हमें पता चला लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इतने फॉलोअर्स आए. तो हमें ऐसे हैरानी थी, रही थी, ओ माई गॉड, ऐसा भी कुछ होता है.
2: और आसपास के लोग जैसे हल्का फुल्का की रिकग्नाइज करने लग जाते, तो लगता है कि ऐसा बन जाते
1: थे. तो लोग लाइक बहुत लोग हमें रिकग्नाइज भी करने लग गए थे. तो फिर हमें ऐसे हैरानी थी, ओ माई गॉड, हमें तो वो पहले से ही जानते थे. तो उनका लाइक कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया. लाइक हाँ, थोड़ा सा लाइक म्यूजिक टीचर्स का, हाँ थोड़ा
0: तुम्हारी तरफ झुकाव ज्यादा हो गया होगा कि भाई ये बच्चियां तो बहुत अच्छा गाती हैं, तो इन्हें हर इवेंट में लेना ही है, लीड सिंगर बनाना है. वो तो होता ही है. चलो, बहुत मज़ा आ रहा है आज हमें लिसनर्स इनसे बात करके, दोनों से बहुत ही अमेजिंग बातें और अमेजिंग गाने हम सुन रहे हैं और आप तक लेकर आ रहे हैं. तो अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM.

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही सुरीली दो बहनें मौजूद हैं जिनका नाम है हमसिनी और स्माही। तो हमसिनी और स्माही, अब मुझे ये बताइए कि ये जेंजी की भक्ति का आइडिया कैसे आया, और क्या आप चाहती थी कि आज के यंग जनरेशन डिवोशनल म्यूजिक से कुछ नया तरीके का कनेक्शन बनाए?
1: तो बहुत फनी स्टोरी है। 2025 में जून में हमारे पेरेंट्स ना एक ऐसी आइडिया लेके आए, गाना है हमें हरी नाम बट माया सताती है। तो हम दोनों तो हंस रहे थे उन पे, क्या लिख के लाए हो आप। तो लाइक हमें तो बड़ा फनी लगा, ऑफ कोर्स था ही वो फनी। तो लाइक वो भी कहते नहीं नहीं गाना बनाएंगे, इसका गाना बनाएंगे। तो नवंबर तक लाइक उनको टाइम लग गया गाना लिखने में, तो उन्होंने नवंबर तक लाइक उन्होंने पूरा गाना ख़त्म कर दिया। तो फिर वो हमारे पास लाए फिर से कि चलो अब इसको बनाओ,
0: गाना मम्मी पापा लिख कर लाए।
1: हाँ, मम्मी पापा लाए।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो लाइक एक्चुअली यही होता है हमेशा कि वृंदावन, वो हमें हमेशा वृंदावन ले जाते थे। हम बोलते थे नहीं चलो गोवा चलते हैं ना। तो लाइक ऐसे थोड़े से हमारे जेंजी और मिलेनियल्स में भी थोड़े क्राइसिस हो जाता है, तो उसी पे उन्होंने गाना लिख दिया। तो इस वजह से लाइक उन्होंने हमें बोला कि चलो बनाओ इसको। तो मैं कहते ऐसे थोड़ी, इतना फनी गाना कोई बनाता है क्या, ऐसे थोड़ी। तो लाइक फिर मैंने उसको टला दिया, नवंबर में भी मैंने नहीं बनाया। मैंने बोला कि अरे ऐसे थोड़ी गाना बनाते हैं, छोड़ो ना। तो उसके बाद अप्रैल में उन्होंने बोला एक बार बना के तो देखो, अप्रैल 2026 में, तो बना के तो देखो क्या क्या लाइक अच्छा भी तो लग सकता है। फिर मैंने बनाया, बट जब बनाया तो आई जेन्युइनली लाइक दैट। एंड उसके बाद ना जब भी हम कोई गाना बनाते हैं ना, हमारी आदत है कि हम लाइक जो क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स है ना उनसे एक बार रिव्यू लेते हैं सुना के, है ना। तो हमने ऐसे 5-10 लोगों को ऐसे सुनाया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस था कि हाँ हाँ इतना भी बुरा नहीं, अच्छा लगेगा। तो फिर हमें लाइक कॉन्फिडेंस है कि हाँ चलो रिलीज़ करता है। फिर हमने अप्रैल 28 को हमने इसको रिलीज़ कर दिया आखिरकार। एंड उसके बाद मई 1st से पहले पहले ही वो वायरल हो गया था, तो लाइक इट वर्क्ड।
0: तो क्या हम सुन सकते हैं इस गाने को?
1: हाँ ज़रूर।

आती है, जाना तो है वृंदावन, बट गोवा बुलाता है, बट गोवा बुलाता है, खाना है सात्विक फूड, बट मोमो दिख जाता है, खाना है सात्विक

0: बताती है।
1: वाओ, फुल ऑन जेंजी की फील, मतलब एकदम।
0: इसके पीछे एक और बहुत फनी स्टोरी है। आपको पता है हमने कभी आज तक अपनी लाइफ में मोमोज नहीं ट्राई किए थे,
1: अच्छा
0: एंड एंड फिर इस गाने पे हमने मोमो यूज किया। तो लाइक
1: इसके
0: हमने
1: शूट में
0: हमने हमने मम्मी पापा से जिद की कि प्लीज हम इसके शूट में मोमो तो यूज करेंगे।
1: फिर ट्राई
0: तो
1: किया या
0: फिर
1: नहीं?
0: हमारे घर पे मोमो आए। तो जब हमने शूट किया था तब आखिरकार पहली बार जिंदगी में हमने मोमोज ट्राई किए,
1: तो कैसा लगा?
0: बहुत
1: फिर
0: अच्छे लगे। उसके बाद हमने 4-5 बार खा लिए
1: बस। लेकिन थोड़ा गले की वजह से मम्मी पापा नहीं खाने देते होंगे, तो वे उसकी जो चटनी होती है तीखी, इसीलिए। और वैसे बहुत अच्छी चीज नहीं है मोमोज, बचपन से ऐसी सारी चीजें टेस्टी लगती हैं हमें भी लगती हैं। ओके, तो अब बात करते हैं फूल्स की, कि ये द श्यामा से बिल्कुल अलग और ज्यादा पर्सनल साइड है। फूल्स आपके लिए एक्चुअली क्या है, इसके बारे में हमें जानना है।
0: तो जब से मैं 10 साल की उम्र से गाने लिख रही हूँ, तो मैं बहुत सारे गाने लिखती थी। तो ज़्यादातर गाने मेरी लाइफ से इंस्पायर होते थे, जो छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं उनसे इंस्पायर होकर मैं गाने लिखती थी। तो इसलिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिनमें मैं उन गानों को बना के रिलीज़ कर पाऊँ। सो फूल्स एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स वाले गानों को रिलीज़ करती हूँ। तो फूल्स जेनेरिक टॉपिक्स पर ही होते हैं, जैसे कि एक गाना है हमारा एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने इस बारे में लिखा था क्योंकि हमारे फरीदाबाद में बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म आ रहा था एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो उस वजह से मैंने वो गाना लिखा था। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स पे वो गाने बेस्ड है। तो वो हमारे एक ओरिजिनल सॉन्ग्स की कलेक्शन है जो कि हमें अलाउ करती है अपनी आर्टिस्टिक दूसरी आर्टिस्टिक साइड को दिखाने के लिए।
1: तो बेसिकली आपके जो रियल इंसिडेंट्स हैं लाइफ के, उसके छोटे छोटे कुछ कुछ आप गाने की फॉर्म में वो फूल्स पर डालते।
0: ऑफ कोर्स।
1: तो इसका नाम फूल्स क्यों रखा आपने?
0: तो फूल्स PHOOL, फूल हिंदी में मतलब फ्लावर होता है एंड इंग्लिश में प्रोनंसिएशन के टाइम पे तो फूल पागल होता है ना। तो उसके बाद फूल्स हमने ऐसे ही सोचा कि इट वुड बी फन, है ना। फूल भी बहुत कलर्स के होते हैं, है ना। तो हमारे गाने कोई बहुत ही डल होता है, कोई बहुत सैड होता है, कोई इतना एनर्जेटिक और हैप्पी होता है। तो बहुत सारे फ्लेवर्स एंड कलर्स ऑफ सॉन्ग्स हैं हमारे। तो इस वजह से हमने फूल्स रखा। और हम दो हैं तो हम एस लगाने वाले थे पहले, तो बट फिर हमने ऐसे ही स्टाइल के लिए जी लगा दिया, तो PHOOL फूल्स।
1: ओ, जेन जी स्टाइल।
0: यस।
1: ओके, नाइस। आप दोनों जैसे बहुत ही यंग हो, अभी इतनी कम एज है, आप 8th में हो, आप 12th में हो, तो इतना कुछ अचीव करना थोड़ा ओवरवेलमिंग नहीं लगता आपको?
0: तो मुझे लगता है, हमें लगता है कि अभी तो हमने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, बिकॉज हमारे ड्रीम्स आर वेरी बिग बचपन से ही एंड हमें अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। तो दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट।
1: नाइस। और इसके साथ ये बताओ कि जैसे आपकी एज के जो बच्चे हैं वो बहुत चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो आपको कभी ये तो नहीं लगता कि हमारा चाइल्डहुड मिस हो रहा है?
2: कभी नहीं। हमारे लिए तो वी हैव द बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवर चाइल्डहुड।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि एक जो ये एक्स फैक्टर आप में ऐड हुआ है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है।
2: किसी भी चीज के लिए मम्मी पापा ने कभी प्रेशराइज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो बहुत चिल फन चाइल्डहुड।
0: बाकी बच्चे हमारे हमसे जेलस होते थे, भाई तुम्हारे पेरेंट्स इतने चिल क्यों है, क्या है?
1: एग्जैक्टली।
0: तो हमारा चाइल्डहुड हमारे लिए तो बहुत फन रहा है हमेशा से, अभी भी है।
1: नहीं, जरूर रहना भी चाहिए और आगे भी मैं यही प्रे करूंगी कि ऐसे ही खूब खुश रहो आप दोनों और खूब फेमस हो। और दूसरा ये बताओ कि जैसे अभी आपने करियर म्यूजिक में ही बनाने का सोचा, राइट? तो अगर म्यूजिक ना होता तो किस में करियर बनाते हो?
0: हमने प्लान भी रखा ही नहीं है, सोचा भी नहीं प्लान बी के बारे
1: कभी
0: में।
1: कभी तो सोचा होगा।
2: बेसिकली मम्मी पापा ने बोला है कि अगर प्लान बी होता है ना तो प्लान ए पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते।
0: तो हमारा एक ही प्लान है, दैट वी वांट टू बिकम अ ग्लोबल आर्टिस्ट।
2: इंटरेस्ट है दूसरी चीजों में बट है वही।
1: तो ठीक है, ग्लोबल आर्टिस्ट, ठीक है। आपको प्लेबैक सिंगिंग में है इंटरेस्ट या परफॉर्म करने में इंटरेस्ट है?
0: हमें परफॉर्म
1: करने में लाइव परफॉर्म
0: बहुत मजा आता है।
2: बट बचपन में ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। बेसिकली दियो ना बचपन से बहुत एक शाई और इंट्रोवर्टेड बच्ची थी बहुत ज़्यादा, और वो गाती अच्छा थी, तो शी ऑलवेज थॉट ओके आई विल बी अ प्लेबैक सिंगर। बट उसके बाद देन आई स्टार्टेड सिंगिंग, वी हैड द डुओ गोपी गर्ल्स, फिर धीरे धीरे हमने परफॉर्म करना शुरू किया। और हमने तो बचपन में ये भी नहीं सोचा था कि हम साथ में भी कुछ करेंगे।
1: बिल्कुल,
2: मैं बचपन से डांसिंग करना चाहती थी, तो वो सिंगर बनती, मैं डांसर बनती, हमारा था ही नहीं कुछ। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है अब डुओ बन गया गोपी गर्ल्स में, फिर अब शामाज, अब हम एक अलग अलग इमेजिन ही नहीं कर पाते अब कि अब तो साथ में ही है।
1: अब वैसे आप डांस करते हो?
2: हाँ, थोड़ा बहुत करते
0: हैं। हमारे गानों के शूट्स में शी ऑलवेज डांस।
1: अच्छा,
0: एंड स्टेज पर भी शी लाइक उसके एक्सप्रेशन ही बहुत अच्छे हैं, हैंड डांस ही अच्छा करती है बहुत।
1: स्टेज पर तो डेफिनेटली वो चीज करनी ही चाहिए।
2: यस ऑफ कोर्स।
1: ओके, तो अब मुझे ये बताओ अगले 5-10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो?
0: आई थिंक अगले 5-10 साल में हम खुद को लाइक एक ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, जहाँ पे लाइक सारा पूरा वर्ल्ड हमारे म्यूजिक को इजीली सुन पाता है, एंड लाइक सभी सुनते हैं एंड पसंद करते हैं। सो लाइक दैट इज आवर ड्रीम ऑफ कोर्स।
1: वाओ, बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हमेशा रहेंगी। ओके लिसनर्स, बहुत मजा आ रहा है आज हमें हमसिनी और स्माही के साथ। सो अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक पर से आने के बाद एक जल्दी से करेंगे रैपिड फायर राउंड। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। गाना

0: और अब हम करेंगे रैपिड फायर राउंड हमारी आज की स्पेशल गेस्ट जो हैं उनके साथ, हमसिनी और स्माही के साथ। तो आर यू रेडी?
1: यस।
0: ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर देने हैं, राइट? 1, 2, 3 स्टार्ट। सिंगिंग या सॉन्ग राइटिंग?
1: बोथ।
0: क्लासिकल या वेस्टर्न?
1: बोथ।
0: स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव परफॉर्मेंस?
1: बोथ।
0: द श्यामा द फूल्स?
1: बोथ।
0: अपना फेवरेट सॉन्ग?
2: बहुत सारे, बहुत डिफिकल्ट।
0: एक बताना पड़ेगा,
2: ये बहुत डिफिकल्ट।
0: अपना अपना एक बता दो।
2: ये पॉसिबल ही नहीं है तो।
0: ओके ठीक है, स्किप करते हैं। एक आर्टिस्ट जिसके साथ आप अपना कोलैबोरेशन करना चाहते हैं?
1: टेलर स्विफ्ट एंड सोनू निगम।
0: वाओ, एक टेलर स्विफ्ट और एक सोनू निगम, गुड। म्यूजिक के बिना अगर लाइफ होती तो कैसी होती?
1: फिर तो लाइफ में
2: लाइफ ही नहीं है।
0: ओ माय गॉड, बहुत डीप दे दिया है तुमने आंसर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे आप फ्यूचर में जरूर सीखना चाहते हैं?
1: वायलिन फॉर श्योर।
0: दोनों?
1: सितार।
0: ओके नाइस, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज आपके साथ। और अब लास्ट में एक एंडिंग क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो आपकी एज के जितने भी बच्चे हैं या टीनेजर जो भी कह लो, जो हमारा ये शो भी सुन रहे हैं, बहुत से इसमें ऐसे होंगे जो आपकी एज के आज सुन रहे होंगे बच्चे ये शो, तो आप उन्हें अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे आगे फ्यूचर में बनने की, जिन्हें कभी कभी मौका भी नहीं मिलता, बट आप उन्हें किस तरीके से गाइड करना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे?
2: आई वुड जस्ट से दैट जस्ट डू इट, इट्स नाउ और नेवर। क्योंकि अगर हम ये सब सीखने के लिए बड़े होने तक का वेट करते तो शायद अभी हम यहाँ तक भी ना होते।
0: एग्जैक्टली,
1: लाइक अपना पैशन हमेशा फॉलो करो एंड जस्ट नेवर गिव अप।
0: वाओ, बहुत ही अमेजिंग बात आपने बोली है, इतने छोटे हो लेकिन बातें आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे लिसनर्स को। ओके, अब रैपिड फायर राउंड के बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी कुछ हैं रिसेंटली जो आपके फैंस को सुनने को मिलेंगे, हमको सुनने को मिल सकते हैं?
1: तो अभी फूल्स में हमारा एक गाना रिलीज होने वाला है, होपलेस, जो कि मैंने 2 साल पहले लिखा था एंड इट्स रियली गुड, बहुत बहुत मजा आएगा उसको सुनने में।
2: 30 अगस्त को रिलीज हो रहा है।
0: वाओ, हम प्रे करते हैं बहुत ही उसे भी खूब लाइक्स, खूब व्यूज मिले आपके सॉन्ग को। बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ है। और अब एंड में आप कौन सा गाना हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहोगे?
1: सो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड टॉपिक। कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था,

0: Maybe syndicate, yeah, without a logic. Oh, topic, God, topic. Will it ever be iconic? Topic.
1: वाओ, इतने मज़ेदार गाने कैसे बना लेते हो आप लोग. सो थैंक यू सो मच हमसिन एंड स्माही. आज आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो में आके बहुत ही चार चांद लगाए. थैंक यू सो मच. और हमारी बेस्ट विशेज हमेशा आपके साथ रहेंगी. और लिसनर्स, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. और अगले हफ्ते फिर से ऐसे ही दिलचस्प मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। एंड राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइफ। नाउ दिस शो इज रियली स्पेशल, रीजन बीइंग कि यहाँ पर हर बार हमारे साथ एक एक्सपर्ट होते हैं जिनसे हम उनके डोमेन की बात करते हैं। एंड वी ट्राई टू मेक श्योर कि जब तक हमारा शो खत्म हो तब तक आपके पास कुछ एक स्किल सेट पहुंच चुका हो। आज हमारे साथ है मिस्टर पवन। पवन का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। पवन इज अ बैंकर, एट द सेम टाइम ही इज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। सो वी गोना टॉक अबाउट बैंकिंग पार्ट एंड कॉन्टेंट क्रिएशन पार्ट एंड फिटनेस पार्ट। तो ये तीन हिस्सों में हमारा शो आज का रहने वाला है। कोशिश करेंगे यहाँ पर आपको ये बता पाएं कि एग्जैक्टली जो बबल हमारे सामने है कि बैंक की लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसको डिकोड कर पाएं। एट द सेम टाइम कंटेंट की दुनिया की भी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पवन भाई, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार, वेलकम।
1: पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को जो आपको नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, क्या करते हैं।
2: मेरा नाम पवन है और मैं एक बैंकर हूँ। जैसे कि आज हम देख रहे हैं अपने समाज में या फिर अपने आसपास एनवायरनमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहाँ सभी देखते हैं हमारे आसपास के जो हमारे कलीग हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको हम मोस्टली देखते हैं कि थोड़ा अनफिट हैं और लोगों के अंदर भी फिटनेस के रिगार्डिंग जागरूकता थोड़ी सी कम है। मैं एक बैंकर हूँ और मुझे बैंक में रहते सर्विस को मेरे 10 से 12 साल हो चुके हैं। तो मैं देखता हूं कि जो रिटायरमेंट में मैंने काफ़ी स्टाफ को देख लिया है और रिटायरमेंट में जब मैं उनको देखता हूं कि वो रिटायरमेंट के समय वो कुछ नहीं लेके जाते हैं, उनकी हेल्थ जो है बिल्कुल एक नेगेटिव हेल्थ होती है। मोस्टली हेल्थ उनके चश्मे लगे रहते हैं, हेल्थ जो है उनका शुगर हाई रहता है, किसी का थायराइड रहता है, क्योंकि उसका एक मेन रीज़न ये है क्योंकि वो अपने फिटनेस को, बॉडी को टाइम नहीं दे पाते। दिन का 9 to 5 की जॉब, उसके बाद शाम को फैमिली, फैमिली के बाद फिर सुबह अपना जॉब, मतलब बैंक का बैंकर है जो मोस्टली स्ट्रगल है थोड़ा सा लाइफ में, लेकिन अपने फिटनेस में लाइफ में बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता है। मेरा मोटो ये है कि जितनी भी हमारे यूथ हैं या फिर एल्डर्स हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने भी हैं जो रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, वो सभी अपना हेल्थ में थोड़ा ध्यान लगाएं। जो जिम नहीं जा सकते हैं वो रनिंग करें, घर के अंदर अपना कार्डियो सेक्शन कर सकते हैं, अच्छी डाइट लें, ऑफिस में रह के या फिर स्टूडेंट भी हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो अपना एक छोटे से स्नैक्स वगैरह आइटम बना लें हेल्थी फूड के, जो अपने टाइम टू टाइम अपना वेरी करते रहें, अपना ईट लें, तो ताकि बॉडी के लिए प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स एंड जो भी न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए होते हैं वो सारे सप्लीमेंट भी की जरूरत पड़ती है, तो अपना बीच बीच में लेते रहें जिससे कि हेल्थ जो है इंसान अपने फिट रह सके। और फिटनेस एक छोटी चीज़ नहीं है कि आज हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कल मिल जाएगी। फिटनेस एक बहुत लंबी जर्नी है जिसे अचीव करने के लिए हमें रोज़ छोटा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास जो है हमें अभी रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जिस समय हम रिटायरमेंट पे होंगे, जैसे हम बैंकर्स हैं या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, सभी बैंक में होते हैं या फिर डिपार्टमेंट में होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, सीनियर सिटीजन भी होते हैं। अब स्टूडेंट हैं आज के टाइम पे, हम देखते हैं बच्चे ऐसे ही खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, हेल्थी चीज़ कुछ नहीं खाते, कोक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें हैं। मेरा तो ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को लोग अवॉइड करें, थोड़ा सा कम करें और अपना खान पान जो है अच्छा रखें। अगर आदमी फिटनेस पे नहीं ध्यान दे पाता है, कम से कम अपना अच्छे फूड पे ध्यान लगाए। ये इनका रिजल्ट तो है, इन फ्यूचर जब आप पहुंचोगे अपने एज पे, 50-60 पे पहुंचोगे, तब आपको ये फील होगा कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। और हमारा कहना ये है, हम भारत से हैं तो हमारे भारत की पहली कहावत यह है कि पहला सुख जो है निरोगी का आया है। अगर सुख रहना है जीवन में तो सबसे पहले आदमी को अपना शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए। अगर खुद का शरीर स्वस्थ है तो ही हम जीवन में आगे कुछ और करने का प्लान करते हैं। हम स्वस्थ हैं तो अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, हम स्वस्थ हैं तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने स्टाफ को स्वस्थ रख सकते हैं। और अच्छे खाना खाते हैं तो साथ वाला पर्सन भी अच्छा ही खाएगा आपको देख करके, क्योंकि आदमी जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, आसपास का माहौल जैसे ही होता है। अगर साथ में कुछ हमारी संगत खराब होगी तो हम संगत खराब ही सीखेगा, अगर हम अच्छा खाएंगे तो साथ वाला भी अच्छा ही खाएगा, अच्छा खाएगा तो उसकी अच्छी स्वस्थ रहेगी, अच्छी स्वस्थ रहेगी तो वो अपनी फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान लगाएगा कि सोचेगा व्यक्ति की अपनी फिटनेस को शारीरिक।
3: सो बेसिकली आप फिटनेस को प्रमोट करते हो एंड आप ये चाहते हो कि लोग हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें।
2: जी जी।
3: और आप एक बैंकर हैं। ऑलराइट, सो अमेजिंग। पवन भाई ने बताया यहाँ पर कि किस तरीके से उनका जो थॉट प्रोसेस है वो फिटनेस को कैसे प्रमोट करते हैं एंड द वे हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। रीजन बीइंग कि ही इज करेक्ट किया, उनकी आंखों के सामने जब लोग रिटायर होकर जाते हैं तो वो फिट नहीं होते हैं एंड ही सी इट एज इफ कि आप अपने ओल्ड एज में एग्जैक्टली आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा फिटनेस की जरूरत होती है एंड एट दैट टाइम यू आर नॉट बीइंग फिट, दैट इज गोना अफेक्ट योर लाइफ। वी गोना टॉक अबाउट हाउ इज द लाइफ ऑफ अ बैंकर, बट उसके लिए हम बात करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो फिलहाल मजा लीजिए इन गानों का और जुड़ रही है हमारे साथ, क्योंकि वक्त है म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। हमारे साथ यहां पर आज के जो मेहमान हैं वो है मिस्टर पवन। और अभी तक हमने जाना पवन के बारे में, पवन भाई ने बताया कि एग्जैक्टली वो फिटनेस को प्रमोट करते हैं बीइंग अ बैंकर। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पवन जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि बैंकर की लाइफ कैसी होती है? रीजन बीइंग कि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बैंकिंग एक ड्रीम जॉब होती है, तो मैं जानना चाहूंगा आपके शब्दों में कि एक बैंक की जिंदगी, एक बैंकर की जिंदगी कैसी होती है, कैसा होता है बैंक का माहौल?
1: बैंक की जॉब 9 to 5 की बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है, कोई बुरी जॉब नहीं है। लेकिन आज के इस टाइम में देख के, प्राइवेटाइजेशन को देख के, और इतने सारे बैंक हैं, कंपटीशन इतना है जॉब में कि स्ट्रगल हो गई है लाइफ। अब जो बैंकर्स की लाइफ है 9 to 5 नहीं, अब बैंकर्स जो है 8-8 बजे तक भी बैंक में जॉब करता है, और उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है वैसे। लेकिन ये सब जगह नहीं है, आदमी अपना काम को अगर इंजॉय से करे तो बैंकर जो है अच्छे से अपनी जॉब को कर सकता है, 9 to 5 भी कर सकता है अपने वर्कलोड को। बैंक में लोगों का ड्रीम रहता है, जो स्टूडेंट होते हैं अपना 12th पास करते हैं, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करते हैं और IBPS का एग्ज़ाम देके अपना बैंकर सिलेक्ट करके बैंक में लग सकते हैं, जिसकी अपना ड्रीम रहता है बैंकर्स की जॉब। बैंक में अलग अलग पोस्टेड हैं, सबकी पोस्ट का अलग अलग गवर्नमेंट पे स्केल है, सबका अलग अलग अपना फैसिलिटी है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अलग अलग पावर हैं, वो उसी हिसाब से उसी लिमिट में अपना काम करता है। स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि बैंकर्स की जो जॉब है वो अब गवर्नमेंट जॉब है। जैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो फेस ये करना होता है कि हमको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र या फिर अंटर स्टेट ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसमें हमें ये फेस करना पड़ता है कि हम अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों को, माता पिता को टाइम नहीं दे पाते, और बाहर जाने के बाद हमको बहुत सारे खाने की समस्या होती है। जो चीज़ हमारा रेगुलर फूड होता है, हमारा लोकल फूड, वो हमें वहाँ नहीं मिलता, या फिर हमें रहने की समस्या होती है, हमें देखना पड़ता है यहाँ हमारा एनवायरनमेंट है या नहीं है। और सबसे ज़्यादा समस्या तो होती है अपनी फैमिली देने के लिए, या बैंकर्स जो हैं जिनका भार ट्रांसफ़र हो जाता है उनको घर आने के लिए दूर, जैसे फ्राइडे होता है तो सैटरडे को छुट्टी लेकर के अपने घर आते हैं, और संडे को फिर मंडे को फिर सुबह बैंकर जाते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रगल है बैंकर्स के लिए कि लाइफ में वो जॉब भी करना है और दूर रहता है, जबकि मेरा मानना ये है कि कोई भी बैंकर है, सभी बैंक को उनको अपने ही सर्कल में ट्रांसफ़र हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी वर्कर कहीं पे काम करता है, वो अपने काम को अपनी जगह पे ज़्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि वो फ्रेश मूड में रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि कोई भी

0: आदमी सुबह सुबह भागता है, भाग के अपने जॉब पे जाएगा, सीट संभालेगा, आधे से ज़्यादा उसको अपना माइंड फ्रेश करने में लगा रहता है कि मैं अब सीट संभालूंगा, फिर शाम को उसे ये लगा रहता है कि मैं अपने घर जाऊंगा अभी। तो थोड़ा स्ट्रगल है इस चीज़ में, बैंकर्स में।
1: सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बैंकर की लाइफ बहुत हैक्टिक होती है, और जो ड्रीम होता है आपका कि आपको बैंकिंग की लाइफ चाहिए, उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए, लेकिन आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी ज़रूर पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वहाँ पर जाकर के बहुत सारा बिजी आपकी लाइफ हो जाती है, हैक्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र भी आपका कहीं और हो सकता है, परिवार से भी आप दूर हो सकते हैं। उन तमाम चैलेंजेस के लिए आपको तैयार होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सच में बैंक की लाइफ ऐसी होती है कि 9 बजे गए 5 बजे छुट्टी हो गई, या उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता है, अमूमन जो नहीं दिखाई देती हैं।
0: आप सही कह रहे हैं कि 9 to 5 जो है बैंक की जॉब है, वैसे वर्किंग आवर सभी बैंकों का 10 बजे स्टार्ट होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर PSU बैंक हो। बट डिपेंड करता है कि हमारा काम करने की जो है क्वालिटी कैसी है, हमारी अपनी एफिशिएंसी हम कितना दे सकते हैं अपने वर्क में, कि हमें अपना काम कितने बजे तक ख़त्म करना है। अपना स्टाफ में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए आपस में, सब कोलैब करके। किसी भी आप ब्रांच में जाके देखेंगे, अलग अलग बैंकों में जाके देखेंगे कि रश इतना ज़्यादा रहता है कि किसी काउंटर पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, किसी पे बहुत भीड़ कम है। अगर ये सब मिल के बैंकर्स एक दूसरा एम्प्लॉय सपोर्ट करता है, तो सब 9 to 5 में अपना घर जा सकता है, 6 बजे भी जा सकता है ताकि आदमी अपना घर पहुँच जाए। लेकिन अब वो नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादातर वर्कलोड इतना ज़्यादा है, कस्टमर डीलिंग ज़्यादा है बैंकर्स में, तो थोड़ा सा जो बैंक का एम्प्लॉई है वो टाइमली फ्री नहीं हो पाता है वैसे। लेकिन मिल के करे और हंसते रहे, अपना खुल के काम करे, तो आदमी सारा काम आता है तो फ्री हो सकता है वैसे।
1: सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ यू मैनेज योर वर्क, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो बहुत सुंदर बात बोली पवन भाई ने यहाँ पर। टेक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, एंड वी गोना टैप इन द कंटेंट क्रिएशन पार्ट की एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएशन कैसा चल रहा है उनका, कैसे किया जाता है, उस एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इनके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उस एक पर्टिकुलर पहलू को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। बट कहीं जाइएगा मत, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वंस अगेन आई एम होपिंग आपको मजा आ रहा होगा. अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए पवन के लिए तो 8010781078 इस कॉन्टैक्ट नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं. फिलहाल यहाँ पर शो को आगे लेकर के चलेंगे. मैं हूँ सागर, शो चल रहा है यहाँ पर वॉइस ऑफ यूथ. और एक बैंकर की जुबानी हम ये तमाम चीज़ें समझ रहे हैं. अभी तक हमने जानू की लाइफ के बारे में, अभी तक हमने समझा कि एक्जैक्टली लाइफस्टाइल कैसा होता है एक बैंकर की लाइफ का, एक्जैक्टली डेली का जो दिन होता है काम कैसे रैप होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली एक्जैक्टली इनसाइट्स की. अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कि एक बैंक में भी BTS होता है बिहाइंड द सीन्स, जो हमें कई बार नहीं दिखाई देता है. अब शो को आगे बढ़ाएंगे और मैं बात करना चाहूँगा कंटेंट क्रिएशन की. पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि कंटेंट क्रिएशन आपने क्यों स्टार्ट किया, आपको क्यों लगा कि ये करना चाहिए?
1: मैंने बैंक जो है अपना 2015 में ज्वाइन किया था. उस समय मेरा ट्रांसफ़र घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर था, तो मैं जो ट्रैवल करता था रोज़ ट्रेन से, बस से या फिर ऐसे करता था. तो सुबह 7 बजे निकल के 2 घंटे में ऑफिस पहुंच गए 9 बजे, उसके बाद अपना वर्किंग आवर स्टार्ट करके शाम को वहां से 5-6 बजे फ्री होके फिर 2 घंटे रात को घर आके, तो 8 बजे घर आने के बाद ये लाइफ स्ट्रगल चलता ही रहता था. तो लगभग 5-6 महीने के बाद मेरे को ये फील हुआ कि इस तरीके से तो मैं अभी यूथ हूँ, अगर मैं यंग हूँ, ये अगर ऐसा चलता रहेगा तो मेरी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी. और हम मैं देख ही रहा हूँ कि यहाँ मोस्टली हैं बैंकर्स में, हम आसपास में भी देखते हैं सब फिट नहीं है. फिर मेरे को लगा कि हमें फ़िटनेस पर थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए. उसके बाद फिर मैंने अपना फ़िटनेस में थोड़ा लाइन लगाई. उसमें सुबह फिर मैं अपना उठ के जहाँ पे मेरे को ऑटो लेना पड़ता था, मैं वहाँ पे पहले अपना पैदल वॉक करना स्टार्ट करा ऑटो की जगह पे, ताकि उस समय मेरी एक्सरसाइज हो जाती थी और मेरा टाइम भी थोड़ा अच्छा रहता था. शाम को अगर ऑफिस में कभी लेट होते थे तो शाम को ऑफिस में बैग रख के अपना आसपास की मैंने कोई जिम ज्वाइन करके वहाँ पे अपना वर्कआउट स्टार्ट किया. और फिटनेस को फिर मैंने तब से ही अपना एक ये ले लिया कि ये फिटनेस ये ड्रीम नहीं है, एक एम है जो कि मुझे आगे तक मुझे हमेशा ही सुख ही देगा. मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप फिट रहोगे तो ही आप आगे की लाइफ और अच्छी जी पाओगे. बैंकर्स में फिर होने के बाद फिर मैं जगह जगह ट्रांसफ़र हुआ, जगह जगह देखा, कहीं हमें कुछ चेंजेस मिलते हैं, कभी कुछ फूड की चेंजेस, कभी ट्रैवल की चेंजेस, लेकिन फिटनेस को मैंने हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखा. मैंने ऑल टाइम सुबह ही रनिंग के रख के शाम को जिम रखी. जिम आदमी को वर्कआउट करना चाहिए और रनिंग में आदमी को हर व्यक्ति को अपनी रनिंग जब भी टाइम मिले, अगर वर्कआउट नहीं कर पाता है वो अपनी रनिंग रखे.
0: तो आपने बेसिकली फिट रहने के लिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया. इंस्टाग्राम पर ग्रो कैसे किया जाता है?
1: इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए कंटेंट आपका जो है फिटनेस के रिलेटेड, आप रेगुलर उसमें अपना पोस्ट डालें. रेगुलर आप अपना जो भी वर्कआउट शेड्यूल है, मैं अपना रेगुलर वर्कआउट शेड्यूल डालता हूँ, उसमें जो भी अपना डाइट प्लान है मैं अपना वो सब उसमें डालता हूँ. कंटेंट ये है कि आप लोगों को ये गाइड कर सकते हैं आपको किस तरीके से अपना डाइट प्लान जो है वो रख रहे हैं, आप अपना क्या खा रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं रनिंग का, तो वो सब अपना कंटेंट जो बना के अपना उसमें डाल लें इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर या फिर आप यूट्यूब चैनल जो भी है उसमें.
0: बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको कंटेंट बनाना है, शुरू करना है, वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कंटेंट की?
1: अगर किसी भी फ्रेंड्स को अपने कंटेंट स्टार्ट करना है, सबसे पहले वो सिलेक्ट कर ले कि उसको करना क्या है. अगर फिटनेस में सिर्फ रनिंग ही करनी है तो अपना रनिंग का स्टार्ट धीरे धीरे से कर सकता है, अपने अपनी जो भी शेड्यूल है उसका, डेली का, सुबह मॉर्निंग में जगने का और नाइट में.

0: कितने बजे वो फ्री होता है स्लीप का। वैसे अपने फिटनेस को लेके लिए सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है कि यही है इसका मोटो लोगों तो, कि ईट रिपीट एंड स्लीप, अपना अच्छा खाना और उसको रिलैक्स करना और अच्छी नींद लेना फिट रहने के लिए, तो यही है। कंटेंट स्टार्ट करने के लिए सभी फ्रेंड्स को सबसे पहले अपना वर्कआउट, जो भी शेड्यूल है अपने वर्कआउट को अपना ठीक रखे, अपना रेगुलर पोस्ट डाले, जो भी वर्कआउट कर रहा है अपनी कंसिस्टेंसी रखे और रेगुलर पोस्ट रखे, अवॉइड करे अल्कोहल, अवॉइड करे जंक फूड और अवॉइड करे बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे अवॉइड कर सकते हैं।
1: तो बेसिकली अवॉइड ऑल दोज थिंग्स जो आपकी बॉडी को नेगेटिव अफेक्ट करती हैं, एंड द थिंग्स दैट एक्चुअली पुट योर लाइफ एट स्टेक। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, जो भी आप करना चाहते हैं, बीट फिटनेस, कॉमेडी, टेक या जो भी आपका डोमेन हो सकता है, इस भी इशू आप पकड़ना चाहते हैं, जस्ट गेट स्टार्टेड। सो दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस। मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं पवन भाई। कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप अपने मन में लेकर आए हो तो प्लीज़ फील फ्री।
0: सबसे मेन चीज़ तो यह है, मेरा तो ड्रीम यह है इंडिया के अंदर हो या इंडिया से बाहर, सब लोग किसी भी एज से लेकर के अब अवेज तक अपने हेल्थ को फिट रखे। फिट का मतलब ये नहीं है कि हमने आज वर्कआउट कर लिया, शाम को सो गए, हम फिट हो गए। एक लंबी जर्नी है, सबको अपने अच्छे खान पान से लेके, अपना अच्छा सोने से लेके, अपनी शारीरिक कसरत, घर के अंदर भी कोई काम भी एक फिटनेस ही है। लेकिन एक रेगुलर रूटीन में जो अपने फिटनेस को, बॉडी को, अपने मानसिक मेंटलिटी को फिट रखता है, वो फिट रखे, वो ज़्यादा ठीक है। मेरा तो यही है, मैं सब में और आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा सर।
1: थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आज हमने बात करी एक बैंकर से और एक कंटेंट क्रिएटर से। इन्होंने हमें बताया कि एक्जैक्टली बैंकिंग की लाइफ कैसी होती है, हमें बताया कि कंटेंट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, बताया एक्जैक्टली कि कंटेंट को ग्रो कैसे करना होता है। एट द सेम टाइम फिटनेस को बहुत प्रमोट करते हैं। आपने अभी तक ये अगर पूरा संवाद सुना है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि थ्रू आउट ऑल द क्वेश्चन, ऑल द आंसर्स, ये फिटनेस को ही टॉप पे रख के बात कर रहे थे। सो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ टू लेट अस नो कि एग्जैक्टली फिटनेस आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, दैट इज़ द मैंडेटरी थिंग जो आपको करनी ही चाहिए एंड दैट इज नॉट नेगोशिएबल, जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। ऑल राइट, ऑन दिस नोट वक्त है अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा, आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों तक पहुँच पाए होंगे। फिलहाल इसी नोट पर इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच पवन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, इट मीन्स अ लॉट टू अस।
0: थैंक यू सर।
1: ऑल राइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर। साइन आउट।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, ककड़ी के बारे में आज आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं मैं किसी भी फसल की बात करता हूँ तो उसकी किस्में कौन कौन सी होनी चाहिए ये जानकारी आपको ज़रूर देता हूँ। ककड़ी की जब बात आती है तो इसकी एक किस्म होती है जिसका नाम है पंजाब लॉन्ग मिलोन वन। ये किस्म 1995 में तैयार की गई थी और ये जल्दी पकने वाली किस्म है। इसकी बेलें जो हैं लंबी होती हैं, हल्के रंग का तना, पतला और लंबा फल होता है। इसकी औसतन पैदावार 86 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, लेकिन अगर दूसरे राज्यों की किस्मों की बात करें तो एक किस्म है करनाल सेलेक्शन। ये किस्म ज़्यादा मात्रा में फल पैदा करती है। इसके फल हल्के हरे रंग के और कद में लंबे और गुद्दा कुरकुरा और अच्छे स्वाद वाला होता है। इसके अलावा एक और नस्ल है जिसका नाम है अर्का शीतल। ये किस्म IIHR लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। इसके फल हरे रंग के होते हैं जो कि मध्यम आकार के होते हैं। इसका गुद्दा कुरकुरा और अच्छे स्वाद वाला होता है। 90 या 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन इस फसल को उगाने के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ककड़ी की खेती के लिए अच्छी तरह से तैयार ज़मीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हैरो से 2 या 3 बार जुताई करना ज़रूरी होता है, तब जाकर के ककड़ी की फसल बेहतरीन हो सकती है। लेकिन जब बात आती है बिजाई की तो बिजाई के बारे में भी आपको बताऊंगा और बीज के बारे में भी आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, जैसे बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए या बीज का उपचार कितना ज़रूरी होता है, ये सारी जानकारियां आपको दूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, बात हो रही है ककड़ी के बारे में, आइए बात कर लेते हैं बिजाई की या बिजाई के समय की। देखिए, बीजों की बिजाई के लिए फरवरी मार्च का महीना अनुकूल होता है, लेकिन जब बात आती है फासले की तो इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। खालियों के बीच 200 से 250 सेंटीमीटर और मेड़ों के बीच 60 से 90 सेंटीमीटर फासले का प्रयोग करें। फसल के अच्छे विकास के लिए दो बीजों को एक जगह पर ही बोएं। और अगर बीज की गहराई की बात आती है तो बीजों को 2.5 से 4 सेंटीमीटर यानी कि इतनी गहराई में बोना चाहिए। लेकिन बिजाई का अपना एक ढंग भी होता है। बीजों को बेड या मेड़ पर सीधे बोया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो बीज होते हैं उसमें बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं। और सवाल एक ये है कि बीज की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रति एकड़ में 1 किलो बीज का प्रयोग करें। और उपचार की बात आती है तो मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बेनलेट या बविस्टीन 2.5 ग्राम से प्रति किलो बीजों का उपचार करें। इससे क्या होगा, बीज को जो रोग लगने वाले थे वो रोग लगेंगे नहीं, और जब बीज को कोई रोग नहीं लगेगा तो आपकी फसल बेहतर होगी, स्वस्थ होगी और इसका दाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। करते हैं कुछ और भी बातें, करते हैं ककड़ी के बारे में, जैसे खाद कैसे लगाएं या खाद कौन सी होनी चाहिए, खरपतवार का कैसे ध्यान रखें, ये सारी बातें भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: लेकिन वो बात।
1: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। तो आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद की। अगर आप ककड़ी की फसल अच्छी तरह से उगाना चाहते हैं तो आपको नर्सरी बेड से 15 सेंटीमीटर दूरी पर फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन का 1/3 भाग बिजाई के समय डालें। बाकी की बची हुई नाइट्रोजन बिजाई से 1 महीने के बाद में डालें। अब बात आती है खरपतवार की, क्योंकि जो खरपतवार होती है ना, वो फसल को एकदम बर्बाद कर देती है। तो इसके लिए क्या करना है, नदीनों की रोकथाम के लिए बेलों के फैलने से पहले इनकी ऊपरी परत की कसी से हल्की गुड़ाई कर दें। इससे जो खरपतवार है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जब बात सिंचाई की आती है तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, बिजाई के बाद तुरंत सिंचाई करना आवश्यक है और गर्मियों में 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। और बारिश की बात करें तो बारिश के मौसम में सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें, वरना आपकी फसल पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो कि बड़े ख़तरनाक होते हैं हमारी फसल के लिए। ऐसा ही एक कीट होता है जिसका नाम है चेपा और थ्रिप्स। ये कीट पत्तों का रस चूसते हैं जिससे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। थ्रिप्स के कारण पत्ते मुड़ जाते हैं जिससे पत्ते कप के आकार के और ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। जब भी आपको इसका हमला फसल पर दिखाई दे तो थायामेथोकस्म 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की स्प्रे फसल पर कर दें। इससे ये जो कीट है चेपा और थ्रिप्स, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जो फसल है वो फसल एकदम स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, और भी कीट हैं जो कि आपकी फसल के लिए बहुत हानिकारक हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, ककड़ी के बारे में आज आपसे बात हो रही है और पीछे मैंने एक कीट का जिक्र किया था जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, चेपा और थ्रिप्स, इनके बारे में तो आपको बता दिया था। इसके अलावा एक और कीट होता है जो जाना जाता है भुंडी के नाम से। इनके कारण फूल, पत्ते और तने नष्ट हो जाते हैं। अगर इसका हमला दिखाई दे तो मेलाथियोन 2 मिलीलीटर या कार्बोरिल 4 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ये भुंडी की रोकथाम में सहायक है। इसके अलावा एक होती है मक्खी जो कहलाती है फल की मक्खी। ये ककड़ी की फसल का गंभीर कीट है। किसान भाइयों, नर मक्खी फल की बाहरी परत के नीचे अंडे देती है और उसके बाद ये छोटे कीट फल के गुद्दे को अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा फल है वो फल गलना शुरू हो जाता है और फिर गिर जाता है। अब इसका उपचार सुन लीजिए। फसल को फल की मक्खी से बचाने के लिए नीम के तेल 3.0% फोलियर स्प्रे करें। इससे इस मक्खी यानी फल की मक्खी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी कुछ बीमारियां भी हैं जैसे सफ़ेद फफूंद लग जाती है। इसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, ककड़ी की फसल के बारे में आज आपसे बहुत सारी बातें साझा कर रहा हूं, लेकिन बात चल रही थी कुछ कीटों के बारे में जो कि फसल के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जैसे सफ़ेद फफूंदी। पत्तों के ऊपरी सतह पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये जो धब्बे हैं ना किसान भाइयों, प्रभावित पौधे के मुख्य तने पर भी दिखाई देते हैं। इसके कीट पौधे को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और इनका हमला होने पर पत्ते गिरते हैं और फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। अगर इसका हमला खेत में नजर आए तो पानी में घुलनशील सल्फर 20 ग्राम को 10 लीटर पानी में डालकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार स्प्रे करें। इस तरह से इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसका नाम है एंथ्राक्नोस। ये पत्तों पर अपना हमला करती है जिसके कारण पत्ते झुलसे हुए दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बन डाइजिम 2 ग्राम से प्रति किलो बीजों का उपचार करें। अगर इसका हमला खेत में दिखाई दे तो मैन को जेब 2 ग्राम या कार्बन डाइजिम 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी फसल को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जब बात आती है फसल की कटाई की या बीज उत्पादन की, वो कैसे होना चाहिए उसके

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, ककड़ी के बारे में आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन अब समय है फसल की कटाई का। देखिए किसान भाइयों, इसके जो फल है ना, 60 से 70 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, और कटाई मुख्य तौर पर फल के पूरी तरह विकसित होने और नर्म होने पर ही की जाती है। कटाई मुख्य रूप से फूल निकलने के मौसम में 3 से 4 दिनों के अंतराल पर की जाती है, लेकिन जब बात आती है बीज उत्पादन की, तो इस बात को भी जरा ध्यान से सुनिएगा। ककड़ी को अन्य किस्मों जैसे वाइल्ड मेलन, खरबूजा, स्नैप मेलन, यानी इनसे 1000 मीटर के फासले पर रखें। खेत में से प्रभावित पौधों को हटा दें। जब फल पक जाएं, यानी जैसे उनका रंग बदल कर हल्का हो जाए, तब उन्हें ताजे पानी में रख कर हाथों से तोड़ें और गूदे से बीजों को अलग कर लें। बीज जो नीचे स्तर पर बैठ जाते हैं, उन्हें बीज उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, बीज उत्पादन के बारे में भी आपसे बात हो गई, फसल की कटाई कैसे की जाए ये भी बता दिया, और कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से कीट हैं जो कि हमारी फसल को नेस्तनाबूत कर देते हैं, उनसे रोकथाम कैसे की जा सकती है, ये सारी बातें विस्तार से आपको बता दी हैं। पर अब वक्त है आपसे आज्ञा लेने का। चलता हूँ और चलते चलते सभी किसान भाइयों को करता हूँ राम राम सलाम।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरलो पान चबाए, आहा।

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रतबाला, खुली जाए बंद अकल का।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आधुनिकता के दौर में ज्ञान विज्ञान के विकास से समाज और व्यक्ति में कई भौतिक एवं वैचारिक प्रकट हुए हैं। इन परिवर्तनों से उत्पन्न मानवीय संवेदना से 8वें दशक की प्रमुख रचनाकार यानी मधु कांकरिया का साहित्य जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और संघर्षों का भी जिक्र होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में। उनका अध्ययन, चिंतन और लेखन न केवल साहित्य, संस्कृति और शिक्षा तक व्यापक है, बल्कि आज की राजनीति, मीडिया और समाज व्यवस्था के सूक्ष्मतम अंतर्ध्वनियां भी उनके मानस पटल में पूरी तरह से रची बसी हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, संस्मरण यानी कि इस तरह के साहित्यिक रूपों में अपनी अनुभूति की प्रामाणिकता और बोध प्रवणता को अभिव्यक्त किया है। अब तक उनके द्वारा रचित चारों कहानी संग्रहों बेताते हुए 2004 और अंत में ईशु 2008, युद्ध और बुद्ध 2014, जलकुंभी 2020 में भाषा, धर्म, रूढ़ी, दरिद्रता, उजड़ते गांव, स्त्री समस्या, नक्सलवाद की समस्या, बुद्धिजीवी वर्ग, पीढ़ियों के बीच के अंतर यानी कि इनसे जुड़े अनेक ज्वलंत सवालों को प्रकट किया है। ये कहानियां आज के समाज की प्रतिच्छवि हैं और इनसे झांकती आम आदमी के मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता मधु कांकरिया की पहचान है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, साहित्य के विकास और समाज की पहचान को समझने में युग बोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक साहित्यिक और दार्शनिक अवधारणा है जो साहित्यकार के समय और समाज की समझ को व्यक्त करती है और जिससे रचना में उस समय की संवेदनाओं, समस्याओं और विचारधाराओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। युग और बोध शब्दों के योग से बना युग बोध एक यौगिक शब्द है जिसका तात्पर्य किसी युग के प्रति हमारी समझ, दृष्टिकोण यानी कि इससे जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक व्यापक शब्द है जो विशेष समय अवधि में घटित सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक, व्यवसायिक घटनाओं को यथार्थ रूप में केंद्रीभूत रखता है। युगबोध वास्तविकता से परिचित कराता है। इसका ना वर्तमान के साथ कोई संबंध है और ना भविष्य से कोई ताल्लुक है। ये समय सामायिकता पर जोर देता है। एक ही युग में प्रत्येक व्यक्तियों का चेतन अलग अलग होने के कारण हर किसी की युगबोध को लेकर धारणा अलग अलग हो सकती है और उसका प्रभाव भी अलग अलग पाया जा सकता है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में, जो एक बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। उनका कहना है, युगबोध को किसी एक विशेष परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय के साथ साथ उसका स्वरूप बदल जाता है। समाज का संपूर्ण रूप साहित्य में समाहित है और युगबोध का पूर्ण रूप रचना में देखने को मिलता है। अतएव युगीन परिवेश को रेखांकित करने के लिए एक रचनाकार को संपूर्ण युग का ज्ञान होना चाहिए। महान कलाकार अपने युग का पूर्ण प्रतिनिधि, पूर्ण व्याख्याता होता है। उसकी वाणी में युग के सारे संघर्ष, सारे राग विराग, समस्त प्रश्न और संदेह मूर्तिमान होकर बोलते या ध्वनित होते हैं। एक समय सापेक्ष होने के कारण कुछ विशेष समय अवधि तक युग बोध का महत्व तेजी से बढ़ता है, लेकिन परवर्ती युग में उसे महत्व मिल भी सकता है और नहीं भी। इसके अलावा वो और क्या कहना चाहती हैं अपने शब्दों के माध्यम से आपके साथ साझा जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, रचनाकार मधु कांकरिया का कहना है कि किसी भी रचना को पूरी तरह समझने, उसका मूल्यांकन करने के लिए वो रचना कब लिखी गई थी, उस समय का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश किस तरह का था, यानी कि इन सारी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसे युग बोध कहा जाता है। युग बोध को सिर्फ आधुनिकता, समसामायिकता ही प्रभावित नहीं करती, आधुनिकता के साथ साथ इतिहास, संस्कृति, परंपरा भी उसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक युग के पीछे उसकी पृष्ठभूमि रहती है। इतिहास के किसी भी युग का साहित्य उठाकर देख लिया जाए तो उस युग की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण अवश्य देखने को मिलता है, जिसकी भावधारा मनुष्य चेतना, समाज और उसके परिवेश से बंधी हुई है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मधु कांकरिया का कहना है कि साहित्य जीवन का दूसरा नाम है। साहित्य समाज की चेतना में सांस लेता है, समाज का वो परिधान है जिसमें समाज के सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद, आकर्षक विकर्षक यानी कि सारे ताने बाने बुने जाते हैं। उसमें मानव जाति की आत्मा का स्पंदन होता है। और दूसरी बात, समाज के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, और साहित्य से परिचित हुए बिना हम समाज को समझ नहीं पाते हैं। साहित्य सृजन के लिए जो भाव विचार चाहिए वो सब समाज से ही मिलते हैं, जिसे युग बोध कहा जाता है। मानव जीवन के तमाम पहलुओं को आत्मसात करके उसे अभिव्यक्त करने का काम साहित्य के द्वारा ही होता है, ऐसा कहना है रचनाकार मधु कांकरिया का। लेकिन इसके अलावा वो कुछ और भी कहना चाहती हैं। उन सारी बातों को आपके साथ साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था मधु कांकरिया के बारे में, उनका कहना है कि मानव जीवन के तमाम पहलुओं को आत्मसात करके उसे अभिव्यक्त करने का काम साहित्य द्वारा होता है। इसी के साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि युग बोध साहित्य का धर्म है। बोध एक आंतरिक प्रक्रिया होने के कारण किसी विषय, परिवेश, परिस्थिति के प्रति हमारी धारणा का निर्माण करता है। बोध हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय के मुताबिक ये बदलता रहता है। अपनी बोध शक्ति के मुताबिक हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। ये एक प्रकार का अनुभव है जो हमें अपने जीवन को सहज करने के लिए सहायक होता है। हर एक देश का, समाज का अपना स्वतंत्र बोध होता है और युग बदलने के साथ साथ उसका बोध भी बदलता रहता है, जिसका रूप साहित्य में देखने को मिलता है। जिस प्रकार व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक उसी तरह साहित्य और युग बोध भी अनुपूरक हैं। एक के बिना अन्य की कल्पना असंभव है, ऐसा कहना है रचनाकार मधु कांकरिया का। लेकिन दोस्तों, मधु कांकरिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें थीं, आपके साथ साझा कर सकता था, पर समय इजाजत नहीं देता। इसलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में इन्हीं के बारे में आपसे और भी बातें साझा करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश। हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ, हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, और इसी के साथ लेकर आती हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत से गाने भी। और यहाँ पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, हम सबसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, कभी हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी कभी हमारा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देते हैं। मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्नेहा, और आज फिर से आ गई हूँ लेकर एक और ऐसा टॉपिक जो शायद हम सबकी डेली लाइफ का हिस्सा भी है। जी हाँ, लेकिन इसके बारे में हम उतना सीरियसली लेते ही नहीं है, हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं है। दोस्तों, एक सवाल आपसे कि आज आपने क्या खाया? हो सकता है कि शायद आपने ब्रेड या फिर पोहा खाया हो, या लंच में दाल चावल या फिर रोटी सब्जी खाई हो, और शाम को चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स तो हो ही जाते हैं, और अगर बाहर निकल गए तो स्ट्रीट फूड का टेम्पटेशन तो अलग ही लेवल का होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो फूड हम खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो सेफ हैं हमारे लिए या फिर नहीं, और पैकेट्स पर जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है क्या हम उसे कभी प्रॉपरली चेक करते हैं। बस इसी कनेक्शन से आज का हमारा टॉपिक जो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए वो है FSSAI। जी हाँ, आपने FSSAI का नाम ज़रूर सुना होगा। हम सब कहते हैं कि जो भी हम पैकेट बाहर से ख़रीदते हैं उस पर हम एक बार चेक करते हैं कि उस पर FSSAI का मार्क है या नहीं। पैकेज फूड के पैकेट पर एक लोगो आता है और लाइसेंस नंबर भी देखा होगा आपने, लेकिन क्या आपको एक्चुअली पता है कि FSSAI क्या करता है, ये फूड इंडस्ट्री के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और एक कंज्यूमर के रूप में इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, सिंपल वर्ड्स में समझे तो इसका मेन फोकस है कि जो हम फूड हम तक जो पहुंच रहा है वो सेफली और क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हमारे पास आए, और यहीं से आज की कॉन्वर्जेशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि फूड सेफ्टी सिर्फ रेस्टोरेंट्स या फिर कहीं तो फूड कंपनीज या फिर शॉपकीपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज कंज्यूमर हमें भी ये देखना चाहिए, हमें भी इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये ट्रेंडिंग टॉपिक जिसमें हम FSSAI को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही नहीं बल्कि अपनी डेली फूड चॉइस के कनेक्शन से भी समझने वाले हैं। पैकेट पर FSSAI नंबर का मतलब क्या होता है, फूड लेवल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, स्ट्रीट फूड खाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है हमें, और हम किसी फूड प्रोडक्ट को लेकर कंप्लेंट कर सकते हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है। जी हाँ, और आपको क्या करना है, आपको ना जुड़ जाना है हमारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। और आपको अभी मैं सुनाने वाली हूँ बहुत ही प्यार सा गाना, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर बातों के साथ में प्यारे प्यार से गाने भी आते हैं, तो सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। Feel good, feel like.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हूँ मैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। जी हाँ, आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है FSSAI। जी हाँ, हम इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आज हम फूड सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की कि FSSAI क्या है और फूड सेफ्टी में इसका क्या रोल होता है, लेकिन अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है कि जब हम मार्केट से कोई पैकेज्ड फूड खरीदते हैं तो क्या हम पैकेट को सिर्फ फ्रंट साइड से देख कर ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें यही चाहिए? यूजुअली क्या होता है कि पैकेट देखा, ब्रांड पसंद आया, फ्लेवर देखा, प्राइस देखा और बस शॉपिंग बकेट में वो चला गया। लेकिन दोस्तों, फूड पैकेट के फ्रंट के साथ साथ उसकी बैक साइड भी इम्पॉर्टेंट होती है। जी हाँ, क्योंकि वहीं पर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें प्रोडक्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि FSSAI लाइसेंस नंबर की। जी हाँ, पैकेज जो फूड होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उस पर FSSAI से रिलेटेड लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसका पर्पस ये बताना होता है कि फूड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर है। उसके बाद देखिए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है, ये बहुत यूजफुल होती है कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें यूज हो रही है, ये इंग्रेडिएंट्स लिस्ट का पता चलता है हमें इससे। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर आती है डेट इंफॉर्मेशन। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग डिटेल्स और बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी जैसे इंफॉर्मेशन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैकेट देखकर प्रोडक्ट फ्रेश अज्यूम कर लेना ये सही हैबिट नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वो है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, जिसमें कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, शुगर, सोडियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर आप अपनी डाइट को लेकर कॉन्शियस हैं तो ये सेक्शन आपको इन्फॉर्म चॉइस लेने में हेल्प कर सकता है। और हाँ, वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन सिंबल भी चेक करना यूजफुल होता है, अगर आपकी फूड प्रेजेंस स्पेसिफिक है तो। अब छोटी सी एक चैलेंज वाली बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप सुपरमार्केट जाएं तो किसी एक पैकेज्ड फूड को उठाइए और उसकी बैक साइड को 30 सेकंड प्रॉपरली पढ़िए। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो आपने पहले कभी नोटिस ही ना की हो। दोस्तों, फूड लेवल पढ़ना कोई डिफिकल्ट काम तो नहीं है, बस थोड़ी सी हैबिट को डेवलप करना हमें पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट कंज्यूमर वो नहीं है जो अच्छा लुकिंग पैकेज देखकर उठा लेते हैं, बल्कि स्मार्ट कंज्यूमर वो होते हैं जो लेबल पढ़कर इन्फॉर्म्ड चॉइस करते हैं। तो अगली बार शॉपिंग करने वक्त फ्रंट देखिए, लेकिन डिसीजन लेने से पहले बैक पर, उसके बैक साइड के प्रिंट पर भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ, इस हफ्ते फिर से आ गए हैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, और आज बात हो रही है हमसे जुड़ी हुई। जी हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या चीजें यूज करते हैं, क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, नॉट प्रोडक्ट बट क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। फूड सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं है, क्या आप उस पर FSSAI का जो मार्क है वो चेक करते हैं, लाइसेंस नंबर चेक करते हैं या नहीं। अब तक हमने जैसे कि जाना कि FSSAI क्या है और पैकेज्ड फूड खरीदते वक्त हमें लेबल पर क्या क्या चेक करना चाहिए, लेकिन अब बात करते हैं उस फूड की जिसके लिए हम प्रोडक्ट लेबल को चेक नहीं करते, क्योंकि सामने होता है एक गर्मा गर्म प्लेट और उसकी अमेजिंग सी स्मेल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रीट फूड की, जो हम गोल गप्पे खाते हैं, मोमो खाते हैं, चाट, चाउमिन, समोसे, रोल्स। देखो ये नाम ही ऐसे ना, इन्हें सुनते ही मुंह में पानी आ गया है ना। स्ट्रीट फूड हमारी फूड कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अफोर्डेबल भी है और टेस्टी भी है, और वैरायटी तो इतनी है कि हर गली में कुछ ना कुछ नया मिल रहा होता है। लेकिन टेस्ट के साथ एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, वो है हाइजीन। जी हाँ, जब भी आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो सबसे पहले एक बार आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट नोटिस ज़रूर कीजिएगा। क्या फूड प्रॉपरली कवर्ड है, क्या वेंडर इंग्रेडिएंट्स को क्लीन और हाइजीनिक कंडीशन में रख रहा है या नहीं, क्या जो सर्व करने के लिए चीज़ें यूज़ हो रही है वो रीजनली क्लीन है या नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पानी। जी हाँ, चाट हो गया, गोलगप्पे हो गए, या फिर ड्रिंक में जो वाटर यूज होता है उसकी क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको पानी की क्वालिटी पर डाउट लग रहा है तो बेटर है कि आप उस फूड को अवॉइड करें। फिर आती है रॉ और कुक्ड फूड का हैंडलिंग। जी हाँ, अगर वेजिटेबल्स, सॉसेस या फिर कुक्ड फूड ओपन में बहुत देर तक रखा गया है तो कॉशन जरूरी है। और दोस्तों, एक चीज जो हम अक्सर देखते हैं वो है सेम ऑयल का बार बार यूज होना। जी हाँ, अगर ऑयल का कलर, स्मेल अनयूजुअल लग रहा है या फिर ऑयल बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है तो वहाँ फूड चूज करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना बेटर रहेगा आपके लिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्ट्रीट फूड खाना ही बंद कर दे, बिल्कुल नहीं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि स्ट्रीट फूड को आप इंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ। एक सिंपल रूल याद रखिए, जहाँ पर क्लीनिनेस दिखे वहाँ कॉन्फिडेंस से खाइए, जहाँ हाइजीन डाउटफुल लगे वहाँ थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार देख लीजिए उसके बाद खाइएगा। और अगर आप किसी फूड वेंडर को चूज करते हैं तो ओवरऑल क्लीनिनेस को देखिए, वेंडर का हाइजीन, फूड की स्टोरेज और उस वो जो चीज़ें यूज कर रहा है उन सबको, और उसके सराउंडिंग का एरिया सारा आप देखिए, उसके बाद जा करके वहाँ पर कुछ खाइए। क्योंकि फूड का टेस्ट तो कुछ मिनट के लिए होता है, लेकिन फूड सेफ्टी को इग्नोर करने का इम्पैक्ट ज़्यादा सीरियस हो सकता है, शायद हमारी जो हेल्थ है उस पर भी बात आ जाए। तो इसमें नेक्स्ट टाइम जब आपका मन करे ना कि प्लेट में टेस्टी सा स्ट्रीट फूड हो तो टेस्ट के साथ हाइजीन का तड़का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसे भी चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज हम बात कर रहे हैं ट्रेंडिंग तड़का में एक ऐसे टॉपिक की जो हमारी प्लेट से लेकर सोशल मीडिया की फीड तक पहुंच चुका है और वो है फूड ट्रेंड्स। जी हाँ, आजकल इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब खोलते ही हमें क्या दिखता है, तो वहां पर दिखता है हमें फूड के नए नए ट्रेंड्स जो रोज देखने को मिलते हैं। कभी कोई एक्स्ट्रा चीजी फूड वायरल हो रहा है, तो कभी कोई कलरफुल ड्रिंक्स, कभी गेंस साइज डिशेस होती हैं, तो कभी कोई एक्सट्रीमली स्पाइसी फूड चैलेंज करता है। और हम भी क्या करते हैं, वीडियो देखी, इंटरेस्टिंग लगी और सोचा यार ये तो ट्राई करना बनता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो फूड सोशल मीडिया पर वायरल है क्या वो ऑटोमेटिकली सेफ भी है या नहीं? इसका आंसर है ये जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया पर किसी फूड का वायरल होना उसकी सेफ्टी या फिर क्वालिटी का सर्टिफिकेट नहीं होता है। हमें ये समझना जरूरी है कि अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन और फूड सेफ्टी दोनों अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलरफुल फूड को ही ले लीजिए। ब्राइट कलर्स देखकर फूड अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन फूड में यूज होने वाला जो कलर है और इंग्रेडिएंट्स है वो परमिटेड है या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह नेचुरल, हेल्दी, ऑर्गेनिक, शुगर फ्री या फिर हाई प्रोटीन जैसे वर्ड दिखाकर भी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली हेल्दी अज्यूम नहीं करना चाहिए। लेबल को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आजकल फूड चैलेंजेस भी काफी पॉपुलर है कि एक्स्ट्रा स्पाइसी नूडल्स, ह्यूज पोर्शंस या फिर अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस, चैलेंजेस देखने में फन लग सकता है। लेकिन हर ट्रेंड हर पर्सन के लिए सुटेबल हो ये जरूरी नहीं है। और एक और ट्रेंड है कि वायरल फूड हैक्स। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ लोग घर पर नए नए फूड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो, और शायद वो इंस्टेंटली वायरल भी हो जाए। लेकिन हर वायरल हैक साइंटिफिकली टेस्टेड या फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो ये अज्यूम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है कि आप ट्रेंड को फॉलो करिए लेकिन ब्लाइंडली मत करिए। कोई फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो लेबल चेक कीजिए, रेस्टोरेंट या फिर फूड आउटलेट पर हैं तो हाइजीन देखिए। और अगर कोई फूड ट्रेंड अननेसेसरली रिस्की लग रहा है तो सिर्फ व्यूज या फिर लाइक्स के लिए उसे ट्राई करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक फूड ट्रेंड कुछ दिन का होता है लेकिन फूड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस हमेशा के लिए। तो इसलिए अगली बार जब भी आपकी फीड में कोई टेम्पटिंग सी फूड वीडियो आ जाए तो एक सेकेंड रुककर सोचिएगा कि लुक्स टेस्टी बट इट इज सेफ और नॉट, तो सोचिएगा जरूर। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं हमारी फूड सेफ्टी की। जी हाँ, हम आज FSSAI के ऊपर बात कर रहे हैं, उसकी जो खास जानकारी है आपकी जो फूड से जुड़ी हुई, आपके प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, उसके बारे में आज हम बता रहे हैं। और अब तक हमने पैकेज्ड फूड के लेबल से लेकर स्ट्रीट फूड और वायरल फूड ट्रेंड्स तक काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कर ली है, बहुत कुछ जाना हमने इसके बारे में। लेकिन फूड सेफ्टी की बात हो रही है और मिलावट का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मिलावट, ये वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि दूध में कुछ मिलाया गया है, मसालों का कलर अनयूजुअल है, मिठाई की क्वालिटी थोड़ी डाउटफुल लग रही है। और फिर हम सोचते हैं कि आखिर असली और मिलावटी फूड को पहचाने कैसे। सबसे पहले समझते हैं कि फूड एडल्ट्रेशन होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में, जब किसी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर कंपोजिशन को गलत तरीके से बदला जाता है, जैसे किसी अनवांटेड या फिर अनसेफ सब्सटेंस को ऐड करना, या किसी इंग्रेडिएंट को चीपर सब्सटीट्यूट से रिप्लेस करना, या फिर उसे यूज ब्रॉडली, मिलावट के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हर मिलावट आंखों से आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ कलर या फिर स्मेल या फिर टेस्ट को देखकर ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि फूड सेफ है या नहीं। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाले रैंडम होम टेस्ट को भी फाइनल प्रूफ नहीं समझना चाहिए। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बताएंगी कि दूध में ये डालो, मसाले में पानी डालो या फिर कुछ डालो, मिठाई को कुछ इस तरीके से चेक करो और पनीर के ऊपर कोई केमिकल डालो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं है, रियल है या फिर फेक है। लेकिन हर वायरल टेस्ट साइंटिफिकली रिलायबल हो, ये जरूरी नहीं है। जी हाँ, तो कंज्यूमर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो ट्रस्टेड सोर्स है उसी से फूड प्रोडक्ट्स परचेज करिए। पैकेज प्रोडक्ट में लेबल, इंग्रेडिएंट्स, डेट और लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन चेक करें। फ्रेश फूड खरीदते वक्त प्रोडक्ट की ओवरऑल अपीयरेंस और हाइजीन पर ध्यान दें। और फूड का कलर, स्मेल और टेक्सचर क्लियरली अनयूजुअल लगे तो उसे कंज्यूम करने से पहले कॉशन जरूर रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको किसी फूड प्रोडक्ट के अनसेफ या फिर सस्पिशियस होने का स्ट्रॉन्गली ऐसा कोई डाउट आए ना आपके मन में, तो उसे इग्नोर करके कंज्यूम करना जरूरी नहीं है। कंसर्न को रिपोर्ट करना भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप हो सकता है। यहाँ पर FSSAI का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने और फूड बिजनेस के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने में FSSAI की इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों, कंज्यूमर अवेयरनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमें हर वायरल वीडियो पर बिलीव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी बजाय हम वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट ज्यादा करें तो वो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। तो याद रखिएगा कि सस्ता या अट्रैक्टिव फूड हमेशा बेटर चॉइस नहीं होता है, सेफ और क्वालिटी फूड चूज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए बहुत सही रहेगा और हमारी फैमिली के लिए भी। तो अगर आपको किसी फूड की क्वालिटी पर डाउट है तो एक सिंपल सा रूल फॉलो कीजिए कि डाउट हो तो चेक करिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंडिंग तड़का में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं FSSAI के बारे में और फूड सेफ्टी के बारे में। अब तक हमने फूड लेबल्स, स्ट्रीट फूड, वायरल फूड ट्रेंड्स और मिलावट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर ली है, लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर हमें किसी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर सेफ्टी को लेकर जेन्युइनली कंसर्न हो तो हम क्या कर सकते हैं? क्या आप बस अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बता देंगे वो आपके लिए इनफ होगा, या फिर इसकी प्रॉपर कंप्लेंट भी की जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि दोस्तों, एज अ कंज्यूमर अवेयर होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी कंसर्न को राइट चैनल तक पहुंचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, फूड सेफ्टी से रिलेटेड कॉर्नर्स के लिए FSSAI फूड सेफ्टी कनेक्ट प्लेटफॉर्म एक ऑप्शन है। इसके थ्रू कंज्यूमर्स फूड सेफ्टी से रिलेटेड कंप्लेंट्स या फिर कंसर्न अथॉरिटी तक रिपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए आपको कोई पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट मिला जिसका लेबल सस्पिशियस लग रहा है और प्रोडक्ट डैमेज कंडीशन में है, या आपको फूड क्वालिटी या फिर हाइजीन को लेकर सीरियस कंसर्न है। ऐसे केस में कंप्लेंट करते वक्त जितनी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना बेटर होगा। और फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट का नेम, ब्रांड, बैच या फिर लॉट नंबर, डेट इन्फॉर्मेशन, परचेज डिटेल और अगर पॉसिबल हो तो बिल या फिर प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स जैसे डिटेल्स यूजफुल हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्लेंट रिस्पॉन्सिबली करें। जी हाँ, सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी ब्रांड के अगेंस्ट पोस्ट कर देना बिना वेरिफिकेशन के एलिगेशन लगा देना सॉल्यूशन नहीं है। अगर जेन्युइन कंसर्न है तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ रिपोर्ट करना बेटर अप्रोच है। और फूड आउटलेट्स की बात करें तो हाइजीन इशू देखने पर आप पहले अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। अगर कंसर्न सीरियस है तो उसे एप्रोप्रिएट फूड सेफ्टी अथॉरिटी तक रिपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, कंज्यूमर का रोल सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने तक ही लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि कंज्यूमर अवेयरनेस फूड सेफ्टी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हम अक्सर सोचते हैं कि कंप्लेंट करने से क्या होगा, लेकिन जब कंज्यूमर जेन्युइनली प्रोडक्ट को रिपोर्ट करते हैं तो अथॉरिटीज को पोटेंशियल फूड सेफ्टी इश्यूज आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल सकती है। तो अगर आपको कभी ऐसा फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई जेन्युइन प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, और अगर आपको सच में प्रॉब्लम लग रही है तो पैनिक मत कीजिए और ही बिना वेरिफिकेशन के उसे सोशल मीडिया पर स्प्रेड कीजिए। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, राइट प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए और रिस्पॉन्सिबल वे में कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि एक अवेयर कंज्यूमर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी थॉट के साथ हम बढ़ते हैं आज के ट्रेंडिंग तड़का के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, लास्ट सेगमेंट की तरफ हम चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको फूड सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगी। पर उससे पहले लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज हम ट्रेंडिंग तड़का में बात कर रहे हैं FSSAI और फूड सेफ्टी के बारे में। और अब हम आ गए हैं हमारे आज के आखिरी फाइनल सेगमेंट में। जी हाँ, आज का पूरा एपिसोड हमने डेडिकेट किया FSSAI के ऊपर और फूड सेफ्टी के बारे में जाना। हमने जाना कि FSSAI क्या है, पैकेज्ड फूड के लेबल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, स्ट्रीट फूड खाते वक्त हाइजीन कैसे चेक करनी चाहिए, और वायरल फूड ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए, मिलावट को लेकर क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, और अगर कोई जेन्युइन फूड सेफ्टी कंसर्न हो तो उसे रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है, उसे भी हम कर सकते हैं। तो अब इन सब बातों में एक सिंपल सी फूड सेफ्टी चेकलिस्ट इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, आप इसे याद रखिएगा कि 5 सेकेंड फूड सेफ्टी चेक।

सबसे पहला लेबल चेक कीजिए। जी हाँ, जब भी पैकेज्ड फूड खरीदने जाएं, एक बार उसका लेबल जरूर पढ़िए। प्रोडक्ट का नाम, इंग्रेडिएंट्स और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जरूर देखिएगा। सिर्फ अट्रैक्टिव पैकेजिंग देखकर डिसीजन को मत लीजिएगा। दूसरा है डेट चेक। जी हाँ, प्रोडक्ट की डेट इन्फॉर्मेशन को इग्नोर ना करें। पैकेट खोलने से पहले ही एक क्विक चेक कर लेना एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल हैबिट है। तीसरा है सील पैकेट और पैकेजिंग चेक। जी हाँ, अगर पैकेट डैमेज है या फिर लीकिंग है या फिर टैम्पर्ड या फिर अनयूजुअल कंडीशन में लगे तो उसे परचेज या फिर कंज्यूम करने से पहले कॉशन जरूर रखें। चौथा है हाइजीन चेक। जी हाँ, रेस्टोरेंट हो या फिर स्ट्रीट फूड स्टॉल क्यों ना हो, एक बार सराउंडिंग अपनी क्लीनिनेस, फूड हैंडलिंग और वहाँ जो यूज हो रही है चीज़ें और सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना एक अच्छी हैबिट हो सकती है। और पांचवा है थिंक बिफोर यू ईट। जी हाँ, अगर फूड का स्मेल, उसकी अपीयरेंस या फिर कंडीशन क्लियरली अनयूजुअल लग रही है तो सिर्फ वेस्ट ना करने के थॉट से उसे कंज्यूम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी रखिए। दोस्तों, फूड सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि हम फूड को लेकर स्केयर्ड हो जाए, या इसका मतलब है कि अवेयर और रिस्पॉन्सिबल चॉइस को हम अपनाएं। और FSSAI का रोल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कंज्यूमर्स का अवेयरनेस भी इक्वली वैल्यूएबल है। तो आज के एपिसोड का एक सिंपल सी लाइन याद रखिएगा कि फूड टेस्टी हो ये ज़रूरी है, लेकिन फूड सेफ हो ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बार जब भी आप कुछ खरीदें या फिर खाएं तो बस कुछ सेकंड रुककर सोचिएगा, उसका लेबल चेक कीजिएगा, डेट चेक कीजिएगा और हाइजीन देखिएगा। इसी अवेयरनेस के साथ आज के ट्रेंडिंग तड़का को यहीं पर एक फुल स्टॉप देते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जी हाँ, तब तक के लिए मैं ले रही हूँ आपसे इजाज़त। मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाज़त लेने का। मिलूंगी अगले एपिसोड में किसी और नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, किसी और नए ट्रेंड के साथ और थोड़े से और तड़के के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, अवेयर रहिए और खाइए ज़रूर, पर सेफ्टी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे अवेयर। और हम क्या कहते हैं, फील गुड, फील लाइव।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद, जिसे हम आपके साथ लेकर आते हैं खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस के साथ। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर कभी महिला सुरक्षा की बात होती है, तो कभी साइबर फ्रॉड की, तो कभी ट्रैफिक की। लेकिन आज इसी कड़ी में हम जो बात करने वाली हैं, वो बात हम सभी से जुड़ी हुई है, हर किसी के घर से जुड़ी हुई है, हर किसी के लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वेरिफिकेशंस के बारे में, हम बात करने वाले हैं ड्रग्स के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में, और साथ ही थोड़ी सी बात करेंगे सड़क पर चलते हुए लोगों के बारे में जो गाड़ियां चला रहे हैं पर पेशेंस खो चुके हैं, यानी कुछ हद तक ट्रैफिक के भी बारे में। तो बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं, किसी एक टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे मुद्दे, ये सारे टॉपिक हम सबसे और आप सबसे जुड़े हुए हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एसीपी अर्जुन जी, जो कि भटकल के एसीपी हैं और फरीदाबाद पुलिस से जुड़े रहे हैं और काफी समय से पुलिस सेवाओं से जुड़े हुए हैं। तो अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में।
2: धन्यवाद जी।
1: सबसे पहले सर आपसे जानना चाहती हूँ, हम वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे, नशा मुक्ति के भी बारे में बात करेंगे और ट्रैफिक के भी बारे में बात करेंगे। ये तीनों चीज़ें एक आम इंसान से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम सड़क पर जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि ट्रैफिक में लोग अपना आपा खो देते हैं, लड़ने लग जाते हैं अगर ज़रा सी गाड़ी कहीं टच हो जाती है, या अगर कोई आपसे तेज़ चला लेता है तो रोड रेज हो जाती है, या फिर अगर कहीं पर थोड़ा सा भी कट मिला तो रॉन्ग साइड भी गाड़ी निकाल लेते हैं। तो ये एक कंट्रोल लोगों का जो है खुद पर से जाता जा रहा है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नशा, ड्रग्स। बच्चे खास तौर पर से इसमें बहुत छोटी उम्र से इन्वॉल्व होने लगते हैं, लेकिन पुलिस हमसे ज़्यादा जानती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो अपराध को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है वेरिफिकेशन। खास तौर पर से वेरिफिकेशन, अगर आप अपने घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प लगा रहे हैं या फिर आप किसी व्यक्ति को अपना मकान या दुकान किराए पर दे रहे हैं। तो सर सबसे पहले वेरिफिकेशन से शुरू करते हैं। वेरिफिकेशन कितनी जरूरी है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, विस्तार से समझाएं और फिर उसके प्रोसेस के बारे में मैं आपसे सवाल पूछूंगी।
2: वेरिफिकेशन आम आदमी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है
1: जी,
2: टेनेंट के लिए भी जरूरी है और लैंडलॉर्ड के भी जरूरी है
1: जी।
2: आजकल हर घर में कोई ना कोई टेनेंट है, हर घर में कोई ना कोई एक या दो नौकर है, और उनकी वेरिफिकेशन होती है तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर उनसे कोई गलती होती है या वो गलती करते हैं, जानबूझ के छुपने की कोशिश करते हैं, अपराध की नीयत से कोई काम करते हैं, बहुत लोग नाम बदल के यहाँ रहते हो, अगर उनकी वेरिफिकेशन समय पे हो जाए तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है। अब पश्चिमी बंगाल का आदमी कोई यहाँ आके रह रहा है, काम कर रहा है, फरीदाबाद, गुड़गांव, NCR में, महानगर में अगर कोई काम कर रहा है, तो उनको क्योंकि मानव मात्र की गिनती में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि भारत में कोई कहीं जा सकता है और एक यूनिक आईडी ना होने की वजह से हम उसको हर जगह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक की वेरिफिकेशन हो। वेरिफिकेशन के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि वेरिफिकेशन अगर करवाते हैं तो लैंडलॉर्ड है उसके लिए एक बहुत सुरक्षा का होता है। मान लिया वो उनके साथ नहीं करे, अड़ोस पड़ोस में कहीं, रात में, दिन में, कहीं भी अगर कोई वो क्राइम करता है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और ट्रेस हो जाएगा
1: जी।
2: इसलिए बहुत जरूरी है, सुरक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा का ये, आंतरिक सुरक्षा का ये, इसमें वेरिफिकेशन प्रति व्यक्ति बहुत जरूरी है
1: जी। अर्जुन जी, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है जो स्लम एरियाज होते हैं या जो छोटी कॉलोनीज हैं, फरीदाबाद में काफ़ी ऐसी कॉलोनीज हैं, और यहाँ पर किराएदार रखना बहुत कॉमन है, या फिर जो गांव बने हुए हैं, अर्बन विलेजेस जिनको आप कह लेते हैं, उनमें लोगों ने एक एक घर में 10-10 कमरे बना रखे हैं। उन 10-10 कमरों में बहुत सारे लोग जो हैं वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर जो काम करते हैं वो रहते हैं, बहुत सारे लेबर वहाँ पर रहते हैं, इनकी वेरिफिकेशन कराना उनके लिए मुश्किल काम होता है। सो क्या कोई ऐसा प्रोसेस या तरीका है, एक तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी प्रॉपर वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, और बाकी इस तरीके से जहाँ पर ज़्यादा टेनेंट्स रह रहे हैं जो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति को लगता है कि इतना तो दिन उसने रहना भी नहीं है जितना मैं वेरिफिकेशन कराऊं?
2: वेरिफिकेशन के लिए मैम बड़ी सी बात यह है कि हम समय समय पे अभियान चलाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों को आपके FM के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जगह जगह पे अभियान चला के लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, टेनेंट वेरिफिकेशन करवाएं, सर्वेंट वेरिफिकेशन करवाएं। उन स्लम एरियाज के लिए तो हमने यही अभियान रखा हुआ है कि जब जब मौका मिलता है, जब जब पुलिस राइडर्स जाती है, PCR जाती है, ERVs जाती है, फिजिकली जाके लोगों को बताते हैं। और कभी कभी हम एक कॉम्बिंग अभियान चलाते हैं। कॉम्बिंग अभियान में हम एक साइड से ले लेते हैं एक बस्ती को, उसको पूरे को कॉम्ब की तरह छानते हैं। अच्छा। कौन वेरिफिकेशन है दिखाइए, वेरिफिकेशन नहीं होती उनको उस दिन पकड़ के वेरिफिकेशन करवाते हैं, वेरीफाई करते हैं उनको।
1: ओके।
2: एक तो ये है। दूसरा जो आपने प्रावधान पूछा, प्रोसीजर पूछा, उसके लिए हमें दो सिस्टम रखे हुए हैं, एक तो है मैनुअल और एक है ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए ये है कि आपके पास किसी भी व्यक्ति ने जो वेरिफिकेशन करवानी है, हमारा हर समय पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाएंगे, उस पे वेरिफिकेशन लिख के आएगी, टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, सर्विस वेरिफिकेशन और 5-4 वेरिफिकेशन और है उनमें। तो जैसे मोस्टली हम जब देखते हैं तो टेनेंट वेरिफिकेशन और सर्वेंट वेरिफिकेशन है, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो उन पे अपलोड कर देंगे, उनके अपलोड करने के बाद वो पोर्टल के माध्यम से हमारे पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, पुलिस स्टेशन के लोग उसको देख के उस जगह पे वेरीफाई करके, उस आदमी को वेरीफाई करके, दो लोगों को वेरीफाई करवा के वापस अपलोड कर देंगे और वो वहाँ आके वापस उसी पोर्टल पे आके जैसे अब क्लिक होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी और आपको सर्टिफिकेट निकाल लेंगे। एक प्रोसीजर तो ये है। दूसरा ये है कि अगर कहीं कुछ दिक्कत आती है, नहीं करवा पाता कोई आदमी, तो वो एक हमारा चैम्बर बना हुआ है, उस चैम्बर में वो जाए और वहाँ 9-to-5 चलता है, वो CP ऑफिस में हमारे यहाँ
1: जी,
2: और वहाँ पे रसीद कटती है, वो आपको डॉक्यूमेंट लेके रसीद काट के दे देंगे, वो फिजिकली कंसर्न पुलिस स्टेशन में चला जाएगा, वो लोग उसी तरह वेरिफिकेशन करवा के वापस वहाँ जमा करवा देंगे और उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये प्रोसीजर है।
1: यानी पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आकर वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे
2: जी।
1: इसमें सर मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो जरूरी होते हैं? एक आधार कार्ड जो है वो तो अब सभी के पास होता है।
2: हम दो डॉक्यूमेंट, दो ID रिक्वायर रखते हैं, एक आधार प्लस एक ID कोई और जो फोटो वाली ID रहे, जैसे DL है, कोई पासपोर्ट है, कोई और है, जो भी फोटो वाली दो ID को देखते हैं ताकि उनको मैच करवाने में, उनको वेरीफाई करने में दिक्कत ना हो, एक पे भरोसा ना रखें हम।
1: जी,
2: दो ID मांगते हैं,
1: यानी जिन पे आपकी फोटो लगी हुई हो सिर्फ दो,
2: दो
1: चीजें
2: दो ID
1: वो मांगी जाती हैं।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में ACP बटकल श्री अर्जुन जी से, बहुत सी बातें और भी जारी रहेंगी। अभी हमने जाना वेरिफिकेशन के बारे में, आगे भी हम बहुत से ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो आम इंसान से जुड़े होते हैं। खास तौर पर से हम बात करेंगे नशा मुक्ति अभियान जो फरीदाबाद पुलिस चला रही है और साथ ही ट्रैफिक को लेकर क्या कर रही है ट्रैफिक पुलिस। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम सुरक्षा संवाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ कार्यक्रम सुरक्षा संवाद, जिसे आपके बीच लेकर आता है फरीदाबाद पुलिस। और आज इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं नशा मुक्ति अभियान, वेरिफिकेशन और फरीदाबाद के ट्रैफिक के बारे में। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं ACP भटकल श्री अर्जुन। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फरीदाबाद में क्या वाकई लोग वेरिफिकेशन कराते हैं बहुत ज्यादा या कम ही है?
1: नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो वेरिफिकेशन करवाते हैं खुद से, फिर हम अभियान चलाते हैं, फिर हम रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और खुद जाके लोगों को जागरूक करते हैं। तो बहुत लोग करवाते हैं, विशेष अभियान में बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन होती है, बहुत ज्यादा। एक डाटा बन जाता है पुलिस के पास, कोई गड़बड़ करता है, कोई क्राइम करके भागता है, या यहाँ दिन में कोई क्राइम कर रहा है, रात में क्राइम कर रहा है, कहीं रात में काम कर रहा है, कहीं दिन में काम, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सेफ्टी की दृष्टि से वो ठीक ठाक एनालाइज कर लेते हैं।
0: दिल्ली NCR में एक बहुत प्रचलन है कि यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प जो है वो फुल टाइम होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और मेट्रो सिटीज़ में ही कल्चर आ गया है सपोर्ट के लिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। ऐसे में सर, एहतियात के तौर पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप डोमेस्टिक हेल्प रख रहे हैं सुबह से रात तक या फुल टाइम है आपके पास 24 घंटे? अब कई बार ना लोग विश्वास में आ जाते हैं कि ये हमारी डोमेस्टिक हेल्प थी, उसकी बेटी है या बेटा है, वो हमारे घर में रह रहा है, हम उसे 10 साल से जानते हैं, तो इतना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, शायद उसे बुरा ना लग जाए।
1: लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर कोई विश्वास पात्र आपके पास सर्विस दे रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करवा ले अपना। देर सवेर कहीं ना कहीं जिस दिन दिक्कत आती है उस दिन वो विश्वास रखा रह जाता है और कागज आपके पास होता नहीं है। तो ये हमारी राय ये है, हमारी प्रार्थना भी है ये आम जन से, कि वो मैक्सिमम अपनी वेरिफिकेशन करवाएं टेनेंट की और सर्वेंट की।
0: आजकल सर काफी ट्रेंड चल गया है कि लोगों ने अपने जो घर हैं वो टूरिस्ट प्लेसेस पे खास तौर पर से छोटे छोटे समय के लिए रेंट पे देना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे शहरों की जहाँ पर टूरिस्ट अब ज़्यादा जाने लग गया है, पहाड़ी एरिया हो गए या लोग वैसे ही घूमने के लिए चले जाते हैं कि वीकेंड आ रहा है, बट वो ऑफिशियली होम स्टे नहीं होते हैं या फिर ऐसा कहें कि होटल्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे से घर हैं और घर में एक कमरा दे दिया कि यंगस्टर्स आ गए, उनको कितना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको स्पेशली गाइडलाइन जारी की गई है कि जिसको भी आप किराए पे रखेंगे, वो चाहे परमानेंट टेंट रखें, 2 दिन के लिए रखें, होम स्टे में रखें, होटल्स में रखें, ओयो में रखें, जैसी जिसकी सुविधा बनती है, ये सेकेंडरी मैटर है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, बट जिस आदमी को आप रख रहे हैं तो कम से कम उसका रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कर लें, उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें कि आपके पास प्रॉपर ID फोटो स्टेट की हुई हो, आपने ID मैच करवा रखी हो कि जो ID दे रहा है, क्योंकि आधार पे, पैन पे, इन पे कई बार फोटो ऐसी होती है वो मिसमैच ही लगती है, तो अच्छे से वेरिफिकेशन करके अपने पास अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और रजिस्टर हम हर महीने लगभग चेक करते हैं कि आपके पास कितने लोग आए हैं किराए पे, ऐसी सबकी लिस्ट होती है, तो सबको चेक किया जाता है बीच बीच।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी अगर आप अपने घर को किसी भी फॉर्म में किराए पर दे रहे हैं, चाहे आप 10 दिन के लिए दे रहे हैं, चाहे आप होटल बना रहे हैं, चाहे आप होम स्टे कर रहे हैं, चाहे वैसे ही किराए पर दे रहे हैं, आपको ज़रूर वेरिफिकेशन कराना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग सर एक शहर में रहते हैं और दूसरे शहर में घर किराए पे होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने घर किराए पे दे दिया, आप 2-3 साल वहाँ जाते ही नहीं हैं और वहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं कुछ नहीं पता होता। अब आजकल समय ऐसा है कि आसपास वाले भी ज़्यादा मेलजोल नहीं रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कितने कितने समय में क्या एहतियात बरतना
1: चाहिए? ऐसी परिस्थिति में 89 डेज का प्रावधान है कि 90 दिन किसी टेनेंट को ना होने दे, किराएदार जहाँ बैठे हैं आपके, जब आप किसी शहर में रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट 90 दिन से पहले एक बार उनको चेक कर लें कि जिसको आपने किराए पे दिया क्या वही वाकई रह रहा है, जिसकी वेरिफिकेशन आपने करवाई वही रह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप जा नहीं रहे 6 महीने और 6 महीने बीच में कोई और लोग घुस गए उसमें, ताकि वो वेरीफाइड भी ना हो और आपके साथ भी कोई गड़बड़ हो जाए तो पता चले आपको। तो इसलिए हर 3 महीने में 89 डेज में हर जो ऑनर है जिसने किराए पे दे रखा है, तो उससे यही अपील करते हैं बार बार कि वो अपने टेनेंट्स को चेक करता रहे कि यही टेनेंट है जिनके हमने वेरिफिकेशन करवाई थी।
0: जी, और ये मुझे लगता है लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपका एक घर कहीं बम्बई में है या लखनऊ में है और वहाँ पर आपने वो किराए पे दे रखा है, तो आप कहाँ जा पाते हैं, लोगों के पास में समय होता है, बट एक्चुअली में 90 दिन में अगर जा रहे हैं तो आप चेक रख पाते हैं कि वाकई वही लोग रह रहे हैं या कुछ और गतिविधियाँ चल रही हैं, तो घर के अंदर जाके एक बार जरूर देखें, आपका घर है, कोई रोकेगा नहीं आपको, आप फोन करके जाएं, चाहे वैसे जाएं, बट जाना जरूर चाहिए। बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं तो बिल्कुल भेज सकते हैं हमें 8010781078 पर। और साथ ही अगर आप ये कॉन्वर्सेशन इस पॉडकास्ट को किसी के साथ शेयर करना चाहें या सुनना चाहें तो फिर आप हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको सुरक्षा संवाद के नाम से ACP श्री अर्जुन के साथ ये सारी बातचीत मिल जाएगी जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। वक्त है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें जारी हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में। एसीपी अर्जुन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसीपी हैं बटकल क्षेत्र के फरीदाबाद में, और इस कार्य को करते हुए बहुत से वक्त हो गया है इनको, और ये आज जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं वो है वेरिफिकेशन। जी हाँ, वेरिफिकेशन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नशा मुक्ति और फरीदाबाद के ट्रैफिक को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। आइए करते हैं और भी विस्तार से बात। अब सर बात करते हैं एक ऐसी परेशानी की जो एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में गहराया हुआ है, और वो है नशा। अब नशा एक तो होता है अल्कोहल, जो आम तौर पर लोग लेते हैं, बड़ी उम्र के भी लेते हैं और कुछ यंगस्टर्स भी लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नशा होता है ड्रग्स का, जिसके बारे में वर्ल्ड वाइड बहुत से अभियान चलाए जाते हैं। हर देश कोशिश करता है कि ड्रग्स के सर्कुलेशन को लोगों तक पहुंचाने में रोका जाए, पर फिर भी ये खुलकर बिकता है और खुलकर युवा जो है इसको कंज्यूम करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे अब इस मुद्दे पर ये है कि हम अपने आसपास आजकल बहुत सारी फिल्में देख रहे हैं, बहुत सारे गाने देख रहे हैं जिसमें गन कल्चर, ड्रग्स कल्चर, वीड की बात, इस तरीके के बहुत से शब्दों का इस्तेमाल होता है और खुल के होता है। रोक भी लगी है, एक बीप लगाने से सबको समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या है वो दिख जाता है, पता चल जाता है। अब इससे युवा कितने प्रभावित हो रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद इस प्रोफेशन में है कि आप युवाओं के पूरे आंकड़े या फिर कुछ जानकारियां ज़्यादा हम एक आम आदमी से ज़्यादा रखते हैं।
1: मैम बिल्कुल सही सवाल है आपका। नशे से सरकार नशे के प्रति बहुत बड़े अभियान चला रही है। सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग हम फरीदाबाद में कहें तो 36-37 डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए सरकार की हिदायत है कि नशे को बिल्कुल बंद करना है, नशे को नो कहना है, किसी सूरत में नशे को यस नहीं कहना है। और नशे की वजह से हमारी पीढ़ी समाप्त हो रही है, खासकर युवा पीढ़ी जिसको पता नहीं है, बच्चे जिनको अंदाज़ा ही नहीं है जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो कोई सीरीज़ देख के कहिए या कोई रील देख के कहिए कि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। और जो ड्रग पेडलर है उनके लिए भी बच्चा एक आसान सा स्टेप है, उसको मोल्ड करना, उसको पैसे का लालच दे के खुद को उसको डाल देना या आगे ड्रग पेडलिंग में यूज कर लेना बड़ा आसान है। इसके लिए पुलिस के द्वारा विशेष अभियान अब भी चल रहा है, और हर 15 दिन में एक पुलिस स्टेशन, कोई ना कोई एक पुलिस चौकी, कोई ना कोई कार्यक्रम हर एक बस्ती में, हर एक बीट लेवल पे, बीट लेवल का मीन 2-3 गलियों तक के हम प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और इस विषय में मैं यही कहूँगा कि शराब को पीछे छोड़ दिया है नशे ने। आज के दिन अगर ये कहें कि शराब नशा नहीं रहा, नशे की गिनती में नहीं रहा, नशे की गिनती से बाहर हो गया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आजकल गांजा, भांग, चिट्टा और कई तरह के सिंथेटिक नशे हैं, कोई सूखे नशे हैं, वो इतने आगे हैं कि आप शराब को भूल जाएंगे। हम नशे के किसी भी सूरत में हक में नहीं हैं। हम रोज प्रचार प्रसार करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, परिवारों में जाते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, ये कहने के लिए कि एक आदमी नशे के चपेट में आता है तो कम से कम पूरा परिवार खत्म कर देता है। तो नशे के जागरूकता के बारे में बच्चों को हम जाते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि एक व्यक्ति 5 लोगों को नशे की बुराइयां बताए, अपने आप नशा कम होता जाएगा, और लोग खुल के विरोध करें। जो लोग नशा करते हैं वो तो पीड़ित है, नशा कहाँ से आ रहा है, वो वहीं बस्ती से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो वो लोग नशा बेचने वालों का हर हाल में विरोध करें। एक बार देशव्यापी विरोध हो गया तो नशे को जगह नहीं मिलेगी।
0: जी जी, और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये जो पूरा एक चलता है सिस्टम, ये एक देश से दूसरे देश बहुत इजीली चला जाता है,
1: ये वर्ल्ड वाइड है, प्रतिबंधित है, फिर भी वर्ल्ड वाइड है।
0: हाँ।
1: प्रतिबंधित है, किसी भी देश में नशा शायद ही कहीं खुला हो, हर एक जगह प्रतिबंधित है, लेकिन हर एक जगह नशा है। तो इसके लिए वर्ल्ड वाइड अभियान चला रखे हैं, भारत सरकार ने विशेष अभियान चलाया हुआ है, विशेष टीमें गठित की हुई है, पुलिस ने अपनी विशेष टीम गठित की हुई है, रोज कम से कम 5 या 6 प्रोग्राम स्कूलों में, पब्लिक में, स्लम बस्ती में, सबको जाके नशे के प्रति जागरूक करते हैं, और उन लोगों के प्रति कार्रवाइयाँ रोज हो रही है। आंकड़े देखेंगे तो हमने अभी NDPS की जितनी भी FIR लॉज की है उनके आंकड़े एक हाई लेवल पे गए, वो इसलिए कि इधर जागरूकता अभियान है, इधर धरपकड़ शुरू है, तो लोग भी सहयोग कर रहे हैं लेकिन छुप के कर रहे हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि लोग खुल के सामने आए, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है हमें क्या ले रहा है, हमारा क्या ले रहा है। सवाल आपका हमारा नहीं, सवाल पीढ़ी का है। वो घूमते घूमते पता नहीं किस दिन किसके घर में नशा घुस जाएगा, हम सोच भी नहीं पाएंगे। सबसे अपील यही करते हैं कि नशे के विरोध में खड़े हों और हर आदमी जहां खड़ा है वहीं से चार लोगों को जागरूक करे, यही अपील करते हैं।
0: जी जी सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी ये शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि आप बहुत क्लोजली बच्चों को भी देखते हैं, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, बड़ों को भी देखते हैं, ये शुरुआत कैसे होती है, कैसे बच्चों को फंसाया जाता है इस पूरे ट्रैप में?
1: बच्चे का मन बिल्कुल साफ बिल्कुल शुद्ध होता है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, घर में होता है तो माँ बाप को रोल मॉडल मानता है, स्कूल में पढ़ता है तो टीचर्स को रोल मॉडल मानता है। इसी तरह से उसकी जो दिमाग की मॉडलिटी है, जो उसका मूव करना है, उसका सीखने का, लर्न करने का या उसको मोल्ड करने का जो सिस्टम है बहुत नरम है। इसी का फायदा उठा के घुसपैठिए कहिए या उनसे थोड़ी बड़े उम्र के कहिए या ऐसे लोग जो बच्चों को बरगलास के, वो बच्चों की मार्फत एंट्री करते हैं,
0: यानी बच्चों को अपने उसमें
1: चंगुल में फंसाते हैं,
0: चंगुल में फंसाते हैं।
1: एक बार जो बच्चा या तो पेडलिंग में, ड्रग पेडलिंग में आ गया या बच्चा कंज्यूम करने लग गया, तो वो नशे ऐसे हैं कि शराब छूट सकती है, वो नशे छूट नहीं सकते, वो दलदल में धंसता चला जाता है। इसीलिए हम बार बार अपील करते हैं कि सब लोग नशे वालों के खिलाफ खड़े हों, एकजुट जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे जन जन के पास थी, तो आज वो समय आ गया है कि जन जन को नशे के खिलाफ बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब इस चीज के लिए शायद इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर जिसके घर में होता है सिर्फ वही समझ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: और कुछ हमारे देश में ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से है। सर, इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बच्चा अगर एक बार इस चीज में फंस जाता है, एज क्या होती है नॉमिनल, जो अगर हम एक नॉर्मल एज देखें बच्चे,
1: मान के चलेंगे हम 12-13 साल का बच्चा अगर बड़ा इजी फंसता है इसमें, उसको पता नहीं होता इसकी बुराइयां क्या है, क्योंकि वो 12-13 की जो एज होती है वो 18 साल से नीचे और 12 साल से ऊपर की एज होती है, तो वो घर वालों की प्रतिबंधता को नकारते हुए दोस्तों में जाना पसंद करेगा। हर प्रत्येक वो चीज़ जो उनका परिवार, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स मना करेंगे उसकी तरफ वो दौड़ेगा, और उसी का फायदा ये ड्रग पेडलर उठा के उसको शिकार बनाते हैं।
0: मतलब 12 साल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता को बहुत ध्यान देना चाहिए।
1: 12 से 18, जैसे 18 पार कर जाएगा बच्चा तो वो समझने लगेगा, देखने लगेगा, उसमें जिम्मेवारी थोड़ी थोड़ी आने लगेगी, वो समझता है। ये बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी के मान के चलो, जो रूप देंगे इन बच्चों को वही रूप चला जाएगा, तो इसी का फायदा उठा के लोग घुसपैठ करते हैं।
0: जी जी, और सोशल मीडिया इसमें कितना रोल प्ले करता है आपको?
1: सोशल मीडिया रोल प्ले करता है, पीछे जो बहुत ऐसे गाने भी हुए हैं जिनमें नशे की बात, गन कल्चर की बातें आई, वो प्रतिबंधित भी हुए हैं, बट सरकार भी अपने लेवल पे काम कर रही है, पर ये सरकार के साथ सहयोग करना पड़ेगा आम जन को। सरकार काम कर रही है आम जन के लिए, आम जन को भी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, जो सरकार चाह रही है कि ये काम नहीं होना चाहिए, और उसमें भी आम जन के ही आदमी है, सरकार के आदमी बहुत नहीं मिलेगा कोई आदमी कि सरकार का आदमी कोई इस काम में हो, तो आम जन का आदमी है, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इस बात के लिए कि आइडेंटिफाई किया हमने, ये आदमी नशा भेजते हैं, यहाँ ये एक्टिविटी हो रही है, ये प्रशासन को बताना पड़ेगा, तभी एक्शन हो पाएगा। मान लिया कोई PCR राइडर गश्त पे है तो वो पेट्रोलिंग कर रही है, उनके सामने से हट गया, तो आमजन जिसने देखा वो रिपोर्ट करे, उस पे एक्शन होगा।
0: तो लोग क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं, अभी भी डरते हैं पुलिस से?
1: पुलिस से नहीं डर रहे हैं, दिक्कत कई तरह की है, कुछ लोग तो इस बात के लिए अवेयर नहीं है कि हम क्यों करें।
0: एक जागरूकता नहीं है।
1: हम जागरूकता अभियान इसीलिए चला रहे हैं, सरकार ने एक विशेष टीमें बना के हर एक डिपार्टमेंट को बोला है कि रोज कोई ना कोई जागरूकता अभियान चलाएंगे। आप पेपर देखेंगे तो रोज पुलिस भी कर रही है और डिपार्टमेंट भी नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं और वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं।
0: जी, तो नशा मुक्ति की जब हम बात करते हैं सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी किस किस तरीके के नशे जो हैं आते हैं। हमने पहले देखा था कि दवाइयाँ बहुत ऐसी होती हैं जो प्रतिबंधित होती हैं पर वो मिल जाती हैं इजली, दवाइयाँ जो होती हैं वो कितना इफेक्ट करती हैं, कैसे बच्चों को फंसाती हैं, और इसके अलावा क्या क्या होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को जनरली नहीं पता होता, ये सिर्फ यंगस्टर्स को पता होता है कि किस किस तरीके के नशे जो हैं वो मिल रहे हैं, किस किस फॉर्म में मिल रहे हैं, क्या उनका कलर होता है, क्या वो लिक्विड हैं, इंजेक्टेबल हैं, या पाउडर्स हैं, या टैबलेट्स हैं, क्या है?
1: बच्चे को जो सबसे पहले नशे की तरफ लेके जाते हैं कहीं कहीं से, शराब का सेवन बहुत कम रह गया है, उससे पहले सिगरेट में कुछ मिला के पिला दिया, एक बार उसने सुट्टा लगा लिया, जो सुट्टे के नाम पे बहुत रील्स आती हैं, बहुत सीरीज आती हैं, तो उनको वो देखता है बच्चा, वो सुट्टा लगा लिया उसने, जब एक बार लगा लिया तो उसी में कुछ देते जाते हैं, वो इंजेक्ट की स्टेज जो आती है वो तो 3rd-4th स्टेज है,
0: काफ़ी बाद में
1: काफ़ी बाद में, उससे पहले तो कुछ और चीज़ें हैं उनको कुछ मिला के खिला दिया, कुछ पिला दिया, सिगरेट में पिला दिया या कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया, इस चीज़ के आते हैं। इंजेक्ट वाले स्टेज तो लास्ट में आते हैं। इंजेक्ट वाले स्टेज के बाद संभलना बड़ा भारी काम है, बहुत भारी काम है। वो तो ड्रग एडिक्शन सेंटर में भी बात बन सकती है, अदरवाइज बाहर नहीं पेरेंट्स रोक पाए,
0: खुद नहीं छोड़ सकते।
1: नहीं, जो क्योंकि जैसे ही वो नशे की तरफ घुसेगा तो वो घर से परिवार से कटने लगेगा, चोरियां करने लगेगा बच्चा, तो क्राइम की दुनिया में इसी रास्ते से इंटर करते हैं लोग। तो नशा बहुत बुराई मानेंगे हम तो, कि नशा किसी सूरत में नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल, यानी इतनी सारी चीज़ें जो दुनिया भर में मिल रही हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनकी 12-13 साल की उम्र है और इन टीनेजर्स को आप एकदम सही जीवन देना चाहते हैं, तो इनके साथ थोड़ा समय बिताना ज़रूरी है, इनकी थोड़ा सा चेक रखना भी ज़रूरी
1: है। हम तो ये कहेंगे कि बच्चे को दोस्त की ज़रूरत होती है और वो दोस्त घर से बाहर तलाशता है। हम पेरेंट्स से प्रार्थना करेंगे कि वो दोस्त अपने आप को मोल्ड करके अपने आप को तरीके से उसके दोस्त बन जाएं, ताकि उसको दोस्ती के लिए बाहर ना जाना पड़े। आप पेरेंट्स का हिटलरशिप ना चला के मित्रता पूर्ण उनके साथ रहिए, ताकि वो
0: फ्रेंडशिप की बात करें।
1: हाँ, ताकि वो 70% कम से कम 80% 70% आपके साथ बात कर ले, तो उससे उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको उनके पास जाने की। वो दिक्कत का बात यह है कि हम पेरेंटिंग करते करते ये भूल जाते हैं कि बच्चे की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चेंजेज आते हैं बच्चे में से, हार्मोनल चेंजेज आती हैं, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, तो उन चेंजेज को वो आपसे शेयर ना करके कहीं और शेयर करें। इससे अच्छा तो आप एजुकेट करें बच्चे को, फ्रेंडशिप रखें उसके साथ, ताकि वो आपसे शेयर कर ले तो नौबत नहीं आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, सुरक्षा संवाद में बातचीत जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा, आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे खास मेहमान ACP बटकल अर्जुन जी, जो कि फरीदाबाद पुलिस में हैं और साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम के आज गेस्ट भी हैं। हम इस कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से और बहुत से अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। आज जिन विषयों पर हमने बातचीत करी है वो है वेरिफिकेशन, यानी आप अपने घर में अगर कोई हाउस हेल्प रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, या फिर आप अपना घर या दुकान किसी को रेंट पर देते हैं, तो वेरिफिकेशन कराना यानी पुलिस वेरिफिकेशन का क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से वेरिफिकेशन कराना लाभदायी साबित हो सकता है, इस पर चर्चा करी है। साथ ही हमने नशा मुक्ति पर बात करी है और फरीदाबाद ट्रैफिक के बारे में भी बात कर रहे हैं।
1: सर, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि बहुत सारे, अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, तो क्या ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई इन्फॉर्म कर रहा है तो उसकी पहचान, उसका नाम जो है वो एकदम छुपा के रखा जाएगा, रिवील नहीं किया जाएगा?
2: बिल्कुल ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, हमने नीचे कांस्टेबल लेवल तक ये कहा हुआ है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन आने के बाद उस पर एक्शन होना चाहिए। जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उनका नाम, बेशक उनकी झूठी कंप्लेंट रही हो या कामयाबी ना मिली हो, उनका नाम ना पब्लिश करेंगे ना किसी को बताएंगे हम। वो हमारे लिए एक सोर्स है, अच्छा सोर्स है, आज नहीं तो कल वो हेल्प ही कर रहे हैं हमारी। तो पहले ही ऐसा था, कुछ साल पहले, 15 साल पहले कहेंगे तो पुलिस के पास जाने से लोग कतराते थे, पुलिस को बताने से कतराते थे, हम लफड़े में क्यों पड़े। अभी ऐसा नहीं है, अगर आदमी कोई बताता है, इंसान बताता है, तो उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रखी जाती है और उस पर एक्शन होता है।
1: जी बिल्कुल, यानी सीक्रेट आइडेंटिटी का प्रावधान है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो वो इजिली कंप्लेंट कर सकता है। अब सर बात करते हैं ट्रैफिक, क्योंकि दो मुद्दे ऐसे रहे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आम इंसान के, उन पे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब ट्रैफिक के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जो घर से बाहर निकलेगा वो ट्रैफिक का सामना करेगा, और गाड़ी भी चलाएगा, बाइक भी चलाएगा, स्कूटर, साइकिल, नहीं तो पैदल तो चल ही रहा है। तो इन सड़कों पर जो रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, तो आजकल के समय में क्यों लोगों में सब्र नहीं है सड़क पर चलते हुए, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे आप चल रहे हैं, अगर लिमिट 100 की है तो 120, 130 से नीचे कोई नहीं चलाना चाहता, और ऐसे में एक्सीडेंट होना लाजमी होता है। दूसरी चीज़ जो सुबह के वक्त होती है या शाम के वक्त होती है, सुबह ऑफिस पहुंचने की जल्दी होती है, आप लेट निकलते हैं घर से, ट्रैफिक हल्का सा मिलता है तो आप रॉन्ग साइड लेते हैं, शाम को आपको वैसे ही घर जल्दी पहुँचना होता है।

0: के जो प्रेशर है ट्रैफिक का उसको सहन कर पाता है। अब छोटा सा उदाहरण एनसीआर का, हम यहाँ से फरीदाबाद से गुड़गांव का लेते हैं जी। गुड़गांव से फरीदाबाद जाने के लिए एक सड़क जाने की है और एक सड़क आने की है। एक सड़क पे जाते वक्त दो व्हीकल साथ निकल सकते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा समय होता है जो ट्रैफिक रश होता है, क्रॉल करके चलता है, उसमें लोग पेशेंस करने के बजाय ओवरटेक करके आ जाएंगे, रॉन्ग साइड चले जाएंगे, तो आपकी ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रही, स्लो चल रही है, इतना ही है, थोड़ी देर क्योंकि प्रेशर है सुबह शाम का तो स्लो चलेगी। आप उसको थोड़ा जज्ब कर लें, अंदाज़ा लगाएं कि हमारी वजह से दूसरों को दिक्कत ना हो, जो सामने से आने वाला है उसने कोई गलती थोड़ी की है, हम दूसरी साइड रॉन्ग साइड चले जाएंगे, जाम लग जाएगा, वो सब लोग और फंस जाएंगे, इससे अच्छा तो अपनी रो में चलें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जहाँ 15 मिनट लगने थे वहाँ 17 मिनट लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 2 मिनट से फालतू। लॉन्ग ड्राइव तो आप कहीं 100 की स्पीड पे जा रहे हैं और उसी स्पीड को आप 120 कर दें तो 300 किलोमीटर पे जाके 12 मिनट का फर्क पड़ता है। 300 किलोमीटर सफर करने पे 12 मिनट का फर्क पड़ेगा, 12 मिनट के लिए आप अपनी दूसरों की परिवार की जिंदगी दाव पे लगा देते हैं। और एनसीआर में तो इसलिए कि सब आदमी काम करने के लिए निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, तो प्रेशर होता है, ये मन मनाना पड़ेगा लोगों को, इस वक्त ट्रैफिक का प्रेशर है, ना कोई जाम है, ना कोई देर है, अब एकदम से जब टोल पे चले जाएंगे तो टोल की लंबी लाइन हो जाती है, लंबी लाइन में थोड़ा पेशेंस करना पड़ेगा, उसको भी टाइम लगता है जी। हाँ। वो रीड करेगा, सर्च करेगा, निकालेगा, इतना
1: और कभी टेक्निकल एरर्स भी हो जाते हैं, बिल्कुल
0: नॉर्मल। तो हमें पेशेंस की जरूरत है, और सड़क पे जो घर से निकलता है वो अपने काम से निकलता है, कोई लड़ने के लिए, कोई एक्सीडेंट करने के लिए नहीं निकलता, एक्सीडेंट बाय चांस हो जाता है, तो हमें पेशेंस की जरूरत है। और दूसरी बात, मैं तो ये भी कहूँगा, एक्सीडेंट चलो हो गया तो हम जो लाखों रुपए इंश्योरेंस के देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि वो ठीक करवा लेना, कि इसलिए देते हैं कि हम लड़ लें।
1: बिल्कुल, लड़ने की आदत बहुत दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है,
0: वो अग्रेसिव इसलिए हो गए हैं कि उनके फिजिकल वर्कआउट नहीं रहा। अगर कोई इंसान फिजिकल वर्कआउट, योग, प्राणायाम करेगा, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, जिम जाएगा और जाएगा, तो उससे उसका स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, तो उससे फिर वो लड़ने की तरफ नहीं जाएगा, काम की तरफ फोकस करेगा। जो आदमी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा उसके दिमाग में एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे, स्ट्रेस के चक्कर में लड़ भिड़ पड़ता है वो।
1: बिल्कुल, यानी कहीं का गुस्सा
0: कहीं निकलता है। बिल्कुल सही कहा जाए।
1: और हमेशा में हमने ये देखा है कि जो भी स्ट्रांग होता है वो अपने से कमजोर वाले गुस्सा निकालता है, तो वही चीज हो जाती है कि आपकी गाड़ी बड़ी है, आप छोटी गाड़ी वाले से लड़ लेते हैं या ऑटो वाले से लड़
0: बड़ी गाड़ी रखी है, इंश्योरेंस की गाड़ी रखी है, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं समय पे, तो ये हमें बड़ा दिल करना पड़ेगा कि वो इंश्योरेंस इसीलिए दिन के लिए पे किया था हमने, कि अगर कोई छोटी मोटी बात गलती से, ना गलती से एक्सीडेंट हो गया तो उसके कवर करने के लिए हमने इंश्योरेंस करवाया था, ना कि लड़ने के लिए करवाया था। ये पेशेंस हमें बड़ा दिल करके करना ही पड़ेगा
1: जी। अब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बिल्कुल अपने 2 मिनट बचाने के लिए रॉन्ग साइड लेते हैं, और खास तौर पर से मैंने ये देखा है कि फरीदाबाद में रॉन्ग साइड का कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा है। आप दिल्ली जाएं चालान से डर लगता है, लेकिन फरीदाबाद में लोगों को शायद चालान से डर ही नहीं लगता है, हालांकि हम बहुत ट्रैफिक ऑफिसर से बात कर चुके हैं और उन सब के बाद चीज़ें यही निकल के आती है कि चालान तो बहुत हो रहे हैं, अभियान तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहे।
0: अभी इसमें दो बातें कहेंगे हम, एक तो NPR कैमरेज लगा रखे हैं, हर एक जगह कैमराज हैं, उनमें बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारा चालान हो कहाँ रहा है, वो रॉन्ग साइड जाएंगे और उनका हो जाएगा। पीछे एक किसी ने आके बताया जी मेरा 1,12,000 का चालान हो गया स्कूटी का।
1: अच्छा,
0: हम बहुत हैरान थे इस बात के लिए कैसा हुआ, पता चला कि वो श्रीमान जी घर से निकलते हैं विदाउट हेलमेट होते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं और सिग्नल जंप करते हैं, तो 3 चालान जाती वक्त, 3 चालान आते वक्त, हर रोज लेते
1: हैं
0: 6 चालान डेली के ले रहे हैं, तो वो उनको पता ही नहीं चला 3 महीने में लगभग 1,00,000 कुछ के पार निकल गए।
1: अच्छा,
0: उसके बाद उनको दिमाग में आया, वो खुद अब 2-3 जगह में पता चला कि वो खुद लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, आपके घर चालान पहुंचे।
1: ये फरीदाबाद के हैं,
0: ये फरीदाबाद के हैं। दूसरा एक अभियान और चलाया फरीदाबाद पुलिस ने कि रॉन्ग साइड जाने वालों को कोशिश करेंगे हम कंट्रोल करें, फिर भी ना हो तो रॉन्ग साइड जब एक जहां बीच में डिवाइडर बना हुआ है, एक सड़क जाने की है एक आने की है, अगर उस पर रॉन्ग साइड है तो उसका चालान की बजाय व्हीकल जब्त करके पैदल जाए।
1: जी,
0: स्पष्ट पता है कि हमें ये सड़क जाने की और आने की है, फिर भी धक्का कर रहे हैं, तो उनके व्हीकल जब्त कर लिया जाए, वो पैदल टैक्सी से निकल जाए, वो एक बार जाएंगे दोबारा नहीं जाएंगे,
1: दोबारा नहीं जाएंगे, तो ये स्ट्रिक्टनेस जरूरी है।
0: ये लास्ट में आके तब करनी पड़ी जब जागरूक अभियान चला दिए हमने, सब कुछ कर दिया, फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो मन मना के चला है, तो मन मना के पुलिस ने मन मना लिया है कि जी ऐसे जो करेंगे उनका व्हीकल जब्त कर लिया जाए, उनको पैदल भेजा जाए।
1: और जब्त करते हैं?
0: हाँ करते हैं, शुरू कर दिया काम,
1: कर दिया है। तो शुरू, जो लोग हमें सुन रहे हैं और वो रॉन्ग साइड के आदी हो चुके हैं, तो आपको हम ये बता दें कि गाड़ियां जब्त करने का जो

0: ट्रेंड है वो फरीदाबाद पुलिस का शुरू हो चुका है, तो अगर आपको लग रहा है आप रॉन्ग साइड लेके आसानी से निकल जाएंगे, कभी एक आधी बार निकल सकते हैं पर जनरली अब आप पकड़ में भी आ जाएंगे
1: जी।
0: तो सर बहुत सारी बातें आपने कही हैं और बहुत सारी जानकारी नहीं है, चलते चलते एक छोटा सा मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए जरूर कही।
1: हम सभी से प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि नशे के खिलाफ एकजुट होके जैसे स्वतंत्रता संग्राम चलाया था, स्वतंत्रता की लड़ाई चलाई थी, हर घर से इंसान स्वतंत्रता के लिए निकला था, इसी तरह अपील करें कि नशे के खिलाफ भी हर घर से हर इंसान जागरूक हो और जागरूक करे और नशे को बाय बाय कहे। ट्रैफिक के बारे में ये भी प्रार्थना करेंगे कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जहाँ जहाँ बंद पड़ता है हर एक जगह पुलिस व्यवस्था के लिए लगाई हुई है, लेकिन हर आदमी के लिए हर जगह पुलिस लगाना संभव नहीं है। जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे ट्रैफिक स्मूथ नहीं चल पाएगी, सबकी व्यवस्था के लिए सब लोग सहयोग करें। और तीसरा हमारा वेरिफिकेशन के लिए था, वेरिफिकेशन आपकी, आपके नगर की, आपके देश की सुरक्षा के लिए है, कोई उसमें बुराई नहीं है, समय पे कराने पे कोई फालतू लफड़ा नहीं है, आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल ठीक समूथ हो जाएगा, यही हमारी प्रार्थना है, यही इंतजार है
0: जी। तो बहुत सारी बातें आज हमने सुरक्षा संवाद में जानी है, हमारे साथ जुड़े रहे भटकल के ACP श्री अर्जुन जी, और जिन्होंने बहुत सारी डिटेल में बातें बताई हैं कि वेरिफिकेशन कितनी ज़रूरी होती है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी तक जब्त हो सकती है, और सबसे ज़रूरी चीज़ नशे के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी, आपको जागरूक होना पड़ेगा और अपने बच्चों को इस नशे से बचाना पड़ेगा। फिलहाल सुरक्षा संवाद में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से करेंगे मुलाकात एक नए अधिकारी के साथ। उम्मीद है आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने सवाल हमें 8010781078 पर भेजते रहें। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आपको पता है एक खास कार्यक्रम है जो मैं आपके लिए हर हफ्ते लेकर आती हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाती हूँ जो मानवता के काम कर रही हैं। आज के जमाने में जहाँ हम कहते हैं कि इंसान इंसानियत भूल गया है, वहाँ मानवता जिंदा है कुछ ऐसे ही लोगों के कारण। और आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर किरण मोदी। डॉक्टर किरण मोदी फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं उदयन केयर की। और ये उदयन केयर की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार का काम होता है, और क्या आपने आज तक इस नाम को सुना है, और अगर हाँ तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आज इस पूरे कार्यक्रम में आपको पता लगने वाला है। और इस खास बातचीत के लिए करेंगे डॉक्टर किरण मोदी का स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। डॉक्टर किरण आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी आपको कि आपने ये मौका हमें दिया।
1: डॉक्टर किरण, आप एक ऐसे मोड़ पर थी जिंदगी के जहाँ आपके पास अपने करियर के लिए बड़ा फ्लरिशिंग करियर चूज करने का मौका था, लेकिन ऐसे में आपने शुरुआत की उदयन केयर की। सो मुझे बताइए इसके पीछे की क्या कहानी थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ?
2: अगर मैं देखूं दूर अपने बचपन तक जाती हूं तो मुझे शायद पहले से बहुत इंटरेस्ट था कि बच्चों के लिए, जो लो रिसोर्स फैमिलीज हैं उनके बच्चों के लिए कुछ किया जाए जिससे कि वो पढ़ सकें, कुछ जीवन में बन सकें। और मुझे एक घटना याद आती है बचपन की, जब मैं कुल में 8 साल की थी, अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में बहुत भीड़ भड़क्का था, अचानक हाथ छूट गया और अचानक मैंने देखा मेरे माता पिता नहीं हैं। उस 2 घंटे में जब तक मुझे पुलिस ने पकड़ा और ले जाके वहाँ पुलिस स्टेशन में बिठाया, तब तक मेरे माता पिता ढूंढते ढूंढते मुझे आए, इसमें 2 घंटे लग गए थे। उन 2 घंटों में मेरी जान निकल गई थी और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अगर एक बच्चे के साथ उसके माता पिता नहीं होते हैं तो उसके ऊपर क्या बीतती है और उसके मन में कितने डाउट्स आते हैं कि नाउ व्हाट, अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी, वो सारी चीज़ें। और हमारे घर में कुछ बच्चे थे जिनको कि पढ़ने की ज़रूरत थी, जो पढ़ नहीं पा रहे थे, मेरी जैसे मेरी माँ की जो हेल्पर थी उनकी बेटियाँ। इन सारी चीज़ों ने मुझे इस तरफ एक रुझान दिया बचपन से ही, और मैं कुछ कुछ करती ही रही। कभी जब वॉर्स हुए तो उनके लिए मैंने फंड रेज किए और जाकर के गवर्नमेंट को मैंने वो जो पैसों की थालियाँ जमा की थी वो जाके दी। इन सारी चीज़ों से मुझे फंडरेजिंग के प्रति भी बड़ा इंटरेस्ट हो गया था। तो इस तरह से करके ज़िंदगी बढ़ती चली गई। फिर कहीं शादी जल्दी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, लेकिन मेरी पढ़ाई जारी रही। उस पढ़ाई के बीच में ही देखते ही देखते कब मैं 39-40 की हो गई और मेरी PhD भी मैंने ज्वाइन कर लिया था और ख़त्म होने वाली थी। अचानक जीवन एक ऐसा झटका कभी देता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया, लेकिन लगता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। I had a personal tragedy। उस ट्रेजिडी के बाद मुझे लगा अगर मुझे कुछ करना है जीवन में तो सिर्फ दूसरों के लिए करना है, और वो दूसरों के लिए एक्चुअली नहीं होता है, आप कर खुद के लिए रहे होते हैं। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं किसी के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप कर पाते हो। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे चुना इस रास्ते के लिए और मुझे रास्ता दिखाया। मैंने सबसे पहले बच्चों के होम्स चालू किए, क्योंकि बचपन की ये कहानी याद थी मुझे, जब मैं अकेली हो गई थी, मुझे लगा जिन बच्चों के कोई माता पिता नहीं है उन बच्चों को मैं माता पिता की तरह सब प्यार दे पाऊँ, और अगर मैं करना चाहती हूँ तो बहुत लोग समाज में जो ऐसा करना चाहेंगे। ऐसे लोगों को जोड़ करके एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो ऑर्फन हैं या अबैंडन्ड हैं उनको भी एक पारिवारिक सुख, एक स्टेबिलिटी, एक उनकी मेंटल हेल्थ की परेशानियों को समझना, उन सारे इश्यूज पे हम एड्रेस कर पाए। दूसरी तरफ उन बच्चियों को जिनको मैं पढ़ाना चाहती थी, वहाँ से ये निकल के आया कि हमें कोई ऐसा एजुकेशन प्रोग्राम चालू करना चाहिए जिससे जो बच्चियाँ लो रिसोर्स फैमिलीज में हैं, जहाँ माता पिता होते हुए भी अपने बच्चों की उतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो हम लोगों ने इस तरह से उदयन घर्स की कल्पना की एक तरफ, और दूसरी तरफ उदयन शालिनी फेलोशिप एंड उदयन केयर ITVT प्रोग्राम, जिसमें कि स्किलिंग एंड अलग अलग तरह की शिक्षा दी जाती है जिससे कि बच्चों को जॉब मिल सके, यूथ को जॉब मिल सके। ये हमारी कहानी है पूरी, कुछ ही शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है।
1: डॉक्टर किरण, अगर मैं सही मायने में पूछूं तो उदयन केयर की ऑफिशियल शुरुआत कब हुई?
2: 1994 में मैंने ये ट्रस्ट सेट किया था फरवरी में। और जी
1: सो आप सोचिए दोस्तों, 1994 से और आज तक एक लंबा सफर है जो डॉक्टर किरण मोदी ने इन बच्चों को उनका भविष्य बनाने के लिए दिया है। अब कितने खूबसूरत ऐसे पल होंगे जो बच्चे यहाँ से पढ़कर आगे गए हैं, वो वापस पलटकर इस घोंसले में जब आए हैं और कुछ बनकर आए हैं, तो कितनी खुशियां लेकर आए होंगे। बहुत सारी बातें होंगी और इन बातों को हम जरूर जानेंगे डॉक्टर किरण मोदी से। बट उससे पहले वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, छुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।
3: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजी भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं उदयन केयर के साथ, जिसके फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर किरण मोदी हमारे साथ है। डॉक्टर किरण किस प्रकार से काम करते हैं, एक नटशेल में आपने जरूर बताया, पर मैं जाऊंगी थोड़ा सा विस्तार से। हमारे सभी लिसनर्स को आप बताएं कि जिस तरीके से आपने ये होम सेटअप किए, तो बच्चे कहाँ से आए, कैसे लाते थे, क्या कोई जरिया था जिस तरीके से कोई आज भी बच्चा आपके पास आ सकता है, सो किस प्रकार से ये पूरा काम कर रहे हैं आप?
1: सो हम लोगों का इरादा तो ये था कि इस तरह के होम्स बनाएं जिसमें कि बच्चों को एक पूरी परिवार की तरह उनको रखा जाए और उनको पूरा आगे बढ़ने के लिए हर तरह की सुख सुविधा मिले। और इसीलिए हम लोगों ने छोटे होम्स की कल्पना की। जिस जमाने में हमने शुरू किया था उस समय 100 चिल्ड्रन नॉर्म था होम्स का, जो कि मुझे समझ नहीं आया कि इतने सारे बच्चे जब एक संग होंगे तब कैसे उनका आप इंडिविजुअली ध्यान रख पाएंगे। और मुझे ऐसा लगा कि बच्चों में ये बॉन्डिंग एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग को जगाना बहुत जरूरी है। उनको लगे कि ये उनका अपना घर है, उसके लिए आपको जरूर थोड़े कम नंबर में बच्चे चाहिए। तब हम लोगों ने एक कल्पना की कि 12 बच्चों का होम हो। और सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट को अप्लाई किया था, तो बड़ा मुश्किल था वो लाइसेंस भी मिलना, क्योंकि बिना लाइसेंस के आप बच्चों को नहीं रख सकते। ये बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि उन लोगों को इतने बड़े बड़े होम्स की ही आदत थी कि वो छोटे होम्स नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका भी तो काम बहुत बढ़ जाता है। लेकिन फिर अंत में हमारी बात उन लोगों को समझ में आई कि जिस तरह के बच्चों को क्वालिटी केयर हम देना चाहते हैं, हमें छोटे होम्स ही चाहिए। फिर हमें पहले एक होम का परमिशन मिला, फिर तो धीरे धीरे मिलते चले गए और देखते ही देखते 17 होम्स बनते चले गए, जिनमें कि 12-12 बच्चे एक एक होम में रहते। और आइडिया ये था कि ये बच्चे समाज के बीच में रहें, इसीलिए हम लोगों ने जो होम्स बनाए वो बिल्कुल मिडिल क्लास लोकेलिटीज़ में, एक कोई बड़ी बिल्डिंग में 3-4 फ्लैट्स हैं उनमें एक फ्लैट में हमारे बच्चे रहें, इस कल्पना के साथ शुरू किया था, जिससे बच्चों को शुरू दिन से समाज के बीच में रहना आए। तीसरी चीज़ जो हमने इसमें जोड़ी और जो कि बहुत अलग थी, उसको हम बोलते हैं मेंटर मदर एंड मेंटर फादर कॉन्सेप्ट। जब मुझे ये लगा कि मैं चाहती हूँ कि एक माँ की तरह इन बच्चों को पाल पाऊँ, तो आई एम श्योर देर आर मैनी पीपल इन सोसाइटी जो कि ये भी करना चाहते होंगे। और ये सच ही था, देखते ही देखते हम लोग 37 मेंटर पेरेंट्स हो गए जो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह बड़ा कर रहे थे। और पूरा जो स्टाफिंग है, जो गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड स्टाफिंग है, उनको पूरे अच्छे से हेल्प कर पा रहे थे कि इन बच्चों को सही रास्ता मिल पाए। तो इस तरह से करके हमने शुरू किया था। और जैसे जैसे बच्चे 18 के होते गए, हम लोगों ने रियलाइज किया कि जो लाइसेंस होता है होम्स का वो 18 तक खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या 18 साल में अगर हमें किसी ने नहीं उठाया होता तो क्या आज हम इस लायक होते? तो किसी से भी आप पूछ के देखिए, 18 साल की उम्र इतनी कितनी वो ऐसी उम्र है कि जहाँ बच्चों को और ज्यादा मदद की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने आफ्टर केयर प्रोग्राम्स चालू किए और हमारे बच्चों को आफ्टर केयर दिया, जिससे कि वे आगे की पढ़ाई कर सकें, उनके मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकें, उनको इंटर्नशिप और उनको जॉब्स दिला सकें। टिल द टाइम द चाइल्ड स्टैंड्स ऑन हिज ओन फीट, दे वी लुक आफ्टर देम। तो ये हमारा उदयन घर और उदयन आफ्टर केयर का कॉन्सेप्ट था। यहीं से समझ में आने लगा था कि बहुत सी संस्थाएं अपने बच्चों को 18 के बाद नहीं देख पा रही हैं। तब हम लोगों ने एक रिसर्च स्टडी की, जो कि एक तरह से अपने आप में जिसने एक गेम चेंजर थी। उस रिसर्च स्टडी ने क्लियर बताया कि जिन बच्चों को आफ्टर केयर नहीं मिल पाता है कितना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, उनको आफ्टर केयर मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद धीरे धीरे समाज में भी चेतना आई, पॉलिसी लेवल पे भी बदलाव आए और आज एक आफ्टर केयर के नाम से सब समझने लगे हैं कि वॉट इज़ आफ्टर केयर, जहाँ बच्चों को 18 साल के बाद भी उनको पूरी तरह से उनको सपोर्ट किया जाए। तो इसको, इस प्रोग्राम का हम बोलते हैं आफ्टर केयर आउटरीच प्रोग्राम। इसमें भी हमारे पास 900 से ज़्यादा बच्चे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो हमारी संस्था में बड़े नहीं हुए, किसी और संस्था में बड़े हुए हैं, लेकिन 18 के बाद उनका ख्याल हम लोग कर रहे हैं।
0: कितनी खूबसूरत से कहानी जैसा लग रहा है आपका ये पूरा का आफ्टर केयर प्रोग्राम और उदयन केयर प्रोग्राम। लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई बहुत सारी मेहनत लगी होगी, और सबसे बड़ी मेहनत जो मुझे नजर आ रही है कि आपको ये बच्चे तो मिल गए होंगे, लेकिन इन बच्चों के लिए माता पिता ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई जिस तरीके के माता पिता और उनका समर्पण जरूरी है, वो डेडिकेशन आज के जमाने में अपने बच्चों के लिए भी माता पिता का टाइम निकालना, समय दे पाना बड़ा मुश्किल है। सो कैसे किया इन्होंने ये जरूर जानेंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं आज डॉक्टर किरण मोदी जी के साथ। उदयन केयर की फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी है। एक लंबा सफर इन्होंने तय किया है, इतने सारे बच्चों की प्रैक्टिकली ये माँ है। और आप खुद ही देखिए ना,

0: के साथ रहते थे इन घरों में, और अगर हाँ तो ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ?
1: नहीं, ऐसा है कि मेंटर पेरेंट्स जो हैं, दे आर ऑल वॉलंटियर्स। जब वो स्वयं सेवी हैं, वो एक पैसा भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लेते हैं, बल्कि दे आर आवर बिगेस्ट रिसोर्स बिल्डर्स। वे अपने अपने जानकार लोगों को भी लाते हैं, वो वॉलंटियर्स लाते हैं, वो धन की भी व्यवस्था करते हैं, बच्चों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसके प्रति भी ध्यान देते हैं। उसके लिए उनका वहाँ रहना ज़रूरी नहीं है। हर होम में जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, कितने स्टाफ होनी चाहिए, जिसमें सोशल वर्कर से लेके मेंटल हेल्थ वर्कर से लेके स्पेशल एजुकेटर, जितनी भी उन लोगों ने बताया है गवर्नमेंट की तरफ से, उन सारे स्टाफ होते हैं। उन स्टाफ को भी

0: और उनको गाइड करते हैं। तो ये सिस्टम है। और खास करके हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आसपास के नेबरहुड में भी बच्चों की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी कनेक्शंस इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जब आपके अपने माता पिता नहीं हैं, आपको कम्युनिटी कनेक्शंस तो चाहिए ना। और उसके अलावा भी हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोई भी बच्चा अगर होम में आ जाता है, हमारी पूरी चेष्टा रहती है किसी तरह उसके परिवार को ढूंढ के उसके परिवार को स्ट्रेंथन किया जाए, एक फैमिली स्ट्रेंथन हो जिससे कि बच्चा अपने परिवार में वापस जा सके। हमने ये भी देखा जब बच्चे संस्थाओं में आते हैं, न केवल वो अपनी भाषा भूल जाते हैं, अपना कल्चर भूल जाते हैं, अपना लैंग्वेज भूल जाते हैं, सब उनका खो जाता है, उनका धर्म खो जाता है। अगर वो अपने परिवार में बड़े होते हैं उसी माहौल में, वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे के परिवार मिल जाएं और बच्चे अपने परिवारों में वापस जा सकें और कहीं किसी को कोई ज़रूरत हो उसको हम लोग किसी तरह भी सपोर्ट कर सकें। जिन बच्चों के परिवार नहीं मिल पाते हैं, वो बच्चे हमारे घरों में होते हैं, इनमें से भी अब अडॉप्शन वगैरह में भी कुछ बच्चे जाने लगे हैं। तो पूरी कोशिश ये रहती है कि बच्चे को लॉन्ग टर्म उनको पेरेंटिंग मिल सके। जो बच्चे रह जाते हैं उनके लिए मेंटर पेरेंट्स लॉन्ग टर्म पेरेंट्स हैं। वो आफ्टर केयर में आ जाते हैं तो भी मेंटर पेरेंट्स उन्हीं के पेरेंट्स हैं। जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तभी भी हम ही लोग उनके पेरेंट्स हैं। तो इस तरह से हर लेवल पे हमने कोशिश की कि एक बच्चे को परिवार वाला कि परिवार की क्या अहमियत है ये समझ में आए, क्योंकि अल्टीमेटली वी वॉन्ट देम टू बी फैमिली पीपल टुमारो।
1: वाकई डॉक्टर किरण, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपने जैसे कहा कि बहुत सारे बच्चे, मतलब 17 घर और 12 बच्चे हर घर में, इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों की उम्र कितनी है, एज अर्ली एज कितने छोटे बच्चे को लिया जाता है इन होम्स में, और 18 साल तो आपने बताया है कि उसके बाद वो आफ्टर केयर में जा सकते हैं।
0: जी, तो पहले हमारे 17 होम्स हमने बना लिए थे, उसके बाद हम लोगों ने ये धीरे धीरे रियलाइज करना चालू किया कि बच्चे अगर अपने परिवार में वापस जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तब हमने अपने होम्स के नंबर्स कम करने चालू किए जिससे कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर सकें रादर देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इसमें हम लोगों को पूरा परिवारों को ढूंढना, उन परिवार वालों के संग काम करना, बच्चों को वापस भेजना, ये सब कुछ आ जाता है, और कहीं उनको कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत हो उनको हेल्प करना। इसमें ये पूरा काम ऐसा होता है जिसमें कि किसी तरह बच्चे के जीवन में एक स्टेबिलिटी आ सके।
1: भाई देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत आसान काम है तो बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी मुश्किलें जरूर इन राहों में आई होंगी। क्या थी वो चुनौतियाँ और किस तरीके से उन्होंने इन हर्डल्स को पार किया, जरूर जानेंगे। बस आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइव।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती, भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

का प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उससे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छत पताती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: उठता तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं डॉक्टर किरण मोदी जी के साथ, जो फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं उदयन केयर की। डॉक्टर किरण, सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन जब प्रैक्टिकली करने जाएं तो ये बहुत मुश्किल होता है। किस प्रकार के चैलेंजेस आप फेस करती हैं? देखिए, मैं समझ सकती हूँ सबसे बड़ा चैलेंज फंड्स का रहता ही है, लेकिन इसके अलावा रिसोर्सेस को सही मायने में पहुँचाना, उन बच्चों के लिए आप माता पिता तो बनते हैं लेकिन कई बार ना बड़ा मुश्किल होता है कि आप प्रैक्टिकली माँ बाप बन पाएं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं इन बच्चों के दिलों में कहीं कुछ वॉइड तो नहीं रह गया, कहीं कोई वैक्यूम तो नहीं रह गया। तो किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करते हैं आप?
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ऐसा लगता है फंड्स एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हम लोगों ने शुरू से डिसाइड किया था गवर्नमेंट फंडिंग नहीं लेंगे, हम लोग अपने आप अपने फंड्स रेज करेंगे, तो वो हम करते रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है मेंटल हेल्थ। यू कैन इमेजिन, एक बच्चा अपने परिवार से जब बिछुड़ता है और बिछुड़ने के बाद अपने घर से लेकर के हमारे बच्चों के घर तक पहुंचने के बीच में जो प्रक्रिया है, सड़क पर आना, सड़क पे भी टॉर्चर होना, पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, ये सारे कुछ होते हुए फिर वो अंत में हमारे तक आते हैं, ऐसा कुछ उनको उनके मेंटल हेल्थ पे हर चीज़ का असर पड़ता है। फिर आप एक बच्चों के घर में आ जाते हैं, वहाँ पर भी अगर आपके पास अच्छे काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स नहीं हों तो बच्चों को उनकी मानसिक स्थितियों को कैसे उनको बचाया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि अपने आप पर कैसे विश्वास रखो और आगे बढ़ो, ये सारा एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और वी आर वेरी लकी कि हमने शुरू दिन से ही मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इज इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ उदयन घर प्रोग्राम, जिसमें हमारे पास चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं और काउंसलर्स हैं, सोशल वर्कर्स तो हैं ही, तो ये लोग सब मिलके एक टीम की तरह, और ऊपर से पेरेंट्स, मेंटर पेरेंट्स, हम लोग सब एक टीम की तरह एक एक बच्चे की बात को समझते हैं, एक केस मैनेजमेंट की तरह, बच्चे की क्या जरूरतें हैं, मानसिक जरूरतें क्या हैं, किस चीज़ के कारण उसको एक ट्रॉमा महसूस हो रहा है, ये ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर, इसकी हम जो ट्रेनिंग है हम अपने सारे स्टाफ को दिलाते हैं और हम लोग सब ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर के अनुसार बच्चे को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि ये तो बहुत गहरा गांव छोड़ता है माता पिता से अलगाव, तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को आपस में एक परिवार की तरह वो रहें और बड़े हों, जिससे कि एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड बिलोंगिंग होगी। जब आपकी एक बॉन्डिंग होगी आपस में तो मोर पॉसिबिलिटी कि आपको वो अकेलापन नहीं करेगा इतना ज़्यादा जितना कि अकलता। तो हम लोग ये सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमने एक रिसर्च किया और जिसमें निकल के आया जो बच्चे आफ्टर केयर जिनको नहीं मिलता है उनके लिए कितना नुकसानदायक है, वहीं से हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स चालू किए आफ्टर केयर प्रोग्राम्स आउटरीच बाहर के बच्चों के साथ भी, और उसी के तहत हम लोगों ने और भी बहुत सारे जैसे केयर लीवर्स इनको बोलते हैं, क्योंकि ये केयर छोड़ चुके होते हैं, तो इन केयर लीवर्स को किस तरह से आपस में जोड़ा जाए, वो अपने आप में एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा संबल बन सके। इस आइडिया से हमने पहला केयर लीवर नेटवर्क दिल्ली में चालू कराया था, आज वो इतना आगे बढ़ गया है और उसकी तरह पूरे हिंदुस्तान में 13 या 15 आफ्टर ये केयर लीवर नेटवर्क बन गए हैं अलग अलग शहरों में, जहाँ ये बच्चे खुद आगे, ये यूथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा सहारा तो वही है जब आप एक दूसरे के काम आ सकें।
2: वाकई डॉक्टर किरण, एक बड़ा पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी, जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपनी फैमिली बनाने लगते हैं, तो क्या कभी आपको लगा कि कोई परेशानी नहीं आई, ये अपने परिवार को और ज़्यादा संजो कर रख पाते हैं?
3: ऐसा तो मेरे पास कोई, हमने स्टडी नहीं की है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये बच्चे अधिक अच्छे से अपने परिवार को संजो पाते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आज वैसी ही अगर आप देखिए तो शादी एक मतलब एक अजीब सा एक माहौल होता जा रहा है, एक आम परिवार में बड़ा हुआ लड़का या लड़की भी अपनी शादी को नहीं बचा पा रहे हैं, बार बार शादियां टूटने लगी हैं, तो इन बच्चों के लिए जिन्होंने शुरू से ही टूटे हुए परिवार देखे और कितना भी मेंटल हेल्थ की आपने करी कोशिश करी, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इतने स्ट्रेंथ आप में आ जाए, लेकिन ये कांस्टेंट इनको हम लोग का सुपरविजन होता है, कांस्टेंट इनसे बातचीत होती है, तो काफ़ी जगह जहाँ ये प्रॉब्लम में खड़े होते हैं हम लोग इनकी हेल्प कर पाते हैं। इसमें खाली एक इमोशनल हेल्प की बात नहीं है, इसमें और भी है, जॉब छूट जाती है। अब जैसे कोविड के समय में जब जॉब छूट गई बच्चों की, कितनी उनको दिक्कतें हुई होंगी आप सोच सकते हो, क्योंकि उनके पास और कोई परिवार तो नहीं था ना, जो था ये उदयन परिवार ही था। इसी तरह बराबर किसी किसी के जीवन में आपने कमाना भी चालू कर दिया है, लेकिन अचानक एक्सीडेंट होता है और आपकी तबीयत खराब हो जाती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा आपको हेल्प चाहिए हेल्थ के लिए। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें होती ही रहती हैं जिसमें हम लोग बराबर अपने बच्चों के संग जुड़े रहते हैं। और जो बच्चे अभी कुछ लड़कियां लड़के तो 35 साल 36 साल के भी हो गए, बट वी आर स्टिल इन टच विद एवरीवन। और मुझे बड़ा गर्व है कहते हुए कि 3,500 से ज़्यादा बच्चे इन घरों से निकल चुके हैं, और इस वक्त हमारे यहाँ कम से कम भी 120 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। सो वी आर इन टच विद एवरीवन।
2: आप खुद ही सोचिए कि 1994 में शुरू हुआ ये खूबसूरत सा सफर, आज इतनी लंबी जर्नी को क्रॉस करके आज करीबन 3500 ऐसे बच्चे हैं जो अपना एक भविष्य बना रहे हैं। और आप सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जो शायद इससे वंचित हैं। सो उन्हीं के लिए खास कार्यक्रम है कि आपके लिए एक जगह है और उसका नाम है उदयन केयर। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं डॉक्टर किरण मोदी जी के साथ, जो कि फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी है उदयन केयर की। डॉक्टर मोदी, अब एक बड़ा अहम सवाल, बहुत सारे लोग आपको सुन पा रहे हैं हमारे इस रेडियो के जरिए और बहुत सारे दिलों में भावनाएं जागी होंगी। सो अगर कोई आपके साथ वॉलंटियर करना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहता है, कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है, सो एसोसिएट करना चाहता है, कैसे किया जा सकता है?
1: जी, तो हमारा सारा प्रोग्राम बहुत जबरदस्त वॉलंटियरिंग के ऊपर आधारित है। अभी हमारे और भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में बात भी नहीं कर पाए हैं और आपका शायद समय खत्म हो जाएगा। बाकी प्रोग्राम्स की बात करने के लिए कभी और आप समय निकालिएगा, लेकिन आज यहाँ पर जो आपका ये प्रश्न है, हम लोग हर लेवल पे वॉलंटियर्स की आस करते हैं और उनको तलाश करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, जिससे कि वो अपना काम

करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके पास मौका है। बहुत ही सिंपल है, www.udayancare यानी उदयन केयर पर जाइए और इनसे कनेक्ट हो जाइए। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है जो आप इस दुनिया को देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम एक लंबी जर्नी पर थे डॉक्टर किरण मोदी जी के साथ, जो कि फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं उदयन केयर की। डॉक्टर किरण, ढेर सारे सवाल आपसे पूछे और आपके दिल की इतने सारे प्यार को आपने उदयन केयर का एक खूबसूरत सा नाम दिया और इतने सारे बच्चों को आप ये प्यार दे पा रही हैं। वैसे आज के जमाने में मैंने देखा है कि जमाना बहुत ही सेल्फिश हो गया है, तो जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे सभी सुनने वालों को?
1: मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जमाना ज्यादा सेल्फिश हो गया है, और खास करके जो यूथ है, जो जेंजी जिनको हम बोलते हैं, या उनके पहले वालों को मिलेनियल्स, हर एक कोई, इवन जनरेशन अल्फा, सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और ये जनरेशन तो मुझे लगता है बहुत ही इस बात के लिए, उनको पता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है। मैं खाली अकेला नहीं चल सकती, मेरे साथ मुझे औरों को भी लेके चलना है। जो चीज़ हम इस जनरेशन में देख रहे हैं, एक ज़माना था हम लोग भी बच्चे थे, मुझे बहुत पसंद था ये सब करना, लेकिन मैंने नहीं देखा था मेरे फ्रेंड्स में कोई भी इतना आगे बढ़ता था और कुछ करने की कोशिश करता था। लेकिन आज आप देखिए, हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये सिखाया जाता है कि बच्चों को ज़रूर कहीं ना कहीं वॉलंटरी सर्विस करनी है। आज पेरेंट्स, अच्छे अच्छे पेरेंट्स भी चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे परिवारों से आए हैं, बहुत पैसे वाले परिवारों से आए हैं, वे भी अपने बच्चों को एक्सपोजर देना चाहते हैं कि बच्चे आएँ इन संस्थाओं में काम करें। तो मुझे लग रहा है कि ज़माना बदल रहा है, हर एक कोई कुछ करना चाहता है दूसरों के लिए। अब ये ज़माना वैसा नहीं है कि जहाँ हम खाली खुद ही का सोच रहे हैं।
0: भाई वाह, सुनकर बड़ा अच्छा लगा, और बहुत ही पॉजिटिव नोट पर किरण जी ने आज ये बताया है कि भाई चाहे वो हमारी आज की जनरेशन है या पुरानी जनरेशन है, दिलों में आज भी मानवता जिंदा है, और बस इसी आस के साथ ये कार्यक्रम भी जिंदा है। यूं ही मानवता फैलाते रहेंगे तभी हम जिंदगी में खुशियां पाएंगे। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर किरण सभी से?
1: बस यही बोलूंगी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। आइए हमारी वेबसाइट पे आइए, वहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हैं, हमें कनेक्ट करिए। वी विल फाइंड अ राइट प्रोजेक्ट फॉर यू एज पर योर अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास सिर्फ एक घंटा एक हफ्ते में, उसके लायक भी प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर आप चाहें आप 6 घंटे रोज के दें, उसके लिए भी प्रोजेक्ट मिलेगा।
0: सो स्वीट। तो भाई आपके लिए अब एक जगह है, वो है उदयन केयर। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर किरण आपसे बात करके, और एक बहुत ही खूबसूरत काम आप कर रही हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं और तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे बातचीत की।
1: मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन ऐसे ही नहीं, एक प्यारा सा गाना सुना रही हूँ और आपसे वादा कर दिया कि अगले हफ्ते मैं आऊंगी आपके पास। तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
3: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, समझा। ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताजुब की बात है इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए 1 टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने यह सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए यह जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है, बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था। मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावल पिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावल पिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसके दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी, पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी, पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपये में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे, पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था, इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में, यहाँ क्या धरा है भाई। होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहाँ उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीने काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामली शक्ल सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया, चुनांची उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भन्ना कर कहा, ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूं। तो मैं भी झक मारता हूं। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हिला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस न हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ, मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी, ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं, छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो। बोलो क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है। साफ साफ कहो तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ। तो कहो क्या इरादा है?
0: तुम जीते मैं हारी,
3: पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
0: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
3: हाँ सुल्ताना ही है।
0: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा।
3: मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी उटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले।
0: शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा,
3: शंकर मेरी एक बात मानोगे?
0: शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई।
3: तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर
0: कहो कहो रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा,
3: बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है।
0: शंकर ने यह सुनकर कहा,
3: तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
0: नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है।
3: बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी।
0: लो बस अब खुश हो गई। सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा,
3: क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो?
0: सुल्ताना ने हंसकर कहा,
3: तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे।
0: इस पर शंकर ने

0: कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी, बोलो देती हो?
1: ले लो।
0: ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: રેડિયો 101 7.8 FM પર ઢેર સારી મસ્તી, ખૂબ સારા ફન, ક્યોંકિ યે હૈ ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1.
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सोच से और अपनी डेडिकेशन से ना सिर्फ अपनी लाइफ को बदला है बल्कि दूसरों के लाइफ के लिए भी मिसाल बन गए हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त और आज का प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ और साथ ही एक ऐसी पर्सनैलिटी की कहानी लेकर आई हूँ जिनका नाम सुनते ही हमें सबसे पहले एक वर्ड याद आता है और वो वर्ड है टीचर। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ टीचर की ही बात नहीं करने वाले हैं बल्कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो टीचर भी रहे हैं, फिलोसोफर भी रहे हैं और स्कॉलर भी रहे हैं और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टीचर की जर्नी प्रेसिडेंट तक कैसे पहुंच गई और उनकी लाइफ में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है। तो दोस्तों इसी जर्नी को हम आज के सक्सेस मंत्रा में थोड़ा और ज्यादा क्लोजली समझने वाले हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5th ऑफ सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल था लेकिन उनके अंदर नॉलेज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। पढ़ाई के प्रति उनकी डेडिकेशन ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। धीरे धीरे उन्होंने फिलोसफी को अपना स्पेशल एरिया बनाया और टीचिंग फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो एजुकेशन को सिर्फ बुक्स और एग्जाम तक ही लिमिटेड नहीं समझा करते थे बल्कि उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि इंसान की सोच को डेवलप करना, उनके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना और लाइफ को समझने के लिए रेडी करना। और शायद इसी वजह से उनकी जर्नी आज भी हमारे लिए इतनी ज्यादा रेलिवेंट है। दोस्तों सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए अच्छी जॉब मिलना, किसी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना या फिर किसी के लिए अपने पैशन को फॉलो करना। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझाते हैं कि सक्सेस के साथ नॉलेज और कैरेक्टर भी जरूरी होता है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम उनकी लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानेंगे कि उनकी जर्नी हमें क्या क्या सिखाती है, स्पेशली जो आज की जनरेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उन्हें क्या क्या सीख मिल पाती है उनकी जर्नी के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है हमारे साथ। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम है जहां पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही प्यार प्यार से गाने भी। तो सुनेंगे बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की हमारे प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा में, जिनकी पूरी लाइफ ही नॉलेज और लर्निंग को जाना कि एक सिंपल से बैकग्राउंड से आने वाले राधा कृष्ण जी कैसे अपनी पढ़ाई और नॉलेज के थ्रू एक अलग आइडेंटिटी बना पाए। लेकिन दोस्तों, उनकी जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उनके लिए एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेने या फिर एग्जाम पास करने का मीडियम नहीं था, बल्कि उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि अपनी थिंकिंग को डेवलप करना और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना। सोचिए, आज जब हम एजुकेशन को अक्सर मार्क्स, डिग्री, जॉब या फिर करियर के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये भी जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनका कोई मीनिंग समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हम एजुकेशन का रियल पर्पस मिस कर रहे हैं। राधा कृष्णन जी ने फिलॉसफी को अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। फिलॉसफी सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लगता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि लाइफ, नॉलेज और एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करना। और इसी सब्जेक्ट के थ्रू उन्होंने लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि थिंकिंग का एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। उन्होंने टीचिंग को भी बहुत सीरियसली लिया। उनका मानना था कि एक टीचर का रोल सिर्फ क्लासरूम में लेसन एक्सप्लेन करने का ही नहीं होता है, बल्कि टीचर स्टूडेंट को इंस्पायर करता है, उन्हें क्वेश्चंस को पूछना सिखाता है और उनके अंदर सोचने की एबिलिटी को डेवलप करता है। और दोस्तों, यही लेसन हमें आज अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना है और हम इसे कर सकते हैं। आज इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इंटरनेट पर एक क्लिक में थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स हमें मिल जाते हैं तुरंत में। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे समझते हैं और उसे अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं। राधा कृष्णन जी हमें लाइफ में ये सिखाते हैं कि लर्निंग एक फिक्स्ड एज तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ या फिर जॉब मिल गई, इसका मतलब लर्निंग खत्म हो गई है ये नहीं होता है। एक्चुअली रियल लर्निंग तो उसके बाद ही कंटिन्यू होती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक सिंपल मंत्रा याद रखिएगा कि मार्क्स आपको एक रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपको डायरेक्शन दे सकती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए, नई स्किल को सीखिए, क्वेश्चंस पूछिए और अपनी गलतियों से सीखिए और अपनी थिंकिंग को ओपन रखिए, क्योंकि सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सक्सेस ये भी है कि आप जो जानते हैं उससे अपनी और दूसरों की लाइफ को कितना बेटर बना पाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर राधा कृष्णन जी की एजुकेशन जर्नी से हमें आज का सक्सेस मंत्रा, पहला सक्सेस मंत्रा मिलता है कि लर्निंग को डेस्टिनेशन मत समझिए, उसे अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी बना लीजिए। और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे उनकी सक्सेस फिलॉसफी की, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हासिल करा है, साथ ही वो अपनी जर्नी से हमें मोटिवेट करते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब तक हमने उनकी एजुकेशन और लर्निंग के बारे में जाना है, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर उनकी सक्सेस का मंत्रा क्या था। दोस्तों, जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो अक्सर हम उनकी अचीवमेंट्स को काउंट करना शुरू कर देते हैं, कितने

अवार्ड्स मिले, कौन सी पोजीशन मिली, कितना नाम कमाया, लेकिन असली सक्सेस को समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि उस इंसान की सोच क्या थी और उसने अपनी जर्नी को कैसे बिल्ड किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी में से एक थी कंटिन्यूस लर्निंग। वो नॉलेज को भी एक फिक्स्ड चीज नहीं मानते थे, उनकी थिंकिंग हमेशा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस रही है। ये क्वालिटी आज के टाइम में हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज की जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है तो और कंपटीशन भी है उसी के साथ, हर फील्ड में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए करियर के ऑप्शंस आ रहे हैं और स्किल्स भी कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे हैं। और ऐसे में अगर हम ये सोच लें कि मुझे सब आता है तो शायद हम वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम कहें मैं और सीख सकता हूँ तो हमारी ग्रोथ का चांस हमेशा बना रहेगा। लेकिन उनकी लाइफ हमें डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस भी समझाती है। टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट को डायरेक्शन देने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। आपके पास कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं करते तो पोटेंशियल का रिजल्ट नहीं मिलता। एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी सिंप्लिसिटी। इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंचने के बाद भी उनकी पर्सनालिटी में सिंप्लिसिटी और डिग्निटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये हमें रिमाइंड देता है कि सक्सेस के साथ ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि नॉलेज के साथ कैरेक्टर। जी हाँ, सिर्फ इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं होता है, आप कितने नॉलेजेबल हैं उसके साथ ये भी मैटर करता है कि आप अपनी नॉलेज और पोजीशन का यूज किस पर्पस के लिए करते हैं। आज हम सोशल मीडिया पर सक्सेस को मोस्टली ग्लैमरस वे में देखते हैं, जैसे कि बड़ी सैलरी होना, लग्जरी लाइफस्टाइल होना, अचीवमेंट्स होना, सब कुछ इंस्टेंटली विजिबल है। लेकिन किसी भी रियल सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत, पेशेंस और कंसिस्टेंसी होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जर्नी भी हमें ये बताती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, सक्सेस एक प्रोसेस है, लर्निंग का, डिसिप्लिन का, पेशेंस का और कंटिन्यूसली बेटर बनने का। तो आज का सक्सेस मंत्र बहुत ही सिंपल है कि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन लर्निंग, डिसिप्लिन और कैरेक्टर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जा सकता है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज इस प्रोग्राम में हम चल रहे हैं जिस जर्नी के साथ, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी जर्नी ये प्रूव करती है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट आपका फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, जरा इमेजिन करिए कि एक यंग स्टूडेंट जो नॉलेज और फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखता है और पढ़ाई भी करता है, फिर टीचिंग को अपना करियर चूज करता है और धीरे धीरे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंचता है कि एक दिन वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाता है। ये जर्नी किसी मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी की रियल लाइफ जर्नी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से और फिलॉसफी के फील्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाकर की थी। उन्होंने डिफरेंट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में फिलॉसफी की पढ़ाई की और अपनी नॉलेज के थ्रू स्टूडेंट के बीच एक अलग रिस्पेक्ट अर्न किया। उनकी टीचिंग स्टाइल का फोकस सिर्फ इंफॉर्मेशन देने पर ही नहीं था बल्कि स्टूडेंट्स को सोचने और समझने के लिए एनकरेज करना भी था। उनकी एकेडमिक रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग हुई कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न रिलीजियस और एथिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सोचिए दोस्तों, एक इंडियन स्कॉलर का ऑक्सफोर्ड में जाकर इंडियन फिलॉसफी और थॉट को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन उनकी जर्नी यही नहीं रुकी। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने पब्लिक लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। जी हाँ, वो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने और 1952 से 1962 तक इस पोजीशन पर रहे। इसके बाद 1962 में उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद को भी संभाला। और अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात भी आती है कि एक टीचर और एक फिलोसोफर का देश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में से एक तक पहुँचना हमें क्या बताता है। ये बताता है कि आप जिस फील्ड में सिंसियरली काम करते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस फील्ड तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आप फ्यूचर जनरेशन को शेप कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज आपकी लर्निंग कल की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकती है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल में हैं तो डेडिकेशन और नॉलेज के थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जर्नी का एक और ब्यूटीफुल लेसन है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ एक डेस्टिनेशन से डिफाइन नहीं होने दिया बल्कि वो पहले टीचर थे, फिर फिलोसोफर थे, फिर उसके बाद स्कॉलर रहे, फिर डिप्लोमेट रहे और फिर प्रेसिडेंट बने। लेकिन हर स्टेज पर उनकी कोर स्ट्रेंथ नॉलेज और लर्निंग ही रही है। दोस्तों, हम भी लाइफ में कई बार अपनी करंट सिचुएशन को देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास रिसोर्सेस कम है तो मैं नहीं कर सकता, मेरी स्टार्टिंग स्ट्रांग नहीं है तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। लेकिन राधाकृष्णन जी की जर्नी हमें एक रिमाइंडर देती है कि स्टार्टिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, डेस्टिनेशन और डेडिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो आज का एक और सक्सेस मंत्रा कि अपनी करंट पोजीशन को अपनी फाइनल आइडेंटिटी मत समझिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी पॉसिबिलिटीज पर बिलीव रखिए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम और मैं हूं आरती स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की जर्नी पर हम चल रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ, उनकी लाइफ और उनकी इंस्पायरिंग थिंकिंग के साथ। अब तक हमने उनकी एजुकेशन, सक्सेस फिलोसफी और टीचर से प्रेसिडेंट तक की जर्नी के बारे में जाना, लेकिन दोस्तों राधाकृष्णन जी को सिर्फ उनकी पोजीशन की वजह से ही याद करना उनकी पर्सनैलिटी को बहुत छोटा कर देना होगा। उनकी सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज में से एक थी फिलोसोफर की। अब फिलोसोफर वर्ड सुनते ही आपको शायद लगता होगा कि ये टॉपिक थोड़ा सीरियस या फिर डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझे ना तो फिलोसफी का मतलब है कि लाइफ, नॉलेज और सोसाइटी से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सोचना, जैसे कि हम क्या सीख रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की थिंकिंग में एजुकेशन और ह्यूमन वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। उनके लिए एजुकेशन का पर्पस सिर्फ सक्सेसफुल करियर बनाना नहीं था, बल्कि ये एजुकेशन का रोल एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल, थॉटफुल और बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना था। और दोस्तों अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो ये थॉट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सोशल मीडिया, इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी ने नॉलेज तक पहुंचना बहुत इजी कर दिया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और विजडम एक ही चीज़ नहीं होती। आपके फ़ोन में थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को समझना, उनका सही यूज़ करना और राइट डिसीजन लेना, ये विजडम का पार्ट होता है। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग आज के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हर वायरल पोस्ट को सच मान लेना और हर ओपिनियन को फॉलो कर लेना या फिर सिर्फ किसी ट्रेंड का पार्ट बन जाना, क्योंकि सब कर रहे हैं, ये हेल्दी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। राधा कृष्णन जी के फिलोसफिकल अप्रोच हमें एनकरेज करती है कि हम क्वेश्चंस को पूछें, समझें और अपनी थिंकिंग को डेवलप करें। एक और इम्पोर्टेंट लेसन है, वो है कैरेक्टर। आपके पास नॉलेज है, डिग्री है, स्किल्स है, लेकिन अगर वैल्यूज और कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो सक्सेस इनकम्प्लीट रह जाती है। और अगर आज हम करियर गोल को सेट करते हैं, अच्छी जॉब मिलना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोशन, बिजनेस, पॉपुलैरिटी, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही हमें ये भी पूछना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन शायद हमारी जर्नी को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। तो दोस्तों राधा कृष्णन जी की थिंकिंग का एक और सक्सेस मंत्रा कि नॉलेज आपको इंटेलिजेंट बना सकती है, लेकिन राइट थिंकिंग और वैल्यूज आपको वाइज बना सकती है। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ अर्जित सिंह आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की और उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। अब तक हमने उनकी एजुकेशन और फिलोसफी, सक्सेस जर्नी और उनके थॉट को बहुत अच्छे से समझा, जान चुके हैं बहुत सारी बातें, लेकिन अब आते हैं उनकी लाइफ से जुड़े एक ऐसे दिन पर जिसे हम हर साल बहुत ही स्पेशल वे में सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 5th of September यानी कि टीचर्स डे की। दोस्तों, हम सब ने स्कूल या फिर कॉलेजेस में टीचर्स डे जरूर सेलिब्रेट किया होगा। कहीं स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए कार्ड बनाते हैं, कहीं पर परफॉर्मेंस भी होती है, तो कहीं टीचर्स के लिए स्पेशल एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में 5th of September को ही ये टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका कनेक्शन है डायरेक्टली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी से ही। जी हाँ, उनका जन्म 5th of September 1888 को ही हुआ था। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तब उन्हें कुछ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के अपनी विश को एक्सप्रेस किया, लेकिन राधाकृष्णन जी ने अपने बर्थडे को पर्सनली सेलिब्रेट करने के बजाय सजेस्ट किया कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। और दोस्तों, ये ही बात उनकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा स्पेशल बनाती है। जिस दिन को कोई भी इंसान अपने नाम और बर्थडे के साथ सेलिब्रेट कर सकता था, लेकिन राधाकृष्णन जी ने उस दिन को टीचर्स डे के ऑनर से सेलिब्रेट करने के लिए कनेक्ट कर दिया। इसके पीछे एक ब्यूटीफुल थॉट भी है कि एजुकेशन और टीचर्स की इंपॉर्टेंस को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। टीचर्स हमारी लाइफ में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने वाले लोग नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी एक टीचर का एक सिंपल सा सेंटेंस, एक एडवाइस या फिर एक छोटा सा एनकरेजमेंट हमारी पूरी डेडिकेशन को चेंज कर सकता है। स्कूल में जब हम किसी सब्जेक्ट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो टीचर ही हमें पेशेंटली उसे समझाता है। जब मार्क्स कम आते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है, और जब हम खुद पर डाउट करते हैं तब एक अच्छा टीचर हमें ये याद दिलाता है कि रिजल्ट आपकी पूरी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। आज के टाइम में भी टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी और AI ने लर्निंग को ईजी जरूर बना दिया है, लेकिन एक टीचर को स्टूडेंट की सिचुएशन को समझ कर उसे गाइड करता है। उस ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू ही अलग होती है। आज स्टूडेंट्स के लिए भी टीचर्स डे एक रिमाइंडर है कि अपने टीचर को सिर्फ एक दिन विश करना इनफ नहीं है, उनकी मेहनत को, उनकी गाइडेंस को और उनके टाइम को हमेशा रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा टीचर रहा है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, जिसने आपको कॉन्फिडेंस दिया हो और आपको बेटर बनने में हेल्प की हो, तो उन्हें एक बार जरूर याद कीजिएगा और उन्हें एक बार जरूर विश कीजिएगा और उन्हें एक बार थैंक यू जरूर बोलेगा। और आज का एक और सक्सेस मंत्र कि एक अच्छा टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देता, बल्कि वो किसी की लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकता है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रिच 107.8 FM। फील गुड,

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब हम पहुँच गए हैं हमारे आखिरी सेगमेंट में और अब वक्त है आज के एपिसोड को एक इंस्पायरिंग नोट के साथ रैप अप करने का। और आज हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जर्नी को बहुत अच्छे से जाना, एक टीचर को, एक फिलोसोफर को और एक स्कॉलर से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक के सफर को जाना। लेकिन दोस्तों, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ उनकी पोजिशन ही नहीं थी बल्कि उनकी सोच, उनके वैल्यूज और उनकी लर्निंग के प्रति डेडिकेशन थी। तो चलिए उनके पांच कुछ ऐसे सिंपल से सक्सेस मंत्र है जिन्हें मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक बताया है, एक बार हम दोबारा से उसे जान लेते हैं। सबसे पहला था कीप लर्निंग। लर्निंग कभी आपकी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी लाइफ हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है, तो इसलिए क्यूरियस रहिए और नए स्किल को सीखते रहिए। दूसरा है थिंक इंडिपेंडेंटली। हर चीज को सिर्फ इसलिए फॉलो मत कीजिए क्योंकि सब कर रहे हैं। क्वेश्चंस पूछिए, इन्फॉर्मेशन को समझिए और अपने ओपिनियन को खुद बनाइए। तीसरा है डिसिप्लिन। मोटिवेशन हर दिन नहीं होता लेकिन डिसिप्लिन हमें कंसिस्टेंटली एक्शन लेने में हेल्प करता है। छोटी छोटी हैबिट्स हमें फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और चौथा है कैरेक्टर और अचीवमेंट्स। इंपॉर्टेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी उतना ही जरूरी है जितना कि नॉलेज के साथ ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। पांचवा है नेवर लिमिट योरसेल्फ। राधा कृष्णन जी की जर्नी हमें सिखाती है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और लर्निंग आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे कि आपकी लाइफ का वो टीचर कौन है जिन्होंने आपको कोई इम्पोर्टेंट लेसन दिया हो? अगर वो आज आपके सामने होते तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? तो उन्हें जरूर मैसेज करिएगा और उन्हें कॉल करके याद जरूर दिलाइएगा कि आपका ये इम्पोर्टेंट लेसन मेरी लाइफ में बहुत काम आया। तो इसी थॉट के साथ आज के सक्सेस मंत्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा थॉट कि सक्सेस सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है बल्कि जर्नी में सीखते हुए एक बेटर इंसान बनना है। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और मैं ले रही हूं आपसे इजाजत। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए इंस्पायरिंग पर्सनालिटी और नए सक्सेस मंत्रा के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे इंस्पायर्ड और मुझे दीजिए इजाजत। और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरंजना 107.8 एफएम।
2: वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आरजे सागर आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानोरंजना 107.8 एफएम और ये जो शो है हमारा ये बहुत स्पेशल होता है। रीजन बीइंग मैं हर बार ये बात आपको बोलता हूं कि एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको ये शो सर्व करता है। आपको प्रोसेस के बारे में पता लगता है, आपको पूरे स्टार्टअप के बारे में पता लगता है, एक स्टार्टअप कैसे शुरू होता है, इंडस्ट्री के बारे में आपको पता लगता है, आपको पता लगता है फाउंडर्स कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, आपको पता लगता है कि जिस कंपनी की बात हो रही है उसने अलग क्या किया। सो आज वापस से लेकर के आए एक और शो, करेंगे डिस्कस कौन सी कंपनी है, किस इंडस्ट्री में डील करती है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस क्योंकि अभी लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। फील गुड फील लव।

पुरस्रार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

वेलकम बैक। बिना किसी देरी के अपने शो को यहाँ से हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मधुमेह 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइव। तो आज की जो हमारी इंडस्ट्री है भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। मतलब कंपनी की तरफ तो बहुत बाद में हम लोग चलने वाले हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंश्योरटेक। सिंपल पॉइंट है, इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंश्योरटेक। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी लगभग लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। अब चाहे आप फाइनेंस की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, आप चाहे फैशन की बात करें, आप चाहे मेडिकल की बात करें, हर जगह पर आपको टेक वर्ड सुनाई देता है। उसकी वजह हम सब लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइज हो पाई हैं। तो वैसे ही हमारी आज की जो कंपनी है वो डील करती है इंश्योरटेक में। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन डील करती है इंश्योरेंस प्लस टेक्नोलॉजी वाले एरा में, तो इंश्योरटेक में आ जाती है। पहले इंडस्ट्री को यहाँ पर हम लोग आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो इंश्योरटेक में जो कंपनीज डील करती हैं, दीज कंपनीज आर हैविंग अ सेट ऑफ टूल्स जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, डेटा ऑटोमेशन, API बोले तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट इंश्योरेंस, टू सेल इंश्योरेंस, टू गिव यू द सर्विसेज, टू सेटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा होता है ये, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सकते हो आप। इसको आप ऐसे समझिए कि एक दुकान है जो एक लोकल मार्केट में खुली हुई है, अब वो दुकान कितने लोगों तक पहुँच सकती है एक लोकल मार्केट में, हद से हद क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अब दुनिया जहां में वो खबर पहुंचा देंगे कि वहां पर एक दुकान है सबसे अच्छा सामान देती है, बट स्टिल देयर आर लिमिटेशंस। वही सेम चीज अगर वही दुकान ऑनलाइन हो जाए, वही दुकान अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाए, किसी तरीके से ग्लोबल एक्सेस उस दुकान का मिल जाए, तो उसके कस्टमर बाय डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है चीजों के ड्रॉबैक नहीं होते, हर चीज के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इंश्योरटेक की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के एरा में इंश्योरेंस कैसे अपडेट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो दिस इज द इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पर चाहे इंश्योरेंस को सेटल करना हो, चाहे इंश्योरेंस जो है बनाना हो, बेचना हो, खरीदना हो, सब कुछ जो है डिजिटली होता है। यहाँ पर ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग होती है विद डेटा, एम्बेडेड इंश्योरेंस होता है वाया API, ठीक है, माइक्रो जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मोटर प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, सब कुछ बेचा जाता है थ्रू एप्लीकेशंस और आई वुड से मार्केट प्लेसेस। जी हाँ, मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं एक ही जगह पर। So this is the overview of this industry we are addressing it. The name of this industry is InsurTech. लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे आपको इंडिया में कैसे ये काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल मजा लीजिए इन गानों को और जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक। आशा करता हूँ ये म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई है। फिलहाल इसी के साथ अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। पहले इंडस्ट्री को हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, जो कि है इंश्योरटेक, यानी कि इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर बात करेंगे इंश्योरटेक इंडिया में कैसे काम कर रहा है, मतलब करंट रियलिटी क्या है इंश्योरटेक की इंडिया में। और यहाँ पर देखिए, हम बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए वाकई में काम आ सकती हैं, जो वाकई में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, बट अभी भी हमें बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हम अर्ली स्टेज में हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं और बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल रिसर्च हाउसेज हैं ऐसे जो प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी बिलियन डॉलर ग्रोथ इन द कमिंग 5 to 10 years, ठीक है, जो मतलब लिटरली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। जैसे 2024 की बात करते हैं, 0.9 billion US dollars, ये एक आप कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू था। 2030 तक ये डबल डिजिट में हो सकता है। इससे पता लगता है कि भैया बहुत तेजी से मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है। यहाँ पर तीन ऑपरेटिंग मॉडल जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। पहला है डिजिटल इंश्योरेंस, जिसको आप कह सकते हैं जो न्यू एज जनरल इंश्योरेंस है, जैसे एको है, डिजिट है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो डिजिटली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो यहां पर मॉडल है वो है मार्केटप्लेसेस, या फिर आप उनको एग्रीगेटर बुला सकते हैं, या फिर आप उनको ब्रोकर्स भी बुला सकते हैं। इसमें पॉलिसी बाजार बहुत अच्छा एक एग्जांपल है जिसके नाम हम सबने सुना है। उसके बाद दूसरा नाम है रिन्यू बाय, तीसरा नाम है टर्टलमेंट, ठीक है। ये वो कह सकते हैं कि आप मॉडल्स हैं जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल ब्रांड्स के जो है इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको बाय कर सकते हैं। तीसरा यहां पर जो मॉडल डोमिनेट करता है वो है B2B टेक प्रोवाइडर। तो इंडिया में जो B2B टेक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, वो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राइमरीली काम करता है बाई इंश्योर टेक कंपनी, लेकिन इनका काम होता है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाना तैयार करना इंश्योरर्स के लिए, यानी कि जो इंश्योरेंस में डील करती हैं कंपनीज, जो डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस सेल करती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ध्यान में रखी जाती हैं। मतलब ये डायरेक्ट अंडरराइटिंग नहीं करते हैं पॉलिसीज की, बट जो फर्म्स हैं उनको एम्पावर करते हैं, ठीक है, बाय सिंपली यू नो सिंप्लीफाइंग देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि रिस्क कवरी भी आपको नजर आता है, जिसमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विद API जो बैंक्स, NBFCs एंड बाकी अदर कंपनीज को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है डिजिटली। तो ये एक आप तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज्यादा काम करता है, मतलब रेदर देन बीइंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद अ कस्टमर, जो एंड कस्टमर है उसके ऊपर ना जा करके इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो कैटेगरी है वो टारगेट करती है। तो ये मेजरली तीन मॉडल्स हैं जो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। एक है डिजिटल इंश्योरेंस, दूसरा है मार्केट प्लेसेस, और तीसरा है B2B टेक प्रोवाइडर्स। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिलहाल जो हमारा पॉइंट है वो है इंडिया में जो करंट रियलिटी है इंश्योरटेक की, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश करी थोड़ी थोड़ी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, खींच जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपके म्यूजिकल वाइब पसंद आई। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रियलिटी है इन शॉर्ट टेक कंपनीज की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया, मार्केट ग्रोथ बताई और जो मेन डोमिनेटिंग मॉडल्स हैं इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताए। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है जो फ्रेंडली तो है बट बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसको हम जानते हैं IRDAI के नाम से, जो एक गवर्निंग बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको ये कह सकते हैं आपकी देखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोसेस है जो ये इंश्योर करता है किसी कस्टमर के साथ गलत ना हो और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो ना की जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम यहाँ से हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड तो है बट कंप्लायंस बहुत हैवी है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जो है अच्छे से यहाँ पर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सेलिंग इंश्योरेंस वर्सेस बीइंग अ टेक पार्टनर, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है लकीली जो इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर यू नो वर्किंग इन इंडिया। प्लस फंडिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो भी इंडिया में अच्छा खासा हमें नजर आया है बीते कुछ सालों में। बट अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन बिकॉज ये बहुत अलग हो जाता है। बट इतना कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स अभी बहुत हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी फॉरेन ऐसे ब्रांड्स हैं फॉरेन के जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एम्पावर करते हैं। आइए बात करते हैं की इनसाइट्स की एंड डिमांड ड्राइवर्स की, लाइक एग्जैक्टली कौन सा वो पैटर्न है, कौन सी वो चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है स्मार्टफोन प्लस डिजिटल पेमेंट एंड प्लस KYC। मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस जब आप खरीदते हैं तो पहले हुआ करता था आपको फॉर्म भरना होता था, फिर आपको पैसे पे करने होते थे, आपको अपना जो ID प्रूफ है वो जमा कराना होता था। अब ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी हो गई है, लो कॉस्ट पेमेंट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है, स्मॉल टिकट्स जो है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस एक्सेसिबल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, आपके पास फोन है, एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास है, दैट्स ऑल यू नीड। आधार हमारे पास, ई आधार जैसी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, प्लस हम सबके पास इतना होता है कि हम ऑनलाइन जाकर के महज कुछ बॉक्सेस जो हैं वो हमें टिक करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एंड वी आर डन। तो ये एक आपको मेजर समझना होगा कि डिमांड ड्राइवर है। सेकंड है, एम्बेडेड इंश्योरेंस इज ह्यूज, ट्रैवल, ई कॉमर्स, मोबिलिटी एंड जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी दोस्तों कंटेक्चुअल जो इंश्योरेंस है वो बेच सकते हैं एट पॉइंट ऑफ नीड। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स आपको मिल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने बस की टिकट बुक करी है, अब बस की टिकट के साथ वो 10 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और वहां पर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी ट्रैवल जो जर्नी है उसके लिए, होता है ना ऐसे। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, एक और पार्टनर हमने वहां पर जोड़ लिया। तो ऐसे करके ज्यादा तेजी से वो जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं मल्टीप्लाई हुई है ये मार्केट इंडिया में, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स आ गए हैं अभी हमारे पास। So that's how things are working. वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद फर्दर और कुछ की इनसाइट्स और डिमांड ड्राइवर्स हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक। मेरा नाम सागर। शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्मष्टम 107.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हम यहां पर इंश्योर टेक जो इंडस्ट्री है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है डेटा एंड मशीन लर्निंग, जो एक और की ड्राइवर के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अभी डेटा यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई टेक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वहां पर डेटा, मशीन लर्निंग, इन चीजों का ही मेन रोल होता है, जिसकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं खड़े हो पाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं। सो या दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि एडवांटेज है तो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी बने होते हैं। आपने देखा होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सो इट शोज कि हमारा डाटा कैसे ट्रेवल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर ट्रस्ट एंड क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मार्केट में वो प्लेयर रुकेगा जो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करेगा, और जब क्लेम की बारी आएगी तो वहां पर क्लेम जो है टाइमली प्रोसेस कर दिया जाएगा, बेवजह उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सारे ग्राउंड चेक किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना आप जो है वहां पर बैकएंड पर काम करके चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बैड हैंडलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती है किसी भी कंपनी के द्वारा, क्योंकि अगेन मैं पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास IRDA है जो पूरे इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, गवर्निंग बॉडी है हमारे पास। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब इंश्योरेंस में ओम्बड्समैन होता है जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जो आपको तंग कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यू कैन गो टू ओम्बड्समैन। वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है, यू कैन गो टू IRDA। सो देर आर प्रोसेसेस जो यहाँ पर बनाए गए हैं इसलिए कि चीजें स्मूथली यहाँ पर रन कर पाए। इसलिए कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से हैंडल करना ये बहुत जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है। रेगुलेशन शेप्स प्रोडक्ट चॉइसेस। जो भी इंश्योरर्स को लाइसेंस मिलता है, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पर कैपिटल की जरूरत होती है, टाइम की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सक्सीड हुए हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ब्रोकिंग, एज टैक्स सर्विस, जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको नजर आती हैं चीज़ें, कि मल्टीपल कैटेगरीज में इंश्योरेंस कंपनीज डील करती हैं। मतलब ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल कितनी है, कितना टाइम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। वो अच्छी बात ये है कि अभी इतनी सारी हमने वर्टिकल्स बना दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो छोटे लेवल पर भी प्लेयर जो है ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक ऐसा ही ब्रांड ओपन करना है जो इंश्योरेंस ही कवर कर रहा है। आप एक ऐसा ब्रांड भी ओपन कर सकते हैं जो मार्केट प्लेस के तौर पर सर्व कर रहा है, या जो एक ब्रोकरेज फर्म है जो यहाँ पर वाजिब एक बिजनेस है। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कैपिटल है। सो या वो है कि एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद एक जो कंपनी है वो यहां पर काम कर सकती है। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

Did the time.

आपको ये गाने पसंद आए। फिलहाल इसी के साथ शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूँ सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारी आज की इंडस्ट्री है वो है इंश्योरटेक, जिसको यहाँ पर समझ रहे हैं। अभी तक हमने बात करी दोस्तों कि क्या है ये इंश्योरटेक, कैसे काम कर रहा है ये इंडिया में, की इनसाइट्स क्या है, डिमांड ड्राइवर्स क्या है। आइए बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की, जो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं सो इट माइट हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर जो है भैया 12 से 18 महीने का एक जो है प्लान बनाना होगा फॉर अ स्टार्टअप, अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस में कोई अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत स्मॉल फाउंडिंग टीम को जो है हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिमिटेड इनिशियल फंडिंग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे फेजेज आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई गारंटेड रोड मैप नहीं है, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है टू गिव यू मोर क्लैरिटी, मोर स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट, कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है सो हाउ कैन यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। पहला है चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको डिजिटल इंश्योरर बनना है, आपको B2C एग्रीगेटर बनना है, मार्केट प्लेस बनना है, या ब्रोकर बनना है जो बहुत फास्टली आप लॉन्च कर सकते हैं, कमीशन के द्वारा जो है आपको यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर है B2B2C टेक API प्रोवाइडर, जिसको आप IaaS के तौर पे जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस एज अ सर्विस, जो है प्लेटफॉर्म्स बनाता है, तैयार करता है नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, जो हमने पहले बात भी करी थी, ठीक है। या फिर आप एक एम्बेडेड प्रोडक्ट

पार्टनर के तौर पर भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर स्पीड चाहिए आपको, आपको मॉडरेट रेगुलेटरी बर्डन चाहिए, कुल मिलाकर के भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, एक जो एक ब्रूटल ऑनेस्ट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और कोई भी रेगुलेटर एक्सपीरियंस नहीं है, तो एज अ इंश्योरेंस आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। स्टार्ट एज बी टू बी और एग्रीगेटर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला जो काम है आपका वो है प्रॉब्लम वैलिडेशन एंड कस्टमर डिस्कवरी। एक आपको टाइट वर्टिकल और चैनल को जो है समझना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स जो अभी नहीं है, एग्जैक्टली ठीक है, यूज्ड कार मार्केट प्लेसेस में बहुत ज्यादा वो नहीं हुई है अभी कि उनका इंश्योरेंस कैसे होगा। तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जो अभी कवर की जानी है, ठीक है। ट्रेवल इंश्योरेंस जिसको और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कि किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो। सेकंड आता है फिर टेक्निकल कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, प्लस जो लीगल डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मिनिमल प्रोडक्ट आपको बनाना होगा, चेकआउट फ्लो जिसमें बहुत आसान होगा, कोर्ट इंजन जो है बहुत ईजी होगा, यूजर इंटरफेस बहुत आसान होगी, कोई भी इंसान अगर आए तो वो ईजिली खुद से नेविगेट उसको कर पाए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेटर जो है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। आप एक बैकएंड पर प्रोसेस आपको बनाना होगा जो डायरेक्ट कस्टमर का डाटा लेगा और जनरेट कर देगा उसके लिए पॉलिसी क्या ठीक रहेगी। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ड्राफ्ट करनी होंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंस इश्यूज ना हो यहाँ पर, और IRDA जो है वो आपको तंग ना करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IRDA का काम ये है कि अच्छे से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑपरेट करें, ये देखना। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इफ एप्लीकेबल, जहाँ पर आपको जो है क्लेम की फ्रीक्वेंसी, टाइम टू सेटलमेंट, वो टेक्निकल चीजें हो जाती है, उसकी तरफ ना जाए तो ही बेटर है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्केल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेट ऑपरेशंस। आपको अंडरराइटिंग को ऑटोमेट करना होगा जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे मशीन लर्निंग है, पेमेंट्स को आपको इंटीग्रेट करना होगा, आपको KYC के ऊपर जो है मास्टरी हासिल करनी होगी, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को जो है और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फंड रेजिंग एंड ग्रोथ की तरफ जाना होगा, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आपको जाना होगा। सो इंश्योरेंस एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जो बहुत टेक्निकल भी है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कैपिटल भी वहाँ पर चाहिए। सो इट इज़ रियली रिक्वायर्ड कि आप पहले उस इंडस्ट्री को समझें, पहले आप ढंग से उसको एक्सप्लोर करें, तभी जा करके आप उस मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से एक मॉडल को ऑपरेट कर सकते हैं। सो या दैट इज़ अ थिंग दैट मैटर्स, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली बात करेंगे आज के ब्रांड की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

फील गुड, फील लाइव। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी तक इंडस्ट्री समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी। फाइनली जो आज की हमारी कंपनी है वो है आर्टिवेटिक। आर्टिवेटिक.ai इसका पूरा नाम है। ओके, ये अपने आप में बहुत खास हो जाती है क्योंकि इंश्योर टेक में डील करती है, हेल्थ टेक में डील करती है। इन दो सेगमेंट्स को आप मर्ज कर सकते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली व्हाट दिस कंपनी डज, दिस कंपनी इज सिंपली यूजिंग AI, मशीन लर्निंग एंड डेटा, और यहाँ पर ये इंश्योरेंस प्रोसेस को जो है ऑटोमेट करते हैं। सो बेसिकली इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंश्योरर्स की हेल्प करता है विद अंडरराइटिंग, रिस्क असेसमेंट, क्लेम्स, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर ऑनबोर्डिंग एंड पर्सनलाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सो इन सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिवेटिक एक आप कह सकते हो एक ऐसी कंपनी है जो ये कोशिश कर रही है टू मेक इंश्योरेंस फास्टर, स्मार्टर एंड लेस डिपेंडेंट ऑन मैनुअल पेपर वर्क। अच्छा, ये काम कैसे करता है? सिंपल सा तरीका है, जब आप इंश्योरेंस कोई खरीदने जाते हो तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। आपको इंश्योरेंस मिलेगा किस ग्राउंड पे आपको मिलेगा? आप बोलते हो कि मेरे को 5 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड चाहिए, तो देखा जाएगा कि आप उतना प्रीमियम पे कर सकते हो। कोई फ्रॉड वाला एंगल तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है मल्टीपल कंपनीज से आपका इंश्योरेंस चल रहा हो और आप यहाँ पर आ गए हैं? तो ये तमाम चीज़ें डिटेक्ट की जाती हैं, इसके लिए प्रोसेस होता है। फिर अंडरराइटिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, देखा जाता है कि कितना रिस्क है। लेट से एक इंसान स्मोकर है और एक इंसान नॉन स्मोकर है, अब दोनों का रिस्क असेसमेंट बहुत अलग तरीके से किया जाएगा। ये तमाम चीजें जो है बैकएंड प्रोसेस का पार्ट होती है। तो ये जो कंपनी है जिसकी आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिवेटिक, ये AI टूल बना दी है, जो AI टूल हेल्प करता है इंश्योरेंस की कि वो इन तमाम चीजों को विदाउट रिलाइंग ऑन मैनुअल वर्क वो असेस कर सके। हालांकि बहुत सारे डाटा की वहाँ पर जरूरत होती है, बट द बॉटम लाइन इज की दैट दिस कंपनी इज हेल्पिंग अदर कंपनीज इन यू नो इशूइंग इंश्योरेंस एंड असेसिंग द रिस्क एंड डूइंग द अंडरराइटिंग पार्ट एंड डिटेक्टिंग द फ्रॉड्स एंड जस्ट हेल्पिंग कस्टमर्स इन प्रोसेसिंग विद द क्लेम्स। दैट इज द ओवरव्यू। फिलहाल लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

feel good, feel live. Okay, what was the idea behind it? Artivatic start hui thi 2017 mein. Operation 2017 mein start hua tha. Isko start kiya tha Layak Singh and Puneet Tandon ne. इन दो फाउंडर्स को जो है ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट करते थे बिफोर आर्टिवेटिक. इनका एक्सपीरियंस रहा है अच्छा खासा, एक्सपेरिमेंटल काफ़ी जो है ये लोग रहे हैं. इनका इनसाइट बहुत सटीक था कि इंश्योरेंस में ना बहुत ज़्यादा स्लो वर्क है, बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क है, ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं. सो दे बिलीव्ड इन दिस थिंग कि AI जो है बड़े डेटाबेस को एनालाइज कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है, डिसीजंस फास्ट जो है लिया जा सकता है, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ लिया जा सकता है. सो द कंपनी इनिशियली एक्सप्लोर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, बट इवेंचुअली उन्होंने इंश्योरेंस में लेकर के आ गए और इंश्योरेंस में अच्छा काम कर रही है कंपनी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडर्स, जो नाम मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, Layak Singh एंड Puneet Tandon. Layak Singh इज एन IIT खड़गपुर एलुमनस और एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं. बिफोर आर्टिवेटिक उन्होंने काफ़ी वेंचर्स जो है वो बिल्ड किए, जिसमें एजुकेशन, लाइफस्टाइल, डेटिंग एंड एक कॉगशियो बहुत फेमस एक प्लेटफॉर्म है जो इनका एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर. दूसरा नाम है Puneet Tandon. Puneet का बैकग्राउंड रहा है टेक का और प्रोडक्ट का. Puneet ये बैकग्राउंड लेकर के आते हैं. इनका भी मल्टीपल जो है कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि स्कॉलास्टिक एंड मैग्नासॉफ्ट एंड कॉक्सियो, साथ साथ MS फ्रॉम न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. प्रीवियस स्टार्टअप इन्होंने आप कह सकते हैं कि दोनों का ही अच्छा खासा यहाँ पर काम आया, जहाँ पर प्रीवियस स्टार्टअप से इनको जो एक्सपीरियंस मिला, जो एजुकेशन मिली, जो लर्निंग्स इनकी रही वहाँ पर. तो ये चीज़ें हैं इनकी जो यहाँ तक लेकर के आई और इस कंपनी को स्टार्ट किया. तो बॉटम लाइन ये है कि कोई भी चीज़ आप आज कर रहे हो वो आपकी कभी वेस्ट नहीं होगी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके काम वो चीज़ ज़रूर आएगी, जो यहाँ पर इस केस में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों ने अलग अलग जगहों पर काम किया, डिफरेंट डोमेन्स में काम किया, बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे एंड एग्जैक्टली वो सब आकर के काम आया इनकी इस कंपनी में, विच इज़ आर्टिवेटिक. आप मुझे बताइए कोई इसमें आपको डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो 8010781078 पर. फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड. बिल्कुल

फील लाइव। मैं सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आज जिस कंपनी की, उसका नाम है आर्टिवेटिक। और यहाँ पर अभी तक हमने जाना है कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में हमने जाना है, फाउंडर्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, ये कंपनी अलग क्या करती है या इस कंपनी ने अलग से क्या किया। तो ओवरव्यू में हालांकि मैं बात क्लैरिफाई कर चुका हूँ, बट स्टिल ट्रेडिशनली जो चीज़ें होती थी, जो इंश्योरेंस हम लोग इशू करते थे, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता था, इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। सो बेसिकली मेडिकल रिकॉर्ड्स को चेक करना, KYC करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, क्लेम हिस्ट्री, तमाम जो डेटा सेट है उसको एक सॉफ्टवेयर में कंपाइल किया जाता है, वहाँ पर फिर उसको कंपाइल करके रिस्क डिसाइड किया जाता है। आर्टिवर्टिक ने जो है ये चीज़ थोड़ी सी अलग तरीके से करी। उन्होंने बेसिकली सारे प्रोसेस को कंपाइल करके एक AI टूल बनाया। हालांकि ओवरनाइट नहीं हुआ है, मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारे प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती है। जब आप इंश्योरेंस की बात करते हो, एक कस्टमर को समझना, रिस्क फैक्टर समझना कि वो कस्टमर इतना जो उसने सम अश्योर्ड लिया है कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का पॉइंट ये है कि उनको अपना रिस्क मिनिमाइज करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अंडरराइटिंग का पार्ट होती है। तो आर्टिवर्टिक का जो सिस्टम है वो तमाम इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, AI का या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है, उसको एनालाइज करता है, रिस्क को स्कोर करता है, उसकी स्कोरिंग की जाती है, डिसीजंस जो है वो रेकमेंड किए जाते हैं। और इनका एक फ्लैगशिप अंडरराइटिंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा चलन में है, इंश्योरेंस कंपनीज जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, उसका नाम है ऑसिस, AUSIS। तो यहाँ पर 1200 से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर जो है इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स अंडरराइटिंग डिसीजन जो है विद इन 60 सेकेंड्स वहाँ पर वो दिया जाता है, 60 सेकंड के अंदर अंदर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर ली जाती है और कंपनी को बता दिया जाता है वेदर यू शुड इशू दिस पॉलिसी और नॉट। तो बहुत उम्दा है, जिसमें कंपनीज की बहुत हेल्प होती है, क्योंकि रिस्क असेसमेंट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पर हो पा रहा है। ये इस कंपनी ने किया अलग। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील द म्यूजिक।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज की हमारी जो कंपनी है उसका नाम है आर्टिवर्टिक, और यहां पर हम अब बात करेंगे अपनी कंपनी के यूएसपी की। इस कंपनी की यूएसपी सिंपली ये नहीं हो सकती है वी यूज एआई। द रियल यूएसपी इज एआई पावर्ड इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन दो चीजों में बहुत फर्क है। एआई को आप बहुत वेग तरीके से समझ सकते हैं, ब्रॉड कैटेगरी के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन एआई पावर्ड इंश्योरेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको एवेल्युएट करना, जहां पर मॉड्यूलर एपीआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, किसी भी कंपनी के एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ जो है उसको अलाइन करना, और सब कुछ स्क्रैच से रीबिल्ड करना। इसमें मल्टीपल स्टेजेस जो है उनको कवर किया जा सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरराइटिंग, क्लेम्स, फ्रॉड एंड सर्विसिंग। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आप कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में एंटर करेंगे, जो हेड ऑफिस होता है, तो आपको समझ में आएगा कि हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं विद इन अ डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल, अंडरराइटिंग में भी मल्टीपल होते हैं। एक मेडिकल अंडरराइटिंग होता है, एक नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग होता है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होता है। तो ये तमाम चीज़ें अंडरराइटिंग में आती हैं, लेकिन इतने सारे प्रोसेस होते हैं, सबको ब्रेकडाउन किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग जो बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, एक्चुअरीज एक डिपार्टमेंट होता है जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन करता है, जिसमें सारी चीजें देखी जाती हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, रिस्क फैक्टर क्या होगा, किसको केटर करेंगे, किसको टारगेट करेंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, व्हाट इफ दिस गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अगर पॉलिसी कंपनी के लिए घाटा लेकर के आई तो क्या होगा। तो ये तमाम चीजें एक्चुअरीज में आती है, जहां पर रिस्क इवैल्यूएशन किया जाता है, और ये सारी चीजें हमारी जो आज की कंपनी है आर्टिवर्टिक, ये अच्छे से इसको कर पा रही है। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस कंपनी, कि ये तमाम चीजें अलग तरीके से कर रही है। तो ये है जी इस कंपनी की यूएसपी, कि सिंपली एआई नहीं बनाया, एआई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जो हेल्प करता है बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को, यू नो, पॉलिसी डिसाइड करने में, इशू करनी या नहीं करनी, रिस्क इवेल्युएट करने में, एनालाइज करने में, तमाम चीजें आती है वहां पे। दिस इज आर्टिवर्टिक फॉर यू। Let's take another musical break, then we'll continue the show. Stay tuned with us. Feel good, feel live.

फील गुड फील लाइव। मैं सागर, शो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानी कामयाबी की। अब बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स की। क्यों ग्रो कर रही है कंपनी? सिंपल सा तरीका है, इंश्योरेंस बहुत ज्यादा मैनुअल था तो यहाँ पर ऑटोमेशन लेकर के आ गई है कंपनी। तो एक अपॉर्चुनिटी इनको नजर आई कि इनिशियल स्टेज में अर्ली डेज में कि एआई कर सकता है कुछ ऐसा, यस कर सकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। डिजिटल डाटा इनके पास है, एआई कुड यूज मेडिकल फाइनेंशियल बिहेवियरल एंड अदर डाटा फॉर रिस्क असेसमेंट। इंस्टेंट इंश्योरेंस की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ने लगी है, लोगों को चाहिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। फटाफट से हमारा इंश्योरेंस इश्यू हो सकता है क्या? अब फटाफट इंश्योरेंस इश्यू का मतलब है कि सारे प्रोसेस इतने तेज करने पड़ेंगे आपको कि मैनुअल वर्क जो इसके पहले था ट्रेडिशनली उसको इतना फास्ट करना पड़ेगा। फटाफट इवैल्यूएशन हो जाए, अंडरराइटिंग हो जाए, रिस्क असेसमेंट हो जाए, पॉलिसी डिजाइनिंग हो जाए, एक इंसान के लिए कौन सी पॉलिसी ठीक होगी, ये तमाम चीजें कितना जल्दी किया जा सकता है वो कंपनी जीत सकती है जो इसको एक्सेल कर लेगी। क्योंकि हम उस जमाने में जीते हैं जहां पर हर चीज क्विक कॉमर्स के थ्रू हम लोग मंगाने लग गए हैं। तो क्विक कॉमर्स के जमाने में आप कस्टमर को ये नहीं बोल सकते हो कि आप कई महीनों तक वेट करिए या 15 दिन तक वेट करिए तब जाकर के एक डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, पहले चीजें चलती थी क्योंकि इतना ज्यादा टेक हमारे पास नहीं था, बट नॉट एनी मोर। और यही बात समझ में आ गई हमारी कंपनी को, विच इज आर्टिवेटिक। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि रिन्यू बाय ने जो एक और कंपनी है इंश्योरेंस टेक में ही डील करती है, 2022 में एक्विजिशन किया, इस कंपनी का एक्वायर कर लिया। और बहुत ही स्ट्रेटेजिक था क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, इंश्योरेंस में अच्छा खासा अनुभव था इनका, आर्टिवर्टिक एक बिल्कुल नया टूल आया था, तो उन दोनों का मर्जर हुआ, तो जिससे आप कह सकते हो कि और ज्यादा एम्पलीफाई हुई चीजें। तो ये है जी हमारी आज की कंपनी, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपनी डज, क्या इन्होंने अलग किया, क्या यूएसपी है, फाउंडर्स कौन है, बैकग्राउंड क्या रहा है, स्टार्टअप स्टोरी क्या रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रो ड्राइवर्स क्या है। अब आप मुझे बताइए आपको आज की केस स्टडी कैसी लगी। फिलहाल इसी नोट पर मेरा वक्त है शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ शो आपको पसंद आया होगा। कोई फीडबैक है तो 8010781078 पर लिखकर मुझ तक भेज दीजिए। फिलहाल चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल वहां क्या क्या कर रहा है?
2: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद

0: नुकसान पहुंचाती है किडनी को। किडनी वैसे तो ईश्वर ने हमें दो दी हैं, लेकिन प्रॉब्लम किसी एक में भी आ जाए तो भी काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। और डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो आगे जाकर बहुत गंभीर बीमारियां दे जाती हैं। अब डायबिटीज़ और किडनी का क्या कनेक्शन है, या फिर डायबिटीज़ के बाद आपको कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसे कुछ सवाल और बहुत सारे जवाब। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष महाजन, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से, जिनसे आज हम पूछेंगे ऐसे ही कुछ सवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका रेडियो मानव रचना में।
1: नमस्कार, ये मेरा दूसरा विजिट है मानव रचना का। मैं मानव रचना को हार्दिक मतलब थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं जन कल्याण के लिए लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा सकूँ।
0: जी, तो सर सबसे पहले हम बात करें डायबिटीज़ और किडनी की, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जब काफ़ी बढ़ जाती है तब जाकर सीरियसनेस आती है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो सिर्फ यही जानना चाहूँगी, डायबिटीज़ और किडनी आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं?
1: पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है भारत वर्ल्ड का कैपिटल है डायबिटीज़ में, 75 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ है, और बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी जो है उनके 67% जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके कंट्रोल रहते नहीं है डायबिटीज़, दवा खाने के बावजूद भी। बहुत लोग तो दवा भी नहीं खाते, उनको पता नहीं चलता। और अगर लंबे समय तक डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हमारे किडनी के जो माइक्रोस्कोपिक वेजल्स हैं और फिल्टरिंग यूनिट से उसमें डैमेज और प्रेशर बनने लगता है, जिससे कि किडनी की खराबी स्टार्ट हो जाती है।
0: जी,
1: और सबसे पहला लक्षण जब स्टार्ट होता है वो यूरिन में प्रोटीन की लीकेज होना स्टार्ट होता है। और इस ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि लक्षण जल्दी नहीं आते, काफ़ी समय अनकंट्रोल डायबिटीज़ के काफ़ी समय के बाद लक्षण आते हैं।
0: जी,
1: तब तक 50% से ज़्यादा किडनी डैमेज हो गया होता है।
0: जी बिल्कुल, यही चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, किडनी डैमेज, वैसे तो हमारे पास दो किडनी होती हैं, लेकिन अगर एक डैमेज होती है तो घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरी पर भी कब असर पड़ जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर एक पेशेंट पहचाने कैसे कि उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, खासतौर पर से वो पेशेंट जो डायबिटिक है, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2।
1: हाँ, मैं आपने टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ का नाम लिया, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले टाइप 1 की बात करूँगा। टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट को साल में 5 साल में एक बार एक जांच होता है, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, और उसकी जांच ज़रूर करवाएं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूरिन में प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो जाता है।
0: जी,
1: और काफ़ी सालों तक ये रहता है, उसके बाद कुछ लक्षण आते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ में सारे मरीजों में साल में एक बार यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो और EGFR एक टेस्ट होता है, जिसमें किडनी कितना परसेंटेज काम करता है उसमें हमें पता चलता है कि किडनी डैमेज हमारी हो रही है नहीं हो रही है। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपने KFT का जांच कराया, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है, लंबे समय तक डायबिटीज़ है आपको, तो आपके किडनी डैमेज नहीं हो रहे हैं। क्रिएटिनिन जो 1.0 से 1.1 जब तक होता है तब तक आपके 50% से ज़्यादा किडनी डैमेज हो गए। तो जो पहला लक्षण जो हमें देखने को मिलता है वो पेशाब में प्रोटीन आना, तो ये जांचों में ही पता चलता है, और EGFR एक जांच होता है, तो ये सबसे पहला होता है। बाकी जो पैर में सूजन, चेहरे में सूजन ये, और पेशाब कम होना या बहुत ज़्यादा होना, ये सब थोड़ा सा बाद में ये डेवलप करता है। लेकिन इसलिए अगर किसी को डायबिटीज़ है तो साल में एक बार USER की जांच और EGFR की जांच ज़रूर करवाएं।
0: जी बिल्कुल, अब ये टेस्ट क्या है डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन अभी जो वक्त है वो एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, और अपने सवाल पूछ सकते हैं आप 8010781077।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल. नॉलेज पार्टनर SSV हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज और किडनी के बारे में, यानी किडनी प्रॉब्लम्स जो डायबिटीज के कारण होती है. लेकिन डायबिटीज का लेवल क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बता सकते हैं कि किडनी में कहीं कोई समस्या चल रही है. ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष महाजन. बहुत सारी बातें सर आपसे हम जान रहे हैं, और आपने काफ़ी अच्छे से समझाया कि किडनी में प्रॉब्लम होती है पर पता नहीं चलती है, काफ़ी देर बाद पता चलती है, वो भी जब आप टेस्ट कराते हैं. क्योंकि नॉर्मल क्रेटिनिन जो हम KFT वगैरह कराते हैं उसमें कुछ नहीं आता है,
1: स्टार्टिंग इनिशियल फेज में नहीं आता.
0: जी, इनिशियल फेज में नहीं आता है. यानी अगर किडनी खराब होनी शुरू हो रही है और आपने KFT कराया तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा अगर वो KFT नॉर्मल दिखा रहा है. लेकिन यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कुछ टेस्ट के नाम बताए थे, UACR यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ये मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा विस्तार में बताएं कि ये कब कब कराने चाहिए, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, क्या कुछ डिजिट्स जो होती हैं, क्योंकि आम इंसान को नहीं समझ में आता है जब टेस्ट आते हैं, और कब कब करानी चाहिए. किसी को डायबिटीज है सिर्फ उसको करानी चाहिए, जिसको डायबिटीज नहीं है उसको भी कराना चाहिए.
1: हाँ जी, ये बिल्कुल सही है. जिनको डायबिटीज है, हाँ ये बात मैं जरूर बोलूंगा, हर किसी डायबिटिक पेशेंट के किडनी नहीं खराब होते. जिनके लंबे समय तक जिनका डायबिटीज है और जिनके डायबिटीज कंट्रोल्ड नहीं है उनमें चांसेस हाई हो जाते हैं. डायबिटीज़ खुद है वो एक रिस्क फैक्टर है. इसके साथ एक और रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो हाइपरटेंशन. बहुत सारे मरीज, डायबिटिक मरीज को ऐसा भी देखा गया है कि उनको BP का भी इश्यू होता है. अगर ये दोनों नहीं कंट्रोल होते हैं तो दो रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं किडनी डैमेज होने के. जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स और हमारे जो फिल्टरिंग यूनिट्स किडनी के जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उससे प्रेशर बढ़ता है. और जो दो जांच जो मैंने बताया, EGFR और UACR, एक दो और कंडीशंस ऐसे होते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है, सिर्फ BP भी है तो उसमें भी प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है. एक और कंडीशन होती है जब बच्चे अब किसी भी उम्र के में हो जाता है, कंडीशन बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें अंदर किसी भी कारणवश ऑटोइम्यून कारण हो या इन्फेक्शन के कारण हो या किसी और कारण हो या हेरिडिटरी भी, तो उसमें प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है. तो साल में एक बार टाइप 2 डायबिटिक स्पेशली पेशेंट जो होते हैं या हाइपरटेंसिव भी हैं, तो साल में एक बार UACR की जांच कराएं, और इसकी जो वैल्यू 0.3 से कम होनी चाहिए. अगर इसे ऊपर है तो आपकी प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो गई है. दूसरा, टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको 5 साल में एक बार स्क्रीनिंग कराना बिल्कुल ज़रूरी है. हालांकि ये टाइप 1 टाइप 2 की तो हम बात कर ही रहे, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको ये डिटेक्टेड नहीं भी है तो एक आम इंसान को साल में एक बार UACR की जरूर जांच कराए, क्योंकि मेजॉरिटी जो इंसान जो पॉपुलेशन है इंडिया में उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटिक है भी कि नहीं. तो शायद वो ये जांच कराए तो उनको पता चलेगा कि तुमको 2-3 साल पहले से डायबिटिक है, उनको पता ही नहीं क्योंकि सिम्टम्स तो आते नहीं स्टार्टिंग में. लेकिन इससे पता चल जाता है कि डायबिटीज भी है या BP भी है और इनके प्रोटीन की लीकेज भी, किडनी का डैमेज भी स्टार्ट हो गया. तो कुछ हद तक अगर हम इस जाँचों पर अगर नज़र रखते हैं तो कुछ हद तक हम किडनी के डैमेज होने का हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं.
0: जी बिल्कुल सर. ये भी जानना चाहेंगे डायबिटीज़ के सिम्टम्स जो जनरली देखे गए हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या बहुत ज़्यादा अचानक से भूख लगना, और वेट कम होना, एकदम से आपका वेट कम हो रहा है तो भी ये सतर्क होने वाली बात है. क्या किडनी के भी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स कहीं कुछ कन्फ्यूज कर सकते हैं किसी को?
1: हाँ जी बिल्कुल. अगर आपको डायबिटीज़ है, जैसे कि मैंने बोला, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है काफ़ी सालों से, तो पेशाब आपके फ्रॉथी होना और बार बार अगर यूरिन फ्रॉथी हो रहा है, उसमें झाग आ रहा है, तो आप ये अनुमान कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो गई है. दूसरा, पेशाब कम होना या ज़्यादा होना, पैरों में सूजन होना या चेहरे में सूजन होना, फेशियल पफिनेस जिसको हम बोलते हैं, प्लस लेथार्जी महसूस करना, बहुत आलसपन आना, नींद बहुत आना, लेथार्जी होना, कमजोरी महसूस करना. क्योंकि अगर किडनी अगर डैमेज होने लगता है तो आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट जो किडनी जो फिल्टर करती है वो जमा होने लगते हैं. उल्टी उल्टी जैसा महसूस या भूख कम लगना,
0: कम भूख लगना.
1: अगर ये सब सिम्टम्स अगर आपको आते हैं तो आप जरूर एक नियर बाई नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं और इन जाँचों पर नजर रखें. EGFR हो गया, UACR हो गया, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है या आपको BP है, तो इन दोनों का स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें.
0: जी,
1: अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग भी बंद रखें. हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग रहें.
0: जी, BP की बात आपने कही है तो BP के बारे में भी हम जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज ही हो गया रहा है और बहुत सारे लोगों को होता चला जा रहा है। सो डायबिटीज और बीपी दोनों ही कहीं ना कहीं किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली प्रॉब्लम्स है, लेकिन इनकी जांच करना, इन पर नज़र रखना ये भी ज़रूरी है। सो कैसे आप कर सकते हैं, क्या इनकी सही जो मात्रा है वो होनी चाहिए या फिर क्या रीडिंग्स होनी चाहिए, ये जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूं दीक्षा के साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल. नॉलेज पार्टनर है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बातें बहुत सारी डायबिटीज किडनी प्रॉब्लम्स और हाइपरटेंशन के बारे में चल रही हैं. ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बड़ी प्रॉब्लम्स ला सकती हैं. यानी अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो किडनी पर इफेक्ट हो सकता है अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है. कौन से टेस्ट कराने चाहिए ये तो हमें पता लग गया है, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है तो किन बातों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि डायबिटीज प्लस ब्लड प्रेशर, चीनी मना है और यहाँ पर नमक भी कम करना है, तो पेशेंट वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है. तो ऐसी कुछ बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष महाजन, जो कि जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं. इनसे हम ऐसे ही कुछ सवाल पूछ रहे हैं. डॉक्टर साहब, डायबिटीज तो एक पेशेंट के लिए अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज के लेवल्स अप एंड डाउन होने लगते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाए, तो यहाँ पर चीनी बंद है, उधर से आप मसालेदार नहीं खा सकते, नमक कम करना पड़ेगा आपको और लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये दोनों चीज़ें खासतौर पर से, अब बीपी की बात हम कर रहे हैं, सो बीपी कैसे किडनी को इफेक्ट कर सकता है?
1: सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज़, हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन है उनका टेस्ट जो है वो नमक के प्रति बहुत ज़्यादा है. महात्मा गांधी ने भी सॉल्ट मूवमेंट किया था और बचपन से ही जो हमारा जो टेस्ट, जो बर्ड्स जो डेवलप है वो हाई सॉल्ट का ही टेस्ट बर्ड्स डेवलप्ड है. और मेजॉरिटी इंडियन, जैसे कि मैंने बताया 67% लोग के डायबिटीज़ भी नहीं करना, बहुत लोगों को डायबिटीज़ का पता भी नहीं होता. वैसे सेम ब्लड प्रेशर में कहते हैं अब नॉर्मल हो गया, 130-140 भी अगर बीपी पेशेंट को है सिस्टोलिक तो वो बोलता है कि नहीं हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन ये अब नॉर्मल है. और ये काफ़ी समय तक अगर कंट्रोल नहीं रहता है तो किडनी के जो फिल्टरिंग यूनिट्स है उसमें ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है. और उसमें भी एक कंडीशन हम बोलते हैं, अगर लंबे समय तक बीपी नहीं कंट्रोल है तो आपके किडनी के तो फिल्टरिंग यूनिट्स डैमेज हो ही रहे हैं और यूरिन में प्रोटीन के भी लीकेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि हम एक कंडीशन बोलेंगे हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी. अगर किसी मरीज में ये दोनों है तो मतलब एक तो रिस्क फैक्टर है या दूसरा भी है डबल रिस्क फैक्टर, मतलब ड्यूअल हिट टू द किडनी, तो किडनी का जो डैमेज होने का जो प्रक्रिया होता है वो डबल स्पीड में हो जाता
0: है, बढ़ जाती है,
1: स्पीड बढ़ जाती है इसमें. तो इसमें बस दो चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे, नमक कम से कम मात्रा लें, सेंधा नमक का, अगर आपको नमक का ही शौक है तो एक सेंधा नमक का एक कंट्रोल्ड मात्रा में आप उसका इस्तेमाल करें. और रही बात डायबिटीज़ की, आपने बोला सही बात बोला, लोगों को मीठा खाने का भी बड़ा शौक है. आजकल अच्छे अच्छे स्वीटनर्स आ गए हैं जो शुगर फ्री होते हैं, स्टीविया हो गया, शुगर फ्री हो गया, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके टेस्ट बड बहुत ज़्यादा क्रेविंग करता है तो
0: जी.
1: और इनफैक्ट आजकल तो चॉकलेट्स भी कुछ ऐसे ऐसे मार्केट आ गए हैं जो कि शुगर फ्री आ गए. अगर आपको क्रेविंग होती है जो डायबिटिक पेशेंट में देखा गया है, तो आप लिमिटेड मात्रा में आप शुगर फ्री का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर इन दोनों का आप लिमिटेड तरीके से करते हैं, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज और ये आपको अगर बीपी अगर इसको बिल्कुल कंट्रोल करते हैं, 130 से नीचे अगर आप बीपी रखते हैं 120/80, और HbA1c का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, किसी पेशेंट में हम इंडिविजुअलाइज करते हैं, लेस देन 6 होना चाहिए, किसी में 7 तक हम ले जाते हैं. अगर आपका HbA1c 6-7 के बीच में है, बेस्ड ऑन पेशेंट टू पेशेंट प्रोफाइल अगर कंट्रोल रहते हैं, तो बहुत हद तक आप किडनी के डैमेज से बच सकते हैं और उसका प्रिवेंशन को रख सकते हैं. जैसा कि मैंने बोला, हर बीपी के पेशेंट और हर डायबिटीज के पेशेंट का किडनी डैमेज नहीं होता, अगर आप कंट्रोल करते हैं तो सब ठीक रहता है.
0: जी जी, तो यही मैं जानना चाहती हूँ. अब बीपी की बात अगर हम करें तो क्या रीडिंग्स आनी चाहिए? 120/80 नॉर्मल कही जाती है.
1: 120/80 मैं इसको बड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लेकर चलता हूँ, 120/80 इंटरनेशनल गाइडलाइन यही बात बोलता है
0: जी.
1: लेकिन हमारे इंडियन जो पॉपुलेशन है, जैसे कि मैंने टेस्ट बर्ड की भी बात करें, मेजॉरिटी जो बीपी के भी पेशेंट है उसमें 70% जो बीपी के पेशेंट है उनके बीपी ही नहीं कंट्रोल होते, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क,
0: दवाई खाने के बाद भी नहीं.
1: और तीसरी चीज क्या है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है और खान पान की आदतें भी खराब है, बाहर का खाना, जंक फूड, जैसे कि आपने देखे होंगे इतने सारे जंक फूड मार्केट में अवेलेबल है, लोग जंक फूड्स खाते हैं, सॉल्ट का मात्रा बहुत हाई होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है सब, और स्मोकिंग वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है, डाइट्री हो गया, एक्सरसाइज नहीं करना होगा, और 70% इंडियन पॉपुलेशन आर स्ट्रेस्ड और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है. अगर इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखें, प्राइमरी चीज़ों पे, तो आप सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या टर्सरी प्रिवेंशन भी आप कर सकते हैं अगेंस्ट द किडनी।
0: जी, यानी डायबिटीज के साथ साथ बीपी को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो क्या नॉर्मल लेवल्स होने चाहिए? खासतौर पर से मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी जो इंसुलिन लगा रहे हैं फिर भी 200 के पार कई बार जो उनकी डायबिटीज़ लेवल है, जो शुगर लेवल्स है वो इतना दिखाता है, क्या वो खतरे में है? क्योंकि इंसुलिन की डोजेज आप डॉक्टर के अनुसार ही सेट करते हैं, खुद ज़्यादा बढ़ा घटा नहीं पाते हैं।
1: ये बात आपने सही बताया, इंसुलिन तो बहुत वंडरफुल चीज़ है शुगर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत हो जाते हैं, और ख़ासकर एल्डरली पॉपुलेशन में कभी वो खाना कम खाएंगे, कभी ज़्यादा खाएंगे। अगर उन्होंने कि स्पेसिफाइड यूनिट बताया गया है ले लिया तो हाइपोग्लाइसीमिया, वो जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है बहुत डेंजरस होता है, ब्रेन पर भी वो असर करता है। तो जनरली मैं अपने पेशेंट में मैं बहुत स्ट्रिक्ट ये लेकर नहीं चलता कि लेस देन 6 HbA1c होना चाहिए, जो इंटरनेशनल गाइडलाइन बोलता है फास्टिंग 100, खाना खाने के बाद 140। एल्डरली पॉपुलेशन में या CKD पेशेंट में मैं +20 या +40 का मैं डिफरेंस लेकर चलता हूँ। अगर 180 भी है इंसुलिन लेने के बाद तो वो ठीक है, क्योंकि मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है इंसुलिन का वो हाइपोग्लाइसीमिया है, तो मेरे को उससे पेशेंट को बचा, तो +40 का मैं एक डिफरेंस लेकर चलता। अगर 180 है गाइडलाइन 140 बोलता, 180 है तो ठीक है। तो एल्डरली पॉपुलेशन में 40 या +20 पेशेंट प्रोफाइल वाइज का डिफरेंस लेके चलता हूँ, स्पेशली वो पेशेंट जो इंसुलिन में।
0: बिल्कुल, इंसुलिन वाले पेशेंट्स का थोड़ा सा ध्यान इस तरीके से रखा जाता है, क्योंकि कहीं अगर बहुत कम शुगर लेवल्स हो गए, 70 से नीचे हो गए, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर से एल्डरली की बात हम कर रहे हैं, और एल्डरली के घुटनों में बहुत दर्द होता है, कभी बैक में दर्द हो रहा है, या कभी वैसे ही बॉडी में पेन्स रहते हैं। सो ऐसे में बहुत एक कॉमन आदत होती है हमारे देश में कि आप एक इब्रूफेन या कोई भी ऐसा पेन किलर ले लें, और धीरे धीरे धीरे ये आदत ज़्यादा हो जाती है, ये कैसे किडनी डैमेज में रोल प्ले करती है?
1: ओवर यूज ऑफ एनी मेडिकेशन, किसी भी मेडिसिन का अगर आप ओवर यूज करते हैं तो उसके तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं किडनी के लिए स्पेशली जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID, जैसे कि आपने एक नाम बोला आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, ये सब जो मेडिकेशन होते हैं ये किडनी को डैमेज करता है। अगर आपने डॉक्टर के सुपरविजन में, अगर उनके प्रिस्क्रिप्शन में एक लिमिटेड मात्रा में लिया, ओकेजनली लिया, तो ये किडनी को जल्दी नहीं डैमेज करते। लेकिन अगर आप ओवर यूज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में OTC ओवर द काउंटर, ये मेडिसिन ओवर द काउंटर अवेलेबल है, किसी को सर दर्द हो गया, पैर दर्द हो गया, वो जाते हैं मेडिकल शॉप में, ये मेडिसिन उठाते हैं और ये सुबह शाम खाते हैं, डॉक्टर से ये परामर्श नहीं लेते। तो मैं उनको ये बात बोलना चाहूँगा, अगर स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या नहीं भी है, बीपी भी है, अगर किसी तरह का दर्द हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, और पेन किलर बिना उनके परामर्श करा लें, क्योंकि जो NSAIDs ड्रग होते हैं, पेन किलर्स जो होते हैं, वो किडनी को डैमेज करते हैं। अब बहुत सारे मैंने ऐसे भी मरीज देखे जिन्होंने सिर्फ 5 दिन ही लगातार पेन किलर लिए, उनकी किडनी डैमेज हो गई है।
0: यानी ऑलरेडी वो उस कगार पर थी, उस वर्ज पर थी कि वो डैमेज हो सकती है,
1: डैमेज हो सकती है NSAIDs किडनी को। ये बहुत बड़ा NSAIDs जो ड्रग होते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं, वो किडनी को डैमेज बहुत हद तक करते हैं। 20-30% ऐसे पेशेंट आते हैं OPD में जो कि पेन किलर्स वाले होते हैं, जिनके सीरम क्रिएटिनिन बड़े होते हैं, EGFR कम होता है। जब मैं उनसे सवाल करता हूँ तो पता चलता है कि वो पेन किलर्स ले रहे थे पिछले 2 महीने से या 1 महीने से। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि पेन किलर्स बिना डॉक्टर के परामर्श के आप ना लें।
0: बिल्कुल बिना डॉक्टर की सलाह के आप, वैसे तो देखिए कोई भी दवाई ना लें, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आप हाइपरटेंसिव हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम हेल्थ में है, सो बिना डॉक्टरी परामर्श के कोई दवाइयां ना लें। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी पेन किलर लेनी पड़ती है तो वो भी डॉक्टर से पूछ कर लें, क्योंकि पेन किलर अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो नुकसान बहुत गहरा होता है। बहुत सी बातें और भी जारी रहेंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ, प्रोग्राम का नाम है ऑल इज़ वेल, और ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और इस पॉडकास्ट को RJ दीक्षा के फोल्डर में जाकर डॉक्टर मनीष महाजन के साथ कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, और किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जिसे इस जानकारी की बेहद ज़रूरत हो। बहुत सी बातें और भी, लेकिन वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल. नॉलेज पार्टनर है SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. और बातें चलनी है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन की वजह से हो जाती हैं. लेकिन क्या ये किडनी रिवर्स हो सकती है प्रॉब्लम्स में, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि दो किडनीज हैं, क्या पहले एक ख़राब होती है या दोनों एक साथ भी ख़राब हो सकती हैं? क्या इन्हें वापस ठीक किया जा सकता है? क्या ज़्यादा पानी पीने से किडनी की प्रॉब्लम्स वाकई सॉल्व हो जाती हैं? ऐसे कुछ सवाल आपके मन में भी आते होंगे. इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मनीष महाजन, शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट. सर, बहुत सिंपल सी बात होती है, जब किडनी की बात होती है तो लोग कहते हैं पानी पियो, बहुत पानी पियो. किडनी स्टोन होता है तो भी कहते हैं पानी पियो. किडनी रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आता है तो भी कहते हैं पानी पियो. अब कितना पानी पीना चाहिए और क्या ये पानी वाकई मदद करता है?
1: हाँ, नॉर्म डिपेंड करता है पानी का इंटेककितना होना चाहिए पेशेंट वाइज पेशेंट. अगर किडनी का पेशेंट है कोई तो उसमें पानी का मात्रा कितना, उनका EGFR कितना, किडनी काम कर रहा है, उसके हिसाब से पेशेंट वाइज पेशेंट हम डिसाइड करते हैं. और अगर किडनी का पेशेंट नहीं है, अगर डायबिटिक भी है या नॉन डायबिटिक भी है या BP का भी पेशेंट है लेकिन किडनी में कोई असर नहीं है
0: जी.
1: तो जनरल एक पॉपुलेशन में 200 ml का एक ग्लास, 10 ग्लास मतलब 2 लीटर मेल के लिए मिनिमम होना चाहिए. और फीमेल के लिए 200 ml का ग्लास, 12 ग्लास कम से कम,
0: ज्यादा होने चाहिए मतलब कंपेयर टू मेल,
1: दो से ढाई लीटर मिनिमम एक फीमेल को इतना पानी पीना चाहिए. क्योंकि किडनी भी एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कि न्यूट्रिशन चाहिए होता है. तो किडनी बोलता है भाई मेरे को 2 से 2.5 लीटर पानी दो काम करने के लिए.
0: बिल्कुल.
1: तो अगर उससे कम आप देते हो तो किडनी फिर क्या होता है कि हाइपो फंक्शन हम बोलेंगे, किडनी की जो क्षमता है वो उसे कम काम करता है, तो फिर किडनी में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं
0: जी.
1: तो 2 से 2.5 लीटर मेल हो या फीमेल मिनिमम क्वांटिटी पानी आपको लेना चाहिए कि आपका किडनी एक अच्छे से काम करे. और अगर किडनी का पेशेंट है तो डिपेंड करता है कि उसकी किडनी कितनी काम करे, तो उसके हिसाब से हम पानी का मात्रा डिसाइड करते हैं
0: जी. डॉक्टर साहब, क्या किडनी पेशेंट्स को प्यास भी बहुत लगती है, जैसे शुगर के पेशेंट्स को प्यास बहुत लगती है? अब किडनी अगर इफेक्ट हो रही है तो प्यास लगेगी क्या?
1: जी, ये तो विधि का विधान है. जो डायबिटिक है उनको मीठे की क्रेविंग होती है, जिनको बीपी है वो नमक ज़्यादा खाते हैं. तो सेम जो किडनी या गुर्दे के जो पेशेंट हैं उनको प्यास और उनको पानी पीने की बहुत क्रेविंग होती है. तो इसलिए हम अपने सारे किडनी के पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके असेस करके हम इनको बताते हैं कि आपको 800 ml 24 घंटे में लेना है या 1 लीटर लेना है या 1.5 लीटर लेना है. हम अपने प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं कि आपके लिए इतना मात्रा ही पानी आपको लेना चाहिए. क्योंकि अगर आप 1.5 लीटर ले रहे हैं, उतना पानी अगर निकल रहा है किडनी के माध्यम से, तो आपको उतना ही पानी लेना है.
0: डॉक्टर साहब, क्या डिहाइड्रेशन या बहुत ज़्यादा गर्मी में स्वेटिंग होना, ये भी कहीं ना कहीं किडनी को इफेक्ट कर सकती है? क्योंकि आपकी बॉडी से पानी निकलता रहता है, आप जब गर्मी में जाते हैं तो एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है. आजकल तो वैसे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो क्या इसमें भी किडनी पे कोई असर डलता है?
1: अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो आप बिल्कुल हाइड्रेशन मेंटेन रखें. और डिहाइड्रेशन का एक और कॉज होता है लूज मोशन या डायरिया भी होना, जिसमें काफ़ी अच्छा खासा मात्रा में पानी निकल जाता है. तो इसमें एक कंडीशन आता है प्री रीना ले के आई, मतलब जब आप एडमिट होते हैं डायरिया लेकर या डिहाइड्रेशन का किसी भी कॉज को लेकर, तो उसमें हम क्रिएटिनिन की जांच जब हम कराते हैं तो कभी कभी क्रिएटिनिन 4 या 5 हमें मिला होता है. तो उसमें हम कुछ नहीं करते, हम एसेस करते कि कितने लीटर इनका पानी निकल गया होता है. तो फिर हम पेशेंट को हाइड्रेशन देते हैं और उस वक्त पेशेंट बहुत टेंशन में होता है, उसको लगता है कि उसकी किडनी परमानेंट डैमेज हो गई है. लेकिन वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है. हमें पता है कॉज कि डिहाइड्रेशन कॉज है, तो हम उनको रिहाइड्रेट कर देते हैं. तो रिहाइड्रेट करने से 3-4 दिनों में वो किडनी का फंक्शन वो वापस आ जाता है और सेरम क्रिएटिनिन लेवल या EGFR जो गिरे होते हैं वो फिर वापस आके नॉर्मल में आ जाता है.
0: ओके डॉक्टर साहब, एक और आजकल बहुत ट्रेंड चल गया हाई प्रोटीन डाइट का. आप रील्स जितनी भी देखते हैं वहां पर लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, और प्रोटीन कुछ हद तक जरूरी भी है. हम इंडियंस की डाइट में प्रोटीन की मात्रा वैसे ही बहुत कम होती है. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, डायबिटीज के पेशेंट प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, क्या ये प्रोटीन नेगेटिव असर डाल सकता है किडनी पर?
1: प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन डायबिटिक किडनी के जो पेशेंट होते हैं उसमें एक्सेसिव प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती. किडनी में ऑलरेडी हाई प्रेशर होता है और उनके फिल्टरिंग यूनिट्स ऑलरेडी डैमेज होने स्टार्ट हो गए होते हैं। अगर हम हाई प्रोटीन लेते हैं तो वो किडनी के जो फिल्टरिंग यूनिट्स या प्रेशर को और बढ़ाता है, जिससे किडनी का डैमेज और स्पीड अप हो जाता है। तो डायबिटिक किडनी पेशेंट अगर वो नॉन डायलिसिस में है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है डायबिटीज़ का, तो उनको 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन वो ले सकते हैं। और अगर वो डायबिटिक अगर वो किडनी के पेशेंट है, डायलिसिस के पेशेंट है, तो उनको 1.2 टू 1.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सारे प्रोटीन अच्छे नहीं होते, आप बिल्कुल लेबल देखें, एक ब्रांडेड ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन आते हैं जिम वाले हों चाहे ऐसे भी मार्केट में, उसमें लेड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो कि किडनी को डैमेज करते हैं। और तीसरी चीज़, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छा है। और प्रोटीन का जो इंटेक है वो पेशेंट वाइज पेशेंट ही आप इंडिविजुअलाइज करें। एक्स्ट्रा लेते हैं किडनी में प्रेशर बढ़ाता है, जो कि किडनी को ऑलरेडी वो डैमेज
0: कर सकता है। जी सर, चलते चलते आखिरी बात सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमको सुन रहे होंगे तो मन में सवाल आ रहा होगा, जैसे लिवर प्रॉब्लम्स वापस ठीक होने लग जाती हैं, लिवर अगर फैटी लिवर है तो नॉर्मल होने लग जाता है, किडनी हमारे पास दो हैं, किडनी क्या एक एक करके डैमेज होती है या एक साथ डैमेज हो सकती है, और अगर डैमेज हो गई है कुछ हद तक तो क्या इसको शुरुआती दौर में रिवर्स किया जा सकता है?
1: और जैसे कि एक मैंने अभी बताया, डिहाइड्रेशन एक कॉज होता है, ऐसे अगर कोई टेम्प्ररी कॉज होते हैं, अगर किडनी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें EGFR कुछ टेम्प्ररी में कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कारण पता है कि किडनी में अगर स्टोन के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम हो रही है, UTI अगर हो रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस अगर हो रहा है, या कोई ऑटोइम्यून हो रहा है, तो अगर कारण को पता है बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। और किसी एक किडनी में भी डैमेज हो सकता है और दूसरे किडनी में भी हो सकता है, लेकिन जो डायलिसिस के जो पेशेंट या किसी के किडनी का डैमेज होना है, तो बहुत सारे पेशेंट में दोनों एक साथ डैमेज हो जाते हैं।
0: okay.
1: और वो पेशेंट डायलिसिस में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं होता कि उनके किडनी नहीं है या डैमेज है, एक किडनी डैमेज है, तो एक किडनी में पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। सावधानियों के साथ डॉक्टर उनको बताएंगे कि आपको क्या सावधानी बरतना है, अगर सावधानी बरतते हैं, परहेज करते हैं, तो एक किडनी के साथ एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है।
0: बिल्कुल, यानी इतना ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है, आप अगर सही लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अपने टेस्ट रेगुलर कराइए, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो उसके जो वाइटल्स हैं वो एकदम ठीक ठाक रहने चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए सब कुछ, ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी खुशनुमा तरीके से जी सकें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
0: तो प्रोग्राम ऑल इज वेल में आज बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, और कुछ नई प्रॉब्लम्स के बारे में विस्तार से करेंगे डिस्कशन। फिलहाल इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव, दिस इज दीक्षा।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्रिएटिव मंच में हमारे साथ

0: करीब 3 साल पहले ये दोनों द गोपी गर्ल्स के नाम से डिवोशनल सिस्टर डुओ के रूप में पहचानी जाती थीं। इनके कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया और वेन आई एम इन वृंदावन जैसे गानों को खूब प्यार मिला और खूब सराहा गया। आज ये दोनों द श्यामाज और द फूल्स नाम से अपनी क्रिएटिविटी के दो अलग अलग पहलू दुनिया के सामने रख रही हैं। द श्यामाज के जरिए ये अपनी हिंदुस्तानी शास्त्रीय जड़ों और भारतीय डिवोशनल म्यूजिक को कंटेम्प्रेरी साउंड के साथ जोड़ती हैं। इनका गीत जेंजी की भक्ति संगीत को एक फ्रेश और युवा अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए काफी लोकप्रिय हुआ। वहीं फूल्स इनके ओरिजिनल म्यूजिक का प्लेटफॉर्म है, जहां ये अपनी फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और लाइफ स्टोरीज को इंडी पॉप, इंग्लिश इलेक्ट्रॉनिक और एक्सपेरिमेंटल साउंड्स के जरिए एक्सप्रेस करती हैं। सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि ये दोनों बहनें अपने संगीत का काम खुद ही करती हैं। सॉन्ग राइटिंग और कंपोजिशन से लेकर रिकॉर्डिंग, अरेंजमेंट्स, प्रोडक्शन, मिक्सिंग और मास्टरिंग तक। वहीं हमसनी साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स भी कर रही हैं और म्यूजिक प्रोडक्शन के टेक्निकल साइड को भी गहराई से सीख रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज क्रिएटिव मंच में इन दोनों प्यारी बहनों का स्वागत करते हैं, द श्यामाज और द फूल्स की बेहद टैलेंटेड सिस्टर्स हमसनी कौशिक और स्माही कौशिक का। आप दोनों का क्रिएटिव मंच में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच मैम हमें यहाँ पे बुलाने के लिए।
0: ओके, तो सबसे पहले मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी और हमारे लिसनर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपने इतनी अपने मतलब स्टार्टिंग में म्यूजिक की जो शुरुआत की वो आपका पैशन था या हॉबी थी?
1: इट वॉज लाइक अ हॉबी ही थी पहले तो, पर वो धीरे धीरे पैशन बना एंड उसके बाद अब करियर।
0: और आपने किस एज से सीखना शुरू किया था, ये भी एक बार आप अपने मुंह से बताइए दोनों जने।
1: तो मैंने एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मेरा फर्स्ट बर्थडे था, जब मुझे किसी ने एक छोटा सा कैसियो दिया था, छोटा सा कीबोर्ड, एंड वो क्योंकि मेरे घर पे था ही, इसलिए जब मैं 4 साल की हुई तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पियानो क्लास भेज दिया।
0: अच्छा।
1: एंड इस वजह से फिर मैंने पियानो सीखा एंड फिर जब पियानो बजाते बजाते वो गाने भी सिखाते ही हैं, तो गाने सीखते सीखते बजाते बजाते मैं गाने भी लग गई, तो उनको लगा मैं अच्छा गाती हूँ, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे वोकल क्लासेस में भी डाला एंड दैट इज़ द थिंग दैट स्टार्टेड इट ऑल।
0: ओके, और स्माही ने कब से सीखना शुरू किया?
2: मैंने 6 ईयर्स की जब थी तब से, और मेरा शुरुआत में तो डांस में इंटरेस्ट था, बट फिर उनसे सीखते सीखते फिर मेरा भी उसी में इंटरेस्ट,
0: मतलब वो उसको देखते देखते एक इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो गया। ओके, और मम्मी पापा का क्या इसमें रोल था, मतलब वो ही तो चाहते होंगे ना कि तुम म्यूजिक में आओ, या तुम लोगों ने जिद की कि नहीं हमें म्यूजिक क्लासेस भेजा जाए?
1: तो जब से मैं बचपन में जब बहुत छोटी थी, लाइक हमेशा मुझे सारी चीज़ें कराई, मैं स्केटिंग में भी नेशनल्स तक खेल चुकी हूँ एंड आर्ट वर्क एंड डांस लाइक लॉन टेनिस सम लाइक एवरीथिंग दे कवर,
0: मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज।
1: हाँ, लाइक जो अच्छा लगे कि कुछ तो मिल जाएगा ऐसा। तो फिर मुझे कुछ मिल भी गया, मुझे म्यूजिक मिला एंड लाइक म्यूजिक मुझे सबसे अच्छा लगता था, तो दैट्स व्हाट आई चोज।
0: ओके, सो बचपन में आप दोनों के लिए म्यूजिक ज्यादा मतलब शौक था या पढ़ाई की तरह डिसिप्लिन के रूप में लेते थे उसे?
2: ओके, सो हम दोनों चीज़ों में से कुछ ज़्यादा प्रेशराइज मम्मी पापा कभी नहीं करते थे, दोनों चीज़ों में ही हम बहुत फन रूप में और बहुत आराम से सब कुछ करते थे, कभी प्रेशराइज नहीं किया और
1: डिसिप्लिन कुछ
2: डिसिप्लिन नहीं था। सभी बहुत इंजॉयमेंट से, लाइक पढ़ाई करने का मन करा तो पढ़ाई कर ली, म्यूजिक करने का मन करा तो वो कर लिया, लाइक सब कुछ बहुत लाइट एंड चिल था,
0: मतलब कभी वो प्रेशर नहीं रहा दोनों चीज़ों को लेकर भी
1: नहीं।
0: और वैसे एक थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि तुम पढ़ाई में दोनों कैसे हुए बताओ?
2: अच्छा, वो तो अच्छा है।
0: जिंदगी क्या होता है, जो बच्चे म्यूजिक डांस वाले होते हैं उनका थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम
2: नहीं,
0: होता
2: इतना है। तो हमें लाइक लगता है नहीं अच्छा स्कोर करना चाहिए।
0: अच्छा, तो अब एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, क्या आप दोनों को याद है कि पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने का क्या एक्सपीरियंस था आप दोनों का, और कब किया, कहाँ किया और कौन किस एज में किया?
2: मैं तब थी 2 ईयर्स की। अच्छा। और मैंने ना कोई रैंडम परफॉर्मेंस चल रहा था, एक स्टेज लगी थी हमारी सोसाइटी में, तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही चढ़ के गा दिया, मुझे कोल्ड हुआ था, बहुत गंदी आवाज़ थी, तो
1: खास खास के गाया,
2: खास के एकदम गंदा सा गाया था मैंने। और फिर बेसिकली मम्मी ने बचपन से हमें स्टेज पे भेजा है, तो हमें कभी स्टेज फ्राइट या नर्वसनेस हुई नहीं, वो हमारी पर्सनैलिटी बन गई, हमें लाइफ का हिस्सा ही था, तो हमें कभी ऐसा नहीं हुआ।

0: अभी भी याद है जब ये ऐसे खास खास के गा के आई थी माइक पर, इतना खुश होके फिर कूद कूद के आई थी कि ओ माय गॉड मैंने गाना गाया,
1: स्टेज पर गाया।
0: हाँ।
1: मतलब वो स्टेज फियर वाली बात कभी नहीं रही
2: थी, नहीं, बचपन
0: वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया।
1: नाइस। अच्छा तो अब इसी के साथ कौन सा हमें गाना सुनाओगे आप अपना, जो बेस्ट

वाओ अमेजिंग, बहुत ही प्यारी आवाज़ है आप दोनों की, मतलब गॉड गिफ्ट ही है ये एक तरीके से, बट सच में बहुत प्यारी आवाज़ है। और इस गाने की स्टोरी क्या है वो हम लिसनर्स इनसे जानेंगे, लेकिन अभी हम ले रहे हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से हमारी आज की प्यारी प्यारी ये जो मेहमान आई हैं इनसे हम अपनी वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और हम आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमसिनी और स्माही। तो अभी आप दोनों ने हमें ये गाना सुनाया, इसकी स्टोरी क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना है।
1: तो कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, ये गाना सभी ने सुना होगा। ये हमारी मम्मी का फेवरेट गाना था।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने लाइक हमें बोला कि इसको चलो डिवोशनल सॉन्ग बनाते हैं, है ना। तो फिर उनका फेवरेट गाना था, फिर हमने बनाया। एंड जब हम गोपी गर्ल्स थे, द गोपी गर्ल्स, तभी हमने गाना रिलीज़ किया था। एंड ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत वायरल हो गया था एंड सभी लोगों ने बहुत पसंद किया इस गाने को।
0: और दूसरी बात मैं जानना चाहूँगी, ये द गोपी गर्ल्स क्या था, आपका प्रोजेक्ट था, तो क्या, किस तरीके से, इसके बारे में बताइए।
1: तो द गोपी गर्ल्स एक डुओ ही था, स्पिरिचुअल डुओ। एंड तब हम बहुत छोटे थे, 3 साल पहले की बात है। आई वॉज इन 9th class एंड शी वॉज इन 5th class। यस, तो इट वॉज लाइक द सेम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लाइक हमें लर्निंग ऐसा लग रहा था कि हमारी स्टॉप हो रही है, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा ब्रेक लेने का डिसाइड किया हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि उनको लगता था कि अभी हमें इंडस्ट्री में अभी नहीं उतरना चाहिए एंड वी नीड टू वेट एंड लर्न फर्स्ट। तो दैट्स व्हाई वी,
0: मतलब म्यूजिक पूरा सीखा आपने?
1: Yes,
0: मतलब ट्रेनिंग ली क्लासिकल म्यूजिक की।
2: पिछले 3 साल के ब्रेक के बाद अब वापस से
0: दोबारा से कम बैक हुआ है बहुत ही जोश के साथ। अमेजिंग। ओके, तो अभी तक हमने बात की आपने कब से म्यूजिक सीखना शुरू किया और कौन सा आपका सॉन्ग वायरल हुआ कैसे, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी दो बहनों की स्टोरी, मतलब दोनों जब एक साथ काम करें। देखो हम लोगों में तो मेरी भी अपने भाई बहन है लेकिन बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बट तुम दोनों बताओ जब तुम दोनों एक साथ काम करते हो तो कैसा वो कॉम्बिनेशन रहता है, वो अच्छी बात है या लड़ाइयाँ भी होती हैं, किस तरीके से?
2: ओके, सो बेसिकली साथ में रह रहे कि हमारे थॉट्स और डिसीजंस बहुत ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। और ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, होती है, बट ऐसी बातों को लेके होती है कि ये सही है या वो गलत।
0: एग्जैक्टली, हाँ, वही मेरे को जानना था।
2: तो वो हमारी लास्ट डिसीजन तो हमारी मम्मा ही लेती है।
0: अच्छा।
2: हमारे घर के क्रिटिक है वो, अगर हमारे में हम बीच में लड़ाई हो जाती है कि ये अच्छा है ये अच्छा है, तो हम उनको लाते हैं कि अब आप बताओ ये अच्छा है कि ये अच्छा है, फिर वो फाइनल डिसीजन लेती है, फिर हम उसको फॉलो करते हैं। और मतलब साथ में रह के ये भी हो गया कि हम बिना एक दूसरे से कंसल्ट करे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं।
0: अच्छा।
2: तो एक दूसरे की हाँ ना तो बहुत,
0: मतलब वो राय भी बहुत जरूरी, हाँ, है दोनों, हाँ, की एक दूसरे के आपस में, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ये चीज तो। और जैसे आपने अभी अपनी मम्मा का जिक्र किया तो मुझे ये बताओ मम्मा भी क्या म्यूजिक से रिलेटेड है या?
2: हमारे दोनों पेरेंट्स IT के बैकग्राउंड।
0: अच्छा,
2: तो फर्स्ट वही लाई है म्यूजिक।
0: ओके, नाइस। बट फिर भी वो आपको फुल ऑन सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा हर चीज़ में?
2: बहुत ज़्यादा सपोर्ट।
0: ये बहुत अच्छी बात है अगर फैमिली से सपोर्ट हो, मदर पेरेंट, मतलब मदर फादर का, बहुत ही अच्छी बात है ये। ओके, तो अब मुझे ये बताओ हमसिनी और स्माही, एक क्वालिटी जो स्माही को हमसिनी की ज़्यादा अच्छी लगती है और तुम्हें इसकी, ये बताओ।
2: मुझे दीदी का क्रिएटिव माइंड और उनका बहुत म्यूजिकल माइंड है, वो उनको बहुत सारे आइडियाज होते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है।
0: और आपको?
1: मुझे उसकी प्रेजेंस चाहिए, लाइक जैसे एक्सप्रेशंस देती है वो, जैसी उसकी स्टेज प्रेजेंस है, बहुत अच्छी है।
0: नाइस। और तुम इसे दीदी बोलते हो वैसे?
2: DU। अच्छा, उसका भी निकनेम बना।
0: और अगर तुम दोनों को एक दूसरे की कोई म्यूजिकल क्वालिटी बतानी हो तो क्या है दोनों की, मतलब अपनी अपनी डिफरेंट?
2: उनकी वोकल रेंज।
0: अच्छा।
2: उनके रिफ्स, रन्स, उनकी वोकल्स बहुत अच्छे हैं। एंड लाइक उसके साउंड में ना, उसकी वोकल्स में बहुत इमोशन है एंड आई वांट दैट। बहुत इमोशन के साथ गाती है, बहुत फीलिंग के साथ गाती है।
0: ठीक है, तो फीलिंग की जहाँ बात हुई है, मैं चाहूँगी कुछ एक बार फिर से बढ़िया सा कुछ सुनाया जाए हमारे लिसनर्स को।

0: वाओ ब्यूटीफुल,
1: इतनी सूदिंग आवाज है ना आप दोनों की, और जब एक साथ गाते हो बहुत ही, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और लिसनर्स मैं आपको बता दूं, ये दोनों मुझे पहले ऐसा लगा था कि ये ट्विंस हैं, लेकिन ये है नहीं ट्विंस। कितने इयर्स का गैप है दोनों में?
2: 4 साल का
1: बिल्कुल। आप इनके पेज पर जाएंगे ना फॉलो करना, और तब देखना ये बिल्कुल ट्विंस लगती हैं रील्स में। तो आई वाज आल्सो कंफ्यूज, बट तुम्हारी आवाज जब एक साथ आती है अमेजिंग, बहुत ही सुरीला।
2: थैंक यू सो मच।
1: ओके लिसनर्स, तो वक्त हो चला एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे हमारी प्यारी बहनों के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

क्यों ना एक काम किया जाए, मरने के बाद भी जिया जाए, अंगों को अपने दान किया जाए और जिंदगी को एक बार फिर से जिया जाए, एक बार फिर से जिया जाए। जब आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं तो आप सिर्फ एक जिंदगी नहीं बचाते बल्कि आप भी उनमें जिंदा रहते हैं। वी सपोर्ट ऑर्गन डोनेशन। डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, स्टूडेंट वेलफेयर MRIIRS और रेडियो मानव रचना 107.8 FM की ओर से एक खास पहल, डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। आप मदद करेंगे ना?

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही प्यारी बहनें, सुरीली बहनें, जिनका नाम है हमसिनी और स्माही। तो स्माही और हमसिनी, आप मुझे ये बताओ, कोविड लॉकडाउन ने आपकी म्यूजिक जर्नी को किस तरह से बदला?
1: तो कोविड लॉकडाउन का टाइम हमारे लिए लाइक अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा लकी टाइम रहा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था, पूरे दिन तो खाली ही रहते थे।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे ऐसी बात नहीं कि हमने टाइम पास नहीं किया, टीवी नहीं देखा, वो भी बहुत देखा, बट फिर भी टाइम बच जाता था। तो इस वजह से हमने लाइक एक हॉबी, लाइक हमने सोचा कि अपनी हॉबी को थोड़ा सा ब्रश अप करते हैं और ज़्यादा। तो मैंने लॉकडाउन में खुद से पियानो सीखा एंड गिटार सीखा, तो उससे लाइक मेरी म्यूजिकल जो ब्रेन है और डेवलप हुआ, एंड मुझे पता चला कि आई वांट टू क्रिएट म्यूजिक नॉट ओनली सिंग इट।
2: और हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी, हर चीज़ करी थी लॉकडाउन में, जैसे सॉन्ग राइटिंग करा, थोड़ा कंपोजिंग एक्सप्लोर करी। तो लाइक लॉकडाउन में हमने अपना फर्स्ट गाना भी लिखा था।
1: हाँ,
0: फर्स्ट गाना कौन सा था वो?
1: तो हमारे पापा का बर्थडे था एंड हमें समझ नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट दें, कि कार्ड बनाएं, कि क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो हमने एट लास्ट यही सोचा कि चलो गाना बनाते हैं।
0: वाओ,
1: जो कि हमारी बस के नहीं था, बट फिर भी हमने सोचा चलो गाना बना लेते हैं।
2: शी वाज 10 इयर्स ओल्ड, आई वाज 6।
1: तो हमने फिर गाना बनाया, जो कि लाइक बहुत मुश्किल लगा था हमें, बट लेकिन हमने लाइक बहुत चाइल्डिश सा गाना बनाया था, बट फिर भी इट वाज लाइक फन टू हियर।
0: अभी भी सुना सकते हो आप?
1: मुझे बस इसकी एक लाइन याद है।

0: ये अभी भी हमारे चैनल पर भी है।
1: नहीं नहीं गाना तो बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे ये पूरा गाना भी हम सुने, क्योंकि अगर किसी को अपने फादर को विश करना हो तो ये गाना गा के कर सकते हैं। बट ये वैसे बड़े कमाल की बात है कि तुम कह रही हो तुम 10 ईयर्स की थी उस टाइम, तुम 6 साल की थी, तो इतने में

0: इतनी छोटी उम्र में बच्चों में इतना होता है पेशेंस के गाने बना ले तो कैसे ये चीज।
1: एक्चुअली हमारी मेन इंस्पिरेशन, एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड थी, उसने हमें इंट्रोड्यूस किया एक सिंगर टेलर स्विफ्ट से।
0: ओके
1: तो हम उससे बहुत इंस्पायर हो गए, एंड क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपने गाने खुद लिखती थी, तो दैट वॉज द थिंग दैट इंस्पायर्ड मी टू राइट माई ओन सॉन्ग्स। तो फिर मुझे लाइक उसकी तरह बनना था ऑफकोर्स, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी अपने गाने लिखने, चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं लिखूंगी।
2: और उसी की वजह से हम वेस्टर्न म्यूजिक से इंट्रोड्यूस हुए थे, और तब से लेके अब तक वही हमारी आइडल है कि हमें उसके जैसा बनना है।
0: एग्जैक्टली, चलो आई विश कि आप वैसे ही बने।
2: वी विश टू।
0: और क्या, और आप लोगों ने उस टाइम लॉकडाउन के टाइम प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग्स का भी कुछ ट्राई किया या नहीं? बट जैसे मैंने, हाँ तब तक नहीं, कब से ये चीज स्टार्ट किया आपने?
1: When I was in 9th class, जब हम गोपी गर्ल्स थे उस टाइम, तब मैंने दो गाने प्रोड्यूस किए थे, कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया और When I'm in वृंदावन। तब ही मुझे पता चला था कि, उससे पहले मुझे पता नहीं था कि म्यूजिक प्रोडक्शन जैसे भी कोई चीज़ होती है, मुझे लगता था गाने बन जाते होंगे बस ऐसे ही।
2: हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमें तो ये भी नहीं पता था कि वायरल क्या होता है।
1: हाँ
2: तो बेसिकली मेन चीज़ तो हमारी गोपी गर्ल से ही हुआ था, हमें पता चला था कि ऐसा कुछ होता है
1: कि गाने बनाते हैं फिर पोस्ट करते हैं रिलीज करते हैं, लाइक हमें एक प्रोसेस के बारे में पता चला था। एंड उसके बाद प्रोडक्शन मैंने 9th क्लास में स्टार्ट करी, एंड तब तो मैं लाइक यूट्यूब वगैरह से सीखती थी, इधर उधर से वेबसाइट वगैरह से नॉलेज कभी इधर से ली कभी उधर से ली, तो लाइक मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा था वो, बहुत लाइक फ्रस्ट्रेटिंग टाइम पीरियड था मेरे लिए, क्योंकि लाइक जो साउंड मेरे दिमाग में थी, जो मुझे बनाना मैं चाहती थी, वो मैं बना नहीं पा रही थी, तो मुझे गुस्सा आ जाता था मैं गुस्सा ही हो जाती थी खुद पे, मैं बना क्यों नहीं पा रही। तो फिर इस वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक कोर्स ज्वाइन करवाया, एंड लाइक जब मुझे टेक्निकल नॉलेज और ज़्यादा थोड़ी समझ आई, तो मैं अपनी जो दिमाग में जो साउंड थी मैं उनको लाइक असलियत में बना पाई, तो फिर मुझे थोड़ी खुशी हुई कि हाँ अब मैं अच्छे से बना पा रही हूँ।
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की। तो आप अभी भी ये कर रहे हो?
1: हाँ जी,
0: यस, कोर्स अभी कंटिन्यू है?
1: अभी कंटिन्यू है,
0: तो आगे इसी में सोचा है?
1: ऑफ कोर्स।
0: और आपने भी कुछ प्रोडक्शन और इसका सोचा हुआ है?
2: भी शुरू कर चुकी हूँ धीरे धीरे, साथ में सीख के,
0: मतलब उसी की लाइन पर आप चल दियो, दैट्स ग्रेट। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, जैसे तुमने बताया पियानो और गिटार, कैसे YouTube से सीखा था तब?
2: हाँ, YouTube से।
0: तो ये पॉसिबल है कि कोई भी सीख सकता है इजिली?
2: हाँ, देख सीख सकता है। टेक्निक तो नहीं आई थी, बट आ गया था कि ठीक है गाने बजा सकते हैं हल्का फुल्का। हाँ।
1: लाइक खुद को अकम्पनी करने के लगा, गाने के साथ अकम्पनी करना, तो उतना तो मुझे आ गया था लाइक खुद से, लाइक ऑफकोर्स टीचर से तो सीखने की अलग बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो वही हम यहाँ पे ये भी मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि सारा यूट्यूब पे भी निर्भर नहीं रहना, बट एक गुरु की तो नीड डेफिनेटली होती है। ओके तो अब हमें कौन सा सॉन्ग सुनने को मिलेगा? आपने बताया आप गिटार भी इतना अच्छा बजाते हो, पियानो भी, तो अभी क्या हम गिटार पे कुछ सुन सकते हैं? हमारे लिसनर्स वेट कर रहे हैं आपकी आवाज में और आपका मधुर गिटार सुनने के लिए।
1: सिस जय जय शिव शंभू।

0: वाओ, अमेजिंग. इसके लिए तो क्लैप बनती है. इतना मीठा, इतना अमेजिंग और इतना सुर में, बहुत ही मजा आ गया.
1: और
0: जो आपने हारमोनीज की हैं, टू गुड, बहुत ही प्यारा. मतलब इतनी प्यारी आवाजें, शायद हमारे लिसनर्स को भी आज बहुत मजा आ रहा होगा जो ये सुन रहे होंगे.
1: थैंक यू सो मच.
0: तो अब मुझे ये जानना है आपसे कि द गोपी गर्ल से द श्यामाज का क्या सफर था ये?
1: तो द गोपी गर्ल्स में वी वर जस्ट सिंगर्स. गोपी गर्ल्स के दौरान हमें पता चला कि म्यूजिक बनाना चाहिए हमें. तब हमने सिर्फ दो गाने प्रोड्यूस किए थे, है ना. तो बेसिकली गोपी गर्ल्स में हम अपने स्टाइल से कुछ नहीं गाते थे. तो वहाँ पे हम बस नॉर्मल जेनरिक भजन्स गाते थे. हमने अपना स्टाइल ढूंढा नहीं था तब तक.
0: अच्छा.
1: फिर इसलिए हमने 3 इयर्स का गैप लिया, अपनी लर्निंग करी, अपना स्टाइल ढूंढा. एंड देन फिर श्यामाज में हम अपने स्टाइल से चीज़ें गाते हैं, अपने स्टाइल से बनाते हैं. एंड अब हमें हमारा स्किल भी लाइक मच बेटर है उस टाइम से, ऑफकोर्स.
0: और जो ये कौन दिशा में लेके चला रे कन्हैया जो है, और दूसरा आपने व्हेन आई एम इन वृंदावन जैसे सॉन्ग्स को लोगों का जब इतना प्यार मिला, तो उस समय क्या एक रिएक्शन, क्या फीलिंग, क्या कैसा लगता है तब?
1: तो हमें पता ही नहीं था कि लाइक हम सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे. पेरेंट्स ने कभी लाइक ज़्यादा हमें करने नहीं दिया. तो हमें पता ही नहीं था कि वायरल जैसी भी कोई चीज़ होती है.
0: छोटे भी तो थे तब.
1: हाँ, ऑफ कोर्स. तो हमें कुछ पता ही नहीं था. हमने बस ऐसे वीडियो बनाई एंड पोस्ट कर दी. एंड फिर हम वायरल हुए. लाइक हमें पता चला लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इतने फॉलोअर्स आए. तो हमें ऐसे हैरानी थी रही थी, ओ माई गॉड, ऐसा भी कुछ होता है. और आसपास के लोग जैसे हल्का फुल्का की रिकोगनाइज करने लग जाते, तो लगता कि ऐसा बन जाते थे. तो लोग लाइक बहुत लोग हमें रिकोगनाइज भी करने लग गए थे. तो फिर हमें ऐसे हैरानी थी रही थी, ओ माई गॉड, वाओ, दिस इज कॉल्ड वायरल.
0: फेमस हो रहे हैं.
1: यस.
0: तो मुझे ये बताओ, जैसे तुम फेमस हो रहे थे, तो स्कूल में कैसा रहता था सबका रिएक्शन, फ्रेंड्स का और टीचर्स का? थोड़ा
1: इट वाज नॉर्मल. लाइक हमें तो वो पहले से ही जानते थे, तो उनका लाइक कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया. लाइक हाँ, थोड़ा सा लाइक म्यूजिक टीचर्स का हाँ थोड़ा
0: तुम्हारी तरफ झुकाव ज्यादा हो गया होगा कि भाई ये बच्चियां तो बहुत अच्छा गाती हैं, तो इन्हें हर इवेंट में लेना ही है, लीड सिंगर बनाना ही है. वो तो होता ही है. चलो, बहुत मज़ा आ रहा है आज हमें लिसनर्स इनसे बात करके, दोनों से बहुत ही अमेजिंग बातें और अमेजिंग गाने हम सुन रहे हैं और आप तक लेकर आ रहे हैं. तो अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM.

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही सुरीली दो बहनें मौजूद हैं जिनका नाम है हमसिनी और स्माही। तो हमसिनी और स्माही, अब मुझे ये बताइए कि ये जेंजी की भक्ति का आइडिया कैसे आया, और क्या आप चाहती थी कि आज के यंग जनरेशन डिवोशनल म्यूजिक से कुछ नया तरीके का कनेक्शन बनाए?
1: तो बहुत फनी स्टोरी है। 2025 में जून में हमारे पेरेंट्स ना एक ऐसी आइडिया लेके आए, गाना है हमें हरि नाम बट माया सताती है। तो हम दोनों तो हंस रहे थे उन पे, क्या लिख के लाए हो आप। तो लाइक हमें तो बड़ा फ़नी लगा, ऑफ कोर्स था ही वो फ़नी। तो लाइक वो भी कहते नहीं नहीं गाना बनाएंगे, इसका गाना बनाएंगे। तो नवंबर तक लाइक उनको टाइम लग गया गाना लिखने में, तो उन्होंने नवंबर तक लाइक उन्होंने पूरा गाना ख़त्म कर दिया। तो फिर वो हमारे पास लाए फिर से कि चलो अब इसको बनाओ।
0: गाना मम्मी पापा लिख कर लाए?
1: हाँ, मम्मी पापा लाए।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो लाइक एक्चुअली यही होता है हमेशा कि वृंदावन, वो हमें हमेशा वृंदावन ले जाते थे। हम बोलते थे नहीं चलो गोवा चलते हैं ना। तो लाइक ऐसे थोड़े से हमारे जेंजी और मिलेनियल्स में भी थोड़े क्राइसिस हो जाता है, तो उसी पर उन्होंने गाना लिख दिया। तो इस वजह से लाइक उन्होंने हमें बोला कि चलो बनाओ इसको। तो मैं कहते ऐसे थोड़ी, इतना फ़नी गाना कोई बनाता है क्या, ऐसे थोड़ी। तो लाइक फिर मैंने उसको टला दिया, नवंबर में भी मैंने नहीं बनाया। मैंने बोला कि अरे ऐसे थोड़ी गाना बनाते हैं, छोड़ो ना। तो उसके बाद अप्रैल में उन्होंने बोला एक बार बना के तो देखो, अप्रैल 2026 में, तो बना के तो देखो क्या क्या लाइक अच्छा भी तो लग सकता है। फिर मैंने बनाया, बट जब बनाया तो आई जेन्युइनली लाइक दैट। एंड उसके बाद ना जब भी हम कोई गाना बनाते हैं ना, हमारी आदत है कि हम लाइक जो क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं ना उनसे एक बार रिव्यू लेते हैं सुना के, है ना। तो हमने ऐसे 5-10 लोगों को ऐसे सुनाया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस था कि हाँ हाँ इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा लगेगा। तो फिर हमें लाइक कॉन्फिडेंस था कि हाँ चलो रिलीज़ करते हैं। फिर हमने अप्रैल 28 को हमने इसको रिलीज़ कर दिया आखिरकार। एंड उसके बाद मई 1st से पहले पहले ही वो वायरल हो गया था, तो लाइक इट वर्क्ड।
0: तो क्या हम सुन सकते हैं इस गाने को?
1: हाँ जरूर।
2: गाना है हमें हरि नाम बट माया सताती है, गाना है हमें हरि नाम बट माया सताती है। जाना तो है वृंदावन बट गोवा बुलाता है, बट गोवा बुलाता है। खाना है सात्विक फूड बट मोमो दिख जाता है, खाना है सात्विक।

0: बताती है।
1: वाओ, फुल ऑन जेंजी की फील, मतलब एकदम।
0: इसके पीछे एक और बहुत फनी स्टोरी है। आपको पता है हमने कभी आज तक अपनी लाइफ में मोमोज नहीं ट्राई किए थे।
1: अच्छा
0: एंड फिर इस गाने पे हमने मोमो यूज किया, तो लाइक हमने हमने हमने मम्मी पापा से जिद की कि प्लीज हम इसके शूट में मोमो तो यूज करेंगे।
1: फिर ट्राई किया,
0: फिर हमारे घर पे मोमो आया। तो जब हमने शूट किया था तब आखिरकार पहली बार जिंदगी में हमने मोमोज ट्राई किए।
1: तो कैसा लगा?
0: बहुत अच्छे लगे। उसके बाद हमने 4-5 बार खा लिए
1: बस। लेकिन थोड़ा गले की वजह से मम्मी पापा नहीं खाने देते होंगे, तो वे उसकी जो चटनी होती है तीखी, इसीलिए। और वैसे बहुत अच्छी चीज नहीं है मोमोज, बचपन से ऐसी सारी चीजें टेस्टी लगती हैं हमें भी लगती हैं। ओके, तो अब बात करते हैं फूल्स की, कि ये द श्यामा से बिल्कुल अलग और ज्यादा पर्सनल साइड है। फूल्स आपके लिए एक्चुअली क्या है, इसके बारे में हमें जानना है।
0: तो लाइक जब से मैं 10 साल की उम्र से गाने लिख रही हूँ, तो मैं बहुत सारे गाने लिखती थी। तो ज़्यादातर गाने मेरी लाइफ से इंस्पायर होते थे, लाइक छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं उनसे इंस्पायर होकर मैं गाने लिखती थी। तो इसलिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिनमें मैं उन गानों को बना के रिलीज़ कर पाऊँ। सो फूल्स एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स वाले गानों को रिलीज़ करती हूँ। तो फूल्स जेनेरिक टॉपिक्स पर ही होते हैं, जैसे कि एक गाना है हमारा एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने इस बारे में लिखा था क्योंकि हमारे फरीदाबाद में बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म आ रहा था एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो उस वजह से मैंने वो गाना लिखा। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स पे वो गाने बेस्ड है। तो वो हमारे एक ओरिजिनल सॉन्ग्स की कलेक्शन है जो कि हमें अलाउ करती है अपनी आर्टिस्टिक दूसरी आर्टिस्टिक साइड को दिखाने के लिए।
1: तो बेसिकली आपके जो रियल इंसिडेंट्स हैं लाइफ के, उसके छोटे छोटे कुछ कुछ आप गाने की फॉर्म में वो फूल्स पर डालते।
0: ऑफ कोर्स।
1: तो इसका नाम फूल्स क्यों रखा आपने?
0: तो फूल्स PHOOL, फूल हिंदी में मतलब फ्लावर होता है एंड इंग्लिश में प्रोनंसिएशन के टाइम पे तो फूल पागल होता है ना। तो उसके बाद फूल्स हमने ऐसे सोचा कि इट वुड बी फन, है ना। फूल भी बहुत कलर्स के होते हैं, है ना। तो हमारे गाने कोई बहुत ही डल होता है, कोई बहुत सैड होता है, कोई इतना एनर्जेटिक और हैप्पी होता है। तो बहुत सारे फ्लेवर्स एंड कलर्स ऑफ सॉन्ग्स हैं हमारे। तो इस वजह से हमने फूल्स रखा। और हम दो हैं तो हम एस लगाने वाले थे पहले तो, बट फिर हमने ऐसे ही स्टाइल के लिए जी लगा दिया। तो PHOOL फूल्स,
1: वो जेन जी स्टाइल।
0: यस,
1: ओके, नाइस। आप दोनों जैसे बहुत ही यंग हो, अभी इतनी कम एज है, आप 8th में हो, आप 12th में हो, तो इतना कुछ अचीव करना थोड़ा ओवरवेलमिंग नहीं लगता आपको?
0: तो मुझे लगता है, हमें लगता है कि अभी तो हमने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, बिकॉज़ हमारे ड्रीम्स आर वेरी बिग बचपन से ही एंड हमें अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। तो दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट।
1: नाइस। और इसके साथ ये बताओ कि जैसे आपकी एज के जो बच्चे हैं वो बहुत चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो आपको कभी ये तो नहीं लगता कि हमारा चाइल्डहुड मिस हो रहा है?
2: कभी नहीं। हमारे लिए तो वी हैव द बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवर चाइल्डहुड।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि एक जो ये एक्स फैक्टर आप में ऐड हुआ है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है।
2: किसी भी चीज के लिए मम्मी पापा ने कभी प्रेशराइज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो बहुत चिल फन चाइल्डहुड।
0: बाकी बच्चे हमारे हमसे जेलस होते थे, भाई तुम्हारे पेरेंट्स इतने चिल की हुए क्या है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो हमारा चाइल्डहुड हमारे लिए तो बहुत फन रहा है हमेशा से, अभी भी है।
1: नहीं, जरूर रहना भी चाहिए, और आगे भी मैं यही प्रे करूंगी कि ऐसे ही खूब खुश रहो आप दोनों और खूब फेमस हो। और दूसरा ये बताओ कि जैसे अभी आपने करियर म्यूजिक में ही बनाने का सोचा, राइट? तो अगर म्यूजिक ना होता तो किस में करियर बनाते?
0: हमने प्लान भी रखा ही नहीं है, सोचा भी नहीं प्लान बी के बारे
1: कभी
0: में।
1: कभी तो सोचा होगा।
2: बेसिकली मम्मी पापा ने बोला है कि अगर प्लान बी होता है ना तो प्लान ए पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते।
0: तो हमारा एक ही प्लान है, दैट वी वांट टू बिकम अ ग्लोबल आर्टिस्ट।
2: इंटरेस्ट है दूसरी चीजों में, बट है वही
1: तो ठीक है, ग्लोबल आर्टिस्ट ठीक है। आपको प्लेबैक सिंगिंग में है इंटरेस्ट या परफॉर्म करने में इंटरेस्ट है?
0: हमें परफॉर्म
1: करने में लाइव परफॉर्म
0: बहुत मजा आता है।
2: बट बचपन में ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। बेसिकली दियो ना बचपन से बहुत एक शाई और इंट्रोवर्टेड बच्ची थी बहुत ज़्यादा, और वो गाती अच्छा थी, तो शी ऑलवेज थॉट ओके आई विल बी अ प्लेबैक सिंगर। बट उसके बाद द नाइट स्टार्टेड सिंगिंग, वी हैड द डुओ गोपी गर्ल्स, फिर धीरे धीरे हमने परफॉर्म करना शुरू किया। और हमने तो बचपन में ये भी नहीं सोचा था कि हम साथ में भी कुछ करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: मैं बचपन से डांसिंग करना चाहती थी, तो वो सिंगर बनती, मैं डांसर बनती, हमारा था ही नहीं कुछ। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है अब डुओ बन गया गोपी गर्ल्स में, फिर अब शाम आज अब हम

0: एक अलग अलग इमेजिन ही नहीं कर पाते अब कि अब तो साथ में ही है।
1: अब वैसे आप डांस करते हो?
0: हाँ, हाँ थोड़ा बहुत करते।
2: हमारे गानों के शूट्स में शी ऑलवेज डांस।
1: अच्छा,
2: एंड स्टेज पर भी शी लाइक उसके एक्सप्रेशन ही बहुत अच्छे हैं, हैंड डांस ही अच्छा करती है बहुत।
1: स्टेज पर तो डेफिनेटली वो चीज करनी ही चाहिए।
2: यस ऑफ कोर्स।
1: ओके, तो अब मुझे ये बताओ अगले 5-10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो?
2: आई थिंक अगले 5-10 साल में मैं हम खुद को लाइक एक ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, जहाँ पे लाइक सारा पूरा वर्ल्ड हमारे म्यूजिक को इजीली सुन पाता है एंड लाइक सभी सुनते हैं एंड पसंद करते हैं। सो लाइक दैट इज़ आवर ड्रीम ऑफ कोर्स।
1: वाओ, बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हमेशा रहेंगी। ओके लिसनर्स, बहुत मज़ा आ रहा है आज हमें हमसिनी और स्माही के साथ। सो अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक पर से आने के बाद एक जल्दी से करेंगे रैपिड फायर राउंड। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: और अब हम करेंगे रैपिड फायर राउंड हमारी आज की स्पेशल गेस्ट जो है उनके साथ, हमसिनी और स्माही के साथ। तो आर यू रेडी?
1: यस।
0: ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर देने हैं, राइट? 1 2 3 स्टार्ट। सिंगिंग या सॉन्ग राइटिंग?
1: बोथ।
0: क्लासिकल या वेस्टर्न?
1: बोथ।
0: स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव परफॉर्मेंस?
1: बोथ।
0: द श्यामा द फूल्स?
1: बोथ।
0: अपना फेवरेट सॉन्ग?
2: बहुत सारे, बहुत डिफिकल्ट।
0: एक बताना पड़ेगा,
1: ये बहुत डिफिकल्ट।
0: अपना अपना एक बता दो।
1: ये पॉसिबल ही नहीं है तो।
0: ओके ठीक है, स्किप करते हैं। एक आर्टिस्ट जिसके साथ आप अपना कोलैबोरेशन करना चाहते हैं?
1: टेलर स्विफ्ट एंड सोनू निगम।
0: वाओ, एक टेलर स्विफ्ट और एक सोनू निगम, गुड। म्यूजिक के बिना अगर लाइफ होती तो कैसी होती?
1: फिर तो लाइफ में
2: लाइफ ही नहीं है।
0: ओ माय गॉड, बहुत डीप दे दिया है तुमने आंसर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे आप फ्यूचर में जरूर सीखना चाहते हैं?
1: वायलिन फॉर श्योर।
0: दोनों?
1: सितार।
0: ओके नाइस, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज आपके साथ। और अब लास्ट में एक एंडिंग क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो आपकी एज के जितने भी बच्चे हैं या टीनेजर जो भी कह लो, जो हमारा ये शो भी सुन रहे हैं, बहुत से इसमें ऐसे होंगे जो आपकी एज के आज सुन रहे होंगे बच्चे ये शो, तो आप उन्हें अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे आगे फ्यूचर में बनने की, जिन्हें कभी कभी मौका भी नहीं मिलता, बट आप उन्हें किस तरीके से गाइड करना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे?
3: आई वुड जस्ट से दैट जस्ट डू इट, इट्स नाउ और नेवर। क्योंकि अगर हम ये सब सीखने के लिए बड़े होने तक का वेट करते तो शायद अभी हम यहाँ तक भी ना होते।
0: एग्जैक्टली,
1: लाइक अपना पैशन हमेशा फॉलो करो एंड जस्ट नेवर गिव अप।
0: वाओ, बहुत ही अमेजिंग बात आपने बोली है, इतने छोटे हो लेकिन बातें आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे लिसनर्स को। ओके, अब रैपिड फायर राउंड के बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी कुछ हैं रिसेंटली जो आपके फैंस को सुनने को मिलेंगे, हमको सुनने को मिल सकते हैं?
1: तो अभी फूल्स में हमारा एक गाना रिलीज होने वाला है, होपलेस, जो कि मैंने 2 साल पहले लिखा था एंड इट्स रियली गुड, बहुत बहुत मजा आएगा उसको सुनने में।
3: 30 अगस्त को रिलीज हो रहा है।
0: वाओ, हम प्रे करते हैं बहुत ही उसे भी खूब लाइक्स, खूब व्यूज मिले आपके सॉन्ग को। बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ है। और अब एंड में आप कौन सा गाना हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहोगे?
1: सो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड टॉपिक।

0: even know if I wanted to beat the rest. Topic, God, topic. Maybe syndicate here without a logic. Oh, topic, God, topic. Will it ever be iconic? Topic.
1: वाओ, इतने मज़ेदार गाने कैसे बना लेते हो आप लोग. सो थैंक यू सो मच हमसिन एंड स्माही, आज आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो में आके बहुत ही चार चांद लगाए. थैंक यू सो मच और हमारी बेस्ट विशेज हमेशा आपके साथ रहेंगी. और लिसनर्स, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और अगले हफ्ते फिर से ऐसे ही दिलचस्प मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good afternoon, namaskar, sat shri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum dosto, main hu RJ Sagar, aaj ko hu lekar ke show Voice of Youth, and right now you're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM, feel good, feel live. Now this show is really special, reason being ki yahan par har baar hamare sath ek expert hote hain jinse hum unke domain ki baat karte hain, and we try to make sure ki jab tak hamara show khatam ho tab tak aapke paas kuch ek skill set pahunch chuka ho. Aaj hamare sath hai Mr. Pawan. Pawan ka thoda sa main aapko introduction dena chahunga. Pawan is a banker, at the same time he is a content creator, so we're gonna talk about banking part and content creation part and fitness part. To ye teen hisson mein hamara show aaj ka rehne wala hai. कोशिश करेंगे यहाँ पर आपको ये बता पाएं कि एग्जैक्टली जो बबल हमारे सामने की बैंक की लाइफ बहुत अच्छी होती है उसको डिकोड कर पाएं, एट द सेम टाइम कंटेंट की दुनिया की भी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे. तो सबसे पहले पवन भाई स्वागत है आपका.
2: नमस्कार, वेलकम.
1: पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को जो आपको नहीं जानते कि आप कौन हैं, क्या करते हैं.
2: मेरा नाम पवन है और मैं एक बैंकर हूँ. जैसे कि आज हम देख रहे हैं अपने समाज में या फिर अपने आसपास एनवायरनमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहाँ सभी देखते हैं हमारे आसपास के जो हमारे कलीग हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको हम मोस्टली देखते हैं कि थोड़ा अनफिट हैं और लोगों के अंदर भी फिटनेस के रिगार्डिंग जागरूकता थोड़ी सी कम है. मैं एक बैंकर हूँ और मुझे बैंक में रहते सर्विस को मेरे 10 से 12 साल हो चुके हैं. तो मैं देखता हूं कि जो रिटायरमेंट में मैंने काफ़ी स्टाफ को देख लिया है और रिटायरमेंट में जब मैं उनको देखता हूं कि वो रिटायरमेंट के समय वो कुछ नहीं लेके जाते हैं, उनकी हेल्थ जो है बिल्कुल एक नेगेटिव हेल्थ होती है. मोस्टली हेल्थ उनके चश्मे लगे रहते हैं, हेल्थ जो है उनका शुगर हाई रहता है, किसी का थायराइड रहता है. क्योंकि उसका एक मेन रीज़न ये है क्योंकि वो अपने फिटनेस को, बॉडी को टाइम नहीं दे पाते. दिन का 9 to 5 की जॉब, उसके बाद शाम को फैमिली, फैमिली के बाद फिर सुबह अपना जॉब. मतलब बैंक का बैंकर है जो मोस्टली स्ट्रगल है थोड़ा सा लाइफ में, लेकिन अपने फिटनेस में लाइफ में बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता है. मेरा मोटो ये है कि जितने भी हमारे यूथ हैं या फिर एल्डर्स हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने भी हैं जो रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, वो सभी अपना हेल्थ में थोड़ा ध्यान लगाएं. जो जिम नहीं जा सकते हैं वो रनिंग करें, घर के अंदर अपना कार्डियो सेक्शन कर सकते हैं, अच्छी डाइट लें. ऑफिस में रह के या फिर स्टूडेंट भी हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो अपना छोटे छोटे से स्नैक्स वगैरह आइटम बना लें हेल्थी फूड के, जो अपने टाइम टू टाइम अपना वेरी करते रहें, अपना ईट लें, तो ताकि बॉडी के लिए प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स एंड जो भी न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए होते हैं वो सारे सप्लीमेंट भी की जरूरत पड़ती है, तो अपना बीच बीच में लेते रहें जिससे कि हेल्थ जो है इंसान अपने फिट रह सके. और फिटनेस एक छोटी चीज़ नहीं है कि आज हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कल मिल जाएगी. फिटनेस एक बहुत लंबी जर्नी है जिसे अचीव करने के लिए हमें रोज़ छोटा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा. ये प्रयास जो है हमें अभी रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जिस समय हम रिटायरमेंट पे होंगे, जैसे हम बैंकर्स हैं या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, सभी बैंक में होते हैं या फिर डिपार्टमेंट में होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, सीनियर सिटीजन भी होते हैं. अब स्टूडेंट हैं आज के टाइम पे, हम देखते हैं बच्चे ऐसे ही खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, हेल्थी चीज़ कुछ नहीं खाते, कोक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें हैं. मेरा तो ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को लोग अवॉइड करें, थोड़ा सा कम करें और अपना खान पान जो है अच्छा रखें. अगर आदमी फिटनेस पे नहीं ध्यान दे पाता है, कम से कम अपना अच्छे फूड पे ध्यान लगाए. ये इनका रिजल्ट तो है, इन फ्यूचर जब आप पहुंचोगे अपने एज पे, 50-60 पे पहुंच पे, तब आपको फील होगा कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है. और हमारा कहना यह है, हम भारत से हैं तो हमारे भारत की पहली कहावत यह है कि पहला सुख जो है निरोगी का आया है. अगर सुख रहना है जीवन में तो सबसे पहले आदमी को अपना शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए. अगर खुद का शरीर स्वस्थ है तो ही हम जीवन में आगे कुछ और करने का प्लान करते हैं. हम स्वस्थ हैं तो अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, हम स्वस्थ हैं तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने स्टाफ को स्वस्थ रख सकते हैं. और अच्छे खाना खाते हैं तो साथ वाला पर्सन भी अच्छा ही खाएगा आपको देख करके, क्योंकि आदमी जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, आसपास का माहौल जैसे ही होता है. अगर साथ में कुछ हमारी संगत खराब होगी तो हम संगत खराब ही सीखेगा. अगर हम अच्छा खाएंगे तो साथ वाला भी अच्छा ही खाएगा, अच्छा खाएगा तो उसकी अच्छी

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। हमारे साथ यहां पर आज के जो मेहमान हैं वो है मिस्टर पवन। और अभी तक हमने जाना पवन के बारे में, पवन भाई ने बताया कि एग्जैक्टली वो फिटनेस को प्रमोट करते हैं बीइंग अ बैंकर। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पवन जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि बैंकर की लाइफ कैसी होती है? रीजन बीइंग कि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बैंकिंग एक ड्रीम जॉब होती है, तो मैं जानना चाहूंगा आपके शब्दों में कि एक बैंक की जिंदगी, एक बैंकर की जिंदगी कैसी होती है, कैसा होता है बैंक का माहौल?
1: बैंक की जॉब 9 to 5 की बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है, कोई बुरी जॉब नहीं है। लेकिन आज के इस टाइम में देख के, प्राइवेटाइजेशन को देख के, और इतने सारे बैंक हैं, कंपटीशन इतना है जॉब में कि स्ट्रगल हो गई है लाइफ। अब जो बैंकर्स की लाइफ है 9 to 5 नहीं, अब बैंकर्स जो है 8-8 बजे तक भी बैंक में जॉब करता है, और उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है वैसे। लेकिन ये सब जगह नहीं है। आदमी अपना काम को अगर इंजॉय से करे तो बैंकर जो है अच्छे से अपनी जॉब को कर सकता है, 9 to 5 भी कर सकता है अपने वर्कलोड को। बैंक में लोगों का ड्रीम रहता है, जो स्टूडेंट होते हैं अपना 12th पास करते हैं, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करते हैं और IBPS का एग्ज़ाम देके अपना बैंकर सिलेक्ट करके बैंक में लग सकते हैं, जिसकी अपना ड्रीम रहता है बैंकर्स की जॉब। बैंक में अलग अलग पोस्टेड हैं, सबकी पोस्ट का अलग अलग गवर्नमेंट पे स्केल है, सबका अलग अलग अपना फैसिलिटी है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अलग अलग पावर हैं, वो उसी हिसाब से उसी लिमिट में अपना काम करता है। स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि बैंकर्स की जो जॉब है वो अब गवर्नमेंट जॉब है। जैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो फेस ये करना होता है कि हमको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र या फिर इंटरस्टेट ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसमें हमें ये फेस करना पड़ता है कि हम अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों को, माता पिता को टाइम नहीं दे पाते, और बाहर जाने के बाद हमको बहुत सारे खाने की समस्या होती है। जो चीज़ हमारा रेगुलर फूड होता है, हमारा लोकल फूड, वो हमें वहाँ नहीं मिलता, या फिर हमें रहने की समस्या होती है, हमें देखना पड़ता है यहाँ हमारा एनवायरनमेंट है या नहीं है। और सबसे ज़्यादा समस्या तो होती है अपनी फैमिली देने के लिए, या बैंकर्स जो हैं जिनका भार ट्रांसफ़र हो जाता है उनको घर आने के लिए दूर, जैसे फ्राइडे होता है तो सैटरडे को छुट्टी लेकर के अपने घर आते हैं, और संडे को फिर मंडे को फिर सुबह बैंकर जाते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रगल है बैंकर्स के लिए कि लाइफ में वो जॉब भी करना है और दूर रहता है, जबकि मेरा मानना ये है कि कोई भी बैंकर है, सभी बैंकों उनको अपने ही सर्कल में ट्रांसफ़र हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी वर्कर कहीं पे काम करता है, वो अपने काम को अपनी जगह पे ज़्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि वो फ्रेश मूड में रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा। क्योंकि कोई भी आदमी सुबह सुबह भागता है, भाग के अपने जॉब पे जाएगा, सीट संभालेगा, आधे से ज़्यादा उसको अपना माइंड फ्रेश करने में लगा रहता है कि मैं अब सीट संभालूंगा, फिर शाम को उसे ये लगा रहता है कि मैं अपने घर जाऊंगा अभी। तो थोड़ा स्ट्रगल है इस चीज़ में बैंकर्स में।
0: सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बैंकर की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, और जो ड्रीम होता है आपका कि आपको बैंकिंग की लाइफ चाहिए, उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए, लेकिन आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी ज़रूर पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वहाँ पर जाकर के बहुत सारा बिजी आपकी लाइफ हो जाती है, हेक्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र भी आपका कहीं और हो सकता है, परिवार से भी आप दूर हो सकते हैं। उन तमाम चैलेंजेस के लिए आपको तैयार होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सच में बैंक की लाइफ ऐसी होती है कि 9 बजे गए 5 बजे छुट्टी हो गई, या उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता है, अमूमन जो नहीं दिखाई देती हैं?
1: आप सही कह रहे हैं कि 9 to 5 जो है बैंक की जॉब है, वैसे वर्किंग आवर सभी बैंकों का 10 बजे स्टार्ट होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर PSU बैंक हो, बट डिपेंड करता है कि हमारा काम करने की जो है क्वालिटी कैसी है, हमारी अपनी एफिशिएंसी हम कितना दे सकते हैं अपने वर्क में, कि हमें अपना काम कितने बजे तक ख़त्म करना है। अपना स्टाफ में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपस में सब कोलैब करके, किसी भी आप ब्रांच में जाके देखेंगे, अलग अलग बैंकों में जाके देखेंगे कि रश इतना ज़्यादा रहता है, कि किसी काउंटर पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, किसी पे बहुत भीड़ कम है। अगर ये सब मिलके बैंकर्स एक दूसरा एम्प्लॉय सपोर्ट करता है तो सब 9 to 5 में अपना घर जा सकता है, 6 बजे भी जा सकता है ताकि आदमी अपना घर पहुँच जाए। लेकिन अब वो नहीं रहा है क्योंकि ज़्यादातर वर्कलोड इतना ज़्यादा है, कस्टमर डीलिंग ज़्यादा है बैंकर्स में, तो थोड़ा सा जो बैंक का एम्प्लॉई है वो टाइमली फ्री नहीं हो पाता है वैसे। लेकिन मिलके करे और हंसते रहे, अपना खुल के काम करे तो आदमी सारा काम आता है तो फ्री हो सकता है वैसे।
0: सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ यू मैनेज योर वर्क, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो बहुत सुंदर बात बोली पवन भाई ने यहाँ पर। एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे एंड वी गोना टैप इन द कंटेंट क्रिएशन पार्ट की एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएशन कैसा चल रहा है उनका, कैसे किया जाता है, उस एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इनके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उस एक पर्टिकुलर पहलू को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। बट कहीं चाहिएगा मत, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वंस अगेन आई एम होपिंग आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए पवन के लिए तो 8010781078 इस कॉन्टैक्ट नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं। फिलहाल यहाँ पर शो को आगे लेकर के चलेंगे। मैं हूँ सागर, शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यूथ, और एक बैंकर की जुबानी हम ये तमाम चीजें समझ रहे हैं। अभी तक हमने जानू की लाइफ के बारे में, अभी तक हमने समझा कि एग्जैक्टली लाइफ स्टाइल कैसा होता है एक बैंकर की लाइफ का, एग्जैक्टली डेली का जो दिन होता है काम कैसे रैप होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली हैं एग्जैक्टली इनसाइट्स की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कि एक बैंक में भी BTS होता है बिहाइंड द सीन्स, जो हमें कई बार नहीं दिखाई देता है। अब शो को आगे बढ़ाएंगे और मैं बात करना चाहूँगा कॉन्टेंट क्रिएशन की। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि कॉन्टेंट क्रिएशन आपने क्यों स्टार्ट किया, आपको क्यों लगा कि ये करना चाहिए?
1: मैंने बैंक जो है अपना 2015 में ज्वाइन किया था। उस समय मेरा ट्रांसफ़र घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर था, तो मैं जो ट्रैवल करता था रोज़ ट्रेन से, बस से या फिर ऐसे करता था, तो सुबह 7 बजे निकल के 2 घंटे में ऑफिस पहुंच गए 9 बजे, उसके बाद अपना वर्किंग आवर स्टार्ट करके शाम को वहां से 5-6 बजे फ्री होके फिर 2 घंटे रात को घर आके, तो 8 बजे घर आने के बाद ये लाइफ स्ट्रगल चलता ही रहता था। तो लगभग 5-6 महीने के बाद मेरे को ये फील हुआ कि इस तरीके से तो मैं अभी यूथ हूँ, अगर मैं यंग हूँ, ये अगर ऐसा चलता रहेगा तो मेरी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और हम मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मोस्टली हैं बैंकर्स में, हम आसपास में भी देखते हैं सब फिट नहीं है, फिर मेरे को लगा कि हमें फ़िटनेस पर थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने अपना फिटनेस में थोड़ा लाइन लगाई, उसमें सुबह फिर मैं अपना उठ के जहाँ पे मेरे को ऑटो लेना पड़ता था, मैं वहाँ पे पहले अपना पैदल वॉक करना स्टार्ट करा ऑटो की जगह पे, ताकि उस समय मेरी एक्सरसाइज हो जाती थी और मेरा टाइम भी थोड़ा अच्छा रहता था। शाम को अगर ऑफिस में कभी लेट होते थे तो शाम को ऑफिस में बैग रख के अपना आसपास की मैंने कोई जिम ज्वाइन करके वहाँ पे अपना वर्कआउट स्टार्ट किया। और फिटनेस को फिर मैंने तब से ही अपना एक ये ले लिया कि ये फिटनेस ये ड्रीम नहीं है, एक एम है जो कि मुझे आगे तक मुझे हमेशा ही सुख ही देगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप फिट रहोगे तो ही आप आगे की लाइफ और अच्छी जी पाओगे। बैंकर्स में फिर होने के बाद फिर मैं जगह जगह ट्रांसफ़र हुआ, जगह जगह देखा, कहीं हमें कुछ चेंजेस मिलते हैं, कभी कुछ फूड की चेंजेस, कभी ट्रैवल की चेंजेस, लेकिन फिटनेस को मैंने हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखा। मैंने ऑल टाइम सुबह ही रनिंग के रख के शाम को जिम रखी। जिम आदमी को वर्कआउट करना चाहिए और रनिंग में आदमी को हर व्यक्ति को अपनी रनिंग जब भी टाइम मिले, अगर वर्कआउट नहीं कर पाता है वो अपनी रनिंग रखे।
0: तो आपने बेसिकली फिट रहने के लिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम पर ग्रो कैसे किया जाता है?
1: इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए कंटेंट आपका जो है फिटनेस के रिलेटेड, आप रेगुलर उसमें अपना पोस्ट डालें, रेगुलर आप अपना जो भी वर्कआउट शेड्यूल है, मैं अपना रेगुलर वर्कआउट शेड्यूल डालता हूँ उसमें, जो भी अपना डाइट प्लान है मैं अपना वो सब उसमें डालता हूँ। कंटेंट ये है कि आप लोगों को ये गाइड कर सकते हैं आपको किस तरीके से अपना डाइट प्लान जो है वो रख रहे हैं, आप अपना क्या खा रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं रनिंग का, तो वो सब अपना कंटेंट जो बना के अपना उसमें डाल लें इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर या फिर आप यूट्यूब चैनल जो भी है उसमें।
0: बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको कंटेंट बनाना है, शुरू करना है, वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कंटेंट की?
1: अगर किसी भी फ्रेंड्स को अपने कंटेंट स्टार्ट करना है, सबसे पहले वो सिलेक्ट कर ले कि उसको करना क्या है। अगर फिटनेस में सिर्फ रनिंग ही करनी है तो अपना रनिंग का स्टार्ट धीरे धीरे से कर सकता है, अपने अपने जो भी शेड्यूल है उसका डेली का, सुबह मॉर्निंग में जगने का और नाइट में कितने बजे वो फ्री होता है स्लीप का। वैसे अपने फिटनेस को लेने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है कि यही है इसका मोटो लोगों तो, कि ईट रिपीट एंड स्लीप, अपना अच्छा खाना और उसको रिलैक्स करना और अच्छी नींद लेना, फिट रहने के लिए तो यही है। कंटेंट स्टार्ट करने के लिए सभी फ्रेंड्स को सबसे पहले अपना वर्कआउट जो भी शेड्यूल है अपने वर्कआउट को अपना ठीक रखे, अपना रेगुलर पोस्ट डाले, जो भी वर्कआउट कर रहा है अपनी कंसिस्टेंसी रखे और रेगुलर पोस्ट रखे, अवॉइड करे अल्कोहल, अवॉइड करे जंक फूड और अवॉइड करे बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे अवॉइड कर सकते हैं।
0: तो बेसिकली अवॉइड ऑल दोस थिंग्स जो आपकी बॉडी को नेगेटिव अफेक्ट करती हैं एंड द थिंग्स दैट एक्चुअली पुट योर लाइफ एट स्टेक। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, जो भी आप करना चाहते हैं, बीट फिटनेस, कॉमेडी, टेक या जो भी आपका डोमेन हो सकता है, इस भी इशू आप पकड़ना चाहते हैं, जस्ट गेट स्टार्टेड। सो दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस। मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं पवन भाई, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप अपने मन में लेकर आए हो तो प्लीज़ फील फ्री।
1: सबसे मेन चीज तो यह है, मेरा तो ड्रीम यह है इंडिया के अंदर हो या इंडिया से बाहर, सब लोग किसी भी एज से लेकर के अब अवेज तक अपने हेल्थ को फिट रखे। फिट का मतलब ये नहीं है कि हमने आज वर्कआउट कर लिया, शाम को सो गए, हम फिट हो गए। एक लंबी जर्नी है, सबको अपने अच्छे खान पान से लेके, अपना अच्छा सोने से लेके, अपनी शारीरिक कसरत, घर के अंदर भी कोई काम भी एक फिटनेस ही है। लेकिन एक रेगुलर रूटीन में जो अपने फिटनेस को, बॉडी को, अपने मानसिक मेंटलिटी को फिट रखता है, वो फिट रखे, वो ज़्यादा ठीक है। मेरा तो यही है, मैं सब में और आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा सर।
0: थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आज हमने बात करी एक बैंकर से और एक कंटेंट क्रिएटर से। इन्होंने हमें बताया कि एग्जैक्टली बैंकिंग की लाइफ कैसी होती है, हमें बताया कि कंटेंट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, बताया एग्जैक्टली कि कंटेंट को ग्रो कैसे करना होता है। एट द सेम टाइम फिटनेस को बहुत प्रमोट करते हैं। आपने अभी तक ये अगर पूरा संवाद सुना है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि थ्रू आउट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द आंसर्स, ये फिटनेस को ही टॉप पे रख के बात कर रहे थे। सो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ टू लेट अस नो कि एग्जैक्टली फिटनेस आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, दैट इज़ द मैंडेटरी थिंग जो आपको करनी ही चाहिए एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल, जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। ऑल राइट, ऑन दिस नोट वक्त है अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा, आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों तक पहुँच पाए होंगे। फिलहाल इसी नोट पर इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच पवन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, इट मीन्स अ लॉट टू अस।
1: थैंक यू सर।
0: ऑल राइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर। बाय।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, ककड़ी के बारे में आज आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं मैं किसी भी फसल की बात करता हूँ तो उसकी किस्में कौन कौन सी होनी चाहिए ये जानकारी आपको ज़रूर देता हूँ। ककड़ी की जब बात आती है तो इसकी एक किस्म होती है जिसका नाम है पंजाब लॉन्ग मिलोन वन। ये किस्म 1995 में तैयार की गई थी और ये जल्दी पकने वाली किस्म है। इसकी बेलें जो हैं लंबी होती हैं, हल्के रंग का तना, पतला और लंबा फल होता है। इसकी औसतन पैदावार 86 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, लेकिन अगर दूसरे राज्यों की किस्मों की बात करें तो एक किस्म है करनाल सेलेक्शन। ये किस्म ज़्यादा मात्रा में फल पैदा करती है। इसके फल हल्के हरे रंग के और कद में लंबे और गुद्दा कुरकुरा और अच्छे स्वाद वाला होता है। इसके अलावा एक और नस्ल है जिसका नाम है अर्का शीतल। ये किस्म IIHR लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। इसके फल हरे रंग के होते हैं जो कि मध्यम आकार के होते हैं। इसका गुद्दा कुरकुरा और अच्छे स्वाद वाला होता है। 90 या 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन इस फसल को उगाने के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ककड़ी की खेती के लिए अच्छी तरह से तैयार ज़मीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हैरो से 2 या 3 बार जुताई करना ज़रूरी होता है, तब जाकर के ककड़ी की फसल बेहतरीन हो सकती है। लेकिन जब बात आती है बिजाई की तो बिजाई के बारे में भी आपको बताऊंगा और बीज के बारे में भी आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, जैसे बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए या बीज का उपचार कितना ज़रूरी होता है, ये सारी जानकारियां आपको दूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, बात हो रही है ककड़ी के बारे में, आइए बात कर लेते हैं बिजाई की या बिजाई के समय की। देखिए, बीजों की बिजाई के लिए फरवरी मार्च का महीना अनुकूल होता है, लेकिन जब बात आती है फासले की तो इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। खालियों के बीच 200 से 250 सेंटीमीटर और मेड़ों के बीच 60 से 90 सेंटीमीटर फासले का प्रयोग करें। फसल के अच्छे विकास के लिए दो बीजों को एक जगह पर ही बोएं। और अगर बीज की गहराई की बात आती है तो बीजों को 2.5 से 4 सेंटीमीटर यानी कि इतनी गहराई में बोना चाहिए। लेकिन बिजाई का अपना एक ढंग भी होता है। बीजों को बेड या मेड़ पर सीधे बोया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो बीज होते हैं उसमें बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं। और सवाल एक ये है कि बीज की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रति एकड़ में 1 किलो बीज का प्रयोग करें। और उपचार की बात आती है तो मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बेनलेट या बविस्टीन 2.5 ग्राम से प्रति किलो बीजों का उपचार करें। इससे क्या होगा, बीज को जो रोग लगने वाले थे वो रोग लगेंगे नहीं, और जब बीज को कोई रोग नहीं लगेगा तो आपकी फसल बेहतर होगी, स्वस्थ होगी और इसका दाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। करते हैं कुछ और भी बातें करते हैं ककड़ी के बारे में, जैसे खाद कैसे लगाएं या खाद कौन सी होनी चाहिए, खरपतवार का कैसे ध्यान रखें, ये सारी बातें भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: लेकिन वो बात।
1: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। तो आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद की। अगर आप ककड़ी की फसल अच्छी तरह से उगाना चाहते हैं तो आपको नर्सरी बेड से 15 सेंटीमीटर दूरी पर फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन का 1/3 भाग बिजाई के समय डालें। बाकी की बची हुई नाइट्रोजन बिजाई से 1 महीने के बाद में डालें। अब बात आती है खरपतवार की, क्योंकि जो खरपतवार होती है ना, वो फसल को एकदम बर्बाद कर देती है। तो इसके लिए क्या करना है, नदीनों की रोकथाम के लिए बेलों के फैलने से पहले इनकी ऊपरी परत की कसी से हल्की गुड़ाई कर दें। इससे जो खरपतवार है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जब बात सिंचाई की आती है तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, बिजाई के बाद तुरंत सिंचाई करना आवश्यक है और गर्मियों में 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। और बारिश की बात करें तो बारिश के मौसम में सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें, वरना आपकी फसल पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो कि बड़े खतरनाक होते हैं हमारी फसल के लिए। ऐसा ही एक कीट होता है जिसका नाम है चेपा और थ्रिप्स। ये कीट पत्तों का रस चूसते हैं जिससे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। थ्रिप्स के कारण पत्ते मुड़ जाते हैं जिससे पत्ते कप के आकार के और ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। जब भी आपको इसका हमला फसल पर दिखाई दे तो थायामेथोकस्म 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी की स्प्रे फसल पर कर दें। इससे ये जो कीट है चेपा और थ्रिप्स, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जो फसल है वो फसल एकदम स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, और भी कीट हैं जो कि आपकी फसल के लिए बहुत हानिकारक हैं, उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए।

दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, ककड़ी के बारे में आज आपसे बात हो रही है और पीछे मैंने एक कीट का जिक्र किया था जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, चेपा और थ्रिप्स। इनके बारे में तो आपको बता दिया था। इसके अलावा एक और कीट होता है जो जाना जाता है भुंडी के नाम से। इनके कारण फूल, पत्ते और तने नष्ट हो जाते हैं। अगर इसका हमला दिखाई दे तो मेलाथियोन 2 मिलीलीटर या कार्बोरिल 4 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ये भुंडी की रोकथाम में सहायक है। इसके अलावा एक होती है मक्खी जो कहलाती है फल की मक्खी। ये ककड़ी की फसल का गंभीर कीट है। किसान भाइयों, नर मक्खी फल की बाहरी परत के नीचे अंडे देती है और उसके बाद ये छोटे कीट फल के गुद्दे को अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा फल है वो फल गलना शुरू हो जाता है और फिर गिर जाता है। अब इसका उपचार सुन लीजिए। फसल को फल की मक्खी से बचाने के लिए नीम के तेल 3.0% फोलियर स्प्रे करें। इससे इस मक्खी यानी फल की मक्खी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे सफ़ेद फफूंद लग जाती है। इसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए अन्नदाता।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, ककड़ी की फसल के बारे में आज आपसे बहुत सारी बातें साझा कर रहा हूं, लेकिन बात चल रही थी कुछ कीटों के बारे में जो कि फसल के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जैसे सफ़ेद फफूंदी। पत्तों के ऊपरी सतह पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये जो धब्बे हैं ना किसान भाइयों, प्रभावित पौधे के मुख्य तने पर भी दिखाई देते हैं। इसके कीट पौधे को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और इनका हमला होने पर पत्ते गिरते हैं और फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। अगर इसका हमला खेत में नजर आए तो पानी में घुलनशील सल्फर 20 ग्राम को 10 लीटर पानी में डालकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार स्प्रे करें। इस तरह से इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसका नाम है एंथ्राक्नोस। ये पत्तों पर अपना हमला करती है जिसके कारण पत्ते झुलसे हुए दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बन डाइजिम 2 ग्राम से प्रति किलो बीजों का उपचार करें। अगर इसका हमला खेत में दिखाई दे तो मैन को जेब 2 ग्राम या कार्बन डाइजिम 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी फसल को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जब बात आती है फसल की कटाई की या बीज उत्पादन की, वो कैसे होना चाहिए उसके बारे में भी बात होगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, ककड़ी के बारे में आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन अब समय है फसल की कटाई का। देखिए किसान भाइयों, इसके जो फल है ना, 60 से 70 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, और कटाई मुख्य तौर पर फल के पूरी तरह विकसित होने और नर्म होने पर ही की जाती है। कटाई मुख्य रूप से फूल निकलने के मौसम में 3 से 4 दिनों के अंतराल पर की जाती है, लेकिन जब बात आती है बीज उत्पादन की, तो इस बात को भी जरा ध्यान से सुनिएगा। ककड़ी को अन्य किस्मों जैसे वाइल्ड मेलन, खरबूजा, स्नैप मेलन, यानी इनसे 1000 मीटर के फासले पर रखें। खेत में से प्रभावित पौधों को हटा दें। जब फल पक जाएं, यानी जैसे उनका रंग बदल कर हल्का हो जाए, तब उन्हें ताजे पानी में रख कर हाथों से तोड़ें और गूदे से बीजों को अलग कर लें। बीज जो नीचे स्तर पर बैठ जाते हैं, उन्हें बीज उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, बीज उत्पादन के बारे में भी आपसे बात हो गई, फसल की कटाई कैसे की जाए ये भी बता दिया, और कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से कीट हैं जो कि हमारी फसल को नेस्तनाबूद कर देते हैं, उनसे रोकथाम कैसे की जा सकती है, ये सारी बातें विस्तार से आपको बता दी हैं। पर अब वक्त है आपसे आज्ञा लेने का। चलता हूँ, और चलते चलते सभी किसान भाइयों को करता हूँ राम राम सलाम।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरला पान चबाए, आहा, अरे

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से।

गोरी बाबा कैसी गोरी गोरी गोटी की दिखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में। उनके बारे में पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी। उनका कहना है कि हर एक देश का, समाज का अपना स्वतंत्र बोध होता है और युग बदलने के साथ साथ उसका बोध भी बदलता रहता है, जिसका रूप साहित्य में देखने को मिलता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक उसी तरह साहित्य और युग बोध भी अनुपूरक हैं। एक के बिना अन्न की कल्पना असंभव है, ऐसा कहना है मधु कांकरिया का। लेकिन इनके बारे में आज के एपिसोड में और बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मधु कांकरिया का युगबोध सजग, सतर्क और स्पष्ट है। अपनी कहानियों में उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को भली भांति भांप कर यथार्थ वर्णन किया है। जो प्रवृत्तियां, परिस्थितियां, समस्याएं उन्हें एक बेहतर समाज के निर्माण में बाधक प्रतीत हुई हैं, उनका हल प्रस्तुत करने का यत्न भी एक शुद्ध साहित्यकार की भांति किया है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण मधु कांकरिया की कहानियों में समाज का वास्तविक यथार्थ अंकित हुआ है, जहां कल्पना के अटने की ज्यादा गुंजाइश देखने को नहीं मिलती है। सूरज पालीवाल के मुताबिक मार्क्सवाद जीवन और जगत को देखने की स्वस्थ दृष्टि देता है, जिसका प्रभाव मधु कांकरिया के जीवन और रचना जगत में देखा जा सकता है। वो मार्क्सवादी नहीं है, लेकिन उसकी विरोधी भी नहीं है। इसलिए उनकी रचनाओं का आकाश विस्तृत है। घर परिवार की सीमाओं का जो बार बार अतिक्रमण होता है, उसके सूत्र इसी मार्क्सवाद के प्रभाव में देखे जा सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मधु कांकरिया का रचना संसार बहुत विस्तृत है, जिसके कारण वो अपने समकालीन रचनाकारों जैसे मालती जोशी, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, राजी सेठ, अनामिका, उषा प्रियंवदा, सुधा अरोड़ा, नासिरा शर्मा और सूर्य बाला से अलग और विशिष्ट हैं। दोस्तों, मधु कांकरिया के व्यक्तित्व का खुला दर्शन उनके साहित्य में परिलक्षित होता है। वो ड्राइंग रूम में बैठकर लिखने वालों में से नहीं हैं। वो उन गलियों में जरूर भटकती हैं जहां उनके पात्र हैं। वो फॉर्मूला टाइप कहानी में विश्वास बिल्कुल नहीं करती। जीवन जैसा है उसको वैसा ही साहित्य में उतारने की कोशिश उनकी हमेशा रहती है। जीवन में जो स्त्री हार रही है उसे वीर बाला या झांसी की रानी बनाकर बहुत नहीं दिखाती हैं। यही उनकी लेखन की खासियत है जो और लेखकों से उनको अलग करती है। इनके बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में, उनके लेखन के बारे में। मधु कांकरिया की हर एक कहानी समकालीन दौर से इस प्रकार संबंधित है कि प्रत्येक पाठक खुद को उसमें जरूर पाता है। अगर स्त्री की बात करें तो 20वीं सदी के अंतिम दशक की लेखिकाओं ने स्त्री मुक्ति की समस्याओं को अपने अनुभवों, भोगी हुई जिंदगी की यातनाओं, मुक्ति की छटपटाहट और बेचैनी को वाणी प्रदान की है। आज की स्त्री अपने सामने उपस्थित चुनौतियों को स्वीकार करती है, सामंती परिवेश की जकड़न और रूढ़ मर्यादाओं को तोड़ती है, साथ में सकारात्मक रूप से अपने दृढ़ व्यक्तित्व को भी वाणी प्रदान करती है। मधु कांकरिया की कहानी, जिसका नाम है दाखिल, कहानी दाखिल में पति द्वारा प्रताड़ित स्त्री यानी सुकीर्ति के जीवन का जिक्र हुआ है। अब सुकीर्ति के बारे में किस तरह से जिक्र किया है मधु ने, आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था मधु कांकरिया की उस कहानी का जिसका शीर्षक है दाखिल। दाखिल में पति द्वारा प्रताड़ित स्त्री यानी सुकीर्ति के जीवन संघर्ष का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। सुकीर्ति के प्रति पति का व्यवहार कैसा था, ये छोटे से विक्रम यानी जो बेटा है उसके कहने से पता चलता है कि मैंने फेंके हैं ये चाकू यहाँ, मुझे डर था कहीं पापा गुस्से में ये चाकू ही तुम पर ना फेंक दें। उस दिन जो गरम गरम चाय किस तरह फेंकी थी पापा ने आपके ऊपर। दोस्तों, सुकीर्ति अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहती है, लेकिन पति के ना होने से ये काम सहज नहीं था। वो अपने भाई को पति बनाकर बच्चे के एडमिशन का प्रयास करती है और आखिरकार अनेक संघर्ष के बाद वो इसमें सफलता पाती है। पितृसत्तात्मक समाज में एक अकेली स्त्री का जीवन बहुत ही कठिन और संघर्षशील होता है। पुरुष के बिना नारी के अस्तित्व को आज भी लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये हकीकत है और यही सत्य है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, भारतीय नारी के विषय में पहले से ही पवित्र संकल्पना रही है कि वो किसी भी प्रतिकूल या नकारात्मक स्थिति में अपने सतीत्व का विसर्जन नहीं करेगी, क्योंकि ये नारी का आभूषण है। उसकी पवित्रता पितृ सत्ता की वैचारिकी और उससे तराशी स्त्री सोच से आबद्ध रही है। लेकिन आज के युग तक आते आते इस दृष्टिकोण में काफी कुछ बदलाव आए हैं। जीवन मूल्य के प्रति बदले हुए चिंतन के कारण वर्तमान में स्त्री स्वतंत्रता के साथ जीवन बिताना चाहती है। अगर उसकी स्वतंत्रता पर जबरदस्ती लगाम लगा दी जाए तो उसका मन आजादी के लिए तड़पने लगता है। वो किसी न किसी तरह स्वतंत्र होने की सोच में डूब जाती है। फिर रास्ता कोई भी हो, सही हो या गलत हो, उसे परवाह नहीं रहती। दोस्तों, मधु कांकरिया की एक कहानी है जिसका नाम है चूहे को चूहा ही रहने दो। इस कहानी के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में और उनके लेखन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, उनकी एक कहानी है जो कि बड़ी मशहूर है, नाम है चूहे को चूहा ही रहने दो। ये कहानी एक प्रतिशोध परायण स्त्री का बयान बनती है। एक बार नायिका हिम्मत करके अपने छोटे भाई के मित्र से हाथ मिला लेती है तो उसका पति उसके हाथों को दीवार पर रगड़ देता है ताकि स्पर्श के चिन्ह मिट जाएं। नायिका कहती है, मेरे पति ने मेरी देह की जमीन पर ऐसी हदबंदी कर दी थी, ऐसे कटीले बाड़े डाल रखे थे कि मैं किसी हम उम्र इंसान से बात करने तक तरस जाया करती थी। पति से बदला लेने के लिए एक अजनबी से शारीरिक संबंध बनाकर घोषित करती है, हाँ हाँ, आज की ये रात अकस्मात नहीं थी, इसके मेघ खंड मेरे अवचेतन में जाने कितने वर्षों से खंड खंड इकट्ठे हो रहे थे, आज की रात मेरे प्रतिशोध की रात है। तो इस तरह से दोस्तों, मधु कांकरिया ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में फैली जो कुरूतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको खत्म करने का प्रयास किया और जो स्त्रियां हैं उनको जागरूक करने की कोशिश की। इनके बारे में अगले एपिसोड में आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ, हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, और इसी के साथ लेकर आती हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत से गाने भी। और यहाँ पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, हम सबसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, कभी हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी कभी हमारा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देते हैं। मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्नेहा, और आज फिर से आ गई हूँ लेकर एक और ऐसा टॉपिक जो शायद हम सबकी डेली लाइफ का हिस्सा भी है। जी हाँ, लेकिन इसके बारे में हम उतना सीरियसली लेते ही नहीं है, हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं है। दोस्तों, एक सवाल आपसे कि आज आपने क्या खाया? हो सकता है कि शायद आपने ब्रेड या फिर पोहा खाया हो, या लंच में दाल चावल या फिर रोटी सब्जी खाई हो, और शाम को चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स तो हो ही जाते हैं, और अगर बाहर निकल गए तो स्ट्रीट फूड का टेम्पटेशन तो अलग ही लेवल का होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो फूड हम खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो सेफ हैं हमारे लिए या फिर नहीं, और पैकेट्स पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है क्या हम उसे कभी प्रॉपरली चेक करते हैं। बस इसी कनेक्शन से आज का हमारा टॉपिक जो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए वो है FSSAI। जी हाँ, आपने FSSAI का नाम ज़रूर सुना होगा। हम सब कहते हैं कि जो भी हम पैकेट बाहर से खरीदते हैं उस पर हम एक बार चेक करते हैं कि उस पर FSSAI का मार्क है या नहीं। पैकेज फूड के पैकेट पर एक लोगो आता है और लाइसेंस नंबर भी देखा होगा आपने, लेकिन क्या आपको एक्चुअली पता है कि FSSAI क्या करता है, ये फूड इंडस्ट्री के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और एक कंज्यूमर के रूप में इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, सिंपल वर्ड्स में समझे तो इसका मेन फोकस है कि जो हम फूड हम तक जो पहुँच रहा है वो सेफली और क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हमारे पास आए, और यहीं से आज की कॉन्वर्जेशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि फूड सेफ्टी सिर्फ रेस्टोरेंट्स या फिर कहीं तो फूड कंपनीज या फिर शॉपकीपर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज कंज्यूमर हमें भी ये देखना चाहिए, हमें भी इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये ट्रेंडिंग टॉपिक जिसमें हम FSSAI को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही नहीं बल्कि अपनी डेली फूड चॉइस के कनेक्शन से भी समझने वाले हैं। पैकेट पर FSSAI नंबर का मतलब क्या होता है, फूड लेवल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, स्ट्रीट फूड खाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है हमें, और हम किसी फूड प्रोडक्ट को लेकर कंप्लेंट कर सकते हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है। जी हाँ, और आपको क्या करना है, आपको ना जुड़ जाना है हमारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। और आपको अभी मैं सुनाने वाली हूँ बहुत ही प्यार सा गाना, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर बातों के साथ में प्यारे प्यार से गाने भी आते हैं। तो सुने बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइव।

बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है कि जब हम मार्केट से कोई पैकेज्ड फूड खरीदते हैं तो क्या हम पैकेट को सिर्फ फ्रंट साइड से देखकर ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें यही चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि पैकेट देखा, ब्रांड पसंद आया, फ्लेवर देखा, प्राइस देखा और बस शॉपिंग बकेट में वो चला गया। लेकिन दोस्तों, फूड पैकेट के फ्रंट के साथ साथ उसकी बैक साइड भी इम्पोर्टेंट होती है। जी हाँ, क्योंकि वहीं पर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें प्रोडक्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि FSSAI लाइसेंस नंबर की। जी हाँ, पैकेज जो फूड होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उस पर FSSAI से रिलेटेड लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसका पर्पस ये बताना होता है कि फूड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर है। उसके बाद देखिए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है, ये बहुत यूजफुल होती है कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें यूज हो रही है। ये इंग्रेडिएंट्स लिस्ट का पता चलता है हमें इससे। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर आती है डेट इंफॉर्मेशन। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग डिटेल्स और बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी जैसे इंफॉर्मेशन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैकेट देखकर प्रोडक्ट फ्रेश अज्यूम कर लेना ये सही हैबिट नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, वो है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, जिसमें कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, शुगर, सोडियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर आप अपनी डाइट को लेकर कॉन्शियस हैं तो ये सेक्शन आपको इन्फॉर्म चॉइस लेने में हेल्प कर सकता है। और हाँ, वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन सिंबल भी चेक करना यूजफुल होता है अगर आपकी फूड प्रेजेंस स्पेसिफिक है तो। अब छोटी सी एक चैलेंज वाली बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप सुपरमार्केट जाएं तो किसी एक पैकेज्ड फूड को उठाइए और उसकी बैक साइड को 30 सेकंड प्रॉपरली पढ़िए। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो आपने पहले कभी नोटिस ही ना की हो। दोस्तों, फूड लेवल पढ़ना कोई डिफिकल्ट काम तो नहीं है, बस थोड़ी सी हैबिट को डेवलप करना हमें पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट कंज्यूमर वो नहीं है जो अच्छा लुकिंग पैकेज देखकर उठा लेते हैं, बल्कि स्मार्ट कंज्यूमर वो होते हैं जो लेबल पढ़कर इन्फॉर्म्ड चॉइस करते हैं। तो अगली बार शॉपिंग करने वक्त फ्रंट देखिए, लेकिन डिसीजन लेने से पहले बैक पर, उसके बैक साइड के प्रिंट पर भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ, इस हफ्ते फिर से आ गए हैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक। और आज बात हो रही है हमसे जुड़ी हुई। जी हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या चीजें यूज करते हैं, क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, नॉट प्रोडक्ट बट क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। फूड सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं है, क्या आप उस पर FSSAI का जो मार्क है वो चेक करते हैं, लाइसेंस नंबर चेक करते हैं या नहीं। अब तक हमने जैसे कि जाना कि FSSAI क्या है और पैकेज्ड फूड खरीदते वक्त हमें लेबल पर क्या क्या चेक करना चाहिए, लेकिन अब बात करते हैं उस फूड की जिसके लिए हम प्रोडक्ट लेबल को चेक नहीं करते, क्योंकि सामने होता है एक गर्मा गर्म प्लेट और उसकी अमेजिंग सी स्मेल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रीट फूड की, जो हम गोल गप्पे खाते हैं, मोमो खाते हैं, चाट, चौमिन, समोसे, रोल्स। देखो ये नाम ही ऐसे ना, इन्हें सुनते ही मुंह में पानी आ गया है ना। स्ट्रीट फूड हमारी फूड कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अफोर्डेबल भी है और टेस्टी भी है, और वैरायटी तो इतनी है कि हर गली में कुछ ना कुछ नया मिल रहा होता है। लेकिन टेस्ट के साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है हाइजीन। जी हाँ, जब भी आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो तो सबसे पहले एक बार आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट नोटिस ज़रूर कीजिएगा। क्या फूड प्रॉपरली कवर्ड है, क्या वेंडर इंग्रेडिएंट्स को क्लीन और हाइजीनिक कंडीशन में रख रहा है या नहीं, क्या जो सर्व करने के लिए चीज़ें यूज़ हो रही है वो रीजनली क्लीन है या नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पानी। जी हाँ, चाट हो गया, गोलगप्पे हो गए या फिर ड्रिंक में जो वाटर यूज़ होता है उसकी क्लीनिनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको पानी की क्वालिटी पर डाउट लग रहा है तो बेटर है कि आप उस फूड को अवॉइड करें। फिर आती है रॉ और कुक्ड फूड का हैंडलिंग। जी हाँ, अगर वेजिटेबल्स, सॉसेस या फिर कुक्ड फूड ओपन में बहुत देर तक रखा गया है तो कॉशन ज़रूरी है। और दोस्तों, एक चीज़ जो हम अक्सर देखते हैं वो है सेम ऑयल का बार बार यूज़ होना। जी हाँ, अगर ऑयल का कलर, स्मेल अनयूजुअल लग रहा है या फिर ऑयल बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो वहाँ फूड चूज़ करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना बेटर रहेगा आपके लिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्ट्रीट फूड खाना ही बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि स्ट्रीट फूड को आप इंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ। एक सिंपल रूल याद रखिए, जहाँ पर क्लीनिनेस दिखे वहाँ कॉन्फिडेंस से खाइए, जहाँ हाइजीन डाउटफुल लगे वहाँ थोड़ा

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेप वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था, उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, 3 साल और 7 दिन का। तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तो मैं उसने जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए? अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे? अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी।
यहाँ कोई पहला नहीं है और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त हैं। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और न अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो, प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसा ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है जहाँ तख्ती लगी चुंदी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंदी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंदी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम हो।

चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे सन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई। कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी। तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी, जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा? जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा, ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों में, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है? आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते? तो अकबर ने कहा, तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाकर बेच जाओ। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच लेगा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा, रखोड़ बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या? लेते आदमी का सिर किस काम आता है? अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए। इसको हम रखेंगे क्या? ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से, कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या? तो अकबर ने कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है? दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा? तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है, उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है? जिसका कोई मूल्य नहीं, इसका नाम झुकाना है। सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो। देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा कि सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए। सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की, इसलिए पूरब में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं। पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं? सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं।
कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों में, अब भूल जाओ सिर को। अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं। और अब पूछो किसी से की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी। अब क्या करूं? व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं? ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण। मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी। अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे? गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार हैं, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता है कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा, लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती। तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं। तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई। तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो, इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए। और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा? मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा? तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी, उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं,
जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी, वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता है, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता है, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता है। वो तो कहता आओ, जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला था। धीरे धीरे गुरु की प्रभुध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे, चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं। शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है, इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्रधनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विष बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रोक, रुके रह जाना। झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना न चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे। तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं। मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा।
तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना। मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे। तुम जाओ तो ही परमात्मा आ। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूं तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत। देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। देखो 25 साल की श्रद्धा जितनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क शायद ये है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ। लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पर श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी। तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पर श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती और नानक पर श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला है। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ था, अब साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी, दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर
या कृष्ण या जरथुस्त।

मोहम्मद, यह ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उस एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक टूट गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारण का तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में न रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सदी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पार। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। इंसानों तो कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क की जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसीलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था, तो पूरे ईमान का क्या भरोसा? अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होगा, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ। फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया, ये सहयोगी बात है। अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना, तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए।
तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद तक पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा? मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाए, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे? तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं। बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल, तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप का साहित्य पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तथस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात? तो सुकरात ने कहा, मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों पूछा पूछने वाले ने? क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना।
असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में है। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोल कर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवेरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। साक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची।
तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा पानी के कारण, पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो? पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले अल्प मात्र बनते ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का बुद्ध ने पूछा, राजा और भी सक्षम है और बोले अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा तो फिर सोचो, अल्प मात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं है, उनके शब्द शब्द में अर्थ है और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तुम सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खींचे चले आए, तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उघड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकर है और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया, कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया, स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है, और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुके सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साख्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को।
संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो

झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है। तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो, कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपद वासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते हैं। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है, पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़े ही शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया, खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े, यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है, और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं। इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी हूं। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: And then again, mindsets हैं कि criminals कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो supposedly लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग,
4: हाँ,
5: अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया, कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूअसली अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है, कोई मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर, रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सो कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत ईजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा, तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम, यू नो, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा.
5: Absolutely.
4: लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही perspective में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चली जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं. बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है, या I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
4: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, unawareness में मैं कहाँ तक कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हम आपस बात ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ. लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका, वो भूल चुके हैं. अपना सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग. टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट्स सफरिंग फॉर मी. नोबडी कैन कॉज मी पेन. ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. तो शिवानी आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू समवेयर, हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
5: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस. फॉरगिव करना या क्षमा करना, जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो, क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
4: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो.
5: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फॉरगिव करना है किसी को तो मुझे क्या

0: याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फॉरगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट. सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं. तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है. हमें इससे निकलना होगा, और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ. अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर. सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए. आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव. अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं. तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
1: मैं ही करूँ,
0: मुझे करना है. अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी. क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी, या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो चोट किसको लगी? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है. तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है? और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं? से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया. अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रीलिव करते जाते हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा? तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ. अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस. एक्चुअली मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे. नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या?
1: बिल्कुल. और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है.
0: एब्सोल्युटली. और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ. तो क्या होता है, वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं, वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव. सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है. और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूँ.
1: पेन में हूँ,
0: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा. मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी, तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ. एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी. अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन, टेकिंग इट कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
1: I can talk about myself. Yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
0: Aapko pata hai mere saath kya hua. And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte na, apna rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहाँ पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं.
1: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. It is, you know, at times I have seen people actually getting into it और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस victimized, जो खासकर जो ज़्यादा trauma से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पार है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते?
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर. अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
0: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो. तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
1: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी.
0: ट्रू.
1: बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody,
0: right? But we're not really helping.
1: Yes,
0: यू नो हेल्प एट दैट टाइम वुड मीन एम्पावरमेंट. लेकिन बार बार कह कर कि हाय आपके साथ ऐसा हुआ, बेचारे आप, अब आपका क्या होगा, या इवन ये कहना कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट टू हर्ट एनी वन, लेकिन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा वो ठीक है, बट बाय सेइंग दैट वे सेइंग कि अभी सब गलत है. तो जितना हम नॉर्मलसी को क्रिएट कर सके, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.